0: काम आई। जब उनके रसूल उनके पास बयनात लेकर आए तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके अपने पास था, और फिर उसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा आजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वहदहु ला शरीक को, और हम इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम उसका शरीक ठहराते थे। मगर हमारा आजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफे न हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाबिता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा है। और उस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

माल हो मगर बरकत ना हो तो कमी रहती है, वक्त हो मगर बरकत ना हो तो कुछ हासिल नहीं होता, सेहत हो मगर बरकत ना हो तो सुकून नहीं मिलता। तो दरअसल दौलत तो अल्लाह की बरकत है, हमें अल्लाह तेरी बरकत के बगैर कोई गिरा नहीं, यानी हम तेरी बरकत के मोहताज हैं, हम इससे बेनियाज नहीं हो सकते। कुल लना ला अलैना, ये अल्लाह हमारे हक में हो हमारे खिलाफ ना हो, यानी अल्लाह हर चीज हमारे लिए खैर बना दे हमारे खिलाफ ना हो। वखुदना इलैक मिन्ना, ये अल्लाह हमें हमसे निकाल कर अपनी तरफ ले जा, यानी नफ्स से बचा कर अपनी तरफ ले जा, तेरी चाहत की जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, हमें अपने जात के गुरूर से बचा ले, ख्वाहिशात से खुद पसंदी से बचा ले। वला तजअलना मफ्तूनीना बिअनफुसिना, हमें अपने नफ्स के फितना में मुब्तला न कर। सामने कलाम बाज लोग ये दूसरों से नहीं बल्कि खुद अपने आप तबाह हो जाते हैं, चूंकि उनमें तकब्बुर, खुद पसंदी, अपनी नेकी पर फख्र, अपनी राय पर गुरूर, उन्हें पता ही नहीं चलता। हालांकि सब खतरनाक फितने उसी के अंदर है। अब अगला जुमला है, या अल्लाह हमें आमाल सालिहा पर दायम व कायम रहने की तौफीक अता फर। इस जुमले की हकीकत ये है कि कुछ लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, कभी नमाज, कभी तिलावत, कभी नेकी थोड़ी बहुत कर ली फिर रुक जाते हैं। अल्लाह से इस्तिकामत मांगना बेहद जरूरी है। आमाल सालिहा जो हमेशा दायम व कायम रहे इसकी तलब है, साथ साथ या आमाल सालिहा बिदअत से भी पाक हो, क्योंकि नेकी तो वही है जो सुन्नत के मुताबिक हो, सिर्फ जज्बा तो काफी नहीं तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए। साथ साथ दुनिया की तरफ हद से ज्यादा झुकाव से भी हम तेरे पनाह मांगते हैं। अब दुनिया कमाना ये तो कोई बुराई नहीं, लेकिन दुनिया दिल में बैठ जाए तो अलग मसला है। इस वजह से कहते हैं ना कि हाथ में दुनिया हो तो ठीक, दिल में दुनिया ना हो। इसी तरह ऐसे लालच से भी हम तेरी पनाह मांगते हैं जो इंसान की तबीयत खराब कर दे, यानी लालच जो तबीयत बन जाए, क्योंकि लालच इंसान को बेसब्र बना देता है, नाशुक्र बनाता है, बेउसूल बना देता है, यानी उसके कोई उसूल नहीं रहता। और ऐसे इल्म से भी तेरा पनाह है जो गुनाह की तरफ ले जाए, क्योंकि हर जान पहचान मालूमात फायदा मंद नहीं, कुछ चीजें इंसान को गुनाह की तरफ खींचती हैं। इसी वजह से और एक दुआ में ये भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह हमें इल्म नाफे नसीब फरमा। फिर दुआ का अगला जुमला है, ऐसे मशगले से भी तेरे पनाह है जिसका अंजाम पछतावा हो, क्योंकि वक्त कीमती है, हर मसरूफियत मुफीद नहीं होती। तो इन मशगलों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं जो वक्त को ज़ाया करे, ईमान कमज़ोर कर दे, बाद में अफसोस का बायस बने। तो अब तक जितनी दुआएं की हैं सामने कराम हमने, इनमें बात आ गई कि बरकत सबसे बड़ी नेमत है, नफ्स से बचना ज़रूरी है, नेकी के लिए इस्तकामत मांगनी है, साथ साथ दुनिया को दिल पर सवार न होने दें, हर मसरूफियत फ़ायदा मंद नहीं होती, ये बात भी आ गई। अब एक और दुआ सुन लीजिए, जुल्म से बचने और अंधेरों से निकलने की दुआ है ये, क्योंकि इंसान सिर्फ रात के अंधेरे से नहीं डरता, बाज़ अंधेरे दिल में होते हैं, बाज़ फिक्र में, बाज़ किरदार में और बाज़ मुआशरे।

0: हम जुल्म और हर अंधेरे से तेरी पनाह मांगते हैं. نعوذ بك من الظلم والظلمات نعوذ بك من ظلمة القلب. हम तेरी पनाह मांगते हैं दिल के अंधेरे से, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाता है नसीहत असर नहीं करती, जिक्र अच्छा नहीं लगता, गुनाह आसान लगता है, ये दिल की तारीकी है. आगे दुआ यूं है, वज़ुल्मत नफ्स, यानी नफ्स के अंधेरे से पना, क्योंकि नफ्स इंसान को कहता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो, मुझे सब कुछ मिले, मैं ही बड़ा हूँ. दरअसल बात यह, अगर नफ्स काबू में ना हो तो इंसान भटक जाता है. इसी तरह पनाह मांगी गई कब्र के अंधेरे से, क्योंकि असल कामयाब वो है जिसकी कब्र रोशन हो, और कब्र की रोशनी ईमान, नमाज, कुरान और नेक अमल से आती है. इसी तरह पनाह मांगी गई फिक्र और सोच के अंधेरे से, वज़ुल्मतिल फिक्र, क्योंकि गलत सोच, मायूसी, बदगुमानी, बेमकसद ख्यालात, ये भी अंधेरे हैं. अल्लाह सही सोच अता करे तो जिंदगी संवर जाती है. फिर पनाह मांगी गई वज़ुल्मतिल कहर, यानी जबर और दबाव के अंधेरे से. मतलब यह है कि कभी इंसान हालात से टूटता है, कभी लोगों के जुल्म से, तो इस वजह से इन मजबूरियों से भी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं. मजीद पनाह मांगते हैं ज़ुल्मतिल अहवा, ख्वाहिशात के अंधेरे से, क्योंकि जब ख्वाहिश हक से बड़ी हो जाए तो इंसान सच्चाई छोड़ देता है. इस वजह से कहते हैं ना, या अल्लाह हमें ख्वाहिशात का गुलाम न बना. अगला जुमला है वज़ुल्मतिल मासी, गुनाहों के अंधेरे से भी तेरी पनाह मांगते हैं, क्योंकि हर गुनाह दिल पर एक दाग डालता है और बार बार गुनाह दिल को तारीख कर देता है. फिर आखिर में कहा गया वज़ुल्मात दुनिया वल आखिरत कुल्लिहा, यानी दुनिया व आखिरत के तमाम अंधेरों से तेरी पनाह मांगते हैं. परेशानी का अंधेरा, तन्हाई का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, क़यामत का अंधेरा, सबसे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं. फिर आगे लोगों पर जुल्म करने से भी पनाह मांगी जा रही है. नऊज़ु बिका मिन ज़ुल्मि नास, चाहे वो जबान से हो, हाथ से हो, हक मार कर हो, बदनाम करके हो, मोमिन किसी पर जुल्म नहीं करता. इसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म से भी पना. नफ्स पर जुल्म कैसे? गुनाह करके, नमाज छोड़कर, वक्त जाया करके, दिल खराब करके, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है. औ अन नुईन ज़ालिमन, या अल्लाह हमें जालिम का मददगार भी न बना. जालिम की तारीफ, उसके जुल्म में खामोश साथ देना या उसकी मदद, ये खतरनाक बातें हैं. मजीद हमें जालिम पर सहारा लेने से भी बचा. अव नस्तईन बिज़ालिम, क्योंकि इज्जत अल्लाह से मांगनी है, जुल्म के दरवाजे पर नहीं. तो समझने के नाम आज की दुआ हमें ये बताती है कि असल रोशनी ईमान है, असल अंधेरा गुनाह है. जुल्म कभी फायदा नहीं देता. दिल की सफाई जरूरी है. जालिम न बनो और जालिम का साथ भी न दो. अच्छा, के साथ आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाजत. मासलामा.
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से देसी.
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है. इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो. यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम. आइए तलहा अशरफ उज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ
0: FM 107 पर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान में आज हमारी जो मुंतखब करदा आयात है इनका ताल्लुक हमारे इन हज के मौसम से ही है. यानी जब बात होती है बैतुल्लाह के तामीर की तो ज़रूर ज़रूर इसका ताल्लुक एक न एक तरीके से ज़ाहिर हरम को रिलेट करता है. वैसे इस्लाम की सदाकत की बहुत बड़ी दलील और प्रूफ उसकी हमागीर जाज़िबियत भी है. इस जज्बो कशिश का सबसे बड़ा मरकज बैतुल्लाह है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलकर कई सौ साल पहले इस वादी गैर ज़रा बे आबो गियाह ज़मीन में

और जब हमने बनाया घर बैतुल्लाह को इस्तेमा की जगह यानी मरजे खलायक और मकाम अमन, और फिर क्या हुक्म किया, उत्तखिदु में मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अच्छा, उत्तखिदु में मकाम इब्राहिम मुसल्ला की तो जाने से पहले हम पहले मसाबा इस लफ्ज़ की तहकीक पेश करें। मसाबा इसकी लुगवी वजाहत यह कि मजदर सौब के माना है किसी शय का अपनी हालत असली या हालत मकसूदा की तरफ लौटना। और जब कुछ लोग किसी मकाम की तरफ लौटते हैं तो कहा जाता है साबल कौम, यानी लोग वापस आ गए। तो मसाबतन इसमें मुबालगा है, इसमें जोर और ताकीद के माना पैदा होते हैं और ये मसाब में इजाफा है। वो या मसाबा के माना है वो मकाम जिसकी तरफ इंसान बार बार रुजू करे और फिर भी जी ना भरे। और बैतुल हराम का ये वस्फ सबके देखने में आता है। लोग हज पर हज और उम्रा पर उम्रा करते चले जाते हैं और इससे उकताते नहीं। और फिर चूंकि अलबैत उम्रा और हज के लिए मरजाए खलायक है, इसलिए इज्तिमा और रुजू के साथ इबादत का मफहूम भी लाजमन इस लफ्ज में शामिल हो गया है। आम जायरीन का जो ताल्लुक काबतुल्लाह की ज्यारत और उम्रा का साल के हर मौसम, हर फसल, हर जमाने में लगा रहता है, इस कत नजर तसव्वुर में नक्शा उन लाखों इंसानों का जमाइए जो सिर्फ हज के मौके पर खींचे चले आते हैं। सिर्फ हिजाज या मुल्क अरब ही के हर हिस्सा से नहीं, बल्कि रुए जमीन के हर खित्ता, हर इलाका, हर मुल्क से। और फिर ये भी जहन में रख लीजिए, ये सिलसिला 10-20 साल से नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाना यानी तकरीबन 4000 साल से कायम है। जब जाकर लिन्नास यानी लोगों के लिए इस लफ्ज की जामियत की तफसीर जहन में आ सकेगी। मसाबत लिन्नास व अमना, यहाँ अमना का जो लफ्ज है ये मामूनियत को जाहिर करता है, यानी सिर्फ इमारत काबा या मस्जिदुल हराम ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द की सरजमीन मेलों तक दाखिल हरम है। और हरम वो इलाका है जहाँ इंसान की जान लेना अलग रहा, जानवर तक का शिकार जायज नहीं। और ये हुक्म तो खैर शरीयत इस्लामी का है, अर्ज हरम का मन होना यानी जाए अमन व सलामती होना जाहिलियतों को भी मुसल्लम रहा है, यानी दौर जाहिलियत में भी हरम का तकद्दस तस्लीम किया जाता था। अब अगली आयत में है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। आयत में मकाम इब्राहिम का लफ्ज आया है, मकाम से क्या मुराद है? उलमाए तफसीर से इस बारे में दो कौल मनकूल है। एक गुरु के नज़दीक इससे मुराद वो पत्थर है जिसके मुतालिक मशहूर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर की थी। मुफस्सरीन के दूसरे गुरु के नज़दीक वाज़ह है कि इस गुरु में इब्न अब्बास, मुजाहिद और अता जैसे अकाबर उलमाए तफसीर भी शामिल हैं। इससे मुराद हरम का पूरा इलाका है। इस गुरु ने मकाम के लफ्ज़ को किसी मखसूस मकाम पर खड़े होने के बजाय मस्कन व मुस्तकर के मफहूम में लिया है। तो इस तावील में मुस्तत व जामियत के साथ साथ खास अहमियत रखने वाला पहलू यह है कि नज़्म कलाम के एतबार से उस मकसद को ज्यादा वाज़ह करने वाली है, इसके लिए ये बात यहाँ कही गई। यहाँ ये साबित किया जा रहा है कि यही घर तमाम औलाद इब्राहिम का क़िबला रहा है, इसलिए कि यही घर है जो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस मुस्तकर में तामीर किया, जिसमें हिजरत के बाद उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ सुकूनत इख्तियार की। जाहिर है कि मकाम इब्राहिम कोई वसी जगह है जिसमें हज और उम्रा करने वाले हजारों और लाखों इंसान, बैक वक्त इंसान जो ना वहाँ समा सके। और रब जलील की चौखट पर जबीन जो है ना झुकाएं। और ये हरम का पूरा इलाका है जिसे जाय नमाज या मुसल्ला बनाया जाता है। आगे फिर

सुजूद और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और इतिकाफ और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखें। तो इस तरह बैतुल्ला की जाहिरी और बातनी पाकिजगी का हुक्म दिया है। इसी तरह दुनिया में बनाई जाने वाली हर मस्जिद इसी हुक्म के तहत आ जाती है और मस्जिद के इर्द गिर्द बसने वालों का फर्ज बनता है इस बात का पूरा ख्याल रखें। समझने के लिए मसाजिद की शान क़ियाम सलात और रुकू सुजूद से बरकरार रहती है, उसी से मुसलमानों की माशरती और

आप लोगों से कह दीजिए, ए मेरे बंदा, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह तो यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर और रहीम है। किसी शायर ने खूब कहा है, काश के बंदे उसकी तरफ रुजू करें। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरो मंजिल ही नहीं। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, और ए हमारे रब मबऊस फरमा उनमें एक रसूल उन्हीं में से। यतलु अलैहिम आयातिक, इसका मतलब यह है कि कुरान की आयात, उससे मुराद अनफुस और आफाक की आयात भी है। कुरान हकीम में एक गोल दायरा से दूसरे गोल दायरा तक की इबारत एक आयत कहलाती है। सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक कुल आयात की तादाद 6666 है, और हर आयत उसकी कदर हिकमत की निशानी है। मौलाना अब्दुल हई फारूकी रहमतुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला काम अपनी उम्मत के साथ तिलावत आयात है, यानी अल्लाह का कलाम पहुंचाना और पढ़ाना, वो आपकी पहली हैसियत मुबल्लिग आज़म की है। इतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। युअल्लिमुहुमुल किताब यानी उन्हें किताब की तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ तबलीग और पैगाम रसानी पर ख़त्म नहीं हो जाता, आपका काम किताब इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम का भी है। कोई आपकी दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की है। युअल्लिमुहुमुल किताब, यहाँ किताब से मुराद अवामुल कुरान है। आपका काम किताब इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम का भी है। गोया आपकी दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की है। और फिर है दानाई की बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा काम हिकमत और दानाई सिखाना, कुरानी हकाम और मसाइल समझाना, दीन के कायदे और आदाब सिखाना, और ज़िंदगी के गुनागों और पेचीदा मसाइल का उसी की रोशनी में बेहतरीन हल बताना है। वही आपकी तीसरी हैसियत मुर्शिद आज़म की है। और एक आखिरी मरहला है, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक कर दे। तज़किया से मुराद दिल की सफाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा काम अपनी सोहबत और तरबियत से अखलाक की पाकिजगी और नीयतों के इखलास पैदा करना है। इन्हें आपकी चौथी हैसियत मुस्लिह आज़म की है। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि हमारे रब हमारी नस्ल से अपनी एक फरमाबरदार उम्मत पैदा कर, उन्हीं में से एक नबी मबऊस फरमा, उसकी चार खुसूसियात हों, वो किताबुल्लाह सुनाए, पढ़ाए, समझाए, और उसके ज़रिए से दिलों को पाक करे, यानी वो मुबल्लिग भी हो, हकीम और मुर्शिद भी और मुस्लिह भी। ये तमाम बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी हुईं। सामने कलाम इन आयात में सबसे अहम बात इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तामीर के वक्त पुरखलूस दुआ है, जो कि हर मुस्लिम और मोमिन के दिल की आवाज़ है। दुआ का नगमा, दुआ का तरन्नुम, दुआ की फिजा सब के सब सामने मौजूद और हाजिर हैं। गोया इस वक्त जिंदा मुतहर्रिक हमारी आंखों के सामने वक़ूअ पज़ीर हैं। ये कुरान के हसीन और जमील तर्ज़ अदा की हम खुसूसियत है। वो आंखों से ओझल गुजरे हुए मंजर को इस तरह सामने ले आता है कि आंखों को नज़र आता, कानों को सुनाई देता, और मुतहर्रिक को महसूस मालूम होता, गोया ज़िंदगी इससे फूटी पड़ रही हो। सच्ची फनी तस्वीर कशी की एक खुसूसियत है जो दायमी किताब इलाही के शायान शान है। फी ज़िलालिल कुरआन, हमने किराम मजीद इस दुआ में रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, यानी ए हमारे रब, हमारी तरफ से हमारे इस अमल को कबूल फरमा, यकीनन तू दुआओं का सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो ये कबूलियत की दरख्वास्त है, यही अमल की गायत है। अमल खालिसतन लिल्लाह के लिए है। इस अमल के जरिए खुशु खुजू और इनाबत के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुख किया गया है, तो इस अमल से जिस आखिरी मकसद के हुसूल की उम्मीद है, वो अल्लाह की रजा और कबूलियत हक है। और कबूलियत की उम्मीद इस हकीकत से वाबस्ता है कि अल्लाह दुआओं का सुनने वाला और अमल के पीछे हटने वाला है। इसी तरह एक और आयत है।

आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बहसियत दीन इस्लाम को पसंद किया। तुझ पाकीज़ा पसंदीदा साफ सुथरी और शफाफ दस्तूर जिंदगी से भला कौन मुंह मोड़ सकता है इल्ला मिन सफिया नफ्सा सिवाय उसके के जिसने अपने आप को अहमक बना लिया हो। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह लिखते हैं, मिल्लत इब्राहिम से रोगर्दानी सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसमें जरा अकल ना हो, क्योंकि मिल्लत आईने दीने फितरत है। वो सलीमुल फितरत इंसान इससे इनकार नहीं कर सकता। वलकद इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया, और हकीकत यह है कि हमने चुन लिया इनको दुनिया में, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेपनाह कुर्बानियों के बिना पर अल्लाह ताला ने उन्हें इमाम रुश्द व हिदायत बनाया। जैसा कि एक और जगह में है, इन्हें जाहिलों के लिए ना से इमामा, बेशक मैं तुझे लोगों का इना इमाम बनाने वाला हूँ। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में सालिहीन के जुमरे में होंगे, यानी नेक लोगों में उनका शुमार होगा। सामिन किराम, इन आयात में एक बात ये आई है कि सलामत रवि और हमाकत कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे ही जैसे जहालत और दानिशमंदी का कभी जोड़ नहीं हो सकता या रोशनी और अंधेरा एक जगह ठहर नहीं सकते। ठीक उसी तरह तो सलामती का रास्ता है उसका इनकार वही करता है जो जहालत और हमाकत के फंदे में गिरफ्तार हो। अल्लाह ताला का दीन हमेशा से एक ही रहा है, मगर अफसोस के ख्वाहिशात और गुरूर नफ्स ने इंसानों को राह हक से दूर ले जा फेंका और मुख्तलिफ फ़िरकों और गुरुबंदियों का शिकार हो गए, और शैतान ने उनके दरमियान नफरत और अदावत के बीच बो दिए और उनके दरमियान जंग और जदल और फितना और फसाद की चिंगारियाँ सुलगने लगें। तो सामिन कराम, तिलावत भी करना है तो कुरान करीम की तिलावत का हक अदा करें। इन लोगों को हमने किताब दी है, वो उसे यूँ पढ़ते हैं जैसा कि उसे पढ़ने का हक है। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به, तो ये जो लोग हैं जो हक अदा करके तिलावत करते हैं हकीकत में यही लोग उस पर ईमान लाते हैं। तो अगली पहली आयत है जिसके हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है कि कुछ लोग जैसे सिर्फ तिलावत करते हैं अपनी बात भूल जाते हैं, नेकी का हुक्म करते फिरते हैं लेकिन अपनी बात की कोई फिक्र नहीं, हालांकि वो किताब की तिलावत भी करते हैं, तौरात पर तौरात को उनका इल्म भी है। तो उनके घने कहा जा रहा है फला तअक्लून, अरे भाई क्या तुम्हारे अकल ठिकाने में नहीं। अकल वैसे कहते हैं अरबी में, जैसे अकाल उस रस्सी को कहा जाता है जिससे ऊँट के जानों को बांधा जाए, तो ये कबूल इल्म और अमली कुव्वत का नाम अकल है। ये रोशनी है जिससे इंसान खरे और खोटे में तमीज़ करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उस पर बहुत बड़ा इनाम है। जो लोग इससे ठीक ठीक फ़ायदा उठाते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम से बसीरत हासिल करके अमल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो अकल को पसे पुश्त डाल देते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो इस आयत का रुख अगरचे इब्तिदान बनी इसराइल की उस वक्त की हालत व कैफियत की तरफ थी, लेकिन इसमें जो तालीम है वो नौ इंसानी के लिए उमूमन और रिजाल दीन के लिए खुसूसन दायमी हैसियत रखती है। यह हिदायत न किसी कौम के लिए ख़ास है न किसी दौर के लोगों तक महदूद है। जब दीन कारोबार और पेशा की हैसियत अख्तियार कर लेता है तो रिजाल दीन और उलमा व मशाइख में एक कमज़ोरी पैदा हो जाती है, वो अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं होती। वो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते, लोगों को हक शनासी की दावत देते हैं मगर खुद हक को नहीं पहचानते, वो अल्लाह के कलाम की तहरीफ करते उसे उसके मकाम से हटाते और सरी और कतई नसूस की तावील करते हैं, और ये सब कुछ अपने अगराज़ों ख्वाहिशात की तकमील के लिए। वह ऐसे फतवे देते और ऐसी तावीलात करते हैं जो आयात इलाही के ज़ाहिरी मफहूम से बज़ाहिर इत्तेफाक करती नज़र आती है मगर अपनी हकीकत के अतबार से वो दीन की हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। और वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि अरबाब सरवत और जो है ना दूसरों के अगराज और ख्वाहिशात पूरी हों, जैसा कि उलमा यहूद करते थे। नेकी की तरफ दावत देना और दाई के अमली ज़िंदगी का उससे मुख्तलिफ होना ये एक बड़ी बीमारी है जिससे न सिर्फ दाई बल्कि नफ्स दावत के सिलसिले में लोगों के दिलों में शकूक पैदा होते हैं बल्कि इससे लोगों के कुलूब और उनके अफकार मुतसलसल हो जाते हैं। वो अपने कानों से उमदा और खूबसूरत बातें सुनते और आँखों से आमाल बद का मुशाहदा करते हैं। सामने कराम, कौल अमल के इस्तेज़ाद से वो हैरत में पड़ जाते हैं, अकीदे से उनके रूह में जो शोला पैदा हुआ था वो बुझ जाता है और ईमान से उनके दिल में जो नूर रोशन हुआ था वो रुखसत हो जाता है। दीन के हामिल अफराद पर से उनका एतमाद उठ जाने का नतीजा निकलता है, वो खुद दीन पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। मेरे प्यारे दायाने कराम जो हमें सुन रहे हैं,

ये रहमत हमारे दिलों से छीन ली जाए तो कोई इंसान, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई समाज, कोई माशरा सही अखलाक पर, अकदार पर कायम नहीं हो सकता। एक इंसान में अल्लाह ने किस कदर रहम रखा है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ कैदी लाए गए और कैदियों में से एक औरत किसी को तलाश कर रही थी। उसने कैदियों में अपने बच्चे को पाया, उसने उसे उठाकर अपने पेट से लगाया और उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, जहाँ तक उसकी कुदरत हुई है उसे नहीं फेंकेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत के अपने बच्चे पर रहम करने से ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। सही मुस्लिम की हदीस है। समीन कराम, ये एक इंसान के रहम की मिसाल है और दुनिया की तमाम मखलूक से ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत और रहम करता है। लेकिन ये बंदों की बदबख्ती है कि वह अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते और न ही उसके हुक्मों की ताबेदारी करते हैं, फिर भी अल्लाह अपने रहम करम से बंदों को नवाजता है। समीन कराम, उसी रहम का एक हिस्सा जानवरों को और कीड़ों मकोड़ों को भी अता किया गया है, जिस रहम की बिना पर शिकार करने वाला जानवर खुद दूसरे जानवरों का शिकार करके खा तो लेता है लेकिन अपने पैदा किए हुए बच्चे को कभी चीर फाड़ नहीं करता। और अगर कभी कोई इंसान या जानवर किसी जानवर के बच्चे को तकलीफ़ देता है तो तमाम परिंदे चहचहाना शुरू कर देते हैं और जानवर हर मुमकिन कोशिश करता है अपने बच्चे को बचाने की। ये जानवरों और परिंदों के रहम की सबसे बड़ी दलील है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने एक वाक़े में भी पेश आया, अब्दुल्लाह से रिवायत है कि वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए गए। हमने एक चिड़िया देखी जिसके दो बच्चे थे, हमने उनके बच्चों को पकड़ लिया तो चिड़िया ज़मीन पर गिरकर पर बिछाने लगी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसका बच्चा पकड़कर किसने उसको बेकरार किया है? उसका बच्चा उसको दे दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चींटियों का एक सुराख देखा जिसको हमने जला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसने जला दिया? हमने कहा, हमने जलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो आग से तकलीफ़ पहुँचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले के। अबू दाऊद की हदीस है। समीन कराम, इस हदीस में उस परिंदे की रहमत और शफ़क़त का अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर वो अपने बच्चों के लिए पर बिछा दिए थे जब उसके बच्चों को पकड़ा गया था। ये परिंदों की रहम की दलील है। अब अल्लाह सुबहान व तआला रहम की कामिल सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के लिए आखिरत में बचा के रखा है और उसकी तादाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 बतलाई है, जो अल्लाह ने बंदों के साथ क़यामत के दिन के लिए ख़ास किया है। क्या आलम होगी उस रहमत का जो अल्लाह अपने बंदों पर क़यामत के दिन करेगा। हकीकत तो यही है कि बग़ैर अल्लाह की रहमत के कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकेगा, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब अल्लाह की रहमत के मोहताज होंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युदखिलु अहदन मिनकुम अमलुहुल जन्नत वला युजीरुहु मिनन नार वला अना इल्ला बिरहमतिन मिन अल्लाह। तुम में से कोई भी शख्स अपनी नेकियों से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता और ना आग से बच सकता है और मैं भी सिवाय अल्लाह की रहमत के। सामने कराम, आज इंसानों की अक्सरियत की ये हालत है, सूरत हाल ये कहती है, अमल से दूरी और मायूसी ये कहती है कि बस उन्होंने वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों से जब गुनाह सरज़द हो जाता है तो उनका ऐसा ख्याल होता है कि अब अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा, हालांकि अल्लाह ताला की सिफात में एक सिफत रहीम भी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ईद के इस खुशी के मौके पर आप सभी लोगों का दोबारा इस्तकबाल करता हूं मैं, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ईद जो है वो सही से गुजर रहा होगा। ये फिट एंड फेस्टिव प्रोग्राम है FM 107 की जानिब से, और ईद के लिए एक खास प्रोग्राम आप सभी सामाइन के लिए, क्योंकि ईद में हम करते क्या हैं कि थोड़ा सा हम अनहेल्दी होने का एक अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, अनहेल्दी होने का मोटिवेट। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए FM 107 ये समझता है कि FM 107 के जरिए आप सभी लिसनर्स तक हम पहुँचते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोग थोड़ा हेल्दी रहें, थोड़ा फिट रहें और थोड़ा स्पोर्टी रहें। देखिए, मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है होस्ट करता हूँ, और स्पोर्ट्स मेरा एक पैशन है, और स्पोर्ट्स के ज़रिए मुझे कई चीज़ों के बारे में इल्म हासिल हुआ है। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि कई ऐसे मारूफ खिलाड़ियों को मैंने देखा है, उनके ट्रेनिंग स्केड्यूल को फॉलो किया है। कई ऐसे बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर्स, जिन्होंने बड़े बड़े मारूफ स्टार प्लेयर्स के पीछे जितना वक्त दिया है कि कैसे वो खिलाड़ी फिट रहे, और साथ ही साथ उनके खान पान यानी न्यूट्रिशन के ऊपर भी मेरा बड़ा ही फोकस रहता था। हाल ही में नोवाक जोकोविच, जो कि मारूफ टेनिस प्लेयर है सर्बिया का, तो नोवाक जोकोविच ने कई ऐसे पॉइंट्स टिप्स दिए हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसे करें तो आपके बच्चे जो हैं हमेशा फिट रहेगा। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने शेयर किया था, अभी मैंने परसों, दो तीन दिन पहले की बात है, मैंने पढ़ रहा था एंड उनका एक पॉडकास्ट भी देखा मैंने, एंड उसमें उन्होंने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, वो कहते हैं कि मैच के दौरान वो ब्रीद करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मैच पॉइंट्स। तो देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे सेहत को, हमारे दिलो दिमाग को तरोताज़ा रख सकता है। तो दोस्तों, ये फिट एंड फेस्टिव प्रोग्राम एक ऐसा खास प्रोग्राम है जो ईद की खुशियों को सेहतमंद और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ जोड़ता है। दैट इज़ आवर एम, दैट इज़ आवर टारगेट। और मैंने एपिसोड 1 में कई चीज़ें, कई पॉइंट्स आप लोगों से शेयर किया था मैंने, एंड उसमें ये था हमारा मकसद, जैसे मैंने शुरू में बताया कि टू कीप यू हेल्दी, टू कीप यू फिट एंड टू कीप ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, एक होता ना कि ईद के दौरान आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं। उल्टा सीधे खाने को लेकर बहुत से लोगों के तकलीफ जो है वो हमारे सामने दिखने को मिलता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईद टाइम हम अनकंट्रोल्ड वे पे चलते हैं। इसी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश है ये प्रोग्राम के जरिए हम आप लोगों को बताएंगे, और इसका मकसद है कि लोगों को ईद के फेस्टिव माहौल में भी एक्टिव, फिट और मेंटली फ्रेश रहने की तरगीब देना है। दैट इज़ आवर गोल। इसमें फिटनेस टिप्स, हेल्दी हैबिट्स, स्ट्रेस रिलीफ आइडियाज और ईद सेलिब्रेशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश किया जाता है, ताकि हर कोई ईद को एनर्जी और खुशी के साथ एंजॉय कर सके। दैट्स आवर सोल मोटिव एंड पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सुन सकते हैं, थोड़ा आपके व्यू पॉइंट भी बता सकते हैं। देखिए, आज के डेट में लाइफस्टाइल हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, यानी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है। एक तरफ अगर हम हेल्दी बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हमारे पूरी ज़िंदगी में हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा, हम लोग बड़े उल्टे सीधे टाइम पर चलते हैं। वी डोंट

बट टैब ऑन आवर यू नो कि जिसको बोलते हैं कि आपके जो वर्क है, आपका जो काम काज है, उस पर हम टैब नहीं रखते हैं। पहले के ज़माने में होता था कि लोग घड़ी देखकर 9 बजे काम स्टार्ट एंड यू नो स्टॉप्स एट 5 o'clock। ये जो टाइम पीरियड था उस दौरान लोग बड़े पैशनेटली काम करते थे। लेकिन अगर बात की बात देखूँ को आज की मॉडर्न टाइम की बात करूँ, पिछले 25 सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस हमें नज़र आए हैं। एंड ईद के दौरान भी लोग अक्सर मैंने देखा है कि भाई वो प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वो देख लेने का मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो 5 मिनट वाली देख लेने वाली बात नहीं है, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट भी नहीं, बल्कि आप बैठ जाते हैं। दैट इज वॉट यू नो एक जिसको कहते हैं एक बोरिंग लाइफ को अगर आपने और थोड़ा सा बोर करनी है तो आप ईद के दौरान इस तरह का काम आप कर सकते हैं। दैट इज द अदर वे ऑफ आई नो सेइंग कि एक तंज है। तो ये तंज इसलिए मैं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप ईद की खुशियों को एंजॉय करें। एक फैमिली के साथ आप जब एंजॉय करते हैं तो एक मेंटल यू नो वेलनेस की बात होती है। वहाँ पर अगर काम लेके बैठ जाते हैं तो देन दैट डजंट रियली पे यू मच। आप तो काम तो पूरे यू नो महीने में करती हैं, एंड दीज आर द 4 days ऑफ ईद हॉलीडेज जहाँ पे आपको एंजॉय करना, आपको थोड़ा सा इसको यूटिलाइज करना, हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई मीन ये हमारी जिंदगी का एक यू नो एक पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए जहाँ पर वी ऑलवेज कैन एटलीस्ट स्ट्राइव टू मेक इट मोर हेल्दी। मोर हेल्दी का मतलब ये है कि हम तो पूरी तरह से हेल्दी है ही नहीं एक तरह देखा जाए, और ईद के दिनों में तो बिल्कुल ही हम अनहेल्दी हो जाते हैं। उल्टा सीधा खाना पीना, इधर उधर जाना एंड दोस्तों अहबाब लोगों के उनके साथ बैठना, फिर अब कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब सोचते भी नहीं है कि आप पी के रहे हैं, खा के रहे हैं। इनमें से एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईद की खुशियों में मीठे का इस्तेमाल करना। स्वीट्स तो हर एक के पास जो है वो क्या कहते हैं स्वीट टूथ, वो तो हर एक के पास है। तो वो हमें देसी लोगों के लिए तो मीठा खाना इस लाइक खाने के बाद मीठा नहीं करना, अरे सुन्नत है। दिस इज ऑल व्हाट वी से आफ्टर द फूड। तो ईद के दिन मीठे और हेवी खानों के दरमियान अगर सेहत का भी ख्याल रखा जाए तो मज़ा और फिटनेस दोनों बरकरार रह सकते हैं। और ये रही एक स्मूथ और एंगेजिंग नरेशन स्क्रिप्ट। ये जी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक नरेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये जो नरेटिव है कि मीठा खाना सुन्नत कहलाता है, डेफिनेटली दैट इज फॉर श्योर। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा लिमिट के साथ, लिमिट इज द की टू योर गोल, की टू योर सक्सेस फॉर एवरीथिंग। जहाँ आपकी लिमिटलेस बातें हो जाती हैं, जहाँ आपकी लिमिटलेस खाना पीना हो जाता है, देन दैट इज़ द प्रॉब्लम जहाँ पे आपको टिक टिक टिक टिक आपको अलार्म या अलर्ट होना पड़ता है। बिकॉज आफ्टर एंड ऑफ द डे जब आप यू नो जब आप आराम करने जाते हैं, आपको लगेगा कि कुछ खराबी है, कुछ विथ योर सिस्टम, विथ योर यू नो टमी, आपके पेट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। देखिए हम लोग ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खाने पीने के साथ, न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रेच आउट, कुछ वॉकिंग, कुछ यू नो थोड़ा बहुत फ्री हैंड एक्सरसाइजेस आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम फ्री हैंड एक्सरसाइज तो छोड़ देते हैं, खाना खाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। और ईद के दौरान दिस इज वॉट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन समबडीज हेल्थ, समबडीज हर कोई है नहीं, हर कोई फिट हो ही जाता है क्योंकि यंगस्टर्स में तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो थोड़ा सा आउट से 30+ या 40+ उनके साथ ये मसाइल हैं कि यू नो कहीं के टमी अपसेट है, और स्पेशली गल्फ की कंट्रीज़ में तो हम एसी में हमेशा बैठे रहते हैं, वी डोंट हैव द चांस टू गो आउट एंड डू सम जॉगिंग, टू सम वॉकिंग। आजकल कतर में बहुत सारे पार्क्स हैं तो हमें बहुत सारे पार्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। दैट इज़ द रीज़न बिकॉज आपके हाथों में वो जो है ना एक गैजेट वो तो चिपका हुआ है, आई मीन यू आर ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये तो एक प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे इसको आप ख़त्म कर सकते हैं या हम ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों ईद का मौसम हो और टेस्टी खाने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, दीज आर यू नो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन इस ईद ज़रा सेहत का भी रखें ख्याल, और क्योंकि हेल्दी चॉइस ही

करते हैं और मजा आता है, लजीज है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ओवर एंड ओवर करना हर चीज सही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा परे करें यानी पीछे करें और उसकी जगह फ्रेश जो फ्रूट चाट है ना और लाइट डेजर्ट जो है उसको आप अपने थाली पे रख लें या अपने प्लेट पे सजा लें, आई गेस दैट इज द मोस्ट हेल्दी वे ऑफ ईटिंग ड्यूरिंग द ईद टाइम, मैं समझ रहा हूँ। एंड आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अरे ईद तो साल में दो मरतबा ही, एंड एक तो ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, तो ठीक है ईद उल फितर के दौरान आपने कर लिया। तो लोग ये भी कहते हैं कि अरे दो महीने 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा आता है, चलो गोश्त खा लेते हैं, गोश्त को कुछ भी तरह से कर लें आप, आइटम बना लें। लेकिन नहीं, कुछ तरीका तो है भाई, कुछ तरीका तो है कि आप उसको यू नो थोड़ा सा हेल्दी वे पे आप लगे। देखिए, प्रोटीन इंटेक इज़ गुड, लेकिन प्रोटीन इंटेक अगर उस तरह आप लेंगे कि फ्राइड तले हुए चीज़ों को खाएंगे, या तो आपका गला ख़राब होगा या पेट ख़राब होगा, अन्ना जाने आप क्या क्या, आई मीन बॉडी पैरामीटर्स, मेडिकल हिस्ट्री, मुझे तो नहीं पता आप किसी का क्या है, लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ कि थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, ओवर कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस हो जाइए, नो व्हाट यू आर ईटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय फ्रेश जूसेस और पानी ज़्यादा पिए। कोल्ड ड्रिंक्स इज़ हार्मफुल। आजकल आपको सोशल मीडिया में दिखता ही होगा कि कोल्ड ड्रिंक से वो टॉयलेट भी साफ़ करवा के दिखाते हैं, या यू नो वॉश बेसिन जो है वो भी साफ करवा के दिखाते हैं कि देखिए कितना मतलब गाढ़ा है ये कोल्ड ड्रिंक्स की एक तरह का एसिड है जिसको आप डालते हैं, और तेज़ाब, आपको पता है कि तेज़ाब किस तरह उसमें यू नो शार्पनेस है कि मैल को, जो बहुत कड़ी मैल जो होती है ना, जो मैल मतलब जो हटना नहीं चाहता, वो मैल को भी काट के निकालता है दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये भी एक एक्सपेरिमेंट बहुत से लोग करके दिखाते भी ऑन द सोशल मीडिया। ना कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यू नो इट डजंट रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, इसलिए उसको थोड़ा सा बाहर ही कर दें और उसके बजाय आप जूस पीजिए फ्रेश वाले, नॉट दैट कैंड जूसेस जो कि बाहर से कहीं से आ रहा हो, और उसको ना करें, आप फ्रूट्स लीजिए घर पे बना लीजिए, जैसे फ्रूट्स ही खा लीजिए, और पानी ज़्यादा पिए, पानी पीना लाजमी है, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ओवरऑल बॉडी के, जो यू नो जिसको मैं कहूँगा कि जो बैलेंस, जिसको बैलेंस बनाए रखता है, आई मीन दैट इज़ हाइड्रेशन। विदाउट पानी थिंग्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि यू नो आपकी मेटाबॉलिज्म, आपके पेट के मसाइल, हर चीज़ जो है बिना पानी पीने से आ जाता है। आई मीन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लीटर पर लीटर हर तरफ अपना हर तरफ जग वगैरह रख लें और जब भी चलते फिरते आप पानी पी रहे, नहीं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड थ्रू आउट द डे, 4 से 5 लीटर पूरे दिन भर आप यू कैन यूज़ इट सिप बाई सिप और नॉट इन वन गो, एक बार में गल्प मत कर लीजिए पूरा पी जाइए, ऐसे नहीं, सिप बाय सिप, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और हाइड्रेशन, जैसे आप बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला ये है कि पूरी तरह एक पूरे बॉटल को ख़त्म मत कर दीजिए, बिकॉज वो किडनी पर जो है असर पड़ता है। सो यू हैव टू गो सिप बाय सिप एंड दैट कीप्स योर बॉडी कूल ड्यूरिंग दिस समर टाइम। और समर टाइम में कतर गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और मिनिस्ट्री की यू नो इनकी जानिब जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे कि इस गर्मी में मई जून जुलाई अगस्त, इसमें गर्मी के साथ साथ इनो अगस्त जुलाई बिकम्स क्वाइट ह्यूमिड, और क्योंकि ये मई का महीना है और ईद का त्यौहार है, यानी इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि ईद सिर्फ ज़्यादा खाने का नाम नहीं बल्कि एक खुशी और बैलेंस का भी एक पैगाम है। तो इस ईद एंजॉय करें हर बाइट, मगर हेल्दी बाइट्स के साथ। तो दोस्तों, ये हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी ईद, दिस इज़ आवर मैसेज टू ऑल आवर लिसनर्स। और मिठास भी, टेस्ट भी, और सेहत का परफेक्ट बैलेंस भी, ऑयल कम न्यूट्रिशन ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, ऑयल कम यानी तेल कम करिए। अब हमें कौन सा हम तेल इस्तेमाल करते हैं ये हमें बिल्कुल पता तो होता ही है, कोई सनफ्लावर ऑयल यूज़ करता है, कोई सीसम ऑयल यूज़ करता है, कोई यू नो आई डोंट नो कौन क्या, कोई कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करता है, कोई यू नो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि तेल जितना आप कम यूज़ करें उतना बेटर है, बट गो फॉर गुड ऑयल्स, नॉट दोज सैचुरेटेड फैट्स, गो फॉर दोज नेचुरल, जिससे हेल्दी है, वो ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन

0: तले चीज को थोड़ा सा परहेज करें, तले हुए चीजों से आप परहेज अपने आप को करें, वो ओवरऑल हेल्थ का एक जो यू नो टारगेट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा देता है और सेहत का परफेक्ट बैलेंस भी. दैट्स अ रीजन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट कि ऑयली स्टफ को दूर रखें आप. और इसके साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हेल्दी रेसिपीज का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें या फॉलो करें स्मार्ट कुकिंग टिप्स और गिल्ट फ्री ईद ट्रीट्स के साथ. आजकल सोशल मीडिया में, आजकल प्लेटफॉर्म्स में हर कोई बताता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कुक फूड, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गोट्स बनाना, दिस इज़ द बेस्ट वे, ये सही तरीका है कि आप इस तरह खाना बनाइए जहाँ पे आपके बॉडी में न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन और साथ साथ हेल्दी जो यू नो पॉजिटिव साइड्स हैं वो भी आपको मिलेगा, तो उसको भी आप थोड़ा सा फॉलो करें आप. अब मैं क्यूजिन के बारे में तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग अपने अपने पसंद करते हैं, अपने अपने क्यूजिन्स यू नो प्रेफर करते हैं. लेकिन व्हेन यू कुक जस्ट इंश्योर दैट यू नो योर इनटेक ऑफ ऑयल व्हेन यू आर कुकिंग दैट इज़ थोड़ा सा लिमिट. आजकल तो वो भी आ गया है कि एयर फ्रायर्स, आजकल ये भी है कि हाफ बॉयल्ड स्टफ खाना है, पोटैटो को हाफ बॉयल करके. So these are also good healthy tips way of cooking. और इसमें ये होगा कि भाई आपका ईद, आप जो ईद जो सेलिब्रेशन है, ईद सेलिब्रेशन में आप लोग अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, यही हमारी कोशिश है कि वी ऑल प्रे फॉर योर गुड हेल्थ. तो इसीलिए इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा बताया जाए, थोड़ा सा डराया जाए कि ईद के दौरान भी डोंट क्रॉस दैट लिमिट जहाँ पे आप बीमार पड़ जाए और हमें अच्छा नहीं लगेगा. और इसीलिए नहीं क्यों, क्योंकि आप अपने ईद को यू नो खुशियों और सेहत से भरपूर सेलिब्रेट करें. दैट एवरीबडी वांट्स, फैमिली मेंबर्स में कोई बीमार पड़ जाए हमें अच्छा नहीं लगेगा और वी विल नॉट फील गुड अबाउट इट. सो हेल्दी ईट बाइट, सेहतमंद सोच, लजीज जायका, दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ मोटिवेटिंग यू पीपल. एंड आप लोग सुनते हैं FM 107, और लेकिन नॉट ओनली FM 107 बट कि FM 107 के अलावा भी आप लोगों के पास मैसेजेस आते हैं, आप लोगों के पास मेल्स पहुंचते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी हेल्थ, MOPH, और वहां से भी आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह हम आपको हेल्दी रखेंगे, किस तरह से यू नो मेंटल वेलबींग के बारे में बात करते हैं. एंड ये सब आप लोगों को बताया जाता है इसलिए कि सोसाइटी शुड बी हेल्दी, योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली छोटे बच्चे जो घर पर हैं या जो आपके बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पार्क्स में जाना, वॉक करना. देखिए कतर गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिट्स लेवल बेस्ट आप लोगों के हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए और सब के लिए, नॉट ओनली जस्ट कि यहाँ के जो सिटीजन हैं वहाँ के लिए बल्कि जो यहाँ के मुकीम, यहाँ पे जो मुकीम हैं दोहा में, उनके लिए भी ये तरबियत दी जाती है, ये बताया जाता है कि आप कैसे करेंगे, किस तरह के फॉलो करेंगे. इवन ईद के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो दीज आर द हेल्दी टिप्स दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो. और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें बताने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो थोड़ा सा मजीद इस बारे में वी विल डिस्कस ऑन दिस फर्दर. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं फिट एंड फेस्टिव शो विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
0: वेलकम बैक टू FM 107 और फिट एंड फेस्टिव प्रोग्राम का ये खास प्रोग्राम है जहाँ पे मैं मोहम्मद अमीन होस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को नॉट बता रहा हूँ बल्कि एक सजेशन दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन स्टे फिट एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज ऑफ ईद सेलिब्रेशंस. और ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारे रेडियो स्टेशंस नहीं बता रहा है, बल्कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कतर गवर्नमेंट की जानिब से भी बार बार ये बताया जाता है कि लेट्स मेक इट अ स्वीट एंड हेल्दी ईद. बिकॉज देखिए मई का महीना है और मैंने पहले शुरू में सेगमेंट में मैंने बताया था कि दिस मंथ इज़ वेरी हॉट और मौसम जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे ड्राई की तरफ जा रहा है. एंड इस टाइम में होता है कि आपकी बॉडी जो है इनटेक ऑफ फूड के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है. यू नो योर बॉडी बिकम्स ड्राई, आपकी जो इनर सेल्स हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाती हैं एंड उसमें हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. हम करते क्या हैं, चलते फिरते कहीं पे दुकान दिखा और बकाला में पहुंच गए, भाई एक वो ठंडा दे दो, ये चीज़ें बहुत बहुत नुकसानदेह हैं. नुकसानदेह इसलिए है कि ये एक तो यू नो इट्स इट वर्क्स रिवर्स.

0: अब लोगों को लगता है कि यू नो हम जब अगर थर्स्टी हैं यानी प्यासे हैं तो उसमें हम ठंडा पी लेंगे तो हम जो है हमारी बॉडी जो है कूल ठंडा कूल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इट वर्क्स रिवर्स, गला ख़राब हो जाता है एंड इसके साथ साथ बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। बच्चों के लिए आइसक्रीम या इस तरह का आइस लॉलीज वो लगता है वो जो है ना एक अट्रैक्शन है, एक वो उस अट्रैक्शन को अगर आप लोग किल कर दें कि लेट्स नॉट गो फॉर दी सॉफ्ट ड्रिंक्स आइसक्रीम बल्कि लेट्स गो फॉर समथिंग लाइक विच कैन कूल आवर बॉडी, लवन ले लीजिए यू नो आयरन ले लीजिए एंड डोंट टेक आई वुड से कि ठंडा मत लीजिए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में अगर आप लेंगे तो दैट वर्क्स यू नो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी। तो दोस्तों ईद के दौरान मूवमेंट की बात अगर हम कर लें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि खाना भी ना खा के हम सोफे में बैठ जाते हैं और अपना चैनल्स देखते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, भाई ये देख लें वो देख लें, स्पोर्ट्स चैनल्स देख लें, मूवी चैनल्स देख लें, न्यूज़ चैनल्स देख लें, लेकिन दिस इज़ रियली नॉट हेल्दी, रियली नॉट हेल्दी। और ईद की छुट्टियों में सिर्फ रिलैक्स नहीं थोड़ा सा फिटनेस भी ज़रूरी है, ये सबको सबके लिए है, इवन छोटे बच्चों के लिए भी वही है कि गिव देम सम गेम्स, थोड़ा फिजिकल गेम्स, थोड़ा जो आउटडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के आंगन में ही अगर आपके पास जगह है या ड्राइंग रूम है या थोड़ा बहुत लॉबी है वहाँ पर आप बच्चों को दे सकते हैं क्रिकेट बॉल या क्रिकेट बैट दे दीजिए या बैडमिंटन रैकेट एक शटल दे दीजिए, दे कैन प्ले एंड उसमें क्या फिटनेस की बात आ जाती है, अनजाने में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाउ फिट यू हैव बिकम। और यू नो थोड़ा फिटनेस ज़रूरी है दोस्तों, ये आप लोग थोड़ा सा अपने वो जो कहते हैं ना हाथ में लिख लीजिए कि फिटनेस ज़रूरी है। छोटी छोटी फिट मूव्स हैं उसको याद रखिएगा और अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए और एंजॉय करें हेल्दी और एक्टिव ईद हॉलीडेज। ईद हॉलीडेज इज़ बेसिकली रिलैक्सेशन। आप कहेंगे कि यार रिलैक्सेशन की बात होनी चाहिए ना कि एक्सरसाइज, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी बात है कि जिम में चले जाएं जी और वेट उठा लीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए, नो नीड टू गो टू द जिम, नो नीड टू गो इवन टू योर जो आप लोगों के अपार्टमेंट में अगर स्विमिंग पूल है वहाँ पर भी अगर आपके पास टाइम है तो चले जाइए। अदरवाइज मैं इतना कह रहा हूँ कि जो फिटनेस मूवमेंट्स हैं वो करिए, आप आपके लिविंग रूम में ही आप यू नो चहलकदमी कर सकते हैं, यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर आर्म्स, यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स, यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी, यही चीज़ें हैं। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है यू नो बॉडी फिटनेस के लिए कहीं और जाइए और इनरोल करिए, नो, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाना पीना तो खा रहे हैं ना, तो खाते खाते आप लोग थक नहीं जाते हैं क्या? अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने की अभी एक तरकीब होनी चाहिए, वो तरकीब जो है वो आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। जस्ट जाके चुपचाप मत बैठ जाइए ऑन द काउच पोटैटो की तरह, ऑन द सोफा कॉर्नर पे जाके जस्ट वॉक अ बिट। और दिमाग में ये रखिएगा यू हैव टू स्टे फिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली के लिए आपका जो यू नो जो सेहत है ना वो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। और अल्लाह से ये हमेशा दुआ करनी चाहिए कि वी शुड हैव अ गुड हेल्थ, वी ऑल हम सभी को चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से नवाजे। लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, लोग हमेशा भूल जाते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्लाह हमें दे, हमें यू नो भरपूर दे गुड हेल्थ, दैट इज़ वॉट वी नीड। गुड हेल्थ है तो सब कुछ है, गुड हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो दोस्तों ईद की छुट्टियां जो है खुशियों दावतों और फैमिली गैदरिंग से भरी होती हैं, इस दौरान लोग अपने पसंदीदा खाने इंजॉय करते हैं और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी एक्टिविटी और फिटनेस को भी अपने रूटीन का हिस्सा बना लें तो ईद और भी हेल्दी और एनर्जेटिक बन सकती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लोगों को दोस्तों के साथ भी रहना है ईद के दौरान, अरे आप कोई बैडमिंटन कोर्ट बुक कर लीजिए, कोई पैडल कोर्ट बुक कर लीजिए, गो फॉर अ वन आवर नो प्रैक्टिस, गो फॉर अ वन आवर जस्ट फन गेम करिए, प्रैक्टिस छोड़िए फन गेम कर लीजिए, एंड वो भी इन्वॉल्वमेंट है विद द फैमिली मेम्बर्स विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, तो दिस इज़ ऑल गोइंग टू हेल्प यू। यहाँ पर इसलिए हम स्ट्रेस दे रहे हैं बार बार, स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज इम्पॉर्टेंट. ये तो आप लोगों स्लोगन तो हमेशा आपको सुनते आए होंगे यार, स्कूलों में भी बच्चे लेके आते होंगे हाउ टू स्टे फिट. इवन ऑफिस के यू नो प्रोग्राम्स में भी ज़्यादातर यू नो गवर्नमेंट सेटअप में भी ये बताया जाता है, ये मैसेज पहुँचाया जाता है कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज वी आर सो बिजी ऑन द सोशल मीडिया, वी आर सो बिजी ऑन द डिजिटल वर्ल्ड कि इसके बाहर हम आ ही नहीं पा रहे हैं. तो इसलिए मैसेज बहुत क्लियर है. ईद के दौरान भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे फिट रखेंगे, कैसे एक्टिव रखेंगे. और दोस्तों कतर में ईद सेलिब्रेट करने वालों के लिए एक छोटी सी वेलनेस एडवाइस देना चाहूँगा. यहाँ पे गर्म मौसम में ज़्यादा पानी, लबन और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे. चाय कॉफ़ी आप लोगों को पसंद होगा, मुझे मैं तो कह रहा हूँ चाय कॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन देसी लोग जो हैं वो कहें कि भाई उसमें शुगर डाल दो या चीनी डाल दो, ये अवॉइड करिए. आप गो विदाउट यू नो ग्रीन टी ले लीजिए, रेड टी ले लीजिए एंड यू नो अवॉइड करें एट टाइम्स मिल्क विथ टी. गो फॉर विदाउट मिल्क क्योंकि एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है. यानी गर्मी में जितना आपकी बॉडी में हेल्दी चीज़ें यू नो मौजूद रहें तो वो आप लोगों के लिए ही सही है. इंस्टेड ऑफ जो टी और कॉफ़ी की बात कर रहा था कि यार अरे बहुत गर्मी हो रही है चलो कुछ चाय पी लेते हैं, लोग कहते हैं कि गर्मी गर्मी को मारता. लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो जो कड़क चाय और ये जो यू नो जो बहुत ही शुगरी और मिल्क वाली चाय जो है those are really not helpful. Instead of doing those things, you can, instead of taking those things, in taking those chai, you can always go for, जैसे मैंने कहा कि कोई मिंटी ले लीजिए, कोई यू नो लबन ले लीजिए, कोई समथिंग यू नो विच हेल्प्स यू बिकॉज इस गर्मी में प्रॉब्लम होती है, इस गर्मी में प्रॉब्लम होती है. एंड इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश करें कि अवॉइड जितना हो सके अवॉइड कर सके तो बेटर है. अच्छा ईद पर ऑयली खानों के बारे में मैंने बता दिया था कि हेवी खाना और ये सब इसमें एहतियात करें और पोषण कंट्रोल का ख्याल रखें. हर हेवी मील के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक हाजमे के लिए बहुत मुफीद होती है. दिस इज़ आल्सो आप लोगों से मैंने शेयर किया. और फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स और लाइट स्नैक्स को भी अपनी ईद डाइट का हिस्सा बनाइए. दिस आर ऑल रिपीटेटिव है. जब भी हेल्दी प्रोग्राम्स और हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, यू नो सेहत के बारे में बात करेंगे, तो ये सारे पॉइंट जो है रिपीटेडली हम बताते जाएंगे बिकॉज यहाँ पे चेंजेस होना मुश्किल है. तो अगर आप मॉल्स, पार्क्स या आउटडोर इवेंट्स में जा रहे हैं तो आफ्टरनून की शदीद गर्मी से बचने की कोशिश करें और सनस्क्रीन कैप या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें. बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि गर्मी उन पर जल्द ही असर करती है. यू नो हीट स्ट्रोक याद है आप लोग इंडिया में ही लोग यू नो अक्सरियत हमने देखा है कि डेथ होते हुए भी देखा है. सो लोग गिर जाते हैं जो सबसे बुज़ुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं. तो बेटर उनको थोड़ा सा उनका ख्याल रखिए और उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए. लेट नाइट गैदरिंग्स के बावजूद प्रॉपर सोने की बात कर रहा हूँ मैं, स्लीप लेना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप फ्रेश और एनर्जेटिक रहें. घर में हल्की स्ट्रेचिंग या शॉर्ट वर्कआउट सेशंस भी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा. लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करना और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग करना भी अच्छी हेल्दी हैबिट्स है, ये भी मैंने बता चुका हूँ. इसको भी थोड़ा फॉलो करिएगा, स्पेशली ड्यूरिंग द ईद के नमाज में गाड़ी वाड़ी मत लेके जाइएगा. जुमे के नमाज पे जा रहे हैं तो गाड़ी छोड़ दीजिए. ईद सिर्फ खाने पीने की नहीं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ये सुन लीजिएगा कि बल्कि एक मेंटल वेलनेस का भी एक पैगाम देती है. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, दिस इज ऑल डॉक्टर्स कहते हैं जो मेंटल वेलनेस पे काम करते हैं ना, वो बार बार इसी चीज़ को कहते हैं कि फैमिली इज इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेस से दूर रहने और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का सबसे मुफीद तरीका ये है कि आप फैमिली के साथ वक्त गुजारें. ज़रूरतमंद लोगों को याद रखना और दूसरों की मदद करना भी दिल को सुकून देता है. इस ईद पर सबके लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए. FM 107 के हर हमारे जो कलीग्स हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए. ये दुआ कीजिए कि हम सब हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. पैसा वैसा तो आते रहेगा, जब तक आप हेल्दी नहीं है तो आप क्या पैसा बनाएंगे. तो दोस्तों हेल्दी बॉडी, पॉजिटिव माइंड और फैमिली की खुशियों के साथ इंजॉय करें एक सेफ, एक्टिव और मेमोरेबल ईद. इन कतर। तो दोस्तों स्टे एक्टिव स्टे फेस्टिव एंड ईद की तहे दिल से सबको मुबारकबाद। इस ईद खुशियों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, स्टे एक्टिव, चाहे आप हल्की वॉक हो, फैमिली गेम्स हो या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हर मोमेंट आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखती है। फेस्टिव मूड को एंजॉय करें लेकिन बैलेंस के साथ, ताकि आप ईद के हर लम्हे को पूरी तरह महसूस कर सके। दोबारा आप लोगों को ईद का इस ईद के मौके पर मुबारकबाद देता हूं, और इसी के साथ इस शो इस प्रोग्राम का यहां पर ख़त्म करता हूं। अगली बार एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Hey बच्चो, are you ready? Games, मस्ती, stories और super fun के लिए
4: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
5: ये शो कौन सा है?
6: The Super Kid Show.
7: Super Kid Show on FM 107.
8: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी।
9: I love the Super Kid Show. Super fun.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगू, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीम के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: के रंग रिवायत और

0: दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वअंतुम बख़ैर।

0: सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 टाइम चेक।

अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कतर. आप सुन रहे हैं FM 107 और शो है ये मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे माविश खान. गई हूँ और 7 बज के हो गए हैं 1 मिनट. मेरा आपके साथ रहना है 9 बजे तक. और आज है ईद का 4th दिन. वैसे ईद यूजली हमारे यहाँ 3 दिन के लिए मनाई जाती है, लेकिन फिर भी ईद का 4th दिन भी आपको मुबारक हो. और आज जो है ना वो मतलब जिन लोगों को छुट्टी मिली भी है उस तरह से कि आज सैटरडे है और ईद की भी मेरे ख्याल है 4 दिन की छुट्टियां शायद मिल रही हैं. हाँ शायद है इस तरह का कुछ सिलसिला. सैटरडे तक छुट्टियां हैं, मतलब 4 दिन की छुट्टियां होती हैं. तो चलिए जी, आप लोगों को छुट्टी भी मुबारक. और अब कल से दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाएगा, बैक टू रूटीन हो जाएंगे सब लोग और अपने अपने ऑफिस वगैरह को ज्वाइन कर लेंगे. तो चलें कुछ ज़बरदस्त. और उम्मीद करती हूँ कि ईद का ये जो सफ़र है ये अच्छा गुजरा होगा आपका, काफ़ी अच्छा. मतलब आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, रिलैक्स किया होगा और मज़ा आया होगा काफ़ी. तो अपने ईद एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर कीजिएगा. और इसके अलावा भी कुछ अगर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे नंबर्स आपके लिए हाजिर हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे और साथ ही साथ आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप और उसके लिए नंबर है 666-22-107. और आज हम थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक दो चीज़ें जो कि ऑब्जर्व करने में आ रही होती हैं तो उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे पास टाइम होता है. शुरू का जो 1 घंटा होता है तो उसमें तो हम काफ़ी तफसील से बात कर सकते हैं. तो मैं कुछ एक दो टॉपिक सोचती भी आ रही थी कि किस पे बात करेंगे किस पे बात करेंगे. तो मेरे जहन में आया कि एक तो ये कि मैंने अभी जो है वो कुछ मतलब एक कुछ ऑब्जर्वेशन सोशल मीडिया के थ्रू ही, तो उस पर मेरे जहन में एक तो क्या आइडिया था, मैं देखिए मिक्सअप कर रही हूँ. हाँ, एक तो ये कि अभी भी मैंने देखा कि एक जो चीज़ होती है ना कि हम अब हर चीज़ जो चीज़ भी है हम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसको मतलब कहीं ना कहीं पोस्ट ज़रूर करते हैं. मतलब मैं हमारी से मुराद ये है कि अक्सरियत की कोशिश होती है कि पोस्ट ज़रूर कर दें. तो वो कितना मतलब जो है वो ज़रूरी है, क्या हमारा हर एक्ट जो कि हम जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, एक थोड़ी सी आदत हो गई है ज़िंदगी में, क्योंकि अब हमारे पास क्या है ना कि पहले वो कैमराज जो हुआ करते थे उसमें वो रोल डाला करते थे और फिर उसके बाद उसको बाकायदा दिया करते थे, तस्वीरें बनकर आती थीं. अच्छा खासा एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था और उसके साथ ही साथ उसमें पैसे भी अच्छे खासे खर्च होते थे. लेकिन अब चूंकि बहुत ही एक इजी तरीका है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जो भी चीज़ चाहिए फिल्म कर ली हर वक्त में, तो वो एक इतना ज़्यादा ये चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि दिमाग पे सवार हो गए हैं कि हम बड़ी इजीली कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं. और उसमें मतलब वाकई यही वाला मामला होता है कि कुछ भी कैप्चर हो रहा होता है, मतलब सोच नहीं रहे होते किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. कहीं पे आपको सिर्फ वो वाले मोमेंट्स खुद से इंजॉय करने चाहिए, खुद से फील करने चाहिए, खुद से उनके ऊपर बैठ के रिफ्लेक्ट करना चाहिए और कहाँ मतलब ज़रूरी है ये कि आप उस चीज़ को पोस्ट करें. तो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना ना थोड़ा सा मतलब जो है ना बारीक सा फ़र्क है. और किया भी जा सकता है, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मतलब जो है ना आप अवॉइड करें या बिल्कुल ही ना करें या फिर कोई मतलब बिल्कुल गुनाह के ज़ुमरे में आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्राइवेट रखना आई थिंक बेटर है कि आप उनको थोड़ा सा प्राइवेट रखो, हर किसी के सामने लेकर ना हो. जैसे अभी मैं देख रही थी एक पोस्ट, उसमें यही चीज़ थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कुर्बानी के हवाले से ख़ास तौर पर कि हम तक मतलब अल्लाह ताला तक ना तो उनका गोश्त पहुंचता है ना ही मतलब कोई और चीज़. जो पहुंचता है वो होती है इंसान की नीयत, कि वो किस नीयत के साथ जो कुर्बानी कर रहा है उसमें कितना इखलास है. और वो डेफिनेटली हमारा जो भी हर एक अमल है वो छोटा हो या बड़ा हो उसको कबूल करना, उसको एक्सेप्ट करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ही हाथ में होता है. तो अब हमारी जो है ना इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए, जिसको हम नीयत कहते हैं. तो नीयत जो है ना वो बहुत प्योर होनी चाहिए. किसी भी चीज़ को करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे मकसद ये है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है. ख़ास तौर पर मतलब ये जो रिलीजियस मामलात हैं हमारे कि कुर्बानी की जा रही है या रोज़ा रखा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, तो इसके पीछे मतलब हमारी मतलब एक बिल्कुल प्योर इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं एक चीज़ मतलब अगर

एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

जी राइट वेलकम बैक आप सुन रहे हैं 107 एफएम मॉर्निंग मस्ती ईद और आज चौथा दिन ईद का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब लोगों को हमारी तरफ से एक दफा फिर से ईद मुबारक और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे साथ ही साथ हमारा नंबर है 6622107 जहां पे आप हमें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा मौसम का जिक्र कर लेते हैं। आज जो है ना इस वक्त अगर टेम्परेचर देखा जाए तो कुछ 33 से 35 के दरमियान है मुख्तलिफ इलाकों में कतर के और ज्यादा से ज्यादा आज जो चांस है वो ये है कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा और रात में फिर थोड़ा मतलब कम हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये कुछ मौसम के हालचाल हैं। इस वक्त हवा भी चल रही है और हवा जो है वो आप कह सकते हैं कि लो से मॉडरेट के दरमियान इस वक्त हवा है और हाँ लेकिन साथ में ये कि दोपहर के वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी तो इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि अपना ख्याल रखें, धूप में ज़रा निकलने से गुरेज करें और अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर ज़्यादा मतलब धूप वूप पे ना निकलें। घूमने फिरने भी निकलना है तो ज़रा शाम के वक्त का या फिर सुबह के वक्त का इंतखाब कीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और बस यही महफूज रखें, खुद को इंजॉय करते रहें। अगर कल मैंने आपको बताया था ट्रैफिक अपडेट के हवाले से कि कुछ जगहों पे रोड क्लोजर था क्योंकि काम शाम चल रहा था लेकिन इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल हो गया और अब चूंकि मतलब छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं तो इसलिए अब कोई किसी तरह की कोई सड़क पे बंदिश नहीं है। वो जहां पे कंस्ट्रक्शन चल ही रही है और ज़रा एक लॉन्ग टर्म काम है तो वहां पे एक अलग बात है लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी रोड ख़ास तौर पे बंद नहीं की गई जो कि मतलब आपके लिए एक सरप्राइज़ हो। तो इस तरह का हमला नहीं है, ट्रैफिक काफ़ी हद तक जो है नॉर्मल हो चुकी है और इसके साथ ही मतलब कुछ रश के औकात हो सकते हैं लेकिन फ़िलहाल जब मैं अभी आई हूँ तो काफ़ी रोड आज तो काफ़ी खाली मिला है। मतलब ये कहना चाहिए कि 3 दिन मतलब जो शुरू के ईद के थे उनमें आज निस्बतन ट्रैफिक मुझे सबसे ज़्यादा कम मिली है, बाकी दिनों में ट्रैफिक थी फिर भी। कल जुमे का दिन था और परसों जो है थर्सडे था, मैं एक्सपेक्टिंग कर रही थी पहले दिन भी बल्कि मैं तो एक्सपेक्टिंग कर रही थी कि लोग इतने ज़्यादा होंगे लेकिन फिर भी मतलब ट्रैफिक थी, आज काफ़ी हद तक कम है। शायद हो सकता है लोगों ने कहा यार आज आखिरी दिन है कम से कम आज तो मतलब सुकून से बैठ जाते हैं ना, थोड़ा सा मतलब लेट सोकर उठेंगे। मुझे लग भी रहा है कॉल्स भी नहीं आ रही आज तो शायद ज़्यादातर लोग आज आखिरी दिन जो है छुट्टी का इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सो के गुजार रहे हैं। खैर हाँ वही जो मैं बात कर रही थी, मुझे थोड़ा मतलब वो नहीं था क्योंकि हमारे साथ तो ये होता है जब ज़्यादा भी छुट्टियाँ होती थी जब भी हमें नहीं मिलती थी तो इसलिए इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ आज ही लास्ट डे है, कल से रिज्यूम हो जाएगा सबका काम काज और सब लोग चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो सभी लोग अपने अपने कामों पे दोबारा से मतलब जो है वो मशगूल हो जाएंगे दोबारा उनको अपने ऑफिसेस वगैरह ज्वाइन करने। तो ये है भाई अब तक का सिनेरियो। और हम बात कर रहे थे शुरू में, मैंने आपसे इंटेंशन वगैरह के हवाले से बात की, उसी एक चीज़ जो है ना जो मैंने बड़ी शॉकिंग सी दिखी वो ये कि यहाँ पे माशाल्लाह से मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है लेकिन हमारे मुल्कों में ये वाला मामला कुर्बानी का जब होता है ना तो उसमें बच्चों को एक तो मोहब्बत भी बहुत होती है ना, लेकर आते हैं घर पर जानवरों से प्यार मोहब्बत सब कुछ वो अपनी जगह है लेकिन उससे हटकर कुछ चीज़ें हमेशा ही मतलब काफ़ी मतलब ना वो वाली नज़र आ रही होती हैं जिसमें लग रहा होता है कि इतनी एक शऊर की ना थोड़ी मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको तो इतना अंदाजा नहीं होता। एक एक जानवरों को एक होता है कि घुमाना फिराना और आई थिंक मतलब मुझे इतना कुछ नहीं अंदाजा इन चीजों का कि कितना जरूरी होता है मतलब बकरे और गाय वगैरह को टहलाना होता ही होगा डेफिनेटली उनके लिए भी जैसे इंसान के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है ऐसे मुझे लगता है जानवरों के लिए भी जरूरी होती होगी और वो उनको भी कुछ मतलब चहलकदमी वगैरह करनी चाहिए लेकिन वो एक अलग बात है। होता क्या है हमारी सड़कों पे हमारे गलियों में लोग जो है ना उनका वो दौड़ा रहे होते हैं मुकाबला कर रहे होते हैं और वो इधर उधर फिर मतलब वो भी सेंसिटिव हो जाती हैं, नहीं समझ में आता किसी चीज़ से घबरा गई तो वो भाग दौड़ और वो हर दफ़ा नज़र आता है और अच्छा उस चीज़ को लोग बड़ा इंजॉय करते हैं मतलब उस चीज़ पे लोग बड़ा ना मतलब यही तो ईद की रौनकें होती हैं बकरा ईद की यही तो रौनकें होती हैं तो ये इस तरह से ले रहे होते हैं। तो काफ़ी मतलब जगहों पर मैंने देखी कुछ मतलब वीडियोज़ के वहाँ मतलब लोग गाय जो है वो भाग रही है इधर उधर सबके सब इधर मतलब उसके साथ भाग रहे हैं वो और पैनिक में आ रही है वो और भाग रही है। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा शुरू से ही मैं आज की बात नहीं करूँगी अब तो ये रिकॉर्ड होकर फिल्म होकर डलने लगी हैं चीज़ें वो भी कंटेंट बन गया है लेकिन ये बचपन से ही हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चे खास तौर पे मतलब ले भी के जा रहे होते हैं फिर टीनएजर्स थोड़े से और मतलब जब थोड़ी एज बढ़ भी जाती है लेकिन फिर भी हरकतें यही वाली रहती हैं कि गाय का जो है ना मुकाबला हो रहा है उनकी रेस करवाई जा रही है
हो, भाग रही है, इधर उधर तमाशे लग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को. अच्छा हमारी यहाँ एक वो है कि जब कोई आफत आती है ना तो उस चीज़ को भी इंजॉय किया जाता है, उस चीज़ को भी मतलब ना बड़ा मतलब उस चीज़ को भी सेलिब्रेट किया जाता है बाकायदा. तो वो उस तरह का भी माहौल हो रहा होता है कि बेचारी गाय कई दफ़ा ज़ख्मी हो जाती है, लोग इधर उधर ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि एक वो सीन क्रिएट हुआ हुआ है और कुछ ना कुछ तो चाहिए ज़िंदगी में तफरी इंटरटेनमेंट, तो वो वाला सीन चल रहा होता है. तो ये भी मतलब एक ना मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब जानवर लेकर आए हो और उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करने का आपने फैसला किया है तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि क्या आदाब हैं, किस तरह से उसका ख्याल रखना, उसकी

0: ये एक तफरी है, कुछ दिनों के लिए आती है, तफरी करते हैं लोग, तो वो एक जो उसकी रूह है ना कि क्यों की जाती है कुर्बानी, और वो भी मैं देख रही थी कि किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, ये सोचो जरा कि अगर तो मतलब आज भी हुक्म होता अपने बेटों को कुर्बान करने का, तो क्या उस वक्त भी इसी तरह की मतलब जश्न मना रहे होते उससे पहले? तो ये समझने वाली बात है।
1: नहीं, और दूसरा यही ना, जो लोग नहीं कर पा रहे, जिनकी भी साथ नहीं है, तो वो बेचारों को उन्होंने क्या कसूर किया है? वो तो उनको फिर जाहिर सी बात है मजबूरन अपनी कहीं ना कहीं से इधर उधर हाथ मार मार के जानवर लेना ही पड़ता है।
0: बहुत से लोग ऐसे हैं उधार
1: लेते हैं, जो उनके बजट में नहीं भी आ रहा होता है, फिर भी वो बेचारे लेते हैं।
0: हाँ, उधार लेते हैं क्योंकि दुनिया मतलब एक घर वालों का प्रेशर होता है कि नहीं आप लेकर नहीं आएंगे, सबके घर पे आया हमारे घर पे नहीं आएगा, तो ये मतलब ये चीजें अल्लाह ताला ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं की हमसे, तो हम क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं?
1: नहीं, बिल्कुल गलत है। कराची में मैं देखता हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि शुक्र है हम कहते हैं हमारी फैमिली वही इधर ही है, अच्छा है, हमारे बच्चे इन चीजों से दूर ही है।
0: मतलब ये
1: जो अच्छी चीजें,
0: हाँ,
1: जो अच्छी चीजें वो अच्छी होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत
0: होना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि इस दफा रिकॉर्ड बना है पूरे पाकिस्तान में, आई थिंक कोई 75 लाख से ज्यादा जानवर जो है वो कुर्बान किया गया, वो भी ऐसे हालात में जब पेट्रोल की कीमतें मतलब इस वक्त बहुत ही बढ़ गई है, महंगाई हद से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त में भी लोगों ने 75 लाख मतलब एक बड़ा फिगर है दुनिया भर के हिसाब से अगर देखा जाए और हमारे मुल्क में, तो मतलब लोग करते हैं, पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही मैं जैसे शुरू से बात कर रही हूँ कि हम एक थोड़ी सी मतलब गलती कहीं हमारी ना चीजों को जाया ना कर दे।
1: पेट्रोल वगैरह तो एक बहाना है कौम को, कौम बहुत है कौम के पास पैसा अल्हम्दुलिल्लाह
0: ये तो है
1: पाकिस्तानी कौम के पास बहुत पैसा है,
0: बहुत पैसा, ये बात तो सही है। अभी कल मैं देख रही थी किसी स्कॉलर का, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पे लोग इतने गरीब है, उनके घर पे पंखा भी नहीं है, और वो उन्होंने मुझे ना ला के खाने के लिए कुछ 3 दिन पुराना दिया, तो सभी लोग नीचे पूछ रहे थे भाई अब कौन से पाकिस्तान चले गए, ये पाकिस्तान के हालात नहीं है, अब किसी और जगह के हालात सुना रहे। नहीं है वाकई,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान माशाल्लाह दूसरे मुल्कों की निस्बत अगर आप देखें वहाँ की सोसाइटी में बहुत सी बुराइयां हैं जरूर, पर आप वहाँ का एक आम सा आदमी भी लेंगे ना तो उसकी जिसामत से आपको अंदाजा हो जाएगा ये बड़ा खाता पीता बच्चा।
0: एग्जैक्टली, तो खाती पीती कौम है हमारी, और बिल्कुल जो गरीब का टैग लगा हुआ है ना वो नहीं है। सही। और आप बताएं भाई कैसे गुजरे आपके ये 3-4 दिन, अब क्या मतलब कल से ज्वाइन करना है?
1: फर्स्ट डे तो हमारे यहाँ दावत होती है, एक्चुअली हमारी दावत कुछ अजीब सी हो गई क्योंकि मैं बुक कराया था बकरा मैंने,
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो इधर एक कुर्बानी रखी थी, बाकी 4 तो मैंने पाकिस्तान में रखी थी, तो वो गोश्त मुझे इतना लेट मिला कि बस उसकी वजह से जो लंच था वो डिनर और लंच के दरमियान हो गया,
0: अच्छा,
1: यानी 5 बजे जाके गोश्त मुझे मिला।
0: ओहो, अच्छा, सही सही सही,
1: तो
0: सही।
1: बड़ा वो मसला हो गया था, फिर अल्लाह ने किया, मैंने जो किया शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी,
0: चलें गो,
1: ऐसे ही होता है यहाँ। फर्स्ट डे पे 4-5-6 घर भी जो होते हैं आपस के, वो एक एक दिन अपने यहाँ दावत रखते हैं, तो वो इसी तरह टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, माशाल्लाह मजा भी आता है, सबसे गुफ्तगू भी हो जाती है।
0: गुड, जबरदस्त।
1: यहाँ हमारे असल में सोसाइटी के बहुत कम लोग हैं पाकिस्तानी, जो है उन्हीं से बस, बाकी तो आपकी सोसाइटी के तो नहीं है ना, वो तो काम वाले हैं, आपके साथ काम करते हैं, बस चले गए, अल्लाह खैर सलाह।
0: सही सही सही, लेकिन चलिए खैर, अच्छी बात है कि माशाल्लाह से मिलना मिलाना रहा आपका और अच्छी तरह से ईद गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कल से दोबारा
1: यही दिन होते हैं इनमें एक दूसरे के घर जाना और अच्छा जरा मजा आ जाता है ईद का।
0: जबरदस्त,
1: और ये अच्छा है, ये अच्छा रुझान है बिल्कुल माशाल्लाह, एक दूसरे के यहाँ दावतें होती हैं, वो ही टाइम जो है ना बहुत अच्छा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र।
0: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। तो और कुछ कहना चाहेंगे खलील साहब, कुछ और शेयर करना?
1: चलिए,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट, बहुत ख्याल रखिएगा अपना।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रई जी तो हमारे साथ थे हमारे कॉलर, और हमारे पास एक और कॉलर भी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा

0: मतलब इंतजार कर लीजिए, हम ब्रेक से वापस आते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आरजे महावश, एफएम 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे, आमीन।
2: ईद मुबारक।
3: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
6: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
5: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360।
4: कतर बिजनेस 360
5: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
6: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
5: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुश

0: right, welcome back. Eid ka 14th din aap sab logon ko mubarak. Aur hamare saath hain caller. Hello, assalam alaikum.
1: वालेकुम अस्सलाम, सबको ईद की लेट मुबारकबाद.
0: काफी लेट हो गया, चौथे दिन मुबारकबाद दे रहे हैं आप आगे.
1: उसकी वजह ये थी कि जब भी आंख जरा लेट ही खुलती साढ़े यानी तकरीबन 8:30-9:30 तो उस वक्त बस आप क्लोजिंग कर रही होती. मैंने कहा आज हमने क्लोजिंग से पहले ही जाना है. और आपका अभी ये लास्ट कॉलर की मैं आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा था. अच्छा, इसमें इख्तलाफ करना मेरा हक है, आपको सब माइंड भी नहीं करेंगी क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी बात चलती है, हालांकि अपनी राय है. तो सबसे पहले जैसे अभी आपने बात की ना कि शुक्र करें कि हमें बेटों की कुर्बानी ना दी जाती, तो ये जो चीजें हैं ना कुछ मखसूस होती हैं अंबियों के साथ. आम बंदे के लिए उनकी वो नहीं होती है सीरियस, यानी जो अंबियों के साथ मामलत होते हैं.
0: बात क्या है ना कि वो एक मौका है जिसको हम एक तरह से उसकी याद में, ये हमें अल्लाह ताला ने दिया है, मतलब हम सुन्नत इब्राहिमी निभाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. आप जश्न देखें, डांस हो रहा है, म्यूजिक लगा हुआ है, ये सब कुछ तो अल्लाह ना करे, मतलब ये वाली जो चीज़ आप सोचें दिमाग में रखें, डेफिनेटली हमें वो हुक्म दिया ही नहीं गया, लेकिन उसके बदले में ये जो हम सुन्नत निभा रहे हैं तो उसके पीछे वो पूरी एक स्टोरी है जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है, तो उस पर ये जश्न मतलब कहीं से बनता है.
1: हाँ, ये बात मैंने सुनी नहीं थी. ये आपने जो उसकी तौजीह पेश की परफेक्ट है बिल्कुल, कि जिस सिचुएशन या जो कुर्बानी का एक तनाजुर था उसमें जो हरकतें हैं, यकीनन ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं हम, कि इसके अंदर तो एक तरफ से फिक्र करने की और बेहतरी की तरफ आने का चलता है कि हम और उल्टी तरफ चल पड़े. ये चीज़ें यकीन हर त्यौहार खुशी के साथ, हमारे दीन के अंदर हर त्यौहार या खुशी के साथ गौर व फिक्र की दावत देता है. इसी तरह ईद उल फितर है कि आप जब फास्टिंग करके और इस तरह चल रहे हैं बड़ी ईद में, कि जिस नबी ने या उनकी वाकयात हैं कि वो हमें जो उसका असल मकसद है, या जिस तरह उनके बीवी बच्चों ने और जो वाकया था उसको

0: खाना मुंह शू धोना अपने आप को करना, कोई टक्कर शक्कर ना मार दें, घर खैरियत से पहुंच जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने रखा है बस यही है। अच्छा एक और चीज भी है कि आपकी जो नाइट ड्यूटी इस तरह की जो ऑड जाती है, एक तो ऑलरेडी शुगर ले रहे हैं और ऐसे लोगों में शुगर भी जल्दी हो जाती है, उसका ना इंसुलिन सिस्टम जो है वो काम नहीं करता इतने अच्छे तरीके से। तो शुक्र है हफ्ते में एक और कभी इमरजेंसी में दो होती थी तो वो भी लग पता जाता था। तो बाकी नींद पूरी करें, टाइम में पूरे हों, बच्चे फैमिली के साथ, ऐसे आपको टाइम तो मिला ही होगा कहीं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जा तो रहे हैं लेकिन बस वही रात में थोड़ा सा लेट आते हैं। आज इतना मैं फील नहीं करी जबकि कल रात में सोते सोते जरा 2 बज गए थे मुझे, लेकिन फिर भी ये कि आज इतना फील नहीं हो रहा। खैर चलता है, क्या कर सकते हैं।
0: नहीं 2 तो वैसे काफी डिले हो गया। अच्छा ये पिछले 2-3 दिन से हीट वेव कैसी जंप की है दिन, यानी ऐसे 40 से अबव, यानी अब अगर चले मेरी डैशबोर्ड कुछ गलत भी बता रहा हो, 48 था, अगर 48 ना हो तो 45-46 तो होगा।
1: हाँ मतलब तकरीबन 43 तक चला गया टेम्परेचर,
0: 43 तक चला गया। अब तो इशा मगरिब के बाद भी बाहर घूमे तो गर्म हवा के थपेड़े, लेकिन एक चीज और महसूस की है, सिटी के अंदर जाहिर है इसी चलते हैं, थोड़ा बाहर जाना हुआ तो वहाँ नॉर्मल फिर रहे थे तो वहाँ फिरा जा रहा था, तो फिर यहाँ सब एसी भी चल रहे हैं तो इस वजह से भी। तो बाकी माशाल्लाह वैसे ईद अच्छी थी, हम लोग अपने कोलीग्स को, उन दोस्तों को याद कर रहे थे, उनका बेटा था, उनकी तरफ गए तो हमने कहा आपके बाबा जो 2020 में ना हमारे 3-4 जो है अर्ली रिटायरमेंट कर दिए थे कोविड के दौरान, जिनकी 55 से प्लस थे, तो वरना हम लोग 4-5 फैमिलियां इकट्ठे रहते थे तो इसी तरह ही था, हर एक के घर ईद के दिन क्या प्रोग्राम, उसके बाद फिर मिलके सम टाइम 1 दिन या 2 दिन हम लोग मिलके जाते थे कहीं वक्रा बीच व्हाटसोएवर और मिलके खाना, तो वो परदेश फील ही नहीं हुआ, बल्कि इसके अपने 2 छोटे बच्चे थे तो आए तो इतना कह रहे यार बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने कहा जब तुम लोग छोटे थे ना तुम लोग मिस नहीं करते थे, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और रहते भी हम लोग साथ में थे, यानी अगर कोई किसी वजह से गया भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ा अच्छा था। हमने कहा हमने माशाल्लाह परदेश में इतना नहीं हुआ, तो बाकी जो अकेले रहते हैं तो बच्चे भी हैं फीलिंग करते हैं। अच्छा वो भी वैसे ईद पे पाकिस्तान चले जाते थे छोटे हैं, अब स्कूल शुरू हुआ है ना, मैंने कहा ये भी फिर मजबूरियां शुरू हो जाती हैं बच्चों के साथ।
1: सही बात है।
0: स्कूल के साथ तो, और मैंने तो ये तो आपकी बातों से कैप्चर करके कुछ बातें की, बाकी आपका आज का कोई मौजू कोई खास
1: आज
0: बात चल रही
1: है? मौजू तो नहीं है, मैं खुद ही मौजू निकाल रही हूँ रोजाना, ताकि क्योंकि वो शुरू का जो 1 घंटा है इसमें म्यूजिक वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, खुद ही बातें करनी है तो मैं खुद ही, कल भी हमने ऐसे ही कुछ रख लिया था, आज मेरे जहन में ये वाली चीजें आई कि जो हम देख रहे हैं हालात के भाई मतलब एक कुछ तमाशा सा बन गया है, तो मैंने कहा चलो इसके हवाले से बात कर लेते हैं, वरना मौजू कुछ ऐसा सच है नहीं इस शो में।
0: अच्छा है नहीं ना, तो चले वैसे क्योंकि आप फैमिली उनके ऊपर भी बड़ी बात करती हैं, और हम लोगों ने तो जॉब की और हमने ही देखा, यानी एक देख लिए कहीं सेट हो या कभी हो, हम लोगों को नौकरी से कब निजात मिलेगी? ये जो नौकरी है ना इसकी जगह पे कोई काम करने का, इसकी उसकी रीजन मैं बताता हूँ। हम लोग जब स्पेशल इवेंट या उसके ऊपर बंदे लेके आते हैं अक्सर यूरोप से और जगहों पे, अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, स्पेन पुर्तगाल या और कंट्री से फ्रीलांसर, अच्छा वो अपनी मर्जी की फीस लेते हैं बट दे आर स्पेशलाइज, और उनको उनसे गपशप भी होती है इंटरेक्शन के, तुम लोग जॉब नहीं, इधर कहते हैं नहीं हमें करने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने 6 महीने ये इस तरह करते हैं, नौकरी का ये इतना हिसाब किताब नहीं, लेकिन हाँ हमारी स्किल्स ऐसी हैं कि हम लोग जब भी अवेलेबल होते हैं तो हमें फाके करने नहीं पड़ते, हमें कहीं ना कहीं से हमारा हिसाब किताब मिल जाता है। तो हमारे टीम के अंदर भी नौकरी बेसिकली तो अंग्रेज़ों ने हमारे उसमें डाल दी थी, उसका एक बड़ा उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था कि जो सरकार का नौकर होगा एक तो उसका वफादार होगा, उसका प्रोटोकॉल होगा, और वो उसको ना बड़ा नवाजते थे वैसे, एक यहाँ के 100 लोगों को लूट के तो उसको देते थे, तो वो आज तक भी उन्हीं के ही वफादार हैं, अपने लोगों के नहीं हैं। लेकिन अगर हम लोग अपना काम करना सीखें, आगे जैसी सिचुएशन आ रही है आप देखें वर्ल्ड की, एआई ने कितनी तबाही मचाई है, और ऑनेस्टली ये जो दो पिछले कुछ सालों में जो बंदे हमारे उन्होंने निकाले भी हैं उसकी वजह ये थी कि नए सिस्टम उन्होंने ऐड किए हैं जिसमें एक्टिविटीज़ को सेंट्रलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा अभी

0: स्टूडियो है वहाँ पर 6-7-8 बंदे थे, उन्होंने वहाँ रोबोटिक सिस्टम लगा दिया, उस रोबोटिक पे एक बंदा बैठ गया, 6-7-8 की छुट्टी। तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरह कर रही है, तो इस तरह लोग कम से कम खुद तो अगर नहीं है तो अपनी फैमिली या बच्चों को देखें कि आप वो चीज़ें अडॉप्ट करें जिसमें वो नौकरी के बजाय खुद ऐसी स्किल में मास्टर करें कि नौकरी अगर जाए भी या कुछ हो भी तो वो कुछ करने के काबिल हों। वैसे एक ज़माना है, अगर आपकी कहीं ज़मीन वगैरह लें या कुछ कहें, या खेती बाड़ी का ज़माना वापस आने वाला है,
1: वापस आ रहे हैं। अभी मैंने देखा एक पाकिस्तान में वो मैकेनिकल इंजीनियर आई थिंक थे, तो उन्होंने वो जॉब शॉप छोड़ी और एक फार्म लेके, मतलब जमीन लेके वहाँ पे फार्मिंग शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा लोग, मतलब मुझे तो शुरू से फार्मर बनने का शौक था, घर वाले कहते थे ये सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं तो तुम ये क्या काम करोगे, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। मुश्किल है उसमें शुरू शुरू में, लेकिन ये कि फिर मज़ा आ रहा है, मतलब जो एक अपना पैशन होता है बंदे का, और ज़रूरी भी है, होना चाहिए ये।
0: भाई अगर आप कहीं करीब रहते हैं, यहाँ आके एक नॉलेज में ग्रोथ ये हुई कि आप बस वो क्या कहते हैं ना, चावल गंदम और ये चारा वारा ये ना उगाएं, साइंटिफिक चीज़ों में यार इतनी एक्सपेंसिव क्रॉप्स हैं, फ्रूट हैं जिनकी बड़ी वैल्यू है, इवन वहाँ लोकल भी बड़ी वैल्यू है। आप ब्लैकबेरी का यहाँ डब्बा लेके जाएं जिसमें 100 ग्राम होते हैं और कितनी उसकी है, वैसे वो 5-6 रियाल 10 रियाल अगर आप देखें उसमें दाने गिने, इस तरह हो रहा है। जैतून है और ऐसी चीजें, इतनी क्रॉप्स हैं एक्सपेरिमेंट करके कि जो आपके इलाके में सूट करती है। जाफरान, जाफरान का कभी सुने, सोने के भाव है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसके इस तरह के फूलों के वो हैं। तो ऐसी चीजें एक्सप्लोर करके और करें, लेकिन मार्केटिंग और इन चीजों को देखें। तो खाना तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ यहाँ उसके साथ आपकी ये चीजें जो वैल्यूबल है, एवोकाडो आप देख लें, इसमें कह रहे थे कि कई जगहों पे वो अर्ली बुकिंग कर लेते हैं पूरे पूरे उन चीज़ों की, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, और मैं हैरान हो गया इसका जो ऑयल है वो बहुत अच्छा है, और ये नहीं मुझे पता इसमें से निकलता कहाँ से ऑयल है।
1: आई थिंक वो जो सीड होता है उसका, उसमें से निकलता होगा।
0: अब आपको पता है जैतून का ऑयल कहाँ से निकलता है?
1: जैतून का ऑयल भी सीड से निकलता होगा जहाँ तक?
0: ना जी, होगा कोई नहीं, उसकी छाल से निकलता है।
1: छाल मतलब?
0: छाल मतलब उसकी लकड़ी या छाल, उससे से निकलता है। सीड को आप दबा के देख लो, उसमें कुछ नहीं होता।
1: अच्छा, दरख्त, दरख्त मतलब जो दरख्त की छाल होती है। अच्छा अच्छा, सही सही सही। हाँ तो फिर मुमकिन है कि एवोकाडो का भी ऐसे ही होता हो।
0: तो वो क्योंकि इसका जो सीड वो बड़ा हार्ड सा होता है। और एक और चीज जो खास तौर पे बीमारियों का आजकल भी शिकार बने, मैं आपको दूंगा, उसने कराची पे बड़ी अच्छी बनाई है कि लोग लीवर के और हार्ट के हो रहे हैं। एक तो ये जो ऑयल मिल रहा है ना, ये तो बहुत ही घटिया है। यानी एक जमाने में जब कोल्लू से या घर से कहते हैं, जिस तरह फास्ट फूड गए इस तरह ये जो बाहर ये जो फैंसी ऑयल की बोतलें हैं ना, अच्छा इससे पहले हम घी लेते थे, तल्लो डालडा फलाने ढमकाने जो आ नहीं रहे, या देसी घी की नहीं थी तो ये लेते थे, तो ये अच्छा नहीं है, ऑयल लें। ऑयल को उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करके इसको हाइड्रोजनेटेड कर दिया है, ये जो है ना कलट बना देता है उसमें ना क्रिस्टल या वो, और सबसे जो बुरी चीज है ना, हार्ड कर देता है इनकी ये जो खून की जो नाली है ना, खून की जो रगे हैं, और इसको इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर आप यही तेल घर में या कोई आपका लोकल बना देते हैं ना, तो इतनी ज्यादा उसको फिल्टर। अच्छा ये मैंने देखा था जॉर्जिया में जब मैं गया था।
1: अच्छा,
0: तो वहां देखा ना सनफ्लावर ऑयल डार्क येलो ऐसी थिक हालत में, तो वो था कह रहा था कि ये आपका बाहर का नहीं है, ये हमारा लोकल, हमने खुद बनाया, दिस इज द ऑर्गेनिक।
1: अच्छा,
0: प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा थी, दिस इज ऑर्गेनिक, ये है। तो ये इस तरह का है, और उसकी उसके अंदर आपको चिकनाई भी ज्यादा मिल रही है।
1: सही सही। और बाकी मतलब ये चीजें हमें अपने तौर पे ना मतलब करनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए, ये भी स्किल्स हैं।
0: स्किल्स हैं, देखना है। और हेल्थ के ऊपर हमारे यहाँ हेल्थ का जितना, अच्छा हमारे यहाँ हेल्थ में लोग बीमार हो रहे हैं, हैर अब तो हॉस्पिटल भी बना रही और लाइनें लगी हुई हैं। एक माँ ने एक बच्चे को गोद में उठाया, दूसरे को वो चीज़ें खिला रही हैं कि वो लाइन में लगा बीमारी का। जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक अलमिया सोचने की कि ये इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, देखिए लाइन लगी है कि उस जगह पर, लेकिन वहाँ पर ये सोचने की भी। अब यार मैं तो इस चीज़ों को भी ईद पे भी कई दफ़ा देखता हूँ, आम हालात। एक एक बच्चा देखें, किसी गरीब ने एक तो पहले शादी की, उसकी सबसे बड़ी खुशी शादी, और अगर उसका बेटा हो गया, वो नर्स वर्स भी जो है ना जहाँ जो भी कही है, तो बेटे के ऊपर हमारे यहाँ यानी माशरा ऐसा है कि बेटा हुआ है और उससे ज़्यादा डिमांड की जाती है, हो सकता है वो बेचारा इधर उधर से मिठाइयों भी करें, लेकिन

0: उस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है? वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ना स्कूल है, वो जवान हो गया, ऐसे ही जाहिल हो गया, तो फिर चोर है, इधर उधर डकैतियां करेगा। हम मैं सोचता हूँ कि एक बच्चे का क्या मुस्तकबिल है इस सोसाइटी में, और उसके ऊपर वो एक पुलिस वाला लाना करे, किसी को बड़े दिन ना आए किसी ऐसों को। मैंने जब असल में मैंने जब देखी ना कि छोटे बच्चे इस कार्रवाई में थे, उन्होंने कार्रवाई करके गोली मार के जी हमने मार दिया, मैं इस बात में मुझे दुख नहीं था कि ये चोरी कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बच्चे चोरी तक पहुंचे कैसे, ये तो स्कूल कॉलेज वाले थे।
1: बेसिकली वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो ये चीज़ घर से शुरू होती है, फिर बाद में ठीक है स्टेट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने घर पे भी थोड़ा मतलब उनको भी खैर एजुकेट करना पड़ेगा। बात वही आ जाती है कि वहाँ पे अगर वही उन्हीं को ना समझो तो फिर वो क्या समझा लेंगे।
0: नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह, एक गरीब आदमी जिसको गुजारा भी मुश्किल, या बच्चे चलो दो तीन चार जैसे भी अल्लाह ने दिए, जहाँ बिल जिस सिचुएशन में बंदा रहे ना उसको फिर होता है। यानी मैं सहरा में जब मैंने काम किया तो मुझे एक वक्त ऐसा आया कि पानी हमारे पास शॉर्ट हो गया, कोई बिजली का भी सिस्टम जनरेटर ख़राब हो गया। जैसे हमने रात गुजारी पानी उबलता हुआ, उसके बाद किसी ने हमने कहा ये ठंडी बोतल वो गाड़ी वाला है, या आप पानी पी लो, हमें वो यकीनन आबे हयात लगा। तो जो जिस सिचुएशन में है वो उसमें जाएगा तो पता चलता है, एक आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता इन हालात में, उसमें है वो अपनी सिचुएशन कहाँ से ले। सबसे आसानी तो ये है ना, स्टेट कम से कम उनको तालीम दे।
1: कितने लोगों का कर सकती है, मतलब एक चीज है ना कि
0: दुनिया में हर जगह पे स्टेट ही करती है, गवर्नमेंट स्कूल ही होते हैं, उसके बाद जगह पे प्राइवेट होती
1: है। मतलब हमारी पॉपुलेशन भी तो देखे ना, मतलब हमारे लिए एक और दूसरी चीज जो है ना, आप और बहुत सारे मुल्क देखे उठाकर, उन लोगों के अंदर अपने अंदर जज्बा होता है काम करने का, जो एक मानने वाली बात है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग, जैसे आप खुद ये बात कई दफा कर रहे होते हैं कि एक बंदा अगर कमाने के लिए बाहर निकला है ना, तो बाकी सारे के सारे उस बंदे को देख रहे होते हैं कि बड़ा भाई निकल गया, बस अब ये करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे। तो जहाँ पे कौम का रवैया ये हो ना कि उनको एक कोई बंदा मिल जाता है, या कहीं पे भी कोई एक अगर मोहसिन मिल गया गलती से, जिसने मतलब ना हाथ पकड़ लिया, तो वो जिंदगी भर उसका हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं कि अब तो तुम ही करोगे, तो इस एटीट्यूड के साथ तो कौमें कभी तरक्की नहीं करती।
0: इसमें समाजी शऊर और खुददारी की कमी है, जिसमें इंसान को जिस सोसाइटी में हराम हलाल खत्म हो जाए, आप सिर्फ शिनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जो एक राइट टू सिटीजन है ये भी आप लेने जाए ना, तो उन सरकारी जगहों पे ये भी आपको बगैर कुछ लिए दिए नहीं मिलते। तो जहाँ ये चीजें इतनी,
1: वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए मतलब एक बंदा है, अब आप जैसे अगर अपनी मिसाल ले लें, आप निकले, आपने मेहनत की, लेकिन अगर आपके अगर छोटे भाई बैठ जाते हैं, तो एक ही घर से ये दो रवैये हमें देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये एक बंदे के अंदर खुददारी और ये जो चीजें ना, ये खुद से भी होती है हर चीज। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपको कोई दूसरा नहीं समझा सकता, इवन आपको माँ बाप भी नहीं समझा सकते, जबकि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से माँ बाप की ही है। लेकिन फिर भी चले, मतलब एक बंदा जब बड़ा हो रहा होता है, अपने इर्द गिर्द मुश्किलात परेशानियां देख रहा है, तो उसका एक फर्ज बनता है ना कि वो उससे निकलने की कोशिश करे, बजाय इसके कि वो खुद एक मतलब उसी दलदल में फंसता चला जाए। अच्छा, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके फौरन वापस आते हैं।
0: ओके।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: Alrighty, 8:01 और हमारे साथ हमारे कॉलर। हेलो जी।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।

0: जी, तो बात ये हो रही थी कि शऊर देना, मतलब शऊर वाकई देना एक ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा ना सख्त कानून नाफिज कर देना चाहिए कि कोई भी घर पे अगर बेकार बैठा होगा तो उसके ऊपर फाइन होगा, हमारी कौम जब भी सुधर सकती है। मतलब आपको हाँ अब देखिए, मतलब
1: होना चाहिए कि स्कूल में लाजमी जाना चाहिए, तालीम से होता है। ये होना चाहिए कि कोई घर में नहीं बैठे, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या उसमें आप देखें, और इवन सुना है श्रीलंका तक में भी कि बच्चे 4-5 साल के हो जाए, या सुना है ये, यानी जो करियर थाईलैंड है वो तो एक अच्छी सोसाइटी है कि उन्होंने रजिस्टर है, ये बच्चा पैदा हुआ था 5-6 साल से, जैसे यहाँ पर भी है, देखिए मिनिस्ट्री क्या है, बल्कि वो मुझे बता रहा था मेरा ये जो मेरे दोस्त का बेटा है, कहते हैं यहाँ भी इन्होंने मशरूत कर दिया कि अगर ये बच्चे जो हैं यहाँ पर स्कूल में नहीं जाएंगे जो यहाँ पैदा हुए हैं, तो वो फैमिली का वीज़ा कहते हैं हम इस पे ना रिस्ट्रिक्शन कर देंगे।
0: हाँ exactly, मतलब कॉल की जाती है घर पे कि अगर आपको कोई बच्चा भी, वो रीज़न पूछती है मिनिस्ट्री पूरा कि क्यों घर पे बच्चा है और क्या रीज़न है, अगर तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस तरह के स्कूल भी बनाए गए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यही बात है कि एक बंदे को ना, मतलब एक खुददारी और ये जो चीज़ है ना, मुझे थोड़ा सा फुकदान उसका सीरियसली नज़र आता है कि हमारी थोड़ी सी एक नेचर बन गई है आपका, मतलब कोई एक बंदा अगर बाहर होना तो, अब जैसे हम, मैं अपनी घर की बात करूंगी, मेरे पापा बाहर निकले हैं ना, तो मेरे चाचा ने जब तक जॉब नहीं की जब तक उनकी शादी करने का वक्त नहीं आ गया था, और मतलब पापा ने फिर सख्ती से नहीं बोलती कि भाई अब तुम्हें अपना कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक बिहेवियर ये वाला होता है कि अगर बड़ा भाई कर रहा है, भाई कमा रहा है, चलो हम बैठ के रातों में गेम्स खेल रहे हैं, मतलब जो भी उस जमाने में हुआ करते थे, तो ये एक बिहेवियर है हमारा, और इसको मतलब अगर वो बेचारा बड़ा भाई बोल के बुरा बन जाता है, घर वाले कहते हैं हमारा, मतलब देखो मतलब तुमने कर लिया, कोई एहसान थोड़ी किया, छोटा है तो क्या हो गया, मतलब तुम इतना नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक माइंडसेट बनाना पड़ता है, और उसके लिए ठीक है स्टेट तो बनाएगी, लेकिन अब तो बहुत बुरे हालात हो गए, लेकिन आज से आप 25-30 साल पहले भी देखें ना, तो वहाँ पे भी ये एक रिवायत सी बन गई है कि हमने काम नहीं करना, हमें को मिल गया बस हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे।
1: ये चलें आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया तो ये बात है कि वो बड़ा जब शादी हो गई है तो बड़ा हो गया, काम के लिए बड़ा नहीं हो रहा। देखिए वो ऐसे कह रहे हैं मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी कुछ देखो दोस्तों की वो हो गए हैं।
0: अच्छा, जब शादी की बात करना शुरू की ना, वो भी अच्छा थोड़ी सी लेट ही हुई थी उनकी उस जमाने के हिसाब से, तो जब पापा ने बोला भाई तुम्हें करनी है शादी, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप ये शादी अपने उस पे करेंगे ना, अपने बलबूते पे,
1: अपने खर्चे पे, बच्चे जो है आपने खुद ही उनको हैंडल करना है। और इसी तरह अच्छा आप देखें हमारी ऐसी सोसाइटियां हैं, मैंने जापान का पढ़ा कि वहाँ गवर्नमेंट एड को लेना बड़ा मायूब समझा जाता है, देखें, यानी वहाँ अगर गवर्नमेंट वो
0: हमारी है, वो कल मैं देख रही थी एक प्रोग्राम है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक प्रोग्राम है उसके तहत हमारे भी जब हम लोग जब तक पाकिस्तान में थे ना, तो हमारे घर पे जो आती थी हेल्पर काम करने के लिए, तो वो बता रही होती थी कि बाजी मुझे फलां जगह जाना है, वो पैसे मिलते हैं ना मतलब इस तारीख को, तो वो एक प्रोग्राम पूरा चल रहा है उसमें वाकई पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते गरीबों को, वो हर महीने खवातीन का प्रोग्राम है तो उसमें पैसे मिलते हैं। लेकिन अब उस प्रोग्राम में कल ही मैं कहीं पर देख रही थी कि अगर इसी को लोगों की प्रोग्रेस के लिए यूज़ किया जाता, इसी से कोई मतलब जो ना बिजनेस वगैरह शुरू किया जाता, उसमें ख्वातीन को ही इंडल्ज किया जाता, तो आज ये चीज़ कहाँ से काम बढ़ जाती है। लेकिन हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि हम हर जगह पे फकीर पैदा कर रहे हैं,
1: फकीर पैदा कर रहे हैं। यही बांग्लादेश में इन्होंने तजर्बा किया था, यूनिस साहब ने, उन्होंने $100 ख्वातीन को बिजनेस लोन दिया कि आप करें विदाउट एनी इंटरेस्ट, उससे उसकी इकॉनमी ने कैसे जंप किया। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ फैमिली ब्रेकअप कर दिया गया है 80% जो अदलिया में हैं, और यकीनन हमारे नान के दाद के और कई जगहों पे हैं, प्रॉपर्टी के मसले हैं। मैंने यही सवाल ना सैफ साहब से किया था इस्लामी प्रोग्राम में कि हमारे यहाँ हर फैमिली एक दूसरे से लड़ रही है, जो भी उनमें कोई ज़रा तगड़ा है उसने दबा लिया है और उसको नहीं मिलता, तो ये स्टेट नहीं देती कि हमारा पूरा माशरा गुत्तम गुत्ता है, और 80% लाखों मुकदमा ये फैमिली के सिर्फ इसी तस्वीर के लिए कि हो नहीं पाता।
0: सख्त कानून होना चाहिए और सब लोगों को सही तरह से देखना चाहिए।
1: हमने देखिए कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने वाजिया कर दी, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, हर चीज़ को कर दी, अगर कोई छोटा बड़ा फ़र्क है तो वो एडजस्ट हो जाता है, मेन चीज़ जो अल्लाह का हुक्म है। अब मैंने पूछा जी कतर में ऐसे भी क्या है, जैसे हमने कहा नहीं, यहाँ गवर्नमेंट जैसी किसी की वफात होती है गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को अपील करती है, शरीयत यहाँ जो शरीयत कोर्ट है सब पहुँच जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखें, वहाँ टैक्सों का भी मसला है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ें कोई बीवी के नाम कोई दूसरे बच्चों के नाम रिश्तेदार कुछ इधर उधर छुपाई, ये भी मसला यहाँ सेंट्रलाइज है, हर चीज सुई से लेके जहाज तक।
0: अच्छी चीज है ना, आप कॉल करो किसी भी मतलब फूड आउटलेट पे ऑर्डर करने के लिए, तो आपको आपकी कॉलिंग

0: नंबर से उनको आपकी पूरी हिस्ट्री पता होती है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं. ये एक चीज जो है ना, ये होनी चाहिए कि आपका कॉलिंग नंबर, आपका मोबाइल फोन, वही मतलब जो है ना आपकी पूरी शनाख्त है यहाँ पे. तो ये चीजें अगर मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ भी हो जाए ना, मुझे लगता है कि काफी बेहतरी आ जाएगी. उसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है, तो वो बनना चाहिए यकीनी तौर पर.
1: सिस्टम में ऐसा ऑनेस्ट बंदा हो, और आप हम लोग आपने देखा पाकिस्तान में सोसाइटियाँ उनकी कीमत जो बाउंड्री वाली है इतनी प्राइस, यानी आप उससे बाहर निकले मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का घर है, अंदर जाएं तो 4 से 5 करोड़ का है. किस बात की? खौफ की कीमत ले रहे हैं कि भाई आप यहाँ अंदर सेफ हैं, रात को चैन की नींद सोएंगे तो खौफ की. हालांकि ये जो अमन और इसकी है, हर शहरी का हक है. मेरे हिसाब से तो 4 दीवारी की सोसाइटियाँ होनी नहीं चाहिए. हर बंदे को ना इसी तरह रहना चाहिए कि अगर वो है तो वो भी उसका पास उतने पैसे नहीं है, उन्होंने उस चीज़ के पैसे बना दे, हमने सिक्योरिटी बना दी, ये कर दी. जिस तरह सोसाइटी वालों को गैस मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली नहीं जाएगी तो बाकियों की जाएगी, जो एक बुनियादी चीजें हैं. कल को तो ये ऑक्सीजन के ऊपर भी कुछ लगा देंगे, भाई ये ऑक्सीजन आपको तब मिलेगी आप यहाँ पर हैं.
0: बहुत दुखे दिल के हुए हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है. हम चले इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि काफी लंबी बात होगी. ठीक है, चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, और होता है मतलब इर्द गिर्द की चीजें देख के काफी वक्त जो है ना बंदे को मायूसी भी हो रही होती है. लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरा वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं कहती हूँ कि हर चीज से ना पवित्र है, शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये होना चाहिए. उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी. अभी हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसीकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपर हिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: लबैक अल्लाहुम्मा लबैक,
3: लबैक की सदा,
4: लबैक की सदा,
3: एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है।

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ. अच्छा, कुछ मैसेजेस जल्दी से मैं शामिल कर देती हूँ. और तौफीक का मैसेज मेरे पास काफ़ी पहले आ गया था. तौफीक भाई, काफ़ी मतलब माजरत आपसे कि देर से पढ़ा जा रहा है. महावश खान, अस्सलाम वालेकुम. तौफीक फ्रॉम अलवकरा, 7:02 आपने मैसेज किया था. नसीम कहते हैं ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. बहुत अच्छी बात कही है आपने. और नींद के बारे में क्या ख्याल है आज? मतलब पता नहीं, नींद तो मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई. अगर देखा जाए तो कल मेरी इससे ज़्यादा नींद पूरी हुई भी थी, लेकिन आज मुझे नींद का एहसास नहीं हो रहा. शायद वो वाली चीज़ है ना, आज मुझे लग रहा है कि आज चलो लास्ट शो है इसलिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. गुलाम रसूल हियर फ्रॉम मसईद इन हैदराबाद इंडिया. ईद मुबारक. ईद मुबारक आपको भी गुलाम रसूल. क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है. सलाम मई मैम, ईद मुबारक आपको और FM 107 की तमाम टीम को, कतर के लोगों को. मैम मैं ड्यूटी पर हूँ, आपका शो सुन रहा हूँ. सुरजीत, ज़बरदस्त सुरजीत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक. और एक भाई ने मैसेज लिख के कर दिया है डिलीट. उनको लगा कि नहीं शामिल होगा. भाई हो जाएगा, दोबारा कर दीजिए. आप कर दीजिए, मैं आपका मैसेज शामिल करूंगी. और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ कॉल पे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू.
0: जी क्या हाल चाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक. आप सबको भी ईद मुबारक. बहुत बहुत
0: बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक.
1: जी आपने तो शायद मेरी आवाज पहचान ली हो, लेकिन शायद लोग ना पहचानते हो. तो
0: असमत अफरीदी बात कर रहे हैं.
1: जी जी मैं अस्मत अफरीदी बात कर रहा हूँ. क्या हाल है? सब खैरियत है माशाल्लाह.
0: जी जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसा रहा सब कुछ आपका? ईद कैसी गुजरी?
1: बस अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह. पहले दिन तो हमारे यहाँ ये होता है कि मिलना मिलाना होता है यहाँ पे भी. तो दोहा गए थे और वहाँ पे कुछ रिश्तेदार वगैरह, और फिर इलाके के लोगों के यहाँ जाना, उनसे मिलना मिलाना, ये चीजें होती है हमारे पठानों में. तो खैर ये होता ही होता है. तो ईद की मुबारक. जी ईद की मुबारकबादी के लिए जाते रहते हैं लोग एक दूसरे के डेरों पे, एक दूसरे के घरों पे जाते हैं. तो खैर मैंने भी जो हो सकता था जिन लोगों के साथ मिल सकता था. कुछ ये होता है ना कि फिर ये कुछ फौजियां करीब करीब ईद की हुई होती है, तो उनसे भी जाके मिलना और उनको तसल्ली वगैरह देना, तो ये चीज भी होती है हमारे यहाँ. तो हाँ उसके लिए भी गए थे. और उसके बाद तो फिर खैर कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं.
0: सही
1: सुन रहे हैं आप लोगों को.
0: जी सही सही.
1: तो खैर शो आपका बहुत अच्छा था माशाल्लाह, चारों दिन सुना मैंने. कल थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी लोगों की आ रही है. बहुत माशाल्लाह लोगों ने, लोगों से मतलब ये होता है ना कि आपके शो वगैरह से फिर लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है.
0: बहुत शुक्रिया.
1: मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर का पता चल जाता है. तो खैर आज का जो टॉपिक है उस पर जरा मैं रोशनी डालना चाहूंगा. टॉपिक तो नहीं है लेकिन एक तल्ख हकीकत है हमारे यहाँ जो मैं जिस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा. अच्छा आपने ज़ॉम्बीज़ मूवी देखी है?
0: हाँ मैंने कल देखी ना. ज़ॉम्बीड है वो बेसिकली. मैं पहले ज़ॉम्बीड, मैं समझ रही थी ज़ॉम्बीड है, लेकिन वो ज़ॉम्बीड मतलब ईद से है.
1: जी जी जी ज़ॉम्बीड बिल्कुल बिल्कुल ज़ॉम्बीड. अच्छा ज़ॉम्बीड मूवी में ना इसमें ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया. नहीं मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखी. मैं गया था यहाँ अलखोर में, यहाँ पे एक मॉल है वहाँ देखने के लिए गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लगी नहीं है वो.
0: अच्छा अच्छा सही सही. तो कल मैंने देखी, अच्छी है. मैं दूंगी इसका रिव्यू इंशाल्लाह भी.
1: हाँ आप बिल्कुल इसका रिव्यू आपसे सुनेंगे. तो मैं अच्छा मेरा मौजू ज़ॉम्बीज नहीं है, ठीक है. इस ज़ॉम्बीज में अच्छा इस मूवी में ना ज़ॉम्बीज को दिखाया गया है कि मतलब कैसे वो इंसानों का खून पीते हैं, ठीक है. तो मेरा मौजू ये नहीं है. मेरा मौजू है हकीकी जिंदगी के ज़ॉम्बीज.
0: अच्छा
1: ठीक है.
0: सही
1: जी
0: सही
1: बिल्कुल. कुछ लोग तो वाकई आदमखोर होते हैं दुनिया में, जो लोगों को मारते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, गरीबों पे और बेगुनाह लोगों पे. आपके सामने मिसाल आ गई होगी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो हजारों इंसानों का कातिल है इस वक्त भी. तो कुछ ऐसे आदमखोर होते हैं जो बिल्कुल हकीकी जिंदगी में लोगों का खून पीते हैं और बिल्कुल परवाह ही नहीं होता उनको. लेकिन कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज होते हैं जो बराह रास्त तो इंसानों का खून नहीं पीते, लेकिन हमारे मुआशरे के अखलाकियात का खून पीते हैं, ठीक है. बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे ज़ॉम्बीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं. बल्कि अब तो जमाना है, सोशल मीडिया का वायरल भी है ये चीजें. अच्छा आपके यहाँ ना लाहौर वगैरह में, कराची में और इस तरह की जो आप जैसे आपने बात की जानवरों के साथ खेलना और जानवरों के साथ जो हरकतें होती हैं, ठीक है वो भी गलत है, बिल्कुल उसको मैं कंडेम भी करता हूँ, बहुत नुकसान भी होता है उससे। कुछ लोग तो ये भी मतलब, एक तो ये कि जानवर छूट गया ईद वाले दिन भी, और फिर लोग उनको गोलियां तक मार देते हैं। जब जानवर पकड़े नहीं जाते तो लोग जो है फिर उनको पकड़ने के लिए लोग गोलियां भी मार देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये भी मैंने कुछ विटनेस किया है। लेकिन उसके अलावा ये तो कराची, लाहौर और आपके पंजाब और सिंध और इनके इलाकों में, कुछ मैं अपने जो हमारा स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा उस पे कुछ तल्ख हकायक बयान करना चाहूंगा। और ये मैं कुछ लोग अगर सुन रहे हैं तो ये एक हकीकत है, ये चीज कोई जुटला नहीं सकते। जो बात है वो बात है, वो करनी चाहिए, और इस चीज को हमें इसलिए बयान करते हैं ताकि अगर कोई इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व है तो प्लीज
0: जानवरों को समझ लें।
1: नहीं जी, जानवरों को तंग करना भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ ज़ॉम्बीज़, जो मैंने ज़ॉम्बी मूवी का जिक्र किया ना, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ हैं जो बाहर निकल के ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ईदेन के नाम पे, ईदेन की खुशियों के नाम पे, कि आप फैमिली के साथ देखना तो दूर की बात, आप उसको खुद भी अकेले में भी नहीं देख सकते, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होती हैं।
0: सही सही, अब मैं थोड़ा सा समझी हूँ। ठीक है,
1: अब समझ गई।
0: जी जी, अब मैं थोड़ा सा समझी।
1: अच्छा, ये मतलब आप देखें रोडों पे निकल के लाउड म्यूजिक बजाना, पूरे पूरे ग्रुप्स निकलना।
0: शुरू में मैंने यही बात की कि हमें ना मतलब थोड़ा सा जो भी हमें त्यौहार दिए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उसके साथ हमें बकायदा ये बताया गया है कि उनको किस तरह से ना मतलब एक ग्रेसफुली बड़ा मतलब हमारा अगर दीन देखा जाए ना तो इससे ज्यादा कोई पुरवक्कार दीन नहीं है माशाल्लाह। जिस तरह से मतलब आप देखें हर चीज में, इवन अगर आप हज का जिक्र करें तो उसमें जो है ना लिबास भी जो है उसमें भी कितना वक्कार, एक सफेद रंग और सब कुछ ना, तो ये एक देखने को मिलता है हमें कि बिल्कुल मतलब जो है ना कोई ऐसा कलर नहीं है, कोई ऐसा मतलब जो ना कोई इस किस्म की जहलियाना किस्म की जो है ना रिवायत नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें हम सब लोगों को डेफिनेटली, चाहे वो जिंदगी का कोई भी मामला हो, उसमें हमें एहतियात बरतनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। और ये मतलब एक बात मैं बस ये कहना चाहूंगी, हम बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे इसमें आफरीदी, क्योंकि मुझे लग रहा है आज थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियसनेस की तरफ चला गया शो। तो हम जो है मतलब एक जो चीज है ना, हम सब लोगों को अपनी आपको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वाकई मतलब उससे हमें मजा भी आ रहा है। क्योंकि जो चीज जो है ना देखिए अल्लाह ताला के कानून के दायरे में होती है, जो अल्लाह ताला ने जो जो चीजें हमसे कही हैं उसमें होती है ना, तो आपको अंदर से सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप उससे हटके कोई चीज करते हैं ना, तो वो चाहे आप किसी भी नाम पे कर रहे हो, आप ये समझ के कर रहे हो कि आप मजहब के नाम पे कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन आपके अंदर एक बेसुकूनी होती है। तो सबसे जो बड़ी गवाही है ना, वो आपका दिल अपने आप दे देता है कि आप सही पर हो या गलत पर हो। तो थोड़ा सा ये चीज जो है वो हमें समझनी चाहिए। बाकी ये कि क्या ही किया जा सकता है, मुझे मतलब मेरी अपनी सोच है कि हमारे मतलब लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं इस मामले पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो भी उनके बच्चे हैं उनके ऊपर प्रॉपरली उनके ऊपर टाइम दें, उनकी तरबियत करें। सिर्फ तालीम देना नहीं, उनको तरबियत देना, उनको ज़िंदगी में सिखाना कौन सी चीज़ कैसे है, क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या पर्पस है। अब जैसे कुर्बानी है, उसके पीछे क्यों दी जाती है, उसके पीछे पूरी स्टोरी हमें क्यों बताई गई, इसीलिए बताई गई कि हम उस चीज़ की उसकी रूह को समझें। तो ये अब अपनी औलाद तक ट्रांसफ़र करना डेफिनेटली हम खुद करेंगे, कोई और तो हमारी औलाद के लिए आएगा नहीं। तो ये मतलब थोड़ी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से बनती हैं। अब नहीं अगर घर मतलब एक हो रहा, वो माँ बाप जो है वो नहीं फरीजे पूरे कर सके हैं, जैसे बकौल साहिल अदीम एक पूरी जनरेशन गुजरी है जिन्होंने ख्याल ही नहीं किया, और मतलब लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि फिर माँ बाप की बात हो रही होती है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
1: नहीं, बिल्कुल मैं आपके बात के साथ इत्तेफाक करता हूं।

0: हूँ कुछ, मतलब देखें ईद का मतलब क्या है मुसलमानों के लिए, एक खुशी है ठीक है, मुसलमान एक तो मुसलमानों की खुशी है और दूसरा ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो मतलब हम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं, कुर्बानी करते हैं अपना, मतलब ये वाकई में सही बात है कि अगर वाकई में हमसे डिमांड ये होता कि अपने बच्चों को ज़बह करो तो फिर देखिए हम क्या करते, उस वक्त हमारा क्या हाल होता, ये थोड़ा सा इमेजिन करें, ये है तो नहीं, अल्लाह ने करम कर दिया हमारे ऊपर, लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर ये डिमांड होता कि आप अपने बच्चों को कुर्बान करें फिर क्या होता,
1: अब तकलीफ में होते
0: और दूसरा
1: तकलीफ में होते क्योंकि कोई चीज कुर्बान करें, तो अभी भी जो आपसे कुर्बानी मांगी गई है वो आपकी नफ्स की कुर्बानी मांगी गई है, आपसे जो आप जो जानवर खरीदते हो उस पर पैसों से कोई मतलब नहीं, अल्लाह ताला ने साफ साफ तौर पे कह दिया कि ना हमें गोश्त पहुंचेगा ना इसका खून पहुंचेगा, अगर कुछ पहुंचता है तो वो तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तो वो तकवे की जो ना ये एक मतलब डिमांड है कि आप जो काम कर रहे हो आप ये समझ के करो कि ये आप कुर्बानी दे रहे हो, और कुर्बानी देते हुए कोई भी जश्न नहीं मनाता, कुर्बानी देते हुए आपके दिल में एक दुख होता है, एक तकलीफ होती है, और फिर उसके बावजूद आप वो चीज़ कर रहे होते हो क्योंकि आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है।
0: बिल्कुल, और जो देखे एक एहसास भी है ना, अब सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है, अब आप गरीबों के घर जाते हैं गोश्त तकसीम करने, ये सिर्फ गोश्त की हद तक भी नहीं है, आप गोश्त जान देने जाते हैं तो वहां आपको पता चल जाता है कि यार इस घर में एक मरीज भी है जो जिनका जिनके इन लोगों के पास जिनके इलाज के पैसे नहीं है, वो महीनों से पड़ा है, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं है, तो आप उनके इलाज का बंदोबस्त कर देते हैं, उनके घर का खर्च चलाने के लिए कोई काम कर देते हैं, उनके बच्चों की तालीम के लिए कोई काम कर देते हैं, तो ये एक एहसास का नाम है, जिस तरह वो मस्जिद है ना, मस्जिद मस्जिद में नमाजी जाते हैं तो वहाँ एक इज्तिमाई अमल है, लोगों को पता चल जाता है कि फलां घर का जो एक बंदा है वो क्यों नहीं आया मस्जिद, तो पता चलता है कि वो बीमार है, उनके घर में कोई मसला है, तो ये भी एक इज्तिमाई अमल है, हम गरीबों के घर जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये चीजें देते हैं, तो हमें और चीजें पता चल जाती है, बजाय इसके कि आप जो है रोड बंद करें, मरीज अस्पताल पहुंचने से वो वही वही जो एम्बुलेंसेज में मर जाते हैं लोग और फिर कोई एहसास करने वाले। अच्छा दूसरी बात यह है कि अब क्या ही कहें बंदा, हुकूमत भी हमारे यहाँ कुछ नहीं करती इन लोगों इन ज़ॉम्बीज़ के लिए,
1: हम बहुत सीरियस हो गए असमत भाई, हम बहुत सीरियस हो गए, मैं चाह रही हूँ हम थोड़ी सी सीरियस से हटके बात करें, अभी बहुत थोड़ी लंबी गुफ्तगू ज़ुल्कनैन साहब के साथ भी हुई, तो थोड़ा सा मतलब वो करते हैं, मतलब आप
0: एक हकीकत बयान की मैंने
1: जी, वो था और एक बिल्कुल सही है,
0: एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने कहा चलो इसका फायदा उठा लें, बाकी खुशी बिल्कुल मनाए, हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ जैसे यहाँ कतर में मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने एग्जीबिशन रखे होते हैं, और उसमें जाएं आप बिल्कुल इंजॉय करें, हमारे यहाँ भी है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जैसे आम देहातों में लोग कुश्तियाँ जो खेलते हैं कबड्डी वगैरह, उसके लिए पूरा इलाके के लोग इंतजाम करते हैं, एक प्रॉपर इंतजाम होता है वहाँ पे, और उसके अलावा जो है ये रस्सा कशी और ये सारे मुकाबले होते हैं ईदेन पे ही होते हैं,
1: ठीक
0: है वो ठीक है वो आप करें, लेकिन जी
1: चले जी
0: हर
1: हम फिर मैं बताती हूँ आपको ज़ॉम्बीज़ कैसी है, ठीक है
0: चलिए बिल्कुल थैंक
1: यू थैंक यू
0: हाफिज़, और ये भी बताएं कि कब तक लगेगी यहाँ,
1: ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि कब तक लगने वाली, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बताऊंगी, ठीक है चले जी
0: थैंक यू
1: वालेकुम सलाम। अच्छा जी ये कॉल मैंने ले तो ली है लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं, तो मेरा ये है कि आप थोड़ी देर के बाद ही कॉल कर लें तो ज्यादा बेहतर है, हम थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
0: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं। ईद के रंग हजार हैं, मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ। इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए। पेश है खास शो घर घर ईद। आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुनाए। हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए। तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे।

0: मॉर्निंग टू वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 107. मैं एक दफा फिर आप लोगों के साथ आ गई हूँ और हमने दो चीजें करनी है अभी. एक तो ये कि नाश्ते के हवाले से बात करनी है, ब्रेकफास्ट टेबल जो हमारा सेगमेंट होता है, तो उसमें आज मैं आपको जो मशवरा देने वाली हूँ, हमने आपको बनवा दिया इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी, हमने आपसे बनवा लिया देसी ब्रेकफास्ट भी, हमने आपको अरेबिक नाश्ता भी करवा दिया. अब आज जो है ना वो बहुत ही कुछ देसी है, मतलब बहुत देसी ये वाला कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मतलब ये एक रिवायत है भाई कि अगर दावतें वगैरह होती हैं और रात की रोटी आपकी बच जाती है, तो हमने तो मतलब ये चीज़ देखी है शादियों वादियों में भी कि वो रोटियां तल के जो है ना अगले दिन खाई जा रही होती हैं, और साथ में अगर आपका कोई निहारी का सालन कोई इस तरह की जो चीज़ है वो बच गई है तो वो भी मतलब जो है ना साथ में आप नाश्ता कर सकते हैं. तो आज का मतलब जो मशवरा है वो बिल्कुल देसी वाला है कि अगर आपके घर पर दावत थी और आपके घर पर बच गई हैं रोटियां शोटियां तो आप वो तल के खा सकते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर रेस्टोरेंट से भी ना कुछ मंगवाओ, कुछ जगहों के बड़े अच्छे वाले नान आते हैं, तो हम लोग सुबह में उसको इसी तरह से फ्राई करके चाय से खाना बड़ा मजा आता है. साथ में अगर आपके कोई सालन वालन है कुछ है तो वो भी आप मतलब कभी कभी सालन, वैसे खैर हम लोग प्रेफर नहीं करते, हम थोड़ा सा वो वाला मतलब अंडे वाला ही नाश्ते को प्रेफर करते हैं या कुछ इस तरह का हो जो नाश्ता नाश्ता हो. लेकिन ये कि कभी कभी ऐसे ही कोई पाए हैं निहारी है अगर मतलब जो लोग खा सकते हैं, हम नहीं खाते मैं इसलिए बता रही हूँ, हम सिर्फ रोटी तल के खाते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन लोग खाते हैं तो आप लोग कोई रात का बचा हुआ कुछ है पाए निहारी कीमा शीमा तो उसका भी आप मतलब वो नाश्ता कर सकते हैं, दावत से बचा हुआ नाश्ता. ठीक है, चले दी. और फिर उसके साथ अब बात कर लेते हैं हम मूवी के हवाले से जो कल ही मैंने देखी है, ज़ॉम्बी ईद. अच्छा, मैं उसको ज़ॉम्बी ईद समझ रही थी लेकिन वो ज़ॉम्बी ईद मतलब वो बेसिकली ईद के हवाले से है, ज़ॉम्बी प्लस ईद तो वो है. अच्छा खैर, मैंने देखी और काफ़ी अच्छी लगी मुझे, एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रही थी क्योंकि वही वाली बात जो लोग कह रहे थे कि हॉलीवुड से मतलब कुछ ना, हॉलीवुड की तनहा की फिल्म है, तो मैं सोच रही थी क्या ही बना लेंगे, मतलब वही वाली एक छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी तो इतना क्या ही बना लेंगे, लेकिन नो डाउट मतलब ब्रिलियंट एफर्ट ज़बरदस्त, और कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटकर है, वो एक मतलब ट्रेडिशनल जो एक लव स्टोरी होती है उस तरह का मामला नहीं है, लव एंगल भी उसमें रखा गया है, लेकिन जो दिखाया, मैं पूरी स्टोरी अगर बता दूँ तो वो हो जाएगा मतलब ना सस्पेंस आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा. तो आप लोग जाके देखें, आप टिकट लेंगे जितने का भी तो वो आपका पूरा वसूल हो जाएगा. एंटरटेनमेंट वाली मूवी है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी लगी मुझे. और बाकी जो दो आई हुई है वो मैंने देखी नहीं, फिर मैंने उसके बाद ही कल मैं बैठ के ट्रेलर देख रही थी, क्या पता वो भी कुछ बेहतर हो, लेकिन मुझे इतनी कोई इंस्पायरिंग लगी नहीं. तो जो चीज़ अच्छी होती है मैं वही आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि वो वाकई अच्छी है. अभी पिछली दफ़ा उमरो यार देखी थी हमने, तो उमरो यार में थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह का मसला था, लेकिन खैर वही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब किसी भी चीज़ को ना सीखते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंडस्ट्री बेहतर होती है. और कल वाली में मुझे जो ज़ॉम्बीज़ उन्होंने दिखाए थे, तो जो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है ना, प्रोडक्शन काफ़ी मतलब अच्छा काम था, आप कह सकते हो बहुत बेहतर, बहुत इम्प्रूव्ड, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, और जो मूवी को मूवी लगना चाहिए, जो एक हमेशा पाकिस्तानी ऑडियंस का ये होता है कि हमारी मूवीज़ जो है ना वो भी ड्रामा लगती हैं, तो ये आपको नहीं लगेगा बिल्कुल भी ऐसा, आपको बिल्कुल भी ड्रामा वाली फील नहीं आएगी, आपको लगेगा कि हाँ मूवी ही देख कर आए हैं. तो ये है कि आप अगर मूवी देखना चाहते हैं प्रॉपर एक मूवी अच्छी मज़ेदार, तो आपको ज़बरदस्त लगेगी, मज़ा आएगा देखने में, और आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से. अगर लगी हुई है चेक कर लें, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर लगी हुई है तो ज़रूर जाइए और ज़रूर जाके ये मूवी इंजॉय करें. अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, मैं चाहूँगी बिल्कुल जो है ना सीरियस टॉक्स ना हो, क्योंकि ईद का चौथा दिन है भाई, हम ईद मना रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल रखते हुए देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, मिस अली क्या हाल चाल है? ईद मुबारक.
1: आपको भी बहुत बहुत, और आपके तमाम पूरी टीम को, FM 107 की पूरी टीम को मिसल की जानिब से बहुत बहुत ईद का चौथा दिन मुबारक हो.
0: आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो.
1: और क्या हाल चाल है आपके? प्रोग्राम अच्छा. अभी मैं थोड़ा सुना है मैंने, ऐसे आँख खुल गई थी तो मैंने लगाया हेडसेट और मैं सुन रही हूँ.
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छा गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है.
1: हाँ जी, बहुत अच्छा. हाँ हाँ, काफी एनर्जेटिक एंड एफर्टलेस इसको कहा जाए ना, इतना अंदाजा हो गया. अच्छा था, बहुत अच्छा था. और आप सुनाए?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सही. और आप बताएं क्या किया ईद पे आपने?
1: बस बिजी रहे,
0: बिजी रहे,
1: काम में लगे रहे.
0: सही सही.
1: और क्या है, बस बच्चे, ईद होती है बच्चों की, बच्चों की मनपसंद चीजें, बच्चों की फेवरेट स्पर जो होते हैं जहाँ जाना है. मैं कल पहली बार बच्चों के साथ निकल गई हूँ और मैं बहुत थक गई. अच्छा. मैं तो चल नहीं सकती, मुझे चलना पड़ा. कटारा बच्चे कह रहे थे हमने जाना है. बाजी की बहू ने सारा प्लान किया और अच्छा खासा, यानी कि हमें चलाया, मुझे और बाजी को, हमसे चला नहीं जाना.
0: चले गुड, लेकिन अच्छा हुआ निकली आप.
1: जी
0: कह रही हूँ अच्छा हुआ निकली आप.
1: हाँ मैं मतलब फर्स्ट टाइम.
0: अच्छा
1: अच्छा लगा. मैं नहीं निकलती रश में ज्यादा. मैं चलने में भी थोड़ा होता है मुझे मसला, तो मैं फिर मैं नहीं चल. मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कहीं बैठ जाती थी. मैं कहती थी ये जो बगियां चल रही हैं इनमें से किसी को रोको. लेकिन वो ऐसी है, वो रुकती ही नहीं. आज आप लोगों को भी सजा है, आप भी चलो.
0: सही है.
1: अच्छा था, बहुत अच्छा था. थोड़ा फायर वर्क गाड़ी में ही देखते रहे चलते चलते, और फिर वो जो डांसिंग फाउंटेन वो अच्छे लगे मुझे. और फिर अर्दा जो यहाँ का लोकल
0: लोकल डांस
1: वो देखा. अच्छे के बाद मैंने देखे.
0: अच्छा
1: लगा मुझे. बच्चे तो साथ थे, वो तो वो बच्चों की आदत होती है मोबाइल पकड़े. मैंने कहा वैसे ही देखो. कहते नहीं हम घर में बैठ के देखेंगे. फिर हम शेयर करेंगे अपने कजन्स को पाकिस्तान में, अपने दोस्तों को. तो बस मैंने कहा चले. मैं आपसे मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आऊंगी जरूर, और अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली, मेरी आंख खुली थी. और प्रोग्राम बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और अल्लाह और हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती दे.
0: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: इसी तरह अच्छी अच्छी बातें करती रहें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती रहें.
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे इंशाल्लाह. बहुत अच्छा लगा, बहुत ख्याल रखिएगा, ईद मुबारक. एक कॉलर हमारे पास और आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. ठीक है,
1: चले.
0: थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. आपका पुराना कॉलर भाई, देखो बीच में छोड़ के आपका कॉल असल में कट गया.
0: अच्छा जी, रईस भाई कैसे हैं?
2: रईस बात कर रहा हूँ. नहीं वो सब सीरियस वो सब बातें छोड़े, बस मैंने आपसे ये पूछना था कि आप कराची की बिरयानी जो है उसमें आलू भी डालते हैं और बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह. मैंने रात को एक भाई की सब ने खिलाया मुझे और बोला ये कराची की बिरयानी है. मतलब उस स्पेशल होटल में हम लोगों का प्रोग्राम था पार्टी का, तो वहाँ पे गए हम लोग. तो मैं देखा पहले उसमें आलू के मतलब गोल गोल उसमें पीस पड़े हुए थे, तो मैं सोचा यार चिकन का और उसका मटन का पीस है. तो मैं जब छोड़ रहा हूँ तो यार एकदम नरम सा ये करके. तो बाद में उसने पूछा कि भाई कैसा लगा, तो मैं बोला यार अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा. तो बोला ये कराची स्टाइल का बिरयानी बना दो. मैं बोला यार चलो कम से कम यार हर स्टाइल का खाना चाहिए, चलो ये भी मौका मिला माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा.
0: हाँ हम लोग आलू पसंद करते हैं. हम लोग, मेरा ख्याल है वैसे भी कराची वाले आलू बहुत खाते
2: हैं. नहीं खाते हैं हम लोग किधर, हम लोग के इलाके में भी आलू बहुत ज्यादा होता है और हम लोग के खेतों में भी होता है. लेकिन मतलब बिरयानी बिरयानी में नहीं यूज किए थे, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन था बनाया था उसने. जो जहाँ पे रात में हम लोग को खाना खाए, कुछ लोग मतलब सात आठ लोग थे, तो समझ लो कि हम लोग ने बुक किया था. बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बनाया था. थोड़ा स्पाइसी कम था मतलब नमक भी, मैं बोला यार बेहतरीन था यार, क्योंकि बहुत से लोगों को.
0: हम कराची वाले भाई बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो ये ओरिजिनल नहीं है फिर.
2: नहीं,
0: हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं.
2: बिल्कुल हम लोग भी खाते हैं. हम लोग को जब तक थोड़ा सा तीखापन अगर महसूस ना हुआ दाम मतलब, तो हरी मिर्ची ऊपर से काट लेते हैं.
0: एग्जैक्टली, यही है हमारा भी हाल. हमारे वो कबीर है ना, तो वो दिल्ली का है, तो वो उसका भी यही है. वो मतलब जो है ना, मैंने
2: हम लोग ऐसा लो, अक्सर होटलों में जाते हैं जब मजा नहीं आता तो बोलते यार हाँ, मतलब हरी मिर्ची दे दो. तो कोई कोई कभी कभी हम बोलते यार तो क्या तुमने रखा है इतने बड़े होटल में इतना ये करके, तुम्हारे पास हरी मिर्ची नहीं है. अगर ऊपर से थोड़ा सा तीखापन काट के खाए मजा नहीं, तो फिर वो खाने का मजा नहीं, समझ अधूरा रह जाता है. तो था थोड़ा नॉर्मल था, तो उसने मतलब मैंने ज्यादा ये नहीं किया कि मतलब स्पाइसी नहीं था, हल्का था. लेकिन अब बेचारा होटल वो चला रहा, अभी नया नया होटल खोला है, तो हम लोगों ने वहीं पे प्रोग्राम रखा था खाने का. तो अच्छा लगा, मैं बोला उसका मतलब ये किया कि बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह. भाई किसी का थोड़ी छोटी बातों को वो तो बाद में भी हो जाएगा बात, अब चार लोगों के बीच में थोड़ा सा दिलाजारी नहीं करना चाहिए. भला अच्छा टेस्ट बनाया था माशाल्लाह उसने,
0: जबरदस्त,
2: बहुत अच्छा लगा.
0: चले जी गुड, जबरदस्त, अच्छा किया आपने, एंजॉय की.
2: तो थोड़ा सा ये करना चाहिए, हर हर जगह का हर माहौल का एक ही उसमें नहीं रहना चाहिए. तो हमारे साथ में हाला असल में पहले मैं जब सऊदी में था तो हमारे साथ में पाकिस्तान के लोगों का ज्यादा मतलब बहुत दिनों तक समझ लो हम लोग साथ में थे, तो बहुत करीब हम लोगों का समझ लो कि हमारा कई लोगों से, असल में हम लोग ड्राइविंग करते हैं ना तो उससे ज्यादा लोगों का ये करीब मिल जाता है, अरबी हो या ओ हो, तो ऐसे लोगों से हम लोग का ज्यादा इतना पड़ता है, साथ में रहने का मौका मिलता है कई किस्म के लोगों से।
0: सही सही है, सुनते चलें गुड। और रईस भाई हमारे भी जाने का वक्त हो गया तकरीबन, तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रई जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स थे, और आखिर में मैं फिर आप लोगों को बोलूंगी कि अगर देख लें आप लोगों के सिनेमा में करीबी कहीं पे भी लगी हुई है तो आप लोगों ने जॉम्बी जरूर देखनी है, लिटरली बहुत मजा आएगा। अभी मैं बल्कि एक रिव्यू भी नजर से गुजरा अभी तो उसमें भी लिखा हुआ है कि बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो लिटरली मतलब बहुत मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे तो जरूर, अगर देख सकते हैं तो जरूर देखें। मेरा ख्याल है आज तो लगी हुई होगी, और मुझे लग रहा है शुरू में शोज कुछ कम थे, अब शोज बढ़ गए हैं क्योंकि मतलब लोग पसंद कर रहे हैं ना, तो शोज बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी इस दफ़ा कोई हिंदी, जैसे कल भी मैं बता रही थी कि कोई हिंदी उर्दू फिल्म नहीं लगी हुई है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त एक हो जाएगा मामला कि अगर आप जाएँ और जाके देखें तो लिटरली इंजॉय करेंगे, पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। चले जी इसी साथ, आज ईद का लास्ट डे था, आप सब लोगों को एक दफा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक, अब आपसे मुलाकात होती है कल शाम के प्रोग्राम में, कल हमारा लास्ट वाला शो होगा डियर फैमिली का, और उसके बाद फिर हमारी आपसे मुलाकात होने वाली है सुबह सवेरे 6 बजे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।

0: टेक्सास ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों के दूसरी जानब टेक्सास ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो ईरान के साथ किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका ने नाइजर की मुसल्लह अफवाद को फौजी साजो सामान की एक खेप फराहम की है जिसे दोनों ममालिक के दरमियान बतदरीज बहाल होने वाले तआवुन का हिस्सा करार दिया जा रहा है। नियामी में अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक नाइजर की फौज को तकरीबन $23 लाख मालियत के फौजी सामान पर मुश्तमिल 9 कंटेनर्स फराहम किए गए हैं। इस सामान में फौजी वर्दियाँ, हिफाजती आलात, तिब्बी इमदादी सामान और रेस्क्यू से मुतालिक लवाजमात शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जुलाई 2023 की फौजी बगावत के बाद अमरीका ने नाइजर के साथ अपनी बेशतर तरक्याती इमदाद और फौजी तआवुन मुअत्तल कर दिया था। बाद हज़ा नाइजर की फौजी क़ियादत ने अमरीकी अफवाज से मुल्क छोड़ने का मुतालबा किया जिसके नतीजे में अमरीकी फ़ौज ने 2024 के दौरान अपना इनखिला मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह नाइजर की हुकूमत ने फ्रांसीसी अफवाज के इनखिला का भी मुतालबा किया था। और लीजिए सामीन, खबरों के अख्तिताम से कबल एक मरतबा फिर समात कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ममलकत सऊदी अरब के फरमारवा खादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और सऊदी वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद को साल 1447 हिजरी के हज सीज़न के कामयाब इनेकाद पर तहनियती पैगाम इरसाल किए हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ममलकत बराए उमूर दिफा और जमहूरिया सिंगापुर में रियासत कतर के सफ़ीर ने शंग्रीला डायलॉग 2026 के 23वीं एडिशन के अफ्तिताही वज़ारती इस्तक़बालिया तकरीब में शिरकत की है। अमरीकी फ़ौज ने ऐलान किया है कि मशरिक़ बहरुल काहिल में कश्ती पर किए गए हमले में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। सामीन, आज का पहला मुफसल नशे अपने अख्ताम को पहुँचता है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन मोहम्मद हसन असूदानी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान का आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ईद मुबारक आप सभी को. मैं हूँ नाज़िया फ्रॉम 107 से एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज. दोस्तों, कुर्बानी हो गई, गोश्त आपने अपने रिलेटिव्स को भी बांट दिया, अपने लिए भी रख लिया, गरीबों को भी बांट दिया, और अब आ जाता है वो काम जो सबसे टीडियस है. मेरा मतलब है कुकिंग का. अक्सर ये समझा जाता है कि कुकिंग की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी फीमेल्स की है, लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर की जो फीमेल्स हैं वो लगातार बांटने, यानी कुर्बानी के एक तो पैकेट्स बनाने, फिर बांटने में भी साथ होती हैं, और बहुत सारे काम ऐसे भी कर रही होती हैं जो पैरेलली हमें नजर नहीं आते. ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईद उल अदा के इस खास मौके पर हम सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बकायदा रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन और क्लियर कर दें. देखिए, ईद उल अदा एक ऐसा मुबारक मौका है जो सिर्फ इबादत का मौका नहीं है बल्कि फैमिली बॉन्डिंग और टीम वर्क का भी मौका है. ये वो वक्त होता है जब घर के सब मेंबर्स मिलकर साथ में काम करें, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं कि किसी एक पर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े. इस तरह ईद सिर्फ एक एक शख्स की जो है वो ईद ना रहे, सबकी ईद हो. ईद एक दिन की सेलिब्रेशन भी नहीं है, कुर्बानी एक दो तीन चार दिनों तक चलती है. ऐसे में ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि कौन सा घर का ऐसा मेंबर है जिसपे सबसे ज्यादा काम का लोड है. क्या हम उसके इस लोड को कम कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो एहसास है? देखिए, ईद की तैयारियां आम तौर पर कुछ घरों में तो पहले से शुरू हो जाती हैं, जो कि होनी भी चाहिए. कुछ प्लानिंग करना, कुछ ग्रॉसरी कर ली, इस तरह से कुछ लोग जो है अपने घर पे इनवाइट करना पसंद करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो बड़ी बड़ी दावतों के अहतमाम किए जाते हैं. यहाँ पर एक चीज ये है कि कुछ लोग तो बाहर से कुक को बुला लेते हैं कि चलिए आप बना दीजिए, सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलके खा लेंगे. लेकिन कुछ जगह या कुछ घरों में ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फीमेल हैं, उन्हीं को बनाना है. अब उन पर जो है, क्या उन पर हम सेलिब्रेशंस जो है अपनी खुशियां जो है वो इस तरह से डाल रहे हैं कि उनकी अपनी खुशी तबाह हो रही है. देखिए, मुझे लगता है कि घर का हर शख्स ये हक रखता है कि वो भी आपकी तरह ईद की सेलिब्रेशंस या ईद को उसी तरह से एंजॉय करे जैसे आप करना चाहते हैं. घूमना फिरना, इंटरेक्ट करना, तैयार होना, खाना एंजॉय करना. क्या आप इस मामले में सबका ख्याल रखते हैं? क्या हर घर के हर एक शख्स को एक प्रॉपर रोल दिया जाता है? घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा होता है? अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी ना किसी को लेनी होगी, बच्चा हो बड़ा हो, हर एक के पास कोई ना कोई छोटा मोटा काम होना ही चाहिए. देखिए, मर्दों का रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का इंतजाम करना, प्रॉपर जगह का इंतखाब करना, सफाई, सेफ्टी, इन सारी चीजों का ख्याल ये ज्यादातर मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं. साथ ही वो घर के दूसरे कामों में भी हेल्प करते हैं, जैसे सामान लाना है, कई बार है कि गेस्ट के लिए अरेंजमेंट्स करना है या बच्चों का ख्याल करना है. लेकिन औरतों का रोल भी ईद पर देखा जाए तो ट्रेडिशनली कुकिंग और प्रिपरेशन से ही जुड़ा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अकेले सब कुछ करना चाहिए. आज के दौर में फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो टीम वर्क पर होना चाहिए, जहाँ घर के सब मेंबर्स किचन में भी हेल्प कराएं, कोई चॉपिंग करे, कोई टेबल सेट करे, कोई सर्विंग करे. इस तरह से ना सिर्फ काम आसान हो जाता है बल्कि फैमिली टाइम भी इंजॉय किया जाता है, फैमिली बॉन्ड भी मजबूत होता है. ईद का दिन हम सबके लिए खुशी मनाने का दिन है. किसी का काम हो सकता है कि वो गेस्ट को वेलकम कर ले, किसी का काम है कि भाई वो चाय की जिम्मेदारी ले ले, किसी का काम ये भी हो सकता है कि चलो आप बड़े हैं घर के, बुजुर्ग हैं, तो चलो बच्चों को आप हैंडल कर लो या उन्हें एंगेज कर लो. जब हर शख्स अपना रोल प्ले करता है ना,

तब एक पॉजिटिव और एक खुशनुमा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है. दोस्तों, ईद उल अधा एक इम्पॉर्टेंट पहलू हमें जो सिखाता है वो है शेयरिंग और केयरिंग का. फैमिली मिलकर प्लान करे कि किन लोगों को कुर्बानी का हिस्सा देना है, किन लोगों को कुर्बानी के वक्त मौजूद रहना है, किन लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली कुकिंग के लिए तैयार रहना है, कैसे नेबर्स या जरूरतमंद लोगों तक ये खुशियां पहुंचानी है. जब सब घर के एक एक मेंबर का जो रोल है वो डिफाइन हो जाएगा, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक, तो किसी भी तरह का कोई भी इम्बैलेंस घर में क्रिएट नहीं होगा, ना ही घर में क्योटिक सिचुएशन आएगी. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ईद फैमिली को एक दूसरे के करीब लाती है. बिजी रूटीन में भी हम अक्सर एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ईद हमें याद दिलाती है कि फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. अगर घर का हर मेंबर मिलकर काम करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे, हेल्प करे, तो ईद सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं रहेगी, बल्कि ये खूबसूरत मेमोरी बन जाएगी जो दिल में हमेशा के लिए रह जाती है. आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि ईद उल अधा हमें सिखाती है कि फैमिली सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एहसास का नाम है, शेयरिंग और केयरिंग का नाम है, टीम वर्क और सपोर्ट का नाम है. जब घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करता है, साथ में सब काम करते हैं, तो ना सिर्फ ये काम जो है वो हल्का होता है, बल्कि किसी का बोझ हम हल्का कर देते हैं और किसी की खुशियां हम डबल कर देते हैं. ईद पर अगर औरत अकेली किचन में बिजी रहे और बाकी लोग सिर्फ एंजॉय करें, तो ये ईद का असल मकसद, असल पैगाम नहीं है. असल ईद तब होती है जब सब साथ हो, सब काम शेयर करें और सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं. दोस्तों, ईद उल अधा का पैगाम ये है कि मिलजुल कर काम करो, जियो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ और अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करो. और इस तरह से ही जब सब खुश होते हैं तो असल ईद की असल सेलिब्रेशन जो है वो हो पाती है. क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि ईद कुर्बानी का नाम नहीं है. अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, उनकी मदद करना और एक स्ट्रॉन्ग और लविंग रिश्ता बनाना भी है. क्योंकि असली ईद वही होती है जहां फैमिली एक साथ दिल से होती है. दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि मैं आपसे कहूँ दिल से देसी, मेरा मतलब है इजाजत लूँ आपसे और आपकी हमारी मुलाकात होगी किसी और सेगमेंट में, किसी और टॉपिक पर. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ईद के चौथे दिन भी अपनी सेलिब्रेशंस को जारी रखिए और हमें सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। श्रीलंका और दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अरविंदा डी सिल्वा, यहाँ दोस्तों मशहूर और लेजेंडरी बैट्समैन रहे हैं अरविंदा डी सिल्वा, जिन्होंने अपनी क्लास और मैच विनिंग परफॉर्मेंस से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। अरविंदा डी सिल्वा को श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे डिपेंडेबल और स्टाइलिश बैट्समैन माना जाता है, जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालने की सलाहियत रखते थे। अरविंदा डी सिल्वा वॉज अ क्लासी बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दैट। अगर एग्रेशन की बात करें, हम विवियन रिचर्ड्स की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत विवियन रिचर्ड्स के ही अगर रोल मॉडल अगर देखें, विवियन रिचर्ड्स को अगर रोल मॉडल उन्होंने बनाया था, तो उसी तरह हार्ड हिटिंग स्ट्रोक्स वॉज हिज कैपेबिलिटी टू हिट द बॉलर्स ऑल अराउंड द क्रिकेट फील्ड। दोस्तों अरविंदा डी सिल्वा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करियर 1984 में शुरू किया और जल्द ही मिडिल ऑर्डर का एक अहम हिस्सा बन गए। उनकी बैटिंग टेक्निक, टाइमिंग और कंपोजर उन्हें दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में शुमार करता है। टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दी और कई यादगार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतेह दिलाई। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप अरविंदा डी सिल्वा के करियर का गोल्डन चैप्टर था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी ने श्रीलंका को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जितवाने में बुनियादी किरदार अदा किया और इस परफॉर्मेंस ने उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर सुपरस्टार बना दिया। बैटिंग के अलावा अरविंदा डी सिल्वा एक यूजफुल ऑफ स्पिनर बॉलर और सेफ फील्डर भी थे। फाइनली जब वो रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कोच और सेलेक्टर के तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट की खिदमत जारी रखी। दोस्तों अरविंदा डी सिल्वा हमेशा श्रीलंकन क्रिकेट के एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं ईद सुना और आज हम आपको बताएंगे एक और अहम सुन्नत के बारे में और वो है ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ खाना, खास तौर पे खजूर। इस्लाम में ईद उल फितर के दिन एक खास अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये कि ईद की नमाज से पहले कुछ खाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज के लिए जाने से पहले और टंबर में खजूरें खाया करते थे। इस अमल से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और इबादत को एक मुनज्जम अंदाज पे अदा करें। रमजान में मुसलमान पूरा दिन रोजा रखते हैं लेकिन ईद के दिन रोजा नहीं होता, इसलिए ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ खाना इस बात की अलामत है कि रोजे का सिलसिला खत्म हो गया और अब खुशी और इनाम का दिन शुरू हो गया। ये एक छोटा सा अमल है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को पसंद फरमाते थे। खजूर एक सादा लेकिन बाबरकत ग़िज़ा है। ईद के दिन खजूर खाने से सुन्नत पर अमल होता है, जिस्म को हल्की तवानाई मिलती है और दिन का आगाज बाबरकत अंदाज में होता है। ताक अदद यानी 1-3-5 खजूरें खाना भी सुन्नत है। इस्लाम में हर चीज में नज़म हमें मिलता है। ईद के दिन नमाज से पहले खाना इस बात को जाहिर करता है कि हर इबादत का एक खास तरीका है और हर अमल अपनी जगह पे होना चाहिए। यह हमें जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। आज की किस्त में हमने ये जाना कि ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ खाना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें खाते थे और ये अमल खुशी, शुक्र और नज़्म की अलामत है। इस्लाम हर छोटे बड़े अमल में बड़ी हिकमतें सिखाता है। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं सुबह के 10:01, यानी वक्त हो गया है।
4: अरे भाई,
3: वक्त हो गया है।
0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम अहलन व सहलन, खुश आमदीद। और भैया, आज भी हम ईद मुबारक तो कहेंगे, वो इसलिए क्योंकि चौथा दिन है और आज भी हम आदर खिदमत है, मैं और अमिता आपके लिए लेकर आए हैं कूपन, गिफ्ट वाउचर रेस्टोरेंट के। कौन सा वाला अमिता?
3: गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के दो गिफ्ट वाउचर आज आप जीत सकते हैं। तो भाई देखो, आज ईद का आखिरी दिन है, ईद की मेमोरीज तो हमने इन चारों दिन में बनाई है, मतलब आज भी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, तो वो मेमोरीज की बात होंगी और हम अपनी मेमोरीज में चार चांद लगाएंगे जब आप यहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड अगर आप लकी हुए तो आप जीत भी जाएंगे। सो व्हाई नॉट, आप हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107, या फिर आप कॉल करें 4434377 पर।
4: बिल्कुल भाई, हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसीलिए हम शुरुआत से ही आज ये अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं कि आज भी आप लोगों के लिए कूपन है। कभी आप समझे कि नहीं भाई, आज का दिन हुआ पूरा और ईद हो गई पूरी। हमारे साथ हमारे साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद सुडानी भी मौजूद हैं और माशाल्लाह से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, ईद की छुट्टियों में भी वो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहम्मद सुडानी ने बहुत साथ दिया, तीनों दिन हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत शुक्रिया उनका। उनका नाम भी लेना जरूरी, जो पर्दे के पीछे हैं, सब हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनाने वाले, हमारी मीडिया की टीम, हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले सभी का इसके अंदर भाग है, जो मिलकर आपका दिन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि आपका एंटरटेनमेंट अच्छा हो, आपका दिन अच्छा गुजर जाए। भाई अपना अपना मूड होता है अमिता, कोई थक जाता है, कोई नाराज होता है, कोई गुस्से में होता है, कोई ज्यादा खुश होता है, तो अपने अपने मूड होते हैं, बट उनके साथ अपने आप को घुल मिल लेना इज इम्पोर्टेंट,
3: मिला लेना। और अभी मैं देखूं सर्वर, जब आप मोहम्मद सुडानी का नाम ले रहे थे, दवे वो इतना एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनको देख के। एंड यही है, हम एक दूसरे को ना मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। और जब वो कहते हैं ना कि आप घर से एकदम थोड़ी सी हल्की सी नींद में, हल्की सी थकान में आते, लेकिन जैसे ही आप एंट्री मारते और आपका जो कलीग है, जो आपकी टीम है, वो आपको बोलती है और कैसे हो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, तो वो ओहो हो, मतलब ऐसा लगता है कि वाह, मतलब सही जगह, इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं
4: क्या
3: सकती।
4: क्या बात है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही दिन शुरू होता होगा।
3: Absolutely.
4: और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से आपके दिन जो है खूबसूरत होते चले जाए, बनते चले जाए। और चलिए भाई, तो अब प्रोग्राम का कर देते हैं बाकायदा आगाज। आपको बताई दिया है अमिता ना कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने क्या करना है। दो तरीके हैं, आपको टेलीफोन पे कॉल करके भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, जहां पर हम आपसे एक आसान सा सवाल पूछेंगे, और उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप पे जवाब आएंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे भी जवाब दीजिएगा वही सवाल सुन के। तो वो जो नाम होंगे और वो सारे लोग जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनको भी हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही भेज रहे हैं तो भी आप शामिल होंगे लिस्ट में, कॉल कर रहे हैं तो भी आप लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। बट कॉल जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ जुड़ने के लिए बेताब हैं भाई, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कल से मैं और अमिता, कैसे जल्द से जल्द पहुंचे और ये जो गिफ्ट ईदी जो हमारे पास रह गई है ये सब तक बांट दें पूरे तरीके से। तो चलिए भाई, करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। और यहाँ पर पहला गाना आप लोगों के लिए, और वो इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है, आज की पार्टी अमिता की तरफ से
3: बहुत चुन के लगाया गया है।

0: हाँ जी है लीजिए साहब आ गए अमिता और सरवर वापस आपके पास क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कोई गया है
1: जुड़ आइए इनसे करें बात।
0: उन्होंने कहा इनको वेट ना कराएं और गाने से पहले इनसे बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
1: क्या बात है, कौन जुड़ गया हमारे साथ भाई?
2: हाँ मेरा नाम समी परवेज है।
1: समी परवेज भाई कैसे है आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गुड और सबाहल खैर गुड मॉर्निंग
0: सबाहल नूर गुड मॉर्निंग सबाहल फुल सबाहल यास्मीन। परवेज भाई कैसी गुजर रही है ईद? ये नहीं कहूंगा कि कैसी गुजरी ईद क्योंकि हम अभी तक ईद जो है एक साथ गुजार रहे हैं और चौथा दिन भी ऑफिशियली अब ईद का ही हो गया मेरे हिसाब से, तो सही कह रहा हूँ?
2: हाँ सर करेक्ट करेक्ट। आज भी हमारे एक दोस्त की कुर्बानी है, उनकी वहाँ जाना है आज इंशाल्लाह।
0: क्या बात
1: ये सुनने में।
2: बुकिंग के तो लास्ट डे उनको मिली बुकिंग, मतलब डेट रहती है ना डेट वाइज। हाँ तो आज डेट है,
1: आज कुर्बानी की डेट है। ये अगर आपने पूरा जिक्र नहीं किया होता ना डिटेल में तो ऐसा सुनाई दे रहा था कि आज मेरे दोस्त की कुर्बानी।
0: अरे अल्लाह रहम करे
1: कि आज मैं उनसे दावत लेने वाला हूँ। नहीं हल्के हल्के में, मजाक मजाक में।
0: परवेज भाई उनका नाम क्या है? साजिद भाई की चापे जो है बड़ी, मेरा मतलब ये है कि जो कुर्बानी करके चापे जो निकलेंगी वो बहुत बहुत अल्लाह कबूल भी फरमाए उनकी कुर्बानी को, मजाक अपार्ट, और हम सब की कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो भाई परवेज भाई से करते हैं शुरुआत। अमिता क्या है आज पिटारे में
1: है बड़ी मजे की चीज, लेकिन परवेज भाई से पहले पूछ लेते हैं सरवर की ये जो ईद की शुरुआत हुई और हमेशा जब फेस्टिविटीज आती है तो कुछ ना कुछ मेमोरीज के जाती है, तो कोई एक खास मेमोरी जो आपको बड़ी अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ भाई मतलब एक नई यादगार चीज बन गई, बड़ा अच्छा लगा, कोई चीज आप जो शेयर करना चाहें?
2: मतलब ये ईद तो एक्सपेक्ट नहीं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पीसफुली होंगी क्योंकि कुछ हालात ऐसे गुजर रहे थे
1: जी।
2: तो मतलब मुझे थैंकफुल रहना चाहिए डिजाइनर अमीर ऑफ द कतर एंड ऑल, मतलब इसे जाम पोस्ट है कि ये पीस वेरी हैप्पी, मतलब हम लोगों के लिए बहुत अच्छी की है इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड थिंग आई फील।
1: रियली नाइस। और ये जो ग्रेटफुलनेस है ना, यही हमें अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा पीसफुल बनाएगी और भी ज़्यादा ना स्मूथ लाइफ हम जी सकेंगे। सो यस परवेज जी, वेरी ब्यूटिफुली आपने बताया। और अब इसी बात के साथ चलें, अब हम छोटे मोटे रिडल्स लेकर आए हैं जो कि ईद से ही रिलेटेड है, और अब आपके साथ शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, स्पाइसी खाने के बाद

0: देन डेफिनेटली गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 का 3 रियाल का गिफ्ट वाउचर आपका हो सकता है. सो इसके लिए दुआ करें. बिल्कुल परवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अल्लाह हाफिज.
1: ओके परवेज भाई, अल्लाह हाफिज, बाय, ईद मुबारक. ओके परवेज भाई के बाद एक और चैंपियन.
0: हाँ आइए जरा बात करें इनसे, कौन जुड़ा हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशाल्लाह
1: माशाल्लाह, अहलन व सहलन. कौन है हमारे साथ?
0: करीम भाई.
1: सुनील शेट्टी, बॉर्डर में तो आप शहीद हो गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अल्लाह ताला आपको सेहत दे यार. मैं तो मजाक कर रहा था, सुनील शेट्टी की बात कर रहा था. ये तो करीम शाह हमारे साथ है भाई.
0: हाँ करीम भाई,
2: भाई अमिता बहन आप कैसे हो?
0: हम लोग बहुत मजे में, बहुत अच्छे हैं. आप कैसे ये बताएं?
2: बहुत बढ़िया. मैं मुझसे
0: हाँ
2: वही बात होगी जहाँ कहाँ तक पूछोगे कहाँ तक सुनाऊं.
0: अरे
2: सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है. जो बंदा कतर में रहकर भी कहेंगे जी ये नहीं वो नहीं यार, सिर्फ तो अफसोस है.
0: अच्छा जी,
2: है हर तरफ इवेंट है भाई.
0: क्या बात है करीम शाह भाई. अच्छा करीम भाई, ये तो बताइए कि ईद की कोई याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई मेमोरी जो आपको बहुत पसंद है, बहुत अजीज है आपके दिल के.
2: मैं अपने देखो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं इधर ऐड करता हूँ ताकि हमारे सुनने वाले इस चीज को कब माशाल्लाह समझदार है, सब समझ रहे हैं इस चीज को.
0: जी जी,
2: काफी अच्छे लोग कॉल करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल बलवी कहते हैं ना, उस बात की तस्दीक तो नहीं कर सकते तजर्बे से. कुछ ऐसा कभी आप लोगों ने कहा देखा होगा, कुछ लोग मतलब सुनी सुनाई बात बताती है ना. तो यहाँ तो सोशल मीडिया है जाहिर है, फिर यहाँ तो वो बात बंदा करे जो हकीकत है, क्योंकि उस बात को सुनकर आगे कुछ लोग फॉलो भी करते हैं. मैंने काफी चीजें यहाँ सुने उसको फॉलो भी किया है.
0: नहीं मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई चीज जो आपकी याद है, मतलब कुछ स्पेशल हो.
2: बता रहा हूँ.
0: अच्छा.
2: वही बता रहा हूँ कि मैं सच बोलूँ, और यही कि कुछ लोग होते हैं ना इसे जो कुछ कहूँगा काफी लोग फॉलो करेंगे उस चीज को.
0: यहाँ
2: मैंने भी फॉलो किया है, काफी लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया है. मेरे लाइफ में कभी भी मतलब कोई मैं जिस दिन के बारे में सोचता हूँ अगले दिन में उससे वो चीज ज्यादा होता है.
1: तो
2: मैं अपने दोस्तों को एक ही चीज बताता हूँ कि अपनी लाइफ में चाहे ईद हो या आम दिनों में कहीं भी जब भी किसी भी टाइम बस माफ करना सीखो लोगों को.
0: ओके दैट्स द स्टोरी. वेरी नाइस,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार. बड़ी अच्छा
2: पैगाम ही यही है.
1: बड़ा अच्छा पैगाम करीम भाई का, वाकई यही है कि माफ करें और वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करें. और अब सवाल हो जाए अमिता,
0: बिल्कुल सवाल की तरफ रुख करते हैं. सो करीम भाई ये सवाल आपके लिए, ध्यान से सुने. मेरा शेप ट्राइंगल है, मैं बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्पाइसी हूँ. चाय के वक्त पर मैं सबसे पहले गायब होने वाली चीज हूँ, मैं क्या हूँ?
2: ये मुझे चटनी लगती है.
0: अरे चटनी का शेप ट्रायंगल थोड़ी होता है.
1: नहीं वो एक्चुअली जो प्लेटर में जिस कटोरी में चटनी है वो ट्रायंगल थी. तो मैंने कहा अरे चटनी तो ट्रायंगल है.
0: करीम भाई एक बार फिर से सुने, यहाँ पर सर्वर का दिल बैठा जा रहा है, आपको ये डिश गैस करनी है.
1: तिकोना तिकोना
0: त्रिकोणा. ओके मेरा शेप त्रिकोण है, ठीक है, ट्रायंगल है,
1: त्रिकोण,
0: और ये बाहर से क्रिस्पी होता है, अंदर से बहुत स्पाइसी
1: होता है,
0: ठीक है. और चाय के वक्त ज्यादातर लोग इसे खाते हैं, मतलब ये कि चाय के साथ ही गायब होता है ये.
1: अंदर से मसालेदार होता है.
2: निम्को, निम्को, वो निम्को जैसी होती है ना.
0: क्या होती है?
2: चाय के साथ क्या खाता है? लड्डू खाता होगा, बिस्किट खाता होगा, या वो हम निम्को कहते हैं उसे, वो पीला कलर के होते है ना.
0: देखिये हमारे लिसनर्स ने बताना शुरू कर दिया है. करीम भाई थोड़ा सा और थोड़ा सा गौर फरमाए, कौन सी चीजें जो अपन चाय के साथ डिश. ओके ये बिस्किट वगैरह नहीं, बिस्किट नमकीन
1: खाने की चीज है, नमकीन होती है अंदर, इसके पेट में बहुत कुछ भरा हुआ होता है.
0: हाँ
1: ऊपर से देखने में तिकोना होता है, तला जाता है, मसाले, आलू, मटर, टमाटर, पनीर.
0: टमाटर भी डाल देता है.
2: ये क्या चीज है, क्योंकि

0: दूंगा, डिश ही अलग है ना, बस वही काबुली पुलाव और वही दम पोख, वही कबाब, ऐसी चीजों में हम है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा।
1: अरे आप इस चीज में हैं, आप बता नहीं पा रहे करीम भाई, पर मानिए आप ये चीज खाते हैं और आपको पसंद भी है।
0: भिंडी ऐसा क्या है, सलाद में क्या है?
2: अरे तलते हैं, तलते हैं, स्नैक्स होते हैं ये, शाम में खाए जाते हैं नाश्ते के तौर पे, जब मेहमान आते हैं कहते हैं भाई गरम गरम बोले आओ भाई, जरा लोग आ गए चाय के साथ खाए जाएंगे, मजा हाँ। आएगा।
0: हाँ पकोड़े समोसे।
1: करीम भाई अब बहुत ही मजेदार है, देखिए आपने जहां तक था आपने पहुंचा दिया और हमने आपका एक जवाब लॉक कर लिया है। And let's see, इंशाल्लाह अगर आप लकी हुए तो
2: या। करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इतना पेट भर दिया,
0: मेरा तो दिन बना दिया, आप मेरा दिन बना दिया सर।
2: ओके करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच करीम भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह
0: हाफिज़।
2: आप भी ईद मुबारक, ईद मुबारक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये थे करीम भाई हमारे साथ और यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ते हुए।
1: कौन जुड़ा हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: आपको भी खैर मुबारक, खैर मुबारक। कौन जुड़ा हमारे साथ?
3: जी गुलाम उसका बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप करीम भाई को बहुत तंग करते हैं, पहले आपने उनके
2: तंग करते हैं, तंग करते हैं, ओ जी कैसे तंग करते हैं भाई गुलाम भाई, नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, हम पूरे मोहल्ले का खाना बता दिया, वही चीज नहीं बता रहे जो मुझे पसंद है।
1: उनके साथ बात करने का अलग ही मजा है।
3: जी का पूछा उन्होंने ताकी का बता दिया, मैं सारा दिन इतना हंसता रहा, मेरी वो पसलियों में दर्द होनी शुरू हो गई। इतने अल्लाह, इतने सादा लोग दुनिया के अंदर,
1: सच में बहुत मासूम, बहुत ही प्यारे हैं, एंड हमें यही तो अच्छा लगता है एक्चुअली, जब आप लोग होते हैं हमारे साथ तभी तो हमारे शो में चार चांद लगते हैं। सो यस गुलाम मुस्तफा जी, अब आपसे भी यही सवाल रहेगा हमारा, ये तो बताएं
2: कि मगर वो नहीं पूछेंगे, आप इतने सादा नहीं है मुझे पता है गुलाम भाई। वो नहीं पूछा
3: जाए, बहुत उलझाया अमिता जी आपने, बहुत उलझाया आप, पहले इतनी तैयारी कैसे करती है?
1: तैयारी हो जाती है, बस अब आप ये बताएं कि अभी
2: पका के
1: इन ईद का जो ये वक्त गुजर रहा है, हम एक्चुअली मेमोरीज की बात कर रहे हैं, वो जो खास यादें जो ईद हमको दे के जा रही है, तो कोई एक चीज जिसका जिक्र आप करना चाहें जो आपको बहुत अच्छी लगे?
3: ये है कि सबके साथ मिलकर ईद की जो खुशियां मनाते हैं,
2: वाह,
3: और कुर्बानी के बाद जो गोश्त तकसीम करते हैं, ये सब यादें होती हैं जो दिल में ताजा रह जाती हैं। और इस ईद पर हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो हमसे पिछले साल बिछड़ गए थे, तो ये भी हमारे दिल के अंदर रहता है। जी बिल्कुल,
2: क्या बात है। इसमें गुलाम मुस्तफा साहब एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ मैं, अगर आप इजाजत दें, जिसका आपको ख्याल करना चाहिए।
3: बिल्कुल
2: भाई, हम लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, ईद मनाते हैं, देखिए है ना,
3: जी जी
2: अच्छा लगता है आपको जब हम आपके साथ होते हैं।
3: जी जी बिल्कुल।
2: अरे तो फिर मेरा हिस्सा कहाँ है कुर्बानी वाला?
3: आपका हिस्सा तो फ्रीजर में पड़ा है, आपने
2: फ्रीजर में पड़ा हुआ है, बताइए
1: फ्रीजर में पड़ के वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
3: अभी तो कलेजी का भी कुछ हिस्सा कच्चा पड़ा हुआ, वो भी बना,
2: जल्दी से बना लिए, जल्दी से बना ली, ऐसी भुनी भुनी बना लिए, रोटी लेता आता हूँ मैं। चलिए भाई गुलाम मुस्तफा साहब, आपका नाम भी हमारी फहरिस्त में शामिल हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: तो पूछ लो,
3: आखिर में
2: यही सवाल था,
1: यही सवाल था, क्या बात है,
2: है?
3: सरवर भाई मैं आपसे ना वो एक शेयर करना चाह रहा था,
2: शेयर
3: वो
2: कहना?
3: बशीर बदर जो है, बशीर बदर साहब, वो जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत
2: अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे उनको, उनका इंतकाल,
3: तो उनका वो मैंने आज मॉर्निंग में उनके एक दो शेर सुने, वो मैं अगर सुना दूं अगर आपको बुरा ना लगे।
2: इरशाद,
3: वो कहते थे कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।
2: क्या बात।
3: और एक जगह कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर जलाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर जलाने में,
2: बनाने में
3: तुम तरस नहीं खाते बत्तियां जलाने में।
2: क्या बात।
3: और कहते हैं कि एक उनका एक और शेर सुना देता हूँ, ना जीव के देखा ना कुछ बात की,
1: बड़ी आरज़ू थी।

0: मुलाकात की। शानदार गाना भी है।
1: बड़ी आरजू थी उस कलेजी की जो फ्रीजर में रखी हुई है। नहीं मेरे से कब आएगी
2: आपको अगर मौका मिले ना
0: जी।
2: एक पाकिस्तानी एक गुलकार है, उन्होंने बहुत अच्छी आवाज
0: जी जी बिल्कुल
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं, आप जरूर हमसे लिंक शेयर करें एंड आई विल चेक इट। ठीक है
2: इंशाल्लाह
1: ओके बाय। ईद मुबारक गुलाम भाई। तो ये देखो गुलाम मुस्तफा साहब और क्या कहती हैं अमिता, ब्रेक पे चला जाए या फिर बात करी जाए?
0: बात कर लेते हैं फिर ब्रेक पे चल लेते हैं।
1: अहलेन अहलेन अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई कहाँ थे यार, 3 दिन हो गए बताइए।
2: इज्जत रखनी भैया, चलो यार कहा बात कर लेते हैं यार, भागे जा रहे हो यार।
1: अरे बताइए भैया कहाँ, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कहाँ थे?
2: अरे भैया बस लगे रहते हैं, कभी कभी बस लाइन में लगे रहते हैं, कभी कभी मौका मिल जाता है हमारे जैसे मतलब आरजे मैम के वजह से, नहीं तो पता चला हम तो बस भैया ये हो गए थे रिटर्न वाले।
0: नहीं मैं आप भाई आप लोगों की बातें सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा है, पहले ये तो बताएं आपका नाम क्या है?
1: अरे अमिता जी चलिए अब इन्हीं से पूछ लिए।
2: अरे भैया सरवर भाई बता दो यार नाम।
0: सरवर भाई नहीं बता पाएंगे आप,
1: आसानी से
0: बताते
1: नहीं है, अपना नाम ही है
2: मोहम्मद रईस।
1: इसलिए मैं चाह रहा था अम्मी जान ने कहा था कि कोई है
2: पीछे बैलेंस है, एक और इंशाल्लाह मिल जाए यार, डबल डबल एक ही साथ में करके सेलिब्रेट करेंगे सरवर भाई के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो सरवर भाई तो आने को तैयार है। बिल्कुल
2: बिल्कुल यार, सरवर भाई बुला नहीं रही है यार, क्या कर रहे हैं
0: सरवर।
1: अरे रईस भाई क्या आप जीत चुके हैं ऑलरेडी?
2: पहले रमजान में जीते हैं भैया ऑलरेडी, तो वही
1: ना भैया ना हम ना दे रहे ना रमजान में जीते उसी की दावत ना आई अभी तक, तो अब ये क्या फायदा भैया,
2: पहले मिलने दो यार।
0: हाँ भाई हाँ भाई, सरवर भाई एक्चुअली प्लान करने लग गए एकदम से कि अब कैसे आपसे मुलाकात करें।
2: यार ये मौका बचा हुआ है, हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह। सो रईस भाई आइए आपसे सीधा हम सवाल ही पूछते हैं और आप हमें बताएं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है सो आप ध्यान से सुने, मुझ में 99 बीड्स हैं, ठीक है मुझ में 99 बीड्स हैं और मैं हमेशा आपके हाथ या पॉकेट में रहती हूँ जब आप दुआ मांगते हैं, मैं क्या हूँ?
2: अरे यार कहाँ हमको फंसा दियो, फिर से जरा बोले एक बार जरा प्लीज।
1: अरे मेरे अंदर 99 दाने हैं और इबादत के वक्त हर वक्त आपके साथ रहती हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो
1: तस्वीर। अरे भाई क्या बता रहे हैं भाई रईस भाई, क्या ही कहने भाई आपके।
2: मैम ने बड़ा बेहतरीन मतलब सवाल पूछा और थोड़ा हमारे भाई ने उसको,
1: मैम बहुत ही बेहतरीन सवाल ही पूछती हैं,
0: इसीलिए
1: हमारे रात तक सवाल ही करती रहती हैं मैम।
2: हमारे लिए सरवर भाई ने थोड़ा आसान कर दिया थोड़ा।
1: अहलन वसहलन अहलन वसहलन रईस भाई, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से रईस बना के रखे और खुशियां दिखाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, अल्लाह
1: शुक्रान जजीलन। ये थे रईस भाई हमारे साथ, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से बहुत ही आसान यहाँ पे सवाल अमिता आपसे पूछ रही है और जिसका बहुत ही आसानी से आप जवाब भी दे पा रहे हैं और व्हाट्सएप पे आप लोगों के जवाब जो है हमें मिल रहे हैं बराबर। इवन यहाँ पे रिजवान भाई व्हाट्सएप पे कॉल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पे कॉल नहीं उठा रहे तो इसमें उठा लो, जो कि हम उठा ही नहीं सकते भाई।
0: यस, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 666-222-107, हम हर बार हर कॉन्टेस्ट में ये अनाउंस करते हैं, इट्स ओनली फॉर व्हाट्सएप, तो आप उस पर मैसेज करें, उस पर कॉल ना करें क्योंकि आप कॉल नहीं ले सकते। कॉल इन नंबर है 443-443-77, आई विल रिपीट 443-443-77। और इसी बात पर कोई हमारे साथ जुड़ गया, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: आपकी आवाज सुनकर हमारे सरवर भाई ने इतना खूबसूरत चेहरा बनाया, कहते कि ये शख्स है जो आज जीतेगा, चलो इनसे बात कर ले।
3: बस अल्लाह की जुबान मुबारक करे, मैं इनके गले आके लग गई।
0: कैसे भाई कैसे आप?
3: الحمدللہ شکر

0: लगी जात का, आप माशाल्लाह खुशियां बखेर हैं, बल्कि अभी आपने जो हमारे प्यारे से मासूम से आपने मजा आ गया माशाल्लाह, और आपने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि हम उनको पहुंचा के दम देंगे।
1: अरे यार बताइए, मतलब इतनी खूबसूरत चीज वो खाने वाली जिसको खा खा के हम फूले नहीं समा रहे, वो भी खुशी से, तो कैसे कोई
0: उसको नजरअंदाज कर रहे हैं
1: बताइए।
2: वो समझ नहीं पा रहे थे ना मासूमियत के चक्कर में, बट यही है कि हो जाता है, तो यही तो मजे आते हैं हमें कॉन्टेस्ट में।
0: फिर उन्होंने तंग आके ना उन्होंने कहा फिर पकोड़े और समोसे खाओ।
2: कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसमें से।
1: अमिता आप क्या लाइयो जुल्कर्नैन साहब के लिए?
0: ये क्या कर दिया मेरे नाम।
2: ओके भाई, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है?
1: ओके, पूछ लिया।
2: आप ध्यान से सुने, अब मैं आपको पहले एक हिंट भी दे देती हूँ।
1: नहीं नहीं, अरे दुल्कर नैन साहब को हिंट क्या बात कर रही हैं आप, वो आपको हिंट दे देंगे। बिल्कुल नहीं,
2: चले आपको पहले देखते हैं।
0: मेरी बहन है, देखे उनको अपने भाई का ख्याल है, उन्होंने कहे की वो उनको ना हम लोग जरा अप्रिशिएट चार्ज कर दे बस।
1: ये पूरी डिक्शनरी खोल के बैठे हुए होंगे इस वक्त, आप क्या बात कर रही हैं ऑक्सफोर्ड।
2: अच्छा ठीक है, आप ये बताएं, ठीक है, ये नहीं बताना जरूरी है सर्वर, ये कुछ का कुछ और समझ जाए तो फिर
1: तो अच्छी बात है ना। हम तो मैं तो चाहता ही हूँ कि बताऊं दुल्कर्नैन भाई को कहीं ना कहीं मुश्किल करूं।
2: ये मुझे फंसा रहे, माफ कीजिएगा, माजरत। चले इसी बात पे मैं आपसे सवाल
1: पूछ ली।
2: तो आपके लिए सवाल है कि यूजुअली मुझ में वेजीज होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, पर आज मुझ में मतलब ईद के दिनों में 90% मीट और 10% आइसक्रीम है, मैं आज ओवर टाइम काम कर रही हूँ, मैं क्या हूँ?
0: अच्छा जी,
2: मैंने कहा था ना इंड की जरूरत पड़ेगी।
0: बिल्कुल पड़ेगी, थोड़ी गंभीर समस्या आ गई है इसमें।
1: गौतम गंभीर तो इंडियन क्रिकेट में हैं, यहाँ पर आप क्या करोगे दिया? कुछ तो गड़बड़ है दिया।
2: देखिए जुल्कर भाई,
1: नहीं
2: जुल्कर भाई, नहीं मुझे बताना। अच्छा ये अब बस नहीं नहीं
1: समझ जाएंगे, बहुत माशाल्लाह से काबिल आदमी है।
0: के लिए हम भी थोड़ा ना
1: जैसे तैसे तो ये सवाल निकाल के लाइए आप। बिल्कुल
2: अच्छा ठीक है, अब सोचने की कोशिश कीजिए कि घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और अभी इन ईद के दिनों में 90% मीट है और आइसक्रीम भरी है।
1: आपने ये कह के आसान करवा दिया भाई, फौरन बता दिया
2: उन्होंने।
0: बहनों का दिल नरम रखा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप बड़े सख्त दिल हैं सरवर भाई, मुझे कहना पड़ेगा।
1: दुल्कर्नैन साहब आपसे तो बनता है यार टफ सवाल, ऐसी बात थोड़ी आप बता के ही देते, मुझे पता है।
0: मजे की बात बताऊं इससे रिलेटेड अपनी एक मेमोरी,
1: प्लीज शेयर कीजिए।
0: बकरे का गोश्त लोग कम बांटते हैं तो, और गाय का ज्यादा बांटते हैं हमारे मुल्क में, जरा कॉस्टली भी होता है। तो ऐसे ही अपने जानने वाले के पास गए तो उन्होंने जनाब ऐसे ही गाय का गोश्त की थैली पकड़ा दी, मैंने पकड़ ली, देखा कहते क्या है गाय का गोश्त, तो मैंने कहा जो बकरे का फ्रीजर में रखा है भाई वो निकाल के लाओ, वो भी देने के लिए होता है।
2: सच में ये फेस्टिविटीज ही है ना, मतलब एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट और वो एक दूसरे के साथ मजाक करने का जो हक मिलता है ना, सच में इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया दुल्कर्नैन साहब, हमारे साथ
0: मुझे पता था आपने यही ये का मतलब खुदा
1: ईद मुबारक दुल्कर्नैन साहब, पूरी फैमिली को,
0: सब कॉलर्स,
1: थैंक यू
0: सुनने वालों को,
1: थैंक यू,
0: इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके बढ़ाए।
1: थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये थे दुल्कर्नैन भाई हमारे साथ, देखा आपने किस तरीके से बहुत ही आसान कर देती हैं अमिता जी
2: मजे के सवाल। और सबसे सिंपल बात है कि ये जो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सब हमारे बहुत आसपास की चीजों से रिलेटेड है। अभी कोई हमारे साथ जुड़ा है, अस्सलाम वालेकुम, हवाओं से एक दो।
1: क्या बात है भाई, हवा पे सवार कौन है हमारे साथ?
3: इब्राहिम गुल।
1: इब्राहिम गुल,
3: दोबारा ईद मुबारक देनी पड़ेगी दोनों को, सब पूरे दिन देते रहते हैं बस।
2: अरे वाह, सो स्वीट भाई।

0: और फैमिली बन गए यार आप लोग.
1: हाउ स्वीट, हमारी खुश नसीबी है आप हमसे कह रहे हैं.
2: बन गए हो तुम.
1: अच्छा भाई,
0: सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है जो आपने बकाया ना कबीर भाई ने किया था, वही गाया सॉन्ग है ना. मैं बहुत ही ढूंढा यार, कोई सेंड ही नहीं कर देता यार.
2: ये वाला गाना
0: नहीं है, वो जो आपने बोला है कबीर भाई ने बोला है, आप दोनों साथ बोले थे.
2: ओके ओके यार इब्राहिम भाई, आप तो यार सीरियसली हमारे ये बहुत करीबी से सुन रहे हैं आप हमें यार. मेरा भाई
0: यार वो बहुत मतलब दिल छू गया है ना ऐसे.
2: अच्छा ऐसा है कि मैं अभी कोशिश करता हूँ, अगर मिलता है मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो गाना, थोड़ा बताएंगे उसका.
0: ओ कबीर भाई था, क्या बोले कबीर भाई, वो बात ही कर रहे थे, आपने वो सॉन्ग आ रहा था तो दोनों साथ ही कर रहे. मैंने कबीर भाई को बहुत मैसेज किया लेकिन वो भी भूल गया यार.
2: मैं अभी अपनी किडनी चलाने की कोशिश करता हूँ और अगर मुझे याद आ गया.
0: किडनी क्यों चला रहा है?
2: अच्छा मैं मेरा मतलब दिमाग चलाने की कोशिश करता हूँ और अगर याद आ गया तो अभी इंशाल्लाह देखता हूँ मैं. तो इब्राहिम गुल साहब से सवाल जो है अब अमिता पूछने वाली है.
0: बहुत टफ सवाल
2: पूछते
1: हैं,
2: बहुत टफ के बस गली नहीं रहा. पांच सीटियां लगा दी कुकर में मगर गल के नहीं दे रहा ये सवाल भाई, इतना सख्त है.
1: चले आपको आपसे मैं ये सवाल पूछती हूँ एंड डेफिनेटली ये मैं पहले पूछ चुकी हूँ तो ये एक आपके पास प्लस पॉइंट है. तो ध्यान से सुने. मैं दिखती नहीं हूँ पर मैं सबके दिलों में हूँ.
2: अरे ये तो अमिता है.
1: अरे मैं दिखती नहीं हूँ पर मैं सबके दिलों में हूँ. जब बड़े बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं तो मैं वहाँ होती हूँ. मैं क्या हूँ?
2: दादी.
0: नहीं हूँ यार.
2: नानी.
0: हमारा दिमाग कहाँ काम करेगा ऐसे गर्मी में यार.
2: अब बकरीद पे तो वैसे भी सिर्फ पेट ही काम करता है हमारा.
0: नहीं बहुत बार बहुत गर्मी है ना इसलिए दिमाग दही बन गया.
1: अरे दिमाग गर्मी में दही. ओहो
2: क्या बात है. चला है
1: लेकिन कोशिश करें. देखिए आप ध्यान से सुने. मैं दिखती वो कौन सी चीज जो दिखती नहीं है पर सबके दिलों में होती है ना. और जब बड़े बच्चों के सर पे
2: आप भी हमें दे रहे हैं.
1: यस जब सर पे हाथ रखते हैं तो क्या देते हैं?
2: कितना आसान करो.
0: ईदी देते हैं हम यार.
2: नहीं ईदी तो दिख रही है वो तो नोट. हाँ हाँ क्या बोला ईद के बाद
0: दवाई देते हैं ना.
1: ये बहुत टफ सवाल था.
2: बहुत टफ था. जवाब दे दिया आपने. और
0: दवाई तो बूढ़ी देते हैं ना जैसे सरोवर भाई देते
2: हैं. तो जभी तो नानी दादी कह रहा था मैं.
1: ये क्या कह दिया. सर्वर कुर्सी से गिर जाएंगे. हमने
2: तुमने मुझे बुरा कहा.
0: नहीं नहीं मेरे भाई यार ठीक मजाक.
1: बनारस रेस्टोरेंट का वाउचर कैंसिल.
2: कैंसिल. अच्छा इब्राहिम भाई सुनिए बोलिए. पेंसिल.
0: पेंसिल.
2: आपका वाउचर कैंसिल.
1: नहीं मजाक कर रहे हैं. मजाक ऐसा बिल्कुल नहीं है.
0: हमारी फैमिली है ना. फैमिली है सर.
2: और मैं कोशिश करता हूँ जो गाने की फरमाइश आपने करी अगर मुझे मिल गया याद आ गया. मुझे थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है क्योंकि बहरहाल देखते हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इब्राहिम गुल साहब. आपका नाम लिस्ट में हमने शामिल कर लिया. ईद मुबारक.
1: ओके
2: बाय. वाह क्या ईद है भाई अपनों के साथ. इब्राहिम भाई जैसे हमारे प्यारे प्यारे
1: yes.
2: दोस्त भाई अहबाब. क्या कहती है अमिता ब्रेक या
1: बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक की तरफ.
2: तो ले लीजिए पानी पीने की जरूरत
1: पड़ रही है. सारे लिसनर्स को बोलना चाहेंगे कि आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं 666-22-107 पर और हमारा कॉल इन नंबर है 443-443-77 443-443-77. बस कुछ ही देर में हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर हमारा ये मजेदार कॉन्टेस्ट चलता रहेगा. वाह क्या गाना है. ट्विस्ट. ओहो
2: भाई देखिए ट्विस्ट करना बनता भी है. असल में क्या है आदमी इतना खा लेता है बकरीद पे तो जरा सा ट्विस्ट करेंगे इधर उधर बैठेंगे उठेंगे
1: थोड़ा खाना पच जाएगा. या वेरी गुड.
2: हाजमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ट्विस्ट करना. इसलिए ये गाना याद दिलाता है कि खूब ज्यादा हरकतें करें खाते पीते भी रहे इंशाल्लाह
1: और एंजॉय करें. स्टेडियम टू एफएम
2: थोड़ा सा ज्यादा भी बना लें भाई. सर्वर मेरे साथ भी तो ख्याल करना.
1: मैं माइक बंद कर
2: लूंगा.

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: सो देसी ऑडियंस, आपने म्यूजिक एंजॉय किया कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ा इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर घर घर ईद हमारा स्पेशल शो। भाई आज आखिरी दिन है ईद का, तो फुल ऑन सेलिब्रेशंस ऑन है। यहाँ पर हमारे सर्वर ब्रो और मैं आपकी अमिता, हम दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे लिसनर्स को इंक्लूड कर सके और उन्हें गुनाइदन रेस्टोरेंट के पास सुकतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका दें। अभी कोई हमारे साथ जुड़ा, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम,
3: अहलन वसहलन। कौन है हमारे साथ?
2: अहमद।
3: अहमद आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कैसे हैं अहमद?
2: ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या बात है अहमद। सो अहमद, आपसे सीधा सवाल पूछें? ठीक है, ध्यान से सुने। मैं ब्रांड न्यू हूँ पर घर के बाहर रहती हूँ, ठीक है? मैं ब्रांड न्यू हूँ पर मैं घर के बाहर रहती हूँ, और ये आपसे कुछ कह भी रही है कि प्लीज मुझे मस्जिद के बाहर किसी और से

0: चेंज मत कर लेना. क्या हूँ मैं?
1: जूते.
2: बहुत पड़े हैं मुझे तो. खैर ये तो बच्चे हैं अहमद भाई.
0: एग्जैक्टली.
2: जवाब तो आई.
0: अहमद ने आज बिल्कुल एकदम एक टेक पे सही जवाब दिया है. सो अहमद रियली नाइस. और हमने आपका जवाब नोट कर लिया है. ठीक है.
2: ओके अहमद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. ये थे भाई अहमद हमारे साथ, और जिन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया. मुझसे बड़ा रिलेटेड था ये जवाब.
0: बहरहाल
2: बढ़ते हैं आगे. और बिल्कुल अभी एक दो और कॉलर हमारे
0: साथ जुड़ा. अस्सलाम वालेकुम.
2: कौन है? है? नहीं मैं भी नहीं बताऊंगा.
3: अरे आप बैठा हूँ आप आगे सर्वर है और आगे
2: का. अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात है भाई. कौन है हमारे साथ? नौशाद आलम.
0: ओके ओके भाई, आपकी आवाज अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही थी इसलिए हम समझ नहीं पा रहे थे. सो कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है.
0: क्या बात है. सो नौशाद भाई, अभी मौका है ईद का, कुछ कोई याद है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे?
3: या तो जैसे अभी यहाँ पे बार बार की जैसे काम वगैरह बहुत ना के बराबर ही था, फिर भी जो 200 ईदी मिल रही थी वो 500 मिल गई.
2: वाह ईदी मिल रही नौशाद भाई को अभी तक भाई. क्या बात है मुदिर की
3: तरफ से मिलती है ना.
2: क्या बात है भाई, क्या बात है. चलिए साहब,
3: मैं पूछा कि क्या बात है, हमेशा 200 मिलता था 500 बोल रहे आज ये महीना बहुत मेहनत से काम किया, सब पीस खलास कर दिया इससे पहले.
0: नहीं भाई, अभी क्या ही बोल सकते हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता. बट यही कहेंगे कि देखें ये जो बचे दिन है हमारे ईद के, आज का जो दिन है उसे फुल ऑन एंजॉय करने की कोशिश करें जैसे भी हो सके. सो अभी हम आपसे सीधा सवाल पूछ लीजिए
3: लेकिन आसान वाला पूछ
2: लीजिए. नहीं वो जब ही वो कह रही है ये थोड़ी का आपसे कि टेढ़ा सवाल पूछ लें, आपसे सीधा सवाल पूछ लें. इसलिए आसान आएगा, टेढ़ा होता तो मुश्किल होता.
0: चले ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल आसान पूछती हूँ. ठीक है, दावत जब खत्म हो जाती है, कहीं पर भी आप हो, दावत जब खत्म होती है पेट फुल हो जाता है. ये तो सुनिए, पेट भी तो फुल होता है.
2: अच्छा ओके.
0: अब सबको मेरी जरूरत है ताकि हैवी खाना डाइजेस्ट हो, मैं क्या हूँ? ऐसी कौन सी चीजें ज्यादा से ज्यादा दावत के बाद लोग ऑफर करते हैं?
3: इसके लिए कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, सॉफ्ट.
0: अच्छा, और बताएं थोड़ा. ये थोड़ी, अच्छा मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये गर्म चीज है. ये गर्म चीज है.
3: हाँ, हाजमा के काम में आता है.
0: किस में आता है?
3: हाजमा मतलब डाइजेस्ट, जो बोले ना इंग्लिश में.
0: अच्छा ठीक है, ये गर्म चीज है और ये पी जाती है.
2: हाँ हाँ, हाजमे के काम में आती है नौशाद भाई.
3: गर्म चीजें पीने के काम में आती
2: है. गर्म चीज पी नहीं रहे क्या?
3: आई
2: लव यू किरण, सही बता दिए है नौशाद भाई. क्या कह रहे हैं, चाय कम पी रहे हैं क्या आजकल?
3: नहीं, चाय मैं तो वैसे भी कम पीता हूँ, बस दिन में एक दो चाय.
0: अच्छा, दैट्स आल्सो गुड. बट ये कि चलो ठीक है, चाय इज द राइट आंसर और हमने ये आंसर लॉक कर लिया. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई.
2: ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए. और यहाँ पर अब हम आ गए हैं आखिरी कॉलर की जानिब. घबराइए मत सुन के, इस घंटे के आखिरी कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
2: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
4: मोहम्मद याकूब.
2: जी
4: मोहम्मद याकूब भाई.
2: ओके
0: याकूब भाई. ओके याकूब भाई, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ. एंड ये सवाल पूछने से पहले मैं आपको हिंट जरूर दूंगी. यहाँ पे सर्वर मुझे आंखें दिखा रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ
2: कि
0: ये जो सवाल मैं पूछ रही हूँ ये आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, आपके रिश्तेदारों पर है. ठीक है. ओके
2: okay. क्या बात कर रही है अभी. कल तो हम जैसे तैसे हमने पुराने मसले सुलटाए, फिर रिश्तेदारों को बीच में ला रही हैं.
0: नहीं नहीं, मजे का है. ठीक है, चलिए आपसे पूछती हूँ, आपको गैस करना है. ओके, मैं ईद की नमाज पढ़ता हूँ, दो प्लेट बिरयानी खाता हूँ,
2: और फिर
0: अगले 6 घंटे के लिए गायब हो जाता हूँ, मैं कौन हूँ?
2: रिश्तेदार आए नमाज पढ़ के बिरयानी खींची और निकल ली.
0: बताएं घर में कौन हो सकता. नहीं, वो घर पे रहते हैं, मतलब जब आते हैं ना लेटेस्ट, तो

0: कह जाता है बंदा,
1: बंदा है
0: याद कह दिया, आप क्या ही बोलिए, जरा गैस कीजिए. कौन है, कौन है, सोचिए तो.
2: जिम से बोलिए एक बार.
0: अच्छा ठीक है, मैं अच्छा कौन है आपके घर में ऐसा जो मैं ईद की नमाज, जो ईद की नमाज पढ़ते हैं फिर दो प्लेट बिरयानी खूब अच्छे से खा लेते हैं और फिर 6 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं.
2: 6 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं.
0: यस.
2: बच्चे
0: बच्चे ये ऐसा करते हैं,
2: बच्चे खाते हैं और निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए.
0: अच्छा घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं, ये वाला हिसाब है. वैसे हमारे यहाँ तो कोई और ही है जो ऐसा करता है, कोई कोई बच्चों में कोई एक आध ऐसा रहता है. सर्वर कुछ कहना चाहेंगे? सर्वर खुद सोच में पड़ गए, वो लग रहा है कि मेरे ऊपर ही बोल रही है अमिता. अच्छा ठीक है ठीक है, आप बताए. चलिए एक गैस और करें, एक वाइल्ड गैस और.
1: एक और कर दे भाई.
0: कौन हो सकता है ये जो ईद की नमाज पढ़ता है, दो प्लेट बिरयानी खाता है और 6 घंटे के लिए गायब हो जाता है. नहीं बता पा रहे. अच्छा मैं बहुत मजे मजे के जवाब भी मिल रहे हैं, क्या बात है. कुछ हमारे लिसनर्स कह रहे हैं कि नींदे, कुछ कह रहे हैं हमारे बच्चे, कुछ कह रहे हैं भूख, कुछ कह रहे हैं मेरा बड़ा बेटा.
1: ये अच्छा, ये 6 घंटे के लिए नहीं, 6 घंटे तो ज्यादा हो गया, 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है, 2 प्लेट बिरयानी.
0: अच्छा ठीक है, जवाब बहुत सारे, आप क्या बोलेंगे? चले आपका हम जवाब सुन लेते हैं.
2: हम तो चार बच्चे ही होंगे और कोई कौन निकलेगा इसे.
0: ठीक है चले हम आपका जवाब लॉक करते हैं एंड लेट्स सी. वैसे तो अभी आप हमारे इस घंटे के आखिरी कॉलर हैं, तो भाई हम सोच रहे हैं कि आपके हाथों ही अभी इस घंटे का लकी विनर का नाम हम अनाउंस करें. तो सर्वर आपको कुछ नंबर बताएंगे, उन नंबरों में से कोई एक नंबर आपने चूज करना है, उन नंबरों के बीच इनफैक्ट. यस सर्वर बताएं.
1: देख रहा हूँ, गिन रहा हूँ कितने लोग हैं माशाल्लाह से जिनको हमने लिस्ट में शामिल किया है. भाई सभी की मालूमात के लिए हम बता दें कि व्हाट्सएप पे भी जितने लोगों के जवाब आए हैं वो अभी तक हमने शामिल करे हैं और अब इंशाल्लाह ताला अगला जो घंटा है उसके अंदर भी जो भी जवाब आएंगे व्हाट्सएप पे भी वो भी हम शामिल करेंगे. और फोन तो आप बराबर हमारे साथ करिए ही करिए, उनको भी हम शामिल करते ही हैं. तो यहाँ पर भाई को ये बताना है कि 1 से 32 के दरमियान कोई एक नंबर चूज कीजिए. 1 से लेके 32, 1 से लेके 32, 1 2 32. बहुत सोच लिए आराम से.
2: 28
0: नंबर चुना है इन्होंने. ओके तो हम देख लेते हैं कि 28 नंबर पर कौन है. और आपका
1: ओके भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हम ऐलान कर देते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके ओके, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई को, ईद मुबारक. तो भाई ये थे हमारे साथ भाई जिन्होंने आज का लिसनर जो है वो चुन दिया है. क्या कहती है अमिता?
0: लकी विनर चुन दिया है. और क्या नाम है, बस अब ऐलान कीजिए सर्वर. मुझे लगता है कि हम
1: भाई ये हैं शुएब.
0: हाँ
1: सुहेब अमजद.
0: ओहो सुहेब अमजद, कंग्रेचुलेशन, मुबारका मुबारका मुबारका, आपने जीत लिया है गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर.
1: क्या कहने, मबरूक मबरूक, अल्फ अल्फ मबरूक. तो भाई देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पर अमिता और मैं आपको जिताना चाह रहे हैं ये जो गिफ्ट वाउचर है. और अब इंशाल्लाह ताला अगले 1 घंटे में भी ये सिलसिला जारी रहना है. तो भाई पहले जो हमारे विनर हैं वो हैं सुहेब भाई. बहुत बहुत मुबारक उनको मेरे अमिता की जानिब से, FM 107 की पूरी टीम की जानिब से. और अब इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आगे बढ़ेगा. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, आपको अपने FM 107 का नाम जो है, जिंगल जो है वो सुनाते हैं और वापस आते हैं.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाला हाला लीजिए साहब, बज गए घड़ी में 11 बज के सही 4 मिनट और यहाँ पर अमिता और सरवर आपके साथ विनर बना रहे हैं। डेली 2 विनर हमारे प्रोग्राम में भी होते हैं और इसी तरीके से सुबह से शाम तक का ये सिलसिला जारी रहता है। रात में भी आपके पास मौका होगा इंशाल्लाह ताला, जहां कभी फजील और नाजिया आपके साथ जुड़ेंगे। और फिलहाल एक वाउचर अभी और हम देने वाले हैं इस घंटे में, तो कहीं भी मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। एफ और अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: इस ईद सिर्फ और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप घर घर ईद में। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी अमिता और हमारे आरजे सरवर मिर्जा, और हमारे साथ तीसरा भी कोई जुड़ा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। मैं तो पिछले 10 मिनट से जुड़ी हुई
4: हूँ
3: आप लोगों के साथ।
4: क्या बात है, मिस अली है हमारे साथ और ईद हो। और गुड मॉर्निंग मिस अली, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
3: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरे सिस्टर मुझे सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कतर फ्रॉम मिस अली। और आप लोग कैसे हैं? और मेरा ख्याल है मेरे पास ना जो टाइम है ना वो बहुत ही कम रह गया है।
2: ओ, सीधा सवाल पूछे।
3: हाँ नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको।
2: हाँ जी,
3: कि
2: हाँ जी।
3: मतलब पहले आवर्स से लेकर अब तक इतनी कॉल लगी, सारी मिली कोई नहीं। और जो मिली तो सारे प्रोमो सुन लिए मैंने आपके एक प्रोग्राम का, मेरी पहचान, मुझे याद रखिए प्लीज।
2: इंशाल्लाह मिस अली जी, वो तो डेफिनेटली, ये हमारा एक्चुअली आपका और हमारा ही शो है, ये इसमें सर्वर की जरूरत नहीं है।
3: ठीक है नहीं, वो भी बीच बीच में आ जाए,
2: वो बीच बीच में सुन लेंगे,
3: वो भी बीच बीच में लुकमा दे देते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल मिस अली जी, और इसी बात पे चलिए हम आपसे सीधा सवाल पूछ लेते हैं ताकि आप जवाब दे सके।
3: बहुत ही आसान
2: है और आप जरूर जान लेंगी, ठीक है, कि क्या किस चीज की मैं बात कर रही हूँ। तो आपने बताना है, मैं लंबी लोहे की रॉड हूँ और जलते हुए कोयलों पर मीट को संभालती हूँ।
4: इससे ज्यादा आसान क्या होगा?
2: मेरे बिना बारबेक्यू दावत अधूरी है।
4: सुनना ही नहीं मुझे। ये लो जवाब।
2: सीख क्या कहते हैं सर्वर?
4: तो मुझे लग रहा है मुझे कहनी सीख।

0: शेफ कहती हूँ, इसलिए मैं
1: मास्टर शेफ है. देखो आप शर्मा रहे.
0: नहीं वो है तो मैं कह रही हूँ ना, हम देखिए कुकिंग हम भी करते हैं. मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी.
2: ये इंशाल्लाह जल्दी पता भी चल जाएगा, मसाली जो है दावत भी देने वाली है बहुत जल्दी.
0: हाँ चलो कुछ कर देना फिर. ये जीतने वाले जो खुश नसीब है तो हम कोशिश करने वाले शामिल करते हैं उसमें.
1: बिल्कुल
2: मैम आपका जवाब भी लिख लिया गया है और सही जवाब भी दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ
0: जुड़ने
2: के. तो भाई ये थी मिस अली हमारे साथ और यहाँ पर अगले चैंपियन. हेलो
1: हेलो सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ?
2: चलिए कह रहे नहीं नहीं खेलूंगा.
1: नहीं नहीं खेलना है. अच्छा कोई बात नहीं,
2: अब इनसे कर लेते हैं बात. हेलो
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन कौन जुड़ा हमारे साथ?
2: सरवर भाई पूछ लीजिए.
1: सरवर भाई से पूछ
2: लीजिए. हमारे साथ सरवर भाई जुड़े हैं. सरवर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह.
2: अरे भाई
3: मैं कुछ नहीं बोलूंगा.
2: नहीं
1: कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर कॉल लगाई आपने, बोलना तो पड़ेगा.
2: कह रहे हैं भाई ऐसा ही है अपना, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
1: बस सुनता रहूंगा.
2: सुनता रहूंगा मैं.
1: हाँ जी भाई बताएं बताएं आपका नाम क्या है?
3: नसीम.
1: नसीम भाई, नसीम भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं. नसीम भाई अब आपका नसीब कितना ज्यादा आगे आपको ले जाएगा, चलिए इसी बात पे हम एक सवाल पूछ लें आपसे. बहुत ही सिंपल पूछ रही हूँ मैं आपसे, बस ध्यान से सुनिएगा ओके. ठीक है चलें, आपके लिए सवाल है. मैं सिल्वर हूँ और मेरा शेप बिल्कुल पतला है, सब मेरा आसमान में इंतजार करते हैं, अगर मैं ना दिखूं तो ईद नहीं होती.
2: वाह
3: चांद.
2: अच्छा
1: चांद,
2: पक्की बात है?
3: सरोज भाई
1: हाँ
2: जी,
3: आपके लिए एक शेर है.
2: अच्छा चलिए कभी चीता वीता भी लाइए और
1: दूसरी चीज़ सारे
2: शेरी शेर आ रहे हैं आजकल मेरे लिए. चलिए शेर ही दे दीजिए. छोड़िए इरशाद इरशाद.
3: तेरी खुशी ही मेरी खुशी थी.
2: आह तेरी खुशी ही मेरी खुशी थी, मतलब ये थी हो गया मामला, रिश्तेदारी खत्म.
3: चले क्यों गए?
2: चले क्यों गए? ओह
1: बहुत दर्द है भाई.
3: मेरी हालत देख मजनू भी हमें मजनू कहते
2: हैं. आए हाय हाय हाय हाय हाय क्या मजनू से भरा शेर है भाई. उफ ओ तेरी खुशी ही मेरी खुशी थी, मेरी हालत देख. अच्छा चले क्यों गए?
1: चले क्यों गए ये सवाल भी है शेर में.
2: क्या बात है यार,
1: ये आपकी तरफ रुख किया जा रहा है
2: यार. नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा शेर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई. और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया और आपका नाम भी हमने लिस्ट में लिख लिया नसीम भाई. थैंक यू सो मच.
3: वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा.
2: मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तखल्लुस हो गया इनका,
1: ये इनका पेटेंट हो गया है. चले कोई नहीं भाई,
2: चलिए भाई कुछ भी मत बोलिए, कुछ ना बोलते हुए नसीम भाई हमारे साथ शामिल, बहुत बहुत शुक्रिया. तो भाई ये थे नसीम भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला. और यहाँ पर एक और हमारे साथ चंपन जुड़ते हुए. मैंने क्या कर दिया है?
1: hello,
2: कुछ
1: hello.
2: तो कर दिया मैंने. हेलो
4: वालेकुम.
2: हाँ जी कौन है हमारे साथ?
4: मुबारक.
2: ईद मुबारक. एक बार नाम और बताइए.
4: अस्मा
2: खातून. अस्मा
1: खातून ओके. अस्मा जी, अस्मा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हम लोग. और अस्मा जी बताएं फिर, अभी ईद का आज आखिरी दिन है, इन दिनों में कोई ऐसी खास बात हुई जो आपको बड़ी अच्छी लगी और आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? थोड़ा थोड़ा तो अफसोस है लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जब कोई भी फेस्टिविटीज होती है, कोई भी त्योहार होता है तो कुछ ना कुछ खास होता है. तो आप बताएं कि कोई ऐसी चीज हुई जो आपको बड़ी अच्छी लगी, कोई दावत कोई बातें?
4: जी हम लोग कलकत्ता में गए थे, फायरवर्क्स देख के आया, अच्छी लगी. बच्चा लग भी थे.
1: अच्छा अरे वाह क्या बात है, क्या बात है. तो आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. चलें फिर कोई नहीं, हम आपसे सवाल पूछ लें अस्मा जी.
4: जी सर.
1: चलिए मैं बहुत आसान सा सवाल पूछ रही हूँ और आई एम श्योर कि आप इसका जवाब दे पाओगे. ठीक है
4: इंशाल्लाह.
1: ओके इंशाल्लाह. चलें आपके लिए सवाल है. मैं

0: एक कोन में आती हूँ और आपके हाथों पर ब्यूटीफुल रेड पैटर्न्स बनाती हूँ, मेरी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, क्या हूँ मैं?
1: बिरयानी।
2: कोन
0: कोन, मैं कोन में आती हूँ, ये चीज कोन में आती है, कोन्स में आती है और हाथों पर लगती है।
1: अस्मा जी सही जवाब दे रही हैं, मगर उन्होंने कोन बता दिया। किस चीज का कोन अस्मा जी?
2: आइसक्रीम
1: का कौन?
0: नहीं आइसक्रीम नहीं, हाथों पे लगती है ये चीज। हाथों पे लगती है।
1: अभी तो तुम ये काम कर सकती हो, वैसे हाथों पे आइसक्रीम लगा सकती हैं आप, मुझे पूरे
2: बिरयानी।
1: बिरयानी
0: नहीं, बिरयानी भी नहीं है। अच्छा सुन, नहीं अस्मा जी सुनिए ना, ये कोन्स में आती है चीजें ना, अपने हाथों में हम डिजाइन बनाते हैं इससे,
1: ईद पे लेडीज लगाती हैं।
2: मेहंदी।
0: हाँ जी एग्जैक्टली, दैट्स द राइट आंसर। यस, मैं दो मिनट के लिए सोचने लगी आपने कहा बिरयानी।
1: मैं ये सोच रहा था कि ये कबाब बिरयानी हाथों में अमिता लगाई कैसी लगेगी भाई, एक हाथ में कबाब लगे हुए, एक में बिरयानी लगी हुई अमिता के
0: सामने, सर्वर है मुझे कहा। नहीं नहीं, पर बहुत बढ़िया आपने गेस कर लिया।
1: बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपका जवाब भी सही है और आपको हमने लिस्ट में दर्ज भी कर लिया है।
2: थैंक यू।
1: दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को मैम। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो ये थी अमिता जी, नहीं अस्मा जी, अमिता ही याद रहता है मुझे। देख
0: कोई बात नहीं, अब सामने मैं ही हूँ ना।
1: नहीं, ये बात भी सही, मैं सोच रहा हूँ कि घर पे कहीं पिटाई ना हो जाए। तो भाई यहाँ पर हमारे साथ एक और चैंपियन, बिल्कुल अभी हमारे पास वक्त है कि हम, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या यूसुफ भाई हमारे साथ?
3: जी जी।
1: यूसुफ भाई आज बॉलीवुड का कोई सवाल नहीं है हमारे पास। आज हम खानों के बात कर रहे हैं।
0: यूसुफ भाई हर चीज का जवाब दे सकते हैं। यूसुफ भाई चले आपसे मैं सवाल पूछती हूँ सीधा, ठीक है? और सवाल आपके लिए बड़ा शानदार है कि मैं कलरफुल हूँ और बहुत सॉफ्ट हूँ, दिन में 5 बार आप मुझे बिछाकर अपने अल्लाह या क्रिएटर से बात करते हैं।
1: बहुत आसान कर दिया अमिता, बहुत आसान कर दिया यूसुफ भाई के लिए ये। नहीं नहीं कैंसिल कैंसिल, यूसुफ भाई बोली पेंसिल। यूसुफ भाई
3: जी जी बोली पेंसिल। करोड़ भाई बोले पेंसिल, जवाब पेंसिल।
1: नहीं नहीं आप बोलिए तो सही, पेंसिल
3: पेंसिल।
1: ये सवाल कैंसिल, दूसरा पूछेंगे हम।
0: नहीं नहीं हम यूसुफ भाई से सवाल पूछ चुके हैं। यूसुफ भाई क्या जवाब दिया आपने इसका?
1: मसल्ला, सही जवाब दिया उन्होंने।
0: हाँ तो चलो ना, सही जवाब दे दिया है, हमने जवाब लिख लिया है और इंशाल्लाह लेट्स सी क्या होता है।
1: चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाना बनाया ही होगा आपने दोपहर में, मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्या बनाया यूसुफ भाई? अच्छा नाश्ता कर लिया? ओहो माशाल्लाह, क्या खाया नाश्ते में यूसुफ भाई?
0: सैंडविच खाया भाई ने। ओके ओके,
1: वो जरा हैवी करना ना लंच, तो इसलिए ब्रेकफास्ट जो है जरा हल्का रखा है। चलिए यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक यहाँ पर। और क्या कहती है अमिता, इतना है अभी गुंजाइश?
0: बिल्कुल गुंजाइश है, हम एक और चैंपियन ले लेते हैं।
1: चैंपियन आते जा रहे हैं, अमिता के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं और एक और चैंपियन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ?
4: मुदस्सिर।
0: मुदस्सिर, ओके मुदस्सिर भाई कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल खैरियत से हैं, बस आज ईद का आखिरी दिन है तो हम भी अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको मौका मिले गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर जीतने का, है कि नहीं? अच्छा ये तो बताइए कि ईद का आज आखिरी दिन है, इन दिनों में क्या खास हुआ जो आपको बड़ा अच्छा लगा, आप शेयर करना चाहेंगे?
1: मेरे अलावा बताइएगा क्या अच्छा लगा।
4: कुर्बानी तो हो गई
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
4: फ्रेंड सर्कल्स वगैरह ये भी हो गया,
1: ये भी हो गया,
4: पास वगैरह भी हो गए,
1: ये भी हो गया,
4: एक बीच बाकी है क्या? वो इंशाल्लाह आज करेंगे।
1: एक और चीज भी तो बाकी है। अच्छा बीच पे आप जा रहे हैं ना आज?
4: हाँ जी
1: तो
4: हाँ।
1: वहाँ पे बारबेक्यू हो गई?
4: नहीं आज आज जाना है ना बीच पे.
1: नहीं नहीं बीच पे जाना है तो बारबेक्यू तो करेंगे वहाँ पे जाके.
4: हाँ जी हाँ.
1: क्या क्या करने वाले हैं? दो चार दो चीजें आप कर लिए मेन मेन, बाकी रोटी कोल्ड ड्रिंक मैं ले लेता हूँ. ठीक है भाई ठीक है. मुदस्सर भाई बिल्कुल ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है मुझे, कह रहे हैं ठीक है. सवाल पूछ लो भाई अमिता.
0: हाँ जी मुदस्सर भाई आपके लिए सवाल है
4: जी.
0: मैं फैमिली फोटोज की हीरो हूँ. ठीक है मैं फैमिली फोटोज की हीरो हूँ. मैं हवा में ऊंची रहती हूँ ताकि सबके चेहरे एक फ्रेम में आ सके. मैं क्या हूँ?
1: गैस वाला गुब्बारा. ये मैंने बताया मुदस्सर भाई, आप अपना जवाब दे दीजिए, मैं तो लिस्ट में शामिल हुई.
0: मुदस्सर भाई
4: सवाल फिर से.
0: यस यस.
4: कुछ क्लू मिले मिल सकता है इसके.
0: देखिए आप अब ये क्लू अपने आप में.
1: आपको बैलून
0: नहीं सुने. मैं फैमिली फोटोज की हीरो हूँ. ठीक है मैं हवा में ऊंची रहती हूँ ताकि सबके चेहरे एक फ्रेम में आ सके. मैं क्या हूँ?
4: एल्बम. एल्बम
0: एल्बम एल्बम तो फोटोज खींचने के बाद बनती है. बताएं बताएं
4: कैमरा.
0: हाँ, करीब है करीब है
1: करीब है. और करीब आई और करीब आई थोड़ा सा.
4: फोन कैमरा.
0: कैमरा तो है लेकिन क्या मतलब सोचिए क्या करते हैं हम जिससे कि यू नो सारे सारे लोगों के चेहरे ठीक आ सके. कौन सी चीज हवा में उठाते हैं हम ऐसे एंड देन एवरीबॉडी
1: स्पेस. अब तो बता दो यार हिंट दे दिया मैंने. चल भैया
4: पेंट.
0: क्या पेंट?
4: पेंटिंग.
0: नो भाई नो पेंटिंग नहीं है.
1: जवाब आ रहे होंगे हमारे पास. आई एम वेरी श्योर.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हमारे लिसनर्स बिल्कुल सही जवाब देने लग गए हैं. मैंने आसान भी किया अभी आपके लिए. या एग्जैक्टली.
1: गाना भी है. चलो भैया
0: चल भैया.
1: अगर ये इस गाने में नहीं बजाते तो फिर मुझे पूजा याद आ जाती है. सेल्फी मैंने ले ली आज. सेल्फी मैंने ले ली आज. सर पे मेरे रहता ताज.
0: एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. हमने जवाब ब्लॉक कर लिया
1: भाई,
0: है.
1: बहुत ही प्यारे मुदस्सर भाई, बहुत ही सीधे मुदस्सर भाई. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Alright then, Amita ji, अब हमें जरा ब्रेक की तरफ बढ़ जाना चाहिए. और क्योंकि हमें जो व्हाट्सएप पे ढेर सारे टोकरी भर भर के जवाब आए हुए हैं उनको भी दर्ज करना है और अजान का भी वक्त है. इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि अभी काफी टाइम है कि आप हमसे कनेक्ट हो सकें और ये सिलसिला जो है जारी भी रहे. तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक. यूं गए हम दोनों और यूं वापस आए. सुनते रहिए FM 107.
0: दिल से देसी.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: स्टॉप वन म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद
1: ईद मुबारक
2: और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज
0: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब तो मिस मत कीजिए जश्न ईद ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
3: लबैक अल्लाहुम्मा लबैक
2: लबैक की सदा
4: लबैक की सदा
2: एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगु दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए
4: लबैक की सदा
2: ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीम के साथ ओनली ऑन एफएम 107
5: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी को आपकी फैमिली को आपके बच्चों को आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां सुकून और तरक्की लेकर आए मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है सभी पुरानी बातों को गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा और सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी
6: Absolute cinema.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
0: आर यू रेडी फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: इस ईद दुनिया के रंग रिवायत और खुशी

0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: So yes, welcome है भाई आप सभी का घर घर ईद शो चल रहा है और बिल्कुल हम कहते हैं ना कि हमारा ये जो शो है अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। मैं हूँ अमिता आपके साथ और हमारे आरजे सरवर मिर्जा और ये तीसरा कौन जुड़ा भाई अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम अमिता जी, नौशाद आलम बात कर रहा
1: हूँ। नौशाद आलम बात कर रहे हैं, क्या बात है नौशाद जी, कैसे है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल खैरियत से।
3: नौशाद आलम या नुसरत आलम?
2: नौशाद आलम।
1: नौशाद आलम ठीक है। नौशाद जी आपसे हम सीधा सवाल पूछते हैं क्योंकि वक्त अब एकदम भागे जा रहा है, तो हमने कहा आपसे फटाफट पूछ लेते हैं। तो आपके लिए सवाल है, मैं स्पाइसेस का मिक्स हूँ, लौंग इलायची और दालचीनी, मैं एक चुटकी भर डाला जाता हूँ खाने के जान बढ़ाने के लिए।
3: सिंदूर। तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, नहीं कौन से बाबू थे, चुन्नी थे शायद।
2: ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है,
3: बहुत मुश्किल है।
1: नहीं भाई, अच्छा कभी आप खाना बनाया आपने या कुछ अंदाजा है?
3: कभी नहीं।
2: खाना तो बनाया हूँ, खाना बनाता हूँ, सब्जी मटन चिकन।
1: अरे फिर तो 100% आपको पता होगा। अच्छा एक मसाले, मतलब बहुत सारे मसालों का मिक्सचर होता है।
3: अरे यार कितना आसान कर दिया।
1: वो से डाला जाता है,
2: मतलब ये स्पाइसी के लिए डाला जाता है या सब्जी में या?
1: अब इसका जवाब सर्वर देंगे।
3: देखिए ये जो है थोड़ा रंग जो है बेहतर करने के लिए डाला जाता है, जब इसको हम मिलाते हैं तो रंग जो है वो बेहतर हो जाता है, उसके बाद इसको हम दीवारों पे लगाते हैं तो दीवारें शाइन करती हैं। वाह वाह वाह वाह।
1: हमें नॉन स्टॉप मैसेज आ रहे हैं, सही जवाब हमारे लिसनर्स ने गैस कर लिया है।
2: बिरयानी कलर तो नहीं?
1: देखिए मैं आपको अब आपको मैं बहुत सिंपल हिंट दूंगी। अरे करने दीजिए। देखिए ये जो भी आप डिश बनाते हो ना, खास तौर से ग्रेवी वाली, लास्ट में चुटकी भर डलता है टेस्ट बढ़ाने के लिए। क्या है ये, कौन से, मतलब ये कौन से नहीं मसालों का मिक्सचर होता है, इसका नाम क्या है?
2: गरम मसाला?
1: ये आप पूछ रहे हैं, बता रहे
3: गरम मसाला,
1: बता रहे हैं गरम मसाला। सर्वर लॉक करना नहीं करना है?
3: करना ही पड़ेगा, अब क्या करें आप?
1: चलो ये ऐसा आपका जवाब हमने लिख लिया है।
3: ओके नौशाद भाई, थैंक यू सो मच। नौशाद भाई, और देखा आपने किस कदर मुश्किल लगी इनको हंडिया बनाने में आज की, गरम मसाला ढूंढते रहे किचन में मगर मिल ही नहीं रहा था भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: दोबारा लग गई कॉल यार।
3: अरे बताइए ये क्या हो गया है यार, कौन है दोबारा में हमारे साथ ये तो बताइए।
2: वही है ना, दुआ वाला।
3: दुआ वाला?
1: दुआ वाला तो दुआ तो बहुत जगह से आ रही है भाई।
2: देने वाला।
1: अरे
3: दुआ देने वाला,
1: दुआ देने वाला, नाम नाम तो बता दीजिए।
2: इब्राहिम बोल रहा है।
1: इब्राहिम भाई साहब चले ठीक है, आ गए आप तो आपसे भी सवाल पूछ लिया जाए। और आपके लिए सवाल ये है, मुझे हफ्तों पहले शॉपिंग करके लाया गया, टेलर ने कस्टमाइज किया और आज मेरी वजह से आप माशाल्लाह लग रहे हो, क्या हूँ मैं?
2: कपड़े हो गए ना?
1: कपड़े? आर यू श्योर?
2: वही हो गए, टेलर से लाएंगे।
1: एग्जैक्टली आपका जवाब ने लॉक कर लिया है। थैंक यू सो मच।
2: एक बार तो लक नहीं लगा, दूसरी बार ट्राई में सोचा ट्राई कर लेंगे।
3: अरे यही तो है, यही तो है, जो ट्राई करते रहना है उन्हीं की जीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।
2: चलो अल्लाह खुश रखे दोनों को।
3: आमीन, आपको भी आमीन। शुक्रिया के थे भाई इब्राहिम भाई हमारे साथ और यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर चैंपियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
1: वक्त भागे जा रहा है और अभी एक कॉल हम और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
3: अमिता उधर से आपकी आवाज आई मुझे।
1: हेलो,
3: ये क्या?
1: शायद रेडियो उनका तेज है। हेलो,
3: आपकी आवाज आ रही है, मेरी तो आ नहीं रही।
1: हाँ जी, कौन है हमारे साथ? एक बार फिर से नाम बोलेंगे।
5: अरकम अहमद सैयद।
1: अरकम?
5: हाँ।
1: क्या नाम है भाई, माशाल्लाह। अरकम जी कैसे हैं आप?
5: अच्छे
1: अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह,
3: मेरा प्यारा बेटा।
1: तो मतलब ये सबसे खूबसूरत बात हो गई। ईद कैसी रही आपकी अरकम, ये बताओ? अच्छी थी ओले वाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कितनी ईदी मिली आपको
5: जीरो
1: जीरो
3: अरे
1: अरे ये क्या हुआ
3: ऐसा कैसे जीरो जीरो कर दी इन्होंने एक्चुअली मिली तो बहुत थी
5: ईदी मिली लेकिन गोल्ड बहुत सारा
3: आए हाय हाय और मुझे नहीं मिला अरकम भाई
5: क्या पता
3: मैं बता रहा हूँ नहीं मिला बाबा से कहना कि वो सर्वर जो है गोश्त नहीं दिया उसको भाई कब दोगे उस

0: Kaifa. ओके
1: देंगे बाद में,
0: देंगे बाद में, अच्छा बाद में देंगे भाई, पहले हम पहले अपना देख लें फिर आपकी,
2: फिर बाद में देंगे। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, आपसे हम बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी माशाल्लाह से इतनी प्यारी है और आप एकदम हमारे शो के आखिर में आए हैं, तो चले मुझे बताएं ये क्या हो सकता है। ठीक है, बच्चों को ये बहुत पसंद है, बहुत प्यारी चीज़ है ये, ठीक है, और बड़े जो होते हैं ना हमारे घर के वो हमेशा हमको ये देते हैं, और ये सैलरी तो नहीं है लेकिन ये वो पैसे हैं जिससे हर ईद हमारी जेबें फुल रहती हैं। ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब,
0: सही जवाब है अरकम का। बहुत बहुत शुक्रिया अरकम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूब एंजॉय कीजिए ईद घर वालों के साथ, ठीक है? ओके बाय
2: बाय,
1: थैंक यू अंकल,
0: वेलकम। अरे अंकल थोड़ी, भाई भाई सर्वर भाई। ओके
2: ओके, अल्लाह हाफिज।
0: तो ये थे अरकम प्यारे प्यारे हमारे साथ, और देखते हैं कि अब कौन दूसरा प्यारा हमारे साथ है। हेलो, सलाम अलैकुम।
3: सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हु
3: ईद मुबारक हो सर्वर भाई, अमिताभ
2: जी। अरे खैर मुबारक, कौन जुड़ा हमारे साथ?
3: जी मैं सैयद फैजल बात कर रहा
0: हूँ। ईद मुबारक फैजल भाई, ईद मुबारक फैजल भाई हमारे साथ।
2: सो फैजल भाई चले आपसे सीधा सवाल ही पूछते हैं।
0: अरे आप टेढ़ा पूछिए, क्या मुश्किल है।
2: अच्छा पहले सवाल से पहले एक सवाल पूछ लेते हैं, ये तो बता दीजिए फैजल भाई आप खाना वगैरह बनाते हैं?
3: खाना जी बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
2: बना लेते हैं।
0: हाँ मतलब बना लेते हैं, वैसे बस खाने पे ज्यादा जो गौर फिकर पे होती है, बनाते हो?
3: हाँ, लेकिन खाना बहुत अच्छे से आता है,
0: खाना बहुत अच्छे से आता है।
2: ओके ठीक है,
0: उतने अच्छे से
2: मेरे ख्याल से इसका जवाब आप दे पाएंगे, तो आप मुझे जरा ध्यान से सुने और फिर बताएं, ठीक है?
0: सुनाइए।
2: मैं लोहे की हूँ और काली हूँ, मुझ पर आज ढेर सारा मीट रोस्ट हो रहा है, मैं क्या हूँ?
3: लोहे की और काली हूँ, तो तवा हो सकता है, फिर कढ़ाई भी हो सकती है।
2: अच्छा और क्या हो सकता है?
3: और क्या, और पतीले भी होते हैं, कुछ
2: पतीला भी होते हैं। इसका इसका जवाब क्या कहते हैं सर्वर भाई, क्या सही होगा?
0: अब वैसे ठीक है ये भी, मगर और ज्यादा टेक्निकली देखा जाए तो एक और चीज भी है
2: जिसमें बहुत सारा जो गोश्त होता है वो रोस्ट होता है। ठीक है,
3: बहुत सारा,
2: हाँ बहुत सारा, ढेर सारा मीट रोस्ट हो रहा है। आहा, क्या वो चीज है?
3: बड़ी देग,
0: बड़ी देग,
2: बड़ी देग कह रहे हैं।
0: उन्होंने कहा ज्यादा हो रहा तो भैया देख ले आओ, ऐसे तो काम चलेगा नहीं।
2: हाँ जी बिल्कुल सही,
0: करीब करीब
2: करीब करीब ही है, बट ठीक है आपका जवाब हमने लॉक कर लिया।
0: लिख लिया है फैजल भाई, लिख लिया है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ दूसरे चैंपियन भी शामिल हो जाएं। ओके ये रहे। हेलो सलाम वालेकुम, हेलो
4: हेलो सलाम
2: वालेकुम। सलाम
0: जी भाई, कहाँ थे
4: भाई? यही है सरवर भाई, आप सुनाए कैसे हैं? सरियत से हैं, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अरे सर अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, अमिता भी बहुत प्यारी हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: माशाल्लाह
2: बहुत प्यारी हैं। भाई बताएं फिर क्या हाल है, ईद के क्या चल रहा है अभी?
4: अभी तो थोड़ी देर पहले ईद के आखिरी दिन की सेवइयां खाई हैं।
2: क्या बात है, तो अच्छा नाम तो बताएं आपका।
4: नईम परवेज।
2: नईम परवेज,
0: तो
2: चले नईम भाई इसी बात पे हो जाए सवाल आपके लिए।
4: चले भाई ट्राई कर लेते हैं, आज आपका सवाल है।
2: अरे ट्राई कर ही लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ओके तो सवाल है, मैं गोल हूँ फ्लफी हूँ।
0: ऐसे नहीं छोड़ सकती आप मुझे अमिता ऑन एयर प्लीज।
2: ये ना सर्वर भाई सच में,
0: अच्छा,
2: मैं गोल हूँ फ्लफी हूँ और मुझ पर थोड़े से तिल लगे हैं, ठीक है, मैं बिरयानी और कोरमे की फेवरेट पार्टनर हूँ, मैं क्या हूँ?
4: बिरयानी और कोरमे की फेवरेट पार्टनर हूँ,
0: मतलब बिरयानी के बाद कोरमे की, कोरमा ले लेते हैं या जितनी भी सालन की डिशेज हैं।
2: यस उसकी मतलब फेवरेट पार्टनर है, उसके बिना मतलब नहीं।

0: नहीं मजा आता,
1: खा ही नहीं सकते
2: भाई। ओके, उसमें तो फिर ये गोल हूँ फ्लफी हूँ तो वो तो टमाटर हो गए या
0: टमाटर कह रहे हैं। नहीं नहीं,
1: आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार।
2: तो हिंट तो बताओ,
0: हिंट हिंट
1: तो भाई जरा सा बना के खिलाओ पिलाओ अमिता, जब तो बताएंगे नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना।
0: अच्छा देखिए, अब हम कोरमे
1: के साथ कैसे, कोरमा कैसे खाते हैं आप, चमचे से?
2: अच्छा अच्छा हाँ समझ गया, नान नान।
1: हाय हाय क्या लगाई है, मोटी मोटी नान। ठीक है चलिए, आपका जवाब हमने लिख लिया,
2: तिल वाली
1: नान। ठीक है, रोगन नान, तिल वाली नान, सारी नान याद दिलानी, भूख लगने लगी। चलिए भाई, नहीं भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
1: तो भाई अब बिल्कुल आखिरी समय आ गया है आज के चैंपियंस को शामिल करने का, और ये हमारे साथ कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। फारूक हुसैन,
0: तारिक हुसैन। ओके तारिक भाई, तारिक भाई चलिए अब आपसे सीधा सवाल की तरफ ही हम अब रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल भागे जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए सवाल बड़ा मजे का है और आप ध्यान से सुने। चावल मीट और मसालों का मेल, ठीक है, चावल मीट और मसालों का मेल, ईद के दस्तरखान का असली खेल क्या हूं मैं?
3: बिरयानी।
0: क्या
3: बिरयानी?
0: आर यू श्योर? ओके, आपका भी जवाब हमने लाइक भी किया और उसके बाद लॉक भी कर लिया। एग्जैक्टली, इट्स बिरयानी।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है,
0: क्या बात है।
1: तारिक भाई खा लिए बिरयानी? चलिए ठीक है, तो अब तारिक भाई से ही आज का जो नंबर है फाइनली वो भी पूछ लेते हैं। तो तारिक भाई, आपने एक से लेके और 32 तक बताना है कि कौन आज का विनर होगा, जिसमें आपका भी नाम शामिल है। आराम से सोच लीजिए, फ्रॉम वन, बिटवीन 1 to 32 है, बता दिया क्या?
0: 31 कह रहे हैं।
1: 31 कह रहे हैं, क्या बात है यार। चलिए ठीक है साहब, 31 भी हमने लिख लिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी जवाब आ जाएगा कि कौन आज का चैंपियन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो अमिता जी 31 हुए यहाँ पर सिलेक्ट, और क्या लगता है अमिता जी कौन होगा आज का चैंपियन, कुछ बता सकते हैं? गेस, एनी गेस, एनी गेस, एनी गेस,
0: मेल या फीमेल? मेरा सपोर्ट तो फीमेल को है,
1: नहीं वो तो रहना भी चाहिए, बट आज के दो दो हमारे मेल विनर से ही रहे और 31 पे हैं नवे।
0: ओ भाई साहब क्या बात, मुबारका मुबारका मुबारका।
1: कंफर्मेशन के लिए बता दें कि भाई 3305 आखिर में नवेद जो हैं वो विनर हैं, एंड जो पहले आर के थे सोहेब अमजद 8858 उनके नाम नंबर में आखिर में है, तो ये दोनों आज के विनर
0: लकी विनर हैं। गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर आपके नाम है, एंड थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, हमारी जो FM 107 की एडमिन टीम है वो आपसे राब्ता कायम करेगी, तो ऐसा ना सोचें कि आपसे कॉल पे बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जब भी कोई कॉल्स आए तो प्लीज रिसीव करें, क्योंकि ये भी अक्सर होता है सर्वर की जीत जाते हैं हमारे विनर्स, लेकिन अफसोस ये हो जाता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हमसे, सो प्लीज कॉल्स वगैरह ले लिया करें।
1: सभी लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े और इन सारे दिन हमारे साथ रहे। सभी को ईद मुबारक हो मेरे और अमिता की तरफ से, बहुत मजा आया, खूब बातें हुई, खूब हंसी मजाक भी हुआ, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा, उम्मीद करते हैं और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आगे भी FM 107 की तरफ से ये खिदमात अंजाम दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिलहाल अमिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए,
0: और आपका भी सच में मतलब सर्वर और हम दोनों का जो पेयरिंग थी, या सिर्फ हंसते हंसते हंसते
1: आपके साथ
0: हमारा दिन गुजरा,
1: पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजर गया। तो फिलहाल अब
0: एंजॉय द सॉन्ग,
1: ये आपके लिए भाई एक हो गए हम और तुम।
0: यस, उड़ गए।
1: तो ये खूबसूरत गाना एंजॉय कीजिए हम्मा, और मैं और अमिता आपसे इजाजत लेते हैं. अब इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, मेरी तो सुबह होगी 11 बजे ही, और अमिता की भी
0: मैं 1:30 बजे आपसे मिलूंगी सुपर के शो पर. तो हमारे जो प्रोग्रामिंग है, हमारे जो बाकी शोज हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल कल से शुरू हो जाएंगे.
1: कल नॉर्मल शुरू हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला नया सीजन भी आ रहा है जो आपको बता दिया है हम लोगों ने ऑलरेडी, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी आप हिस्सा बनेंगे.
0: यस,
1: बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए.

FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ईद मुबारक आप सभी को. मैं हूं नाज़िया फ्रॉम 107 से एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज. दोस्तों, कुर्बानी हो गई, गोश्त आपने अपने रिलेटिव्स को भी बांट दिया, अपने लिए भी रख लिया, गरीबों को भी बांट दिया, और अब आ जाता है वो काम जो सबसे टीडियस है. मेरा मतलब है कुकिंग का. अक्सर ये समझा जाता है कि कुकिंग की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी फीमेल्स की है, लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर की जो फीमेल्स हैं वो लगातार बांटने यानी कुर्बानी के एक तो पैकेट्स बनाने फिर बांटने में भी साथ होती हैं, और बहुत सारे काम ऐसे भी कर रही होती हैं जो पैरेलली हमें नजर नहीं आते. ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईद उल अदा के इस खास मौके पर हम सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बकायदा रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन और क्लियर कर दें. देखिए, ईद उल अदा एक ऐसा मुबारक मौका है जो सिर्फ इबादत का मौका नहीं है बल्कि फैमिली बॉन्डिंग और टीम वर्क का भी मौका है. ये वो वक्त होता है जब घर के सब मेंबर्स मिलकर साथ में काम करें, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं कि किसी एक पर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े. इस तरह ईद सिर्फ एक एक शख्स की जो है वो ईद ना रहे, सबकी ईद हो. ईद एक दिन की सेलिब्रेशन भी नहीं है, कुर्बानी एक दो तीन चार दिनों तक चलती है. ऐसे में ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि कौन सा घर का ऐसा मेंबर है जिसपे सबसे ज्यादा काम का लोड है. क्या हम उसके इस लोड को कम कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो एहसास है? देखिए, ईद की तैयारियां आम तौर पर कुछ घरों में तो पहले से शुरू हो जाती हैं, जो कि होनी भी चाहिए. कुछ प्लानिंग करना, कुछ ग्रॉसरी कर ली इस तरह से. कुछ लोग जो है अपने घर पे इनवाइट करना पसंद करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो बड़ी बड़ी दावतों के अहतमाम किए जाते हैं. यहाँ पर एक चीज ये है कि कुछ लोग तो बाहर से कुक को बुला लेते हैं कि चलिए आप बना दीजिए, सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलके खा लेंगे. लेकिन कुछ जगह या कुछ घरों में ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, उन्हीं को बनाना है. अब उन पर जो है, क्या उन पर हम सेलिब्रेशंस जो है अपनी खुशियां जो है वो इस तरह से डाल रहे हैं कि उनकी अपनी खुशी तबाह हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि घर का हर शख्स ये हक रखता है कि वो भी आपकी तरह ईद की सेलिब्रेशंस या ईद को उसी तरह से एंजॉय करे जैसे आप करना चाहते हैं. घूमना फिरना, इंटरेक्ट करना, तैयार होना, खाना एंजॉय करना. क्या आप इस मामले में सबका ख्याल

करते हैं? क्या हर घर के हर एक शख्स को एक प्रॉपर रोल दिया जाता है? घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा होता है? अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी को लेनी होगी, बच्चा हो बड़ा हो। हर एक के पास कोई ना कोई छोटा मोटा काम होना ही चाहिए। देखिए, मर्दों का रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का इंतजाम करना, प्रॉपर जगह का इंतखाब करना, सफाई, सेफ्टी, इन सारी चीजों का ख्याल ये ज्यादातर मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं। साथ ही वो घर के दूसरे कामों में भी हेल्प करते हैं, जैसे सामान लाना है, कई बार है कि गेस्ट के लिए अरेंजमेंट्स करना है या बच्चों का ख्याल करना है। लेकिन औरतों का रोल भी ईद पर देखा जाए तो ट्रेडिशनली कुकिंग और प्रिपरेशन से ही जुड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अकेले सब कुछ करना चाहिए। आज के दौर में फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो टीम वर्क पर होना चाहिए, जहाँ घर के सब मेंबर्स किचन में भी हेल्प कराएं, कोई चॉपिंग करे, कोई टेबल सेट करे, कोई सर्विंग करे। इस तरह से ना सिर्फ काम आसान हो जाता है बल्कि फैमिली टाइम भी इंजॉय किया जाता है, फैमिली बॉन्ड भी मजबूत होता है। ईद का दिन हम सब के लिए खुशी मनाने का दिन है। किसी का काम हो सकता है कि वो गेस्ट को वेलकम कर ले, किसी का काम है कि भाई वो चाय की जिम्मेदारी ले ले, किसी का काम ये भी हो सकता है कि चलो आप बड़े हैं घर के, बुजुर्ग हैं, तो चलो बच्चों को आप हैंडल कर लो या उन्हें एंगेज कर लो। जब हर शख्स अपना रोल प्ले करता है ना, तब एक पॉजिटिव और एक खुशनुमा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। दोस्तों, ईद उल अधा एक इम्पॉर्टेंट पहलू हमें जो सिखाता है वो है शेयरिंग और केयरिंग का। फैमिली मिलकर प्लान करे कि किन लोगों को कुर्बानी का हिस्सा देना है, किन लोगों को कुर्बानी के वक्त मौजूद रहना है, किन लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली कुकिंग के लिए तैयार रहना है, कैसे नेबर्स या जरूरतमंद लोगों तक ये खुशियां पहुंचानी है। जब सब घर के एक एक मेंबर का जो रोल है वो डिफाइन हो जाएगा, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक, तो किसी भी तरह का कोई भी इम्बैलेंस घर में क्रिएट नहीं होगा, ना ही घर में क्योटिक सिचुएशन आएगी। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ईद फैमिली को एक दूसरे के करीब लाती है। बिजी रूटीन में भी हम अक्सर एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ईद हमें याद दिलाती है कि फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर घर का हर मेंबर मिलकर काम करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे, हेल्प करे, तो ईद सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं रहेगी बल्कि ये खूबसूरत मेमोरी बन जाएगी जो दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि ईद उल अधा हमें सिखाती है कि फैमिली सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एहसास का नाम है, शेयरिंग और केयरिंग का नाम है, टीम वर्क और सपोर्ट का नाम है। जब घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करता है, साथ में सब काम करते हैं, तो ना सिर्फ ये काम जो है वो हल्का होता है बल्कि किसी का बोझ हम हल्का कर देते हैं और किसी की खुशियां हम डबल कर देते हैं। ईद पर अगर औरत अकेली किचन में बिजी रहे और बाकी लोग सिर्फ एंजॉय करें, तो ये ईद का असल मकसद, असल पैगाम नहीं है। असल ईद तब होती है जब सब साथ हो, सब काम शेयर करें और सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, ईद उल अधा का पैगाम ये है कि मिलजुल कर काम करो, जियो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ और अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करो। और इस तरह से ही जब सब खुश होते हैं तो असल ईद की असल सेलिब्रेशन जो है वो हो पाती है। क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि ईद कुर्बानी का नाम नहीं है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, उनकी मदद करना और एक स्ट्रॉन्ग और लविंग रिश्ता बनाना भी है। क्योंकि असली ईद वही होती है जहां फैमिली एक साथ दिल से होती है। दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि मैं आपसे कहूँ दिल से देसी, मेरा मतलब है इजाजत लूँ आपसे और आपकी हमारी मुलाकात होगी किसी और सेगमेंट में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ईद के चौथे दिन भी अपनी सेलिब्रेशंस को जारी रखिए और हमें सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे। आमीन।

0: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स

0: और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं ईद सुना और आज हम आपको बताएंगे एक और अहम सुन्नत के बारे में और वो है ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ खाना, खास तौर पे खजूर। इस्लाम में ईद उल फितर के दिन एक खास अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये कि ईद की नमाज से पहले कुछ खाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज के लिए जाने से पहले और टंबर में खजूरें खाया करते थे। इस अमल से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और इबादत को एक मुनज्जम अंदाज पे अदा करें। रमजान में मुसलमान पूरा दिन रोजा रखते हैं लेकिन ईद के दिन रोजा नहीं होता, इसलिए ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ खाना इस बात की अलामत है कि रोजे का सिलसिला खत्म हो गया और अब खुशी और इनाम का दिन शुरू हो गया। एक छोटा सा अमल है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को पसंद फरमाते थे। खजूर एक सादा लेकिन बाबरकत ग़िज़ा है। ईद के दिन खजूर खाने से सुन्नत पर अमल होता है, जिस्म को हल्की दवानाई मिलती है और दिन का आगाज बाबरकत अंदाज में होता है। ताक अदद यानी 1-3-5 खजूरें खाना भी सुन्नत है। इस्लाम में हर चीज में नज़म हमें मिलता है। ईद के दिन नमाज से पहले खाना इस बात को जाहिर करता है कि हर इबादत का एक खास तरीका है और हर अमल अपनी जगह पे होना चाहिए। यह हमें जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। आज की किस्त में हमने ये जाना कि ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ खाना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें खाते थे और ये अमल खुशी, शुक्र और नज़्म की अलामत है। इस्लाम हर छोटे बड़े अमल में बड़ी हिकमतें सिखाता है। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।

करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। श्रीलंका और दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अरविंदा डी सिल्वा, या दोस्तों मशहूर और लेजेंडरी बैट्समैन रहे हैं अरविंदा डी सिल्वा, जिन्होंने अपनी क्लास और मैच विनिंग परफॉर्मेंस से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। अरविंदा डी सिल्वा को श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे डिपेंडेबल और स्टाइलिश बैट्समैन माना जाता है, जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालने की सलाहियत रखते थे। अरविंदा डी सिल्वा वॉज अ क्लासी बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दैट। अगर एग्रेशन की बात करें, हम विवियन रिचर्ड्स की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत विवियन रिचर्ड्स के ही अगर रोल मॉडल अगर देखें, विवियन रिचर्ड्स को अगर रोल मॉडल उन्होंने बनाया था, तो उसी तरह हार्ड हिटिंग स्ट्रोक्स वॉज हिज कैपेबिलिटी टू हिट द बोलर्स ऑल अराउंड द क्रिकेट फील्ड। दोस्तों अरविंद डी सिल्वा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करियर 1984 में शुरू किया और जल्द ही मिडिल ऑर्डर का एक अहम हिस्सा बन गए। उनकी बैटिंग टेक्निक, टाइमिंग और कंपोजर उन्हें दुनिया के

में शुमार करता है टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दी और कई यादगार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतेह दिलाई 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप अरविंदा डी सिल्वा के करियर का गोल्डन चैप्टर था फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी ने श्रीलंका को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जितवाने में बुनियादी किरदार अदा किया और इस परफॉर्मेंस ने उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर सुपरस्टार बना दिया बैटिंग के अलावा अरविंदा डी सिल्वा एक यूजफुल ऑफ स्पिनर बॉलर और सेफ फील्डर भी थे फाइनली जब वो रिटायरमेंट का ऐलान किया तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कोच और सेलेक्टर के तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट की खिदमत जारी रखी दोस्तों अरविंदा डी सिल्वा हमेशा श्रीलंकन क्रिकेट के एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

मुल्क हमारे पड़ोसी और पूरी उम्मत को अमन इत्तेहाद और रहमत अता फरमाए अल्लाह सुभानहू व तआला हमें और आपको हर शर से महफूज रखे आमीन या रब्बल आलमीन सामीन इस दुआ के साथ सरवर मिर्ज़ा की जानिब से ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगू, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा सीम के साथ, ओनली ऑन FM 107।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ सीम और आप सुन रहे हैं लब्बैक की सदा। आज की इस रूहानी और खास नशिस्त में आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम का नाम है लब्बैक की सदा, एक ऐसी सदा जो हर मोमिन के दिल से निकलती है, एक ऐसी पुकार जो मोहब्बत, इबादत और अल्लाह की इताअत का पैगाम देती है। जब लाखों हुज्जाज एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं गूंजते बल्कि दिलों की धड़कनें, रूहों की कैफियत और अल्लाह से कुर्बत का एहसास जिंदा हो जाता है। ईद उल अदा हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, एक ऐसी मिसाल जो कयामत तक ईमान और सब्र की रोशनी बनकर रहेगी। आज के प्रोग्राम में हम हज की रूहानियत, कुर्बानी के असल मानी और ईद उल अदा के पैगाम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लब्बैक की सदा। हज सिर्फ एक मामूली सा यूं ही सफर नहीं बल्कि रूह का सफर है। एक मोमिन जब एहराम बांधता है तो वो दुनिया की तमाम पहचानों को पीछे छोड़ देता है। ना अमीर की अलग पहचान रहती है ना गरीब की, सब एक सफ में अल्लाह सुभान व तआला के सामने खड़े होते हैं। यही इस्लाम का हुस्न है, वहदत, बराबरी और बंदगी। काबा को देखते ही जो आंसू आंखों में आते हैं वो सिर्फ जज्बात नहीं होते, वो अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होता है। और फिर हर तरफ एक ही सदा गूंजती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये वो अल्फाज हैं जो बंदे की पूरी जिंदगी का इकरार है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। ईद उल अदा का सबसे बड़ा पैगाम कुर्बानी है और कुर्बानी का सबसे अजीम वाकया हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नजर आता है। जब अल्लाह सुभानहु व तआला ने अपने नबी को ख्वाब में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया तो ना कोई शिकवा हुआ ना कोई सवाल किया गया। एक तरफ बाप की मोहब्बत, दूसरी तरफ अल्लाह सुभानहु व तआला का हुक्म,

कपड़े मतलब अपना बेस्ट आउटफिट पहनते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं. इसके बाद तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है जो अल्लाह सुभान व तआला की अजमत और बड़ाई का इजहार

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: हुआ पहुंचता है। इस्लाम ने कुर्बानी के वक्त और तरीके को भी सुन्नत के मुताबिक मुकर्रर फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी की उसने सिर्फ अपने लिए ज़बह किया, और जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। सामने कराम, आज हमें चाहिए कि हम कुर्बानी को सिर्फ एक माशरती रिवायत न समझें बल्कि उसके असल रूह को समझने की कोशिश करें। ये इबादत हमें इताअत सिखाती है, इखलास सिखाती है, अल्लाह ताला के करीब होने का रास्ता दिखाती है। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाएं, हमें इखलास अता फरमाएं, साथ साथ अहले फ़िलिस्तीन और अहले गज़ा को इज्जत, कुव्वत, नुसरत और गलबा अता फरमाएं। ए अल्लाह, तू उनके दुश्मनों के दिल में उनका रौब पैदा फरमा और उन्हें अपनी खास मदद से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं पैगामात के साथ सामिन इकराम, प्रोग्राम पैगाम ईद अपने अख्तिताम को पहुंचता है। तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफ़ुज़्ज़मान को ईद उल अज़हा के इस खुसूसी सेगमेंट से दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: अस्सलामु अलैकुम साथियों। देखिए, मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों, एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई, मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: ईद मुबारक, ईद मुबारक।
3: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आज ईद उल अज़हा का चौथा दिन है, इस्लाह, अमन और खैर का दिन। आइए अल्लाह सुबहाना व ताला की बारगाह में एक साथ हाथ उठाकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री व अस्लिह ली दुनियाय अल्लती फीहा मआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फीहा मआदी واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت رحمة لي من كل شر يا الله میرا دین درست کر دے جو میرے معاملات کی حفاظت ہے میری دنیا درست کر دے جس میں میرا گزارا ہے میری آخرت درست کر دے जहां मुझे लौट कर जाना है मेरी जिंदगी को हर भलाई में इजाफा बना दे और मौत को हर बुराई से राहत बना दे। समीन, ईद उल अज़हा का चौथा दिन हमें बैलेंस सिखाता है, दीन भी, दुनिया भी और आखिरत भी। काफी दफा हम सिर्फ पहलू पकड़ लेते हैं, या सिर्फ दुनिया, या सिर्फ जज्बात, या सिर्फ शिकायत। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि मोमिन की जिंदगी का निजाम मुकम्मल होता है, दीन से राह मिलती है, दुनिया से इम्तिहान होता है और आखिरत से मंजिल का एहसास होता है। और जब हम कहते हैं हयात ज्यादा, तो मतलब ये है कि हमारी जिंदगी का हर दिन खैर में बढ़ता जाए। और जब मौत राहत कहते हैं तो मतलब ये है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें ऐसी आखिरत दे जो रहमत और सुकून वाली हो। समीन, ईद का सबसे बड़ा तोहफा ये है कि अपनी जिंदगी को खैर की तरफ मोड़ दें। आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुतवाजन रास्ता इख्तियार करें, ना इतनी लगन के दुनिया को भूल जाएं, ना इतनी मसरूफियत के दीन दूर हो जाए, बल्कि हर काम में अल्लाह सुबहानहु व ताला की रजा को सामने रखकर चलना ही असल कामयाबी है। ये ही वो बैलेंस है जो इंसान को बेचैनी से निकाल कर सुकून तक ले जाता है। और सामईन, जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को खैर की तरफ मोड़ देते हैं तो हर दिन एक नई ईद बन जाता है। हर फैसला, हर दुआ और हर कोशिश अगर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला के लिए हो तो उसमें बरकत ही बरकत होती है। ये एहसास कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा मकसद के साथ जुड़ा है, इंसान को अंदर से रोशन रखता है। तो आइए इस चौथे दिन पर ये इरादा करें कि हम अपनी जिंदगी में बैलेंस कायम रखेंगे, दीन, दुनिया और आखिरत को साथ लेकर चलेंगे और हर कदम पर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की रजा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमें इस तवाजुन भरी जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, हमारी सारी कोशिशों को अपनी रजा के लिए कबूल करे और हमें दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमारे दीन को मजबूत करे, हमारी दुनिया को हलाल और बरकत वाली बनाए और हमारी आखरत को जन्नत का रास्ता दे। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी और पूरी उम्मत को अमन, इत्तेहाद और रहमत अता फरमाए। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमें और आपको हर शर से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, इस दुआ के साथ सरवर मिर्जा की जानिब से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, स्पेशल जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद।
2: ईद मुबारक। आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
3: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब, तो मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
4: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं हदीस इन अ मिनट सीम के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के दिन नमाज के बाद खुतबा दिया और फरमाया, जो हमारी तरह नमाज पढ़े और हमारी तरह कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी अल्लाह सुबहान व तआला के नज़दीक मकबूल होगी और जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। हजरत अबू बुर्दा बिन निया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु के चाचा थे, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईद की नमाज से पहले ही अपनी कुर्बानी कर ली थी। मैंने सोचा आज खाने पीने का दिन है और मैं चाहता था कि मेरे घर में सबसे पहले कुर्बानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वो बकरी सिर्फ गोश्त के लिए थी, कुर्बानी नहीं हुई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक जवान बकरी है जो मुझे दो बकरियों से भी ज्यादा प्यारी है, क्या वो मेरी तरफ से कुर्बानी के लिए काफी होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हारे लिए काफी होगी, लेकिन तुम्हारे बाद किसी और के लिए काफी ना होगी। रिवायत सही बुखारी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्वाजल फरिश्तों से फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा बुराई करने का इरादा करे तो उसके खिलाफ उस वक्त तक ना लिखो जब तक वो बुराई उसके सरजद ना हो। अगर वो उस बुराई का इर्तिकाब कर ले तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखो, और अगर वो मेरी खातिर उसे छोड़ दे तो उसके लिए एक नेकी लिखो, और जब वो कोई नेक काम करने का इरादा करे लेकिन उसे कर न सके तो भी उसके हिस्से में एक नेकी लिख दो, फिर अगर वो नेकी कर ले तो उसके लिए 10 से 700 गुना तक बढ़ाकर लिख दो। रिवायत सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिर्मिजी।
5: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں
5: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107
5: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्पा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रीफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। श्रीलंका और दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अरविंदा डी सिल्वा, या दोस्तों मशहूर और लेजेंडरी बैट्समैन रहे हैं अरविंदा डी सिल्वा, जिन्होंने अपनी क्लास और मैच विनिंग परफॉर्मेंस से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। अरविंदा डी सिल्वा को श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे डिपेंडेबल और स्टाइलिश बैट्समैन माना जाता है, जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालने की सलाहियत रखते थे। अरविंदा डी सिल्वा वॉज अ क्लासी बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दैट। अगर एग्रेशन की बात करें, हम विवियन रिचर्ड्स की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत विवियन रिचर्ड्स के ही अगर रोल मॉडल अगर देखें, विवियन रिचर्ड्स को अगर रोल मॉडल उन्होंने बनाया था, तो उसी तरह हार्ड हिटिंग स्ट्रोक्स वॉज हिज कैपेबिलिटी टू हिट द बोलर्स ऑल अराउंड द क्रिकेट फील्ड। दोस्तों अरविंद डी सिल्वा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करियर 1984 में शुरू किया और जल्द ही मिडिल ऑर्डर का एक अहम हिस्सा बन गए। उनकी बैटिंग टेक्निक, टाइमिंग और कंपोजर उन्हें दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में शुमार करता है। टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दी और कई यादगार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतेह दिलाई। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप अरविंदा डी सिल्वा के करियर का गोल्डन चैप्टर था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी ने श्रीलंका को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जितवाने में बुनियादी किरदार अदा किया और इस परफॉर्मेंस ने उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर सुपरस्टार बना दिया। बैटिंग के अलावा अरविंदा डी सिल्वा एक यूजफुल ऑफ स्पिनर बॉलर और सेफ फील्डर भी थे। फाइनली जब वो रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कोच और सेलेक्टर के तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट की खिदमत जारी रखी। दोस्तों अरविंदा डी सिल्वा हमेशा श्रीलंकन क्रिकेट के एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद मुबारक। ईद की मसरूफियात में अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की सेहतमंद आदत भूल जाते हैं, जिसकी वजह से थकन, सुस्ती और बहुत सारे जो तिबी मसाइल हैं सेहत के हवाले से वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए ईद के दौरान हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उस पर भी फोकस करना है, जैसे कि अपनी मुनासिब नींद जो है वो पूरी करनी है। जैसे कि जो आपकी रूटीन है, आपको चाहिए कि उस तरह से ही आप रूटीन जो है वो रखें।

आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ईद मुबारक आप सभी को. मैं हूं नाज़िया फ्रॉम 107 से एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज. दोस्तों, कुर्बानी हो गई, गोश्त आपने अपने रिलेटिव्स को भी बांट दिया, अपने लिए भी रख लिया, गरीबों को भी बांट दिया, और अब आ जाता है वो काम जो सबसे टीडियस है. मेरा मतलब है कुकिंग का. अक्सर ये समझा जाता है कि कुकिंग की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी फीमेल्स की है, लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर की जो फीमेल्स हैं वो लगातार बांटने यानी कुर्बानी के एक तो पैकेट्स बनाने फिर बांटने में भी साथ होती हैं, और बहुत सारे काम ऐसे भी कर रही होती हैं जो पैरेलली हमें नजर नहीं आते. ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईद उल अदा के इस खास मौके पर हम सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बकायदा रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन और क्लियर कर दें. देखिए, ईद उल अदा एक ऐसा मुबारक मौका है जो सिर्फ इबादत का मौका नहीं है बल्कि फैमिली बॉन्डिंग और टीम वर्क का भी मौका है. ये वो वक्त होता है जब घर के सब मेंबर्स मिलकर साथ में काम करें, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं कि किसी एक पर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े. इस तरह ईद सिर्फ एक एक शख्स की जो है वो ईद ना रहे, सबकी ईद हो. ईद एक दिन की सेलिब्रेशन भी नहीं है, कुर्बानी 1, 2, 3, 4 दिनों तक चलती है. ऐसे में ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि कौन सा घर का ऐसा मेंबर है जिसपे सबसे ज्यादा काम का लोड है. क्या हम उसके इस लोड को कम कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो एहसास है? देखिए, ईद की तैयारियां आम तौर पर कुछ घरों में तो पहले से शुरू हो जाती हैं, जो कि होनी भी चाहिए. कुछ प्लानिंग करना, कुछ ग्रॉसरी कर ली, इस तरह से कुछ लोग जो है अपने घर पे इनवाइट करना पसंद करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो बड़ी बड़ी दावतों के अहतमाम किए जाते हैं. यहाँ पर एक चीज ये है कि कुछ लोग तो बाहर से कुक को बुला लेते हैं कि चलिए आप बना दीजिए, सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलके खा लेंगे. लेकिन कुछ जगह या कुछ घरों में ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, उन्हीं को बनाना है. अब उन पर जो है, क्या उन पर हम सेलिब्रेशंस जो है अपनी खुशियां जो है वो इस तरह से डाल रहे हैं कि उनकी अपनी खुशी तबाह हो रही है. देखिए, मुझे लगता है कि घर का हर शख्स ये हक रखता है कि वो भी आपकी तरह ईद की सेलिब्रेशंस या ईद को उसी तरह से इंजॉय करे जैसे आप करना चाहते हैं. घूमना फिरना, इंटरेक्ट करना, तैयार होना, खाना इंजॉय करना. क्या आप इस मामले में सबका ख्याल रखते हैं? क्या हर घर के हर एक शख्स को एक प्रॉपर रोल दिया जाता है? घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा होता है? अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी ना किसी को लेनी होगी, बच्चा हो बड़ा हो, हर एक के पास कोई ना कोई छोटा मोटा काम होना ही चाहिए. देखिए, मर्दों का रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का इंतजाम करना, प्रॉपर जगह का इंतखाब करना, सफाई, सेफ्टी, इन सारी चीज़ों का ख्याल ये ज़्यादातर मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं. साथ ही वो घर के दूसरे कामों में भी हेल्प करते हैं, जैसे सामान लाना है, कई बार है कि गेस्ट के लिए अरेंजमेंट्स करना है या बच्चों का ख्याल करना है. लेकिन औरतों का रोल भी ईद पर देखा जाए तो ट्रेडिशनली कुकिंग और प्रिपरेशन से ही जुड़ा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अकेले सब कुछ करना चाहिए. आज के दौर में फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो टीम वर्क पर होना चाहिए, जहाँ घर के सब मेंबर्स किचन में भी हेल्प कराएं, कोई चॉपिंग करे, कोई टेबल सेट करे, कोई सर्विंग करे. इस तरह से ना सिर्फ काम आसान हो जाता है बल्कि फैमिली टाइम भी इंजॉय किया जाता है, फैमिली बॉन्ड भी मजबूत होता है. ईद का दिन हम सब के लिए खुशी मनाने का दिन है. किसी का काम हो सकता है कि वो गेस्ट को वेलकम कर ले, किसी का काम है कि भाई वो चाय की जिम्मेदारी ले ले, किसी का काम ये भी हो सकता है कि चलो आप बड़े हैं घर के, बुजुर्ग हैं, तो चलो बच्चों को आप हैंडल कर लो या उन्हें एंगेज कर लो. जब हर शख्स अपना रोल प्ले करता है ना, तब एक पॉजिटिव और एक खुशनुमा एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है. दोस्तों, ईद उल अदा एक इम्पॉर्टेंट पहलू हमें जो सिखाता है वो है शेयरिंग और केयरिंग का. फैमिली मिलकर प्लान करे कि किन लोगों को कुर्बानी का हिस्सा देना है, किन लोगों को कुर्बानी के वक्त मौजूद रहना है, किन लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली कुकिंग के लिए तैयार रहना है, कैसे नेबर्स या जरूरतमंद लोगों तक ये खुशियां पहुंचानी है. जब सब घर के एक एक मेंबर का जो रोल है वो डिफाइन हो जाएगा, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक,
तो किसी भी तरह का कोई भी इम्बैलेंस घर में क्रिएट नहीं होगा, ना ही घर में क्योटिक सिचुएशन आएगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ईद फैमिली को एक दूसरे के करीब लाती है। बिजी रूटीन में भी हम अक्सर एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ईद हमें याद दिलाती है कि फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर घर का हर मेंबर मिलकर काम करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे, हेल्प करे, तो ईद सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं रहेगी, बल्कि ये खूबसूरत मेमोरी बन जाएगी जो दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि ईद उल अदा हमें सिखाती है कि फैमिली सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एहसास का नाम है, शेयरिंग और केयरिंग का नाम है, टीम वर्क और सपोर्ट का नाम है। जब घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करता है, साथ में सब काम करते हैं, तो ना सिर्फ ये काम जो है वो हल्का होता है, बल्कि किसी का बोझ हम हल्का कर देते हैं और किसी की खुशियां हम डबल कर देते हैं। ईद पर अगर औरत अकेली किचन में बिजी रहे और बाकी लोग सिर्फ एंजॉय करें, तो ये ईद का असल मकसद, असल पैगाम नहीं है। असल ईद तब होती है जब सब साथ हो, सब काम शेयर करें और सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, ईद उल अदा का पैगाम ये है कि मिलजुल कर काम करो, जियो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ और अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करो। और इस तरह से ही जब सब खुश होते हैं तो असल ईद की असल सेलिब्रेशन जो है वो हो पाती है। क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि ईद कुर्बानी का नाम नहीं है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, उनकी मदद करना और एक स्ट्रॉन्ग और लविंग रिश्ता बनाना भी है। क्योंकि असली ईद वही होती है जहां फैमिली एक साथ दिल से होती है। दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि मैं आपसे कहूँ दिल से देसी, मेरा मतलब है इजाजत लूँ आपसे और आपकी हमारी मुलाकात होगी किसी और सेगमेंट में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ईद के चौथे दिन भी अपनी सेलिब्रेशंस को जारी रखिए और हमें सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। सलाम हो इब्राहिम अलैहि सलाम पर जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाअत कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर दिल से देसी

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं ईद सुना और आज हम आपको बताएंगे एक और अहम सुन्नत के बारे में और वो है ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ खाना, खास तौर पे खजूर। इस्लाम में ईद उल फितर के दिन एक खास अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और वो ये कि ईद की नमाज से पहले कुछ खाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज के लिए जाने से पहले और टंबर में खजूरें खाया करते थे। इस अमल से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और इबादत को एक मुनज्जम अंदाज पे अदा करें। रमजान में मुसलमान पूरा दिन रोजा रखते हैं लेकिन ईद के दिन रोजा नहीं होता, इसलिए ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ खाना इस बात की अलामत है कि रोजे का सिलसिला खत्म हो गया और अब खुशी और इनाम का दिन शुरू हो गया। एक छोटा सा अमल है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को पसंद फरमाते थे। खजूर एक सादा लेकिन बाबरकत ग़िज़ा है। ईद के दिन खजूर खाने से सुन्नत पर अमल होता है, जिस्म को हल्की तवानाई मिलती है और दिन का आगाज बाबरकत अंदाज में होता है। ताक अदद यानी 1-3-5 खजूरें खाना भी सुन्नत है। इस्लाम में हर चीज में नज़म हमें मिलता है। ईद के दिन नमाज से पहले खाना इस बात को जाहिर करता है कि हर इबादत का एक खास तरीका है और हर अमल अपनी जगह पे होना चाहिए। यह हमें जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। आज की किस्त में हमने ये जाना कि ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ खाना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें खाते थे और ये अमल खुशी, शुक्र और नज़्म की अलामत है। इस्लाम हर छोटे बड़े अमल में बड़ी हिकमतें सिखाता है। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशी।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो आपके लिए बनाया गया है जिसका नाम है ईदनामा। वेल, ये शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप तो अभी इस मुल्क में हैं, आपकी अपनी फैमिली आपके अपने मुल्क में है, तो इस शो में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में कैसे ईद उल अदहा को सेलिब्रेट किया जाता है इस पर हम बात करेंगे, और हम अपने उन माजी दिन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग वहाँ सेलिब्रेट किया करते थे, और नए ज़माने के नए ईद उल अदहा को हम कैसे यहाँ पर कतर में खूबसूरती से सेलिब्रेट करते हैं, और बाकी दुनिया में कैसे खाने खाए जाते हैं ईद उल अदहा पे। हमारे अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले जब हमने बात करी पाकिस्तान और इंडिया की, तो वहाँ तो कलेजी चलती है भाई सुबह सुबह। वैसे बाकी मुल्कों में क्या कुछ होता है, और आज हम ऐसे ही बात करेंगे दुनिया को कैसे जोड़ती है ये ईद उल अदहा, लोगों को कैसे जोड़ती है, और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे खूबसूरत और पहाड़ की वादियों जैसी जगहों पर कैसे सेलिब्रेट होता है ईद उल अदहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास शो को जिसका नाम है ईदनामा। दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में बकरीद का जश्न बहुत ही ज़्यादा कल्चरल और इमोशनल होता है। बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, इसलिए यहाँ ईद की रौनक बिल्कुल अलग लेवल पर होती है। ईद से पहले ढाका जैसे बड़े शहरों से लाखों लोग अपने गांव लौटते हैं। जो लोग अपने गांव को छोड़कर ढाका में पैसे कमाने आते हैं, एम्प्लॉयड हैं, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बड़ी तेज़ी से रन करती है। इट्स लाइक कि दिल्ली में जैसे अलग अलग शहरों से लोग दिल्ली आ जाते हैं, वैसे ही कराची और अलग अलग शहरों से लोग अच्छी ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, ऐसे ही ढाका में लोग अपने गाँव से आते हैं। और जब इस तरह का माहौल आता है तो लोग वापस गाँव लौटते हैं जस्ट फॉर 4 to 10 days, ताकि वो बकरीद जैसे फेस्टिवल को, खूबसूरत फेस्टिवल को अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट कर सकें। बाकी आप देखेंगे कि ढाका में कैसे गली कूचों में अलग अलग जगहों पे वहाँ पर कहते हैं गुरूर हाट, यानी कि ये मार्केट होती है

जानवरों की, गोरूर हाट सजते हैं, ये सारी मार्केटें सजती हैं और लोग बड़े शौक से अपने जानवर बकरे जो हैं वो खरीदते हैं। ईद के दिन जो मर्द हजरात हैं वो नए पंजाबी कुर्ता पहनकर मैदानों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है। खाने में यहाँ कच्ची बिरयानी, भुना गोश्त और मीठे में शीर खुरमा और मिश्ती दोई बिल्कुल मस्त है, और मतलब मस्त भी है और मस्त है ये सही है ना। उसके अलावा शीर खुरमा तो देखिए मैंने आपको दो दिन पहले भी बताया था कि ये किंग का किंग है, बगैर इसके तो कोई भी ईद या बकरीद नहीं चलती है। लेकिन बिरयानी आम है, आपको बाकी मुल्कों में दिख जाएगा, मीठे में शीर खुरमा बाकी दिनों में दिख जाएगा, लेकिन भुना गोश्त, ये भुना गोश्त वहाँ की स्पेशलिटी है, बांग्लादेश की खास तौर पे। और आप यहाँ पर भी देखते होंगे भुना गोश्त आपको आसानी से देखने को मिल जाता है जब बांग्लादेश के आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहाँ का खाना भी बड़ा जायकेदार होता है। मैंने हाल ही में एक जगह जहाँ तलवार चौराहा कहते हैं और तलवार इंटरसेक्शन के करीब में एक बड़ा ही बेहतरीन सा रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था और क्या लाजवाब है ना, एकदम सटीक गोश्त गला हुआ नर्म, और क्या टेस्ट है भाई साहब। उसके अलावा नेपाल और श्रीलंका के बारे में बात करें तो नेपाल और श्रीलंका में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, इसलिए यहाँ का माहौल थोड़ा अलग पर बेहद पीसफुल होता है। नेपाल के काठमांडू और तेराई रीजन में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो ईदगाह या लोकल मस्जिद में जमा होते हैं। नेपाल में बकरों या फिर शीप की ही कुर्बानी होती है, वहां पर इन छोटे जानवर की ही कुर्बानी होती है, सिर्फ गोट्स की या फिर शीप्स की। श्रीलंका में भी ऐसा ही होता है, जहां कोलंबो और ईस्टर्न प्रोविंस में मुस्लिम बड़े सुकून से ईद मनाते हैं। श्रीलंकन मुस्लिम्स ईद के दिन स्पेशल वतलप्पन, एक तरह का ये कोकोनट कस्टर्ड है, वो बनाते हैं और घी राइस के साथ मटन करी सर्व करते हैं। इन तीनों देश में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फर्क मिट जाता है, सब लोग अपने नॉन मुस्लिम्स पड़ोसियों के घर कुर्बानी का गोश्त और मिठाई भेजते हैं, जो आपस के भाईचारे और रिस्पेक्ट को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है। दोस्तों बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे गल्फ देशों में ईद उल अधा को पूरे स्टेट लेवल पर या कहें शाही तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि ये खलीजी या कहें गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ की ट्रेडिशंस थोड़ी सी अलग है, काफी मिलती जुलती भी है, लेकिन हर एक मुल्क का अपना एक अलग टच होता है ना। तो वैसे ही ईद की सुबह पूरे मोहल्ले में तकबीरात जो है वो गूंजती हैं, मर्द अपने ट्रेडिशनल वाइट ड्रेस थोब या दिश दाशा पहनते हैं। ओमान में मर्द एक स्पेशल एम्ब्रॉयडरी कैप कुमा जिसे कहते हैं या टर्बन मुसार जिसे कहते हैं वो पहनते हैं, और साथ में खंजर ट्रेडिशनल डैगर भी लगाते हैं जो उनकी शान का एक हिस्सा है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को सलाम और ईद मुबारक बोलकर गले मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इन देशों में यानी कि गल्फ रीजन में, बहरीन, कुवैत, ओमान जैसे रीजन में कुर्बानी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज्ड होता है। लोकल म्युनिसिपैलिटीज बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि कोई खुले में कुर्बानी करे, लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस में जाते हैं या फिर एप्स के थ्रू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे देते हैं जो जरूरतमंद देशों में मीट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। इससे आपकी कुर्बानी भी हो जाती है, जरूरतमंद को खाना भी मिल जाता है, और ऐसे में हाइजीन का भी पूरा ख्याल आसानी से रखा जा सकता है। खाने की बात करें तो ओमान में शुआ बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें मीट को स्पाइसेस में मैरिनेट करके केले के पत्तों में, बनाना लीव्स में लपेटा जाता है और एक अंडरग्राउंड मिट्टी के ओवन में 24 से 48 घंटों तक स्लो कुक किया जाता है। जब हम बात कर रहे थे पिछली बार तो मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह से लोग मीट खाना पसंद करते हैं या कहें मीट पकाना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग कहीं पर ऊंचाई में रखकर हल्की हल्की आंच में उसे पकाते हैं गोश्त को, कुछ लोग गोश्त को सीख में लगा के धीरे धीरे क्लोज कंटेनर में करते हैं, और कुछ लोग सीटी लगाते हैं, है ना, हमारे जैसे लोग जो जल्दी जाते हैं खाना बन जाए। उसके अलावा कुछ लोग अंदर अंडरग्राउंड गड्ढा खोद के उसमें कोयला वगैरह डालते हैं और पूरा पूरा लैम्ब या जो गोश्त है वो डाल देते हैं और धीमी आँच में काफ़ी लंबे वक्त तक 24 से 48 घंटों तक स्लो कुक किया जाता है। कुवैत और बहरीन में यही होता है, ओमान में यही होता है। उसके अलावा मकबूस कुवैत और बहरीन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मीट और राइस डिश जिसे कहते हैं।
और गुजी भी बनाया जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, घर आए मेहमानों का स्वागत अरेबिक कॉफ़ी से किया जाता है और ये तो गल्फ की अलग पहचान है। ऊद की खुशबू और हलवा से लोगों का यू नो खैर मकदम किया जाता है। शाम को पूरे शहर को लाइट से सजाया जाता है। वैसे लाइट्स तो ऑलरेडी पहले से लग जाती हैं, बस शाम को जब लाइट जलती तो पता चलता ओ यहाँ पर सजावट थी। और आसमान जो है वो खूबसूरत दिख रहा होता है, स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स जो है वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और ये भी ऐसी जगह पे होती हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो खूबसूरत और खूबसूरत चीज़ मिलकर यानी कि फायरवर्क्स मिलकर और भी जगह को रंगीन और ज़बरदस्त बना देती हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली कि यू नो नेपाल में, बांग्लादेश में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, श्रीलंका में कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अधा को, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अरब वगैरह में तो हम लोग रहे हैं तो हमें पता है काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती हैं कतर से, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूके, जर्मनी, फ्रांस में क्या कुछ होता है। दोस्तों यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों में बकरा ईद का जो त्यौहार है वो कम्युनिटी सॉलिडारिटी और आइडेंटिटी का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं और बिजी लाइफ भी होती है, इसलिए लोग अक्सर काम या स्कूल से छुट्टी लेते हैं ताकि फैमिली के साथ वक्त को बिताया जा सके। यूके के लंदन या बर्मिंघम, फ्रांस के पेरिस और जर्मनी के बर्लिन जैसे शहरों में ईद का जो सीन है बहुत ही वाइब्रेंट होता है। नमाज के लिए बड़ी बड़ी पार्क्स को, स्पोर्ट्स हॉल को, कल्चरल सेंटर्स को रेंट पर लिया जाता है क्योंकि लोकल मस्जिद जो है वो छोटी पड़ जाती है, लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो भीड़ लोगों के लिए तकलीफ ना बने इसलिए कल्चरल सेंटर्स को या बड़े पार्क्स को या फिर स्पोर्ट्स हॉल को किराए पे या रेंट पे लिया जाता है। यहाँ एक ही सफ में टर्किश, अरब, साउथ एशियन और अफ्रीकन मुस्लिम्स एक साथ खड़े होते हैं जो मल्टी कल्चरलिज्म की बेहतरीन मिसाल है। यूरोप में स्ट्रिक्ट हेल्थ और एनिमल वेलफेयर लॉज की वजह से घरों पर या फिर खुले में कुर्बानी देना बिल्कुल इलीगल है, मना है, इसलिए लोग लोकल हलाल बुचर्स के पास अपना ऑर्डर पहले से बुक कराते हैं या फिर ऑनलाइन इस्लामिक चैरिटीज के थ्रू अपने होम कंट्रीज में कुर्बानी करवाते हैं। ईद के दस्तरखान पर यहाँ ग्लोबल फ्यूजन देखने को मिलता है, एक ही टेबल पर साउथ एशियन बिरयानी, टर्किश कबाब और मगरबी खाने जो हैं वो साथ में आ जाते हैं। लोकल यूरोपियन स्टाइल का बारबेक्यू, लैम चॉप्स भी यहाँ पर सर्व किया जाता है। शाम के वक्त इस्लामिक सेंटर्स और मॉस्क मिनी कार्निवल्स जैसे होते हैं जहाँ पर फेस पेंटिंग और फूड स्टॉल्स ऑर्गेनाइज होता है ताकि बच्चे अपने कल्चर रूट से जुड़े रहें। ये फेस्टिवल इन कंट्रीज में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने का एक बेहद प्यारा दिन होता है। ईद कल्चर्स पूरे दुनिया में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, इस पर भी बात करते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें दोस्तों तो बकरा ईद पूरी दुनिया में एक ऐसी दीवार तोड़ने का काम करती है जो जियोग्राफिक बॉर्डर्स और लैंग्वेज से बहुत ऊपर है। इस त्योहार का कोर मैसेज हर जगह एक ही है, आप किसी भी मुल्क चले जाएं, नेपाल चले जाएं, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, कुवैत, ओमान, कहीं पर भी जाएं आप, एक ही इसका मैसेज है, वो कोर मैसेज है हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करना, खुदा की इबादत करना और जरूरतमंदों की मदद करना। लेकिन हर कंट्री इसमें अपना एक लोकल कल्चर और फ्लेवर मिक्स कर देती है जो इस फेस्टिवल को और भी खूबसूरत बना देता है। अलग अलग देशों में इसके नाम भी बदल जाते हैं, जैसे टर्की में कुर्बा बैरमी, साउथ एशियन में हरी रया हजी और नॉर्थ अफ्रीका में ईद अल कबीर ये कहा जाता है, यानी कि जगह जगह पे कंट्री कंट्री में ईद उल अधा का नाम अपनी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, उनकी अपनी लैंग्वेज में, कंट्री के लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इंसान को शेयर्स करना सिखाता है। हमारे अंदर ना जानवरों वाले ट्रेड है कि हम शेयर नहीं करते तो अब इंसान को इंसान से पता करना पड़ेगा ना कि भाई इंसान कैसे हैं। तो इंसान का काम ये है कि वो अपने थॉट को प्रोसेस करे, अपने थॉट को क्लीन करे, अपनी सोच को बेहतर करे, इसलिए शेयर करने के इन फेस्टिवल्स को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए मुसलमानों को। सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि हम शेयर करना सीखें। ये हमारे नेचर में है कि जो हमारे पास है वो हमारा है, हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये हमें इंसान बनाती है, हमें शेयर करने वाला शख्स बनाती है। कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटना होता है, जैसे कि फैमिली में, फ्रेंड्स में और जो गरीब हैं उनके लिए। एक ऐसा यूनिवर्सल रूल है ये जो
हर कोने में फॉलो किया जाता है। ये बांग्लादेश में भी फॉलो होता है, नेपाल में भी फॉलो होता है और

दोस्तों, बकरईद सिर्फ एक मजहबी रस्म या कुर्बानी तक लिमिटेड नहीं है, ये तो हमें पता ही होगा, बल्कि ये एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है जो पूरी दुनिया के दिलों को एक साथ जोड़ देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस अर्थ पर, इस धरती पर हजारों तरह की जबानें बोली जाती हैं। हर मुल्क में, हर कंट्री का जो अपना अलग कल्चर है और हर खाते पीते घराने का जो टेस्ट है वो अलग है, लेकिन जब ईद का सूरज निकलता है तो ये सारी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स, दीवारें पल भर में गायब हो जाती हैं। एक ही दिन, एक ही वक्त पर दुनिया भर के मुस्लिम्स, चाहे वो बांग्लादेश के किसी छोटे से गांव में हो या कुवैत के किसी शाही मैदान में हो या यूके के किसी मॉडर्न पार्क में, एक साथ कतार में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई छोटा रिक्शा चलाने वाला आदमी क्यों ना हो। ये सीन अपने आप में ही दिलों की एक यूनिटी, एकता और ब्रदरहुड का सबसे बड़ा सबूत है। इस ईद का सबसे खूबसूरत और इमोशनल हिस्सा है कुर्बानी का गोश्त और इन गोश्त को बांटने का सिलसिला। इसमें एक बहुत गहरी इंसानी मैसेज भी आपको दिखाई देती है। जब मीट को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, एक परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और जरूरतमंदों के लिए, तो ये रूल सोसाइटी से अमीर गरीब का फर्क बिल्कुल मिटा देता है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है किसी भी रिलीजन का मकसद यही होना चाहिए कि अमीर और गरीब का फर्क मिटा दे, ऊंचे और छोटे का फर्क मिटा दे, बड़े और छोटे का फर्क मिटा दे। जब कोई इंसान अपने हाथ से किसी गरीब, किसी जरूरतमंद या किसी अकेले इंसान तक खाना पहुंचाता है तो वहां सिर्फ एक मील शेयर नहीं होती है, बल्कि दिलों का कनेक्शन जो है वो बनता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी आप कतर में हैं या ऐसी जगहों पे हैं जहां पर आप लोगों को देख रहे हैं कि वो अकेले रहते हैं, वो तन्हा हैं, उनके साथ बहुत लोग नहीं बैठते हैं, हो सकता है रूम में 4-6 लोग हों लेकिन वो तन्हाई एक फील होती है, फैमिली के साथ नहीं रहती, तो उन लोगों के साथ भी वक्त गुजारें, उनके साथ भी आप खाना बनाएं, उनको बकरईद में या फिर आपने जो अगर हिस्सा लिया उनको भी बांटें और साथ में बैठकर खाना खाएं। सिर्फ बांटने तक महदूद ना हो, उनके साथ बैठें, खाना खाएं, दस्तरखान शेयर करें, उनके लिए पानी निकालें, उनके लिए खाना लेकर जाएं। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि हमारी खुशियां तभी मुकम्मल होती हैं जब हम उन्हें उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक ऐसा कोई किस्सा जो है वो होता है जो यू नो ईद से या बकरईद से जुड़ा होता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे दो किस्से हैं। पहला तो एक ये, जब मैं छोटा सा था उस वक्त हमारे घर बकरा आया तो मुझे बहुत शौक था कि बकरों को घुमाएं, उनको दूर दूर लेकर कहीं जाएं और है ना उनको बाहर कहीं खिलाएं अपने हाथों से। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने हाथों से बकरों को अपने घर में पत्ते खिलाए होंगे, प्यार किया होगा, उनको टहलाने या घुमाने ले गए होंगे। उसके अलावा जो मोहल्ले में बाकी हमारे मुसलमान भाई लोग होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, वो भी अपने बकरों को बाहर घुमाने निकलते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं बकरों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं या फिर साथ में उनके खाने खाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये यादें हैं अपनी अपनी के बकरे के लिए खाना जो है वो ख़त्म हो गया, पत्ते जो हैं वो ख़त्म हो गया, तो चौक जा रहे हैं लेने के लिए, काफ़ी दूर कहीं उनके पत्ते मिलते हैं तो वहाँ से, हमारे वक्त में 5-5 रुपए के बंडल मिलते थे तो हमारे अब्बा 2 बंडल ले आया करते थे और हम बड़ा जिद करते थे कि मुझे भी चलना है। तो मुझे एक बार का किस्सा जो है वो याद है, जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर 3-4 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो रहते थे, हमारे नेबर्स वगैरह भी रहते थे। तो उस दिन मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का सुबह सुबह और मैं बकरे को टहलाने के लिए बाहर निकला और मेरे स्कूल की जो बस है वो आया करती थी, वो मुझे स्कूल ले जाया करती थी, लेकिन जिस दिन मुझे नहीं जाना था उस दिन मैं सुबह सुबह बकरे को टहलाने के लिए लेकर निकला।

जिस स्कूल में थे वो स्कूल अलग था, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे मुस्लिम्स भी थे, लेकिन बड़ा शर्मिंदगी होती थी कि मैं बकरे को घुमा रहा हूँ ऐसा करके, या फिर हमारे घर भी कुर्बानी होती है, बताने में थोड़ा सा यू नो अजीब लगता है। तो मैं एक बार उनको टहलाने के लिए लेकर गया और फिर पता चला कि वहाँ बस आ गई सुबह सुबह, और मैं हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी रस्सी बकरे की, और क्योंकि जैसे ही हमारे गली के सामने बस आती थी उसके बस दो सेकंड पहले वो हॉर्न बजाते थे और मुझे पता चल जाता था कि मेरी बस आ गई, अब स्कूल जाने का टाइम है। लेकिन जिस दिन मैं बकरे को टहलाने के लिए लेकर निकला उन्होंने बजाया नहीं यार बस का हॉर्न, और वो बस आगे आके रुक गई। मेरे सारे दोस्त उसमें बैठे थे, मैंने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, और बकरा जो है वो मेरे हाथ के रस्सी से बंधा हुआ था। मैंने वो रस्सी तुरंत छोड़ दी और पैर पे दबा ली। अब पैर पे भी देखो डर भी है कि कहीं बकरा भाग ना जाए और अगर भागा तो फिर क्या होगा, तो बकरा भाग ना जाए इसलिए मैंने पैर के नीचे दबाई और सारे लोगों ने देख भी लिया, बाकी जितने दोस्त यार थे। तो जब सबने देखा तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी और फिर मैंने हाथ हिला के कहा नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है या ये जो कहानी है ये मुझे याद है, और हर बार मैं कहानी को सुनाता हूँ ये दोस्तों में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये भी है कि हम कई जगह ऐसी होती है, कई लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें शर्मिंदगी भी होती है। उसके अलावा एक किस्सा ये भी था कि और वो डर कि बकरे को अगर कहीं घुमाने ले गए और बकरा अगर छूट गया। तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, ये भी स्कूल से ही जुड़ी हुई है, स्कूल जा रहे थे एक दिन और जैसे ही मैंने गेट खोला तो स्कूल जाने के लिए बैग बस्ता मेरे पास था, टांगा हुआ था कंधे पे, जैसे होता ही है हम सब कंधे पे टांग कर जाते हैं भारी भारी बैग अपने स्कूलों को। तो जैसे ही मैंने गेट खोला बकरा खुला हुआ था, बकरा बाहर भाग गया। अब मेरी हालत खराब और मुझे ये पता था कि ये बकरा भाग गया है, अब ये कुछ भी करे पकड़ के आ भी जाए तो घर में सूता कौन जाएगा फजील कि तुमने गेट क्यों खोला। तो ये किस्सा जो है मुझे याद है क्योंकि जैसे ही मैंने गेट खोला वो भागा, मैं बस्ता छोड़ छाड़ के बस्ता भी जमीन पे गिरा और मैं उसको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन फजील के कदम छोटे बकरे के चार टांग, वो भाई साहब बिरयानी दूर भाग रही थी। तो जैसे ही वो दूर भागी तो अब्बा पीछे से आया, उन्होंने कहा अरे परेशान मत हो, मुझे लगा कि अरे मुझे मार पड़ेगी, लेकिन होता ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ। अब्बा ने कहा अरे परेशान मत हो कौन सी बड़ी बात है, तो वो पत्ता लेकर आए, उन्होंने बकरे को ललचाया, बकरा लालच में आ गया और बकरे ने उस पत्ते को खा लिया और उतने में बकरा हाथ में भी आ गया और फिर बकरे को घर के अंदर ले आया गया। तो ये किस्से जो हैं हमें कहीं ना कहीं याद रहते हैं हमारे यू नो जानवर के साथ, हम जानवरों को प्यार भी बड़ा करते हैं। और मुझे याद है कई बार तो हम घुमाने भी लिए जाते थे उसको, दूर दूर कहीं टहलाने ले जा रहे हैं, उसे प्यार करते थे। और ये जो कहानियाँ हैं, ये जो बातें हैं, ये हमारे दिलों से जुड़ी हैं। और इस बकरीद मुझे लगता है हर बकरीद मैं कहीं ना कहीं ये कहानी हर बार लोगों से सुनता हूँ, उनकी अपनी कहानी और अपनी कहानी ये हर बार लोगों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता भी हूँ। बड़े ही मज़ेदार होते हैं, अपना ही सी एक लगती है। अच्छा ये जानवर बच्चों तक नहीं बड़ों तक भी है, बस बड़े दिखा नहीं पाते। जैसे मेरी अम्मी जो है हमेशा कहती थी कि अरे सिर्फ पत्तों पर नहीं जिंदा रखना, और हम लोग 15 से 20 दिन पहले बकरे जो है वो खरीद लेते थे क्योंकि हमारे अम्मी का कहना था कि हमेशा उन बकरों को मोहब्बत से रखो, प्यार से रखो, उनको अपना बनाकर रखो। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि सिर्फ बकरों को यू नो ये चीजें मत खिलाओ, पत्ते मत खिलाओ, 5-5 रुपए का खरीद के खिला दिया, उसको अपनी प्लेट से भी दो। तो हम लोग रोटियां उसके लिए एक्स्ट्रा बनाते थे या फिर आटा छानते थे, तो कुछ पता नहीं चोकर कहते हैं क्या कहते हैं उनको, खानों में कुछ अलग चीजों में मिलाकर वो दिया करते थे। अरे वो ज्यादा प्रोटीन लेता था यार बकरा, हम लोगों से ज्यादा प्रोटीन लेता था वो, उसे चना बाकायदा दिया जाता था, और वो चना जो हमारे लिए नहीं था, खैर हम लोग खाते नहीं थे, लेकिन बकरों को बाकायदा वो चना दिया जाता था। तो चना है, चोकर है और रोटियां हैं, घर के जो बाकी जो चीजें हैं जो यू नो बहुत टेस्टी भी होती हैं और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन खा रहा है। एक दो बार तो पनीर भी मैंने दे दिया, तो पनीर वाले में अम्मी ने कहा था नहीं बेटा इतना भी प्यार नहीं, महंगा होता था ना, या हमारे घर में ही दूध से बनाया जाता था। तो ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी लगती हैं, आपको याद रहती है अपने फैमिली मेंबर्स की करी हुई बातें, हमारी अम्मी का यू नो खास तौर पे काम। उसके अलावा हमारे अब्बा भी बड़ा प्यार करा करते थे, मुझे याद है कि रात रात भर कभी ऐसा हो जाए कि अरे रात के 10 बज रहे हैं और इसके लिए खाना ही नहीं है, पत्ते ही नहीं है, तो वो साइकिल से जाते थे चौक जो 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था, मैं भी पीछे लटक लेता था, तो वो साथ में जाना और फिर साथ में लेकर आना, फिर पत्ते खिलाना, सुबह सुबह उठ के उसको ध्यान में रखना, और फिर बड़ी टेंशन होती थी सर्दियों के वक्त कैसे रखें, तो बोरे में उसको किनारे एक जगह दे दी जाती थी जहां 3 दीवारी हो और उसको जो है सर्दी ना लगे, है ना, उसकी तबीयत खराब हो तो दवाएं आती थी। तो जानवरों की ऐसी केयर करना जैसे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, और फैमिली मेंबर्स की केयर करते हुए ये सोचना कि ये एक दिन चले जाएंगे, और इसी कुर्बानी का मकसद ही यही है कि अपनों की कुर्बानी देना ये बड़ा जरूरी है, इस बात को समझना कि अपने की कुर्बानी होना।

अपनी जो बहुत प्यारी जो अपनी चीज़ है वो चली जाना, इससे हमारे दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है, इससे हमारा दिल और ज़्यादा मजबूत होता है। और साथ ही कुर्बानी करना, सामने खड़े होना, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे दिलों में मजबूती आए। तो दोस्तों ये था आज का शो ईदनामा, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये ख़ास शो FM 107 पे। और ये यादें, ये दिन, ये भी कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं और ये ताउम्र हमारे साथ रहेंगी। और मज़े की बात यह है कि हर साल एक नई यादें हमारी बनती हैं, जब हम बकरा लेते हैं या हम कोई जानवर लेते हैं, जब उनको 20 से 25 दिन हम अपने साथ रखते हैं तो हमारे दिल जो हैं वो उनसे जुड़ जाते हैं। मुझे एक और किस्सा याद आता है, जब मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने करीब 2 साल पहले 2 छोटे बकरे जो है जुड़वा वो खरीदे थे और उनको साथ रखा, पाला, उनके लिए खाना आता था, घरों में उसको रखते थे। और 2 साल बाद जब वो कुर्बान हुए 2 बकरे, तो उनके घरों में हर एक शख्स के आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो कुर्बानी जो है वो फील कर सकते थे। और मेन मकसद तो हमारा यही है कि ईद में जो है वो कुर्बानी दी जाए, अपनों की कुर्बानी। इसके अलावा दोस्तों ईद पर लोग अपनी पुरानी नाराज़गियाँ, गिले शिकवे और दुश्मनी भी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसका ख़ास रीज़न यही है कि जब आप 3 हिस्सा निकालेंगे तो आपके जो जिनसे आपकी बातचीत नहीं है, जिनसे आप नाराज़ हैं, उनके साथ भी आप बैठेंगे, उनके साथ भी आप बात करेंगे और फिर माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाएगी, ऐसे में आप वापस से उन रिश्तों में जुड़ जाएंगे। इसलिए इंसानों के लिए ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, बेहद ज़रूरी है। माफ़ी, मोहब्बत और कंपैशन का जो मौसम है, ये मौसम यही है, ये फेस्टिवल है, बकरीद है, जब पूरी दुनिया में एक साथ लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दावत ऑर्गेनाइज करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, तो पूरे प्लेनेट पर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फिल हो जाती है। और उम्मीद है कि आज भी किसी के घर आपकी दावत तो ज़रूर होगी, या फिर आपने दावत ली होगी या कल तो कहीं खा के आए ही होंगे। ये फेस्टिवल दोस्तों हमें याद दिलाता है कि हमारे कस्टम्स, कपड़े और खाने के जो तरीके हैं, वो चाहे कितने भी अलग हों, हमारे दिलों की धड़कन और इंसानियत का रिश्ता बिल्कुल एक है। ये ग्लोबल यूनिटी और एम्पैथी ही बकरीद की असली रूह है, जो दिलों को हमेशा के लिए करीब ले आती है। उसके अलावा दोस्तों एक मैसेज जो इस ईद उल अधा में छुपा होता है, ईद उल अधा का पाक महीना हमारे दिलों में एक नई उम्मीद, गहरा सुकून और बे इंतहा खुशी लेकर आता है। ये त्यौहार, ये फेस्टिवल हमें हर साल ये याद दिलाता है कि असली जिंदगी का मजा सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है, दिल खोल कर दूसरों की मदद करने में है, अपना हिस्सा दूसरों को देने में है। जब हम इस ईद पर कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं होती बल्कि हम अपने अंदर के लालच को, सेल्फिशनेस को, ईगो को कुर्बान करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि खुशियाँ बांटने से हमेशा दुगना हो जाता है, डबल हो जाती हैं ये खुशियाँ। जब आप किसी ज़रूरतमंद या परेशान इंसान के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो उससे जो अपने दिल में सुकून मिलता है, ये ऐसा ही होता है जब एक छोटा सा बच्चा, हमारा बच्चा, जब वो हंसता है, रोने के बाद जब वो हंसता है तो हमारे दिलों को बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसा ही सुकून हमें तब मिलता है जब हम कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं, किसी के चेहरे की मुस्कान बनते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है जब हम ज़रूरतमंद की मदद करें और उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। ये त्यौहार, ये फेस्टिवल हमारे अंदर हमदर्दी और इंसानियत की शमा को रोशन करता है। दोस्तों इस ईद पर आइए हम सब मिलकर एक साथ होने के इस खूबसूरत एहसास को सेलिब्रेट करें, अपने घरों के दरवाजे और अपने दिलों के रास्ते सब के लिए खोल दें। सिर्फ उनसे ही गले ना मिलें जिन्हें आप पहले से जानते हैं बल्कि उन्हें भी मुस्कुराकर ईद मुबारक कहें जो अकेले हैं या अपने फैमिली से दूर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में, मॉडर्न जिंदगी में, ईद एक ठहराव लेकर आती है जहां हम अपने बिजी स्केड्यूल से ब्रेक लेकर अपने फैमिली, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बैठकर कुछ जरूरी हसीन और यादगार पल बिता सकते हैं। ये वक्त है साथ में बैठकर दावत उड़ाने का, अब पुरानी यादों को ताजा करने का और एक बेहतर कल के लिए दुआ मांगने का। आप सभी को और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को बकरीद की ढेरों मुबारकबाद। ये पाक दिन आपकी जिंदगी को ढेर सारे खुशियां, अच्छी सेहत और बरकत से भर दे। आइए इस ईद पर हम सब एक छोटा सा वादा करें, हम जहां भी रहें मोहब्बत और भाईचारा फैलाते रहें और हर रोते हुए को हंसाते रहें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और खूबसूरत जगह बनाएं। आप सभी का आपस का रिश्ता हमेशा

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आदत बदलती है एक अच्छी नियत से और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: खुदा के बनाए हर इंसान पर उनका रहमो करम है, खुदा के बनाए हर इंसान पर उनका रहमो करम है, ना किसी पे ज्यादा और ना किसी पे कम है। ईद मुबारक।

ईद उल अदा क्या आप सभी को ईद उल अदा का चौथा दिन तहे दिल से मुबारक हो. वेलकम है आप सभी का FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. ईद की धुन ये ब्रांड न्यू शो हम खास तौर से आपके लिए लेकर आए और आज इसका आखिरी दिन है, दैट इज द फोर्थ डे. और यहाँ पर आज कौन कौन सी धुनें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सी धुनें आप इंजॉय करेंगे, वो सब हम जानेंगे कुछ ही देर में. लेकिन ये बताएं कि अभी तक आपकी ईद कैसी गुजर रही है. भाई आज चौथा दिन है, आज तो कंसिडर किया जाता है कि फुल ऑन रिलैक्सेशन का डे होता है, घरों की साफ सफाइयाँ हो रही होती हैं,

है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आज के दिन होती है। आई शुड से कि आज ग्रैंड फिनाले है हमारे ईद की धुन का। तो जनाब क्या करना है, ये धुने तो आप इंजॉय करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हमारे शो में लग जाए चार चांद। और 666-22-107 इज आवर नंबर, 666-22-107। तुरंत हमें मैसेज करें, बताएं कि कैसी गुजर रही है आपकी ईद। हाँ वैसे अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ईद की धुन हमारे स्पेशल शो में। और आज इसका फोर्थ एपिसोड है, यानी कि ग्रैंड फिनाले। पर चार दिन का जश्न और कतर की एनर्जी अब भी, मतलब हम देखें तो ऐसी ही फील हो रही है। फिर चाहे आप एकदम तेज हवाओं के बीच एस्पायर पार्क में जा रहे हो, या फिर विलाजियो में जाएं एकदम ठंडी हवा के झोंके सच में वहां पे तो ऐसा लगता है कि स्वेटर की कमी फील हो रही है, स्वेटर मिल जाए बस और थोड़ा सा। हाँ तो ऐसे हर चीज़ हमारे यहाँ की बड़ी खूबसूरत लग रही है। फिर चाहे कतर के खुले एरियाज हों या फिर इंडोर्स हों, मॉल्स वगैरह हों, सब जगह ईद की वाइब बहुत प्यारी है। चलिए इसी बात के साथ अब शुरुआत कर देते हैं उस गाने से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रील्स पर हिट पे हिट पे हिट होते रहा जैसे ही वो रिलीज हुआ। Yes, ये बड़ा ही शानदार गाना है जिसे सचिन जिगर इस डुओ ने कंपोज किया, एंड इट्स रियली वेरी कैची। और आपको पता है वैसे इसके जो सिंगर है वरुण जैन, वो एक्चुअली रियलिटी शो कंटेस्टेंट है। और उन्होंने इस गाने में एक ऐसी मासूमियत या यूं कहें इनोसेंस मतलब भर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं ये उनका एंथम बन चुका है। यस, लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के जो हर जज्बात को परफेक्ट शब्दों में ना ढाल देते हैं। आई शुड से इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जिसे हमें इंजॉय करना है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, जरा हटके जरा बचके फिल्म का ये गाना है और वाइब बिल्कुल कमाल की है। और उसके बाद कौन सा गाना है जिसे आप फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं? वाओ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आसिम अजहर वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, मतलब जिन्हें अक्सर पाकिस्तान का जस्टिन बीबर कहा जाता है। सो बुलिया इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग, एंड इसको जब भी हम सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। आसिम की बात करें तो वो एक बहुत ही आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं और उनकी मॉम जो है वो खुद एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। और बुलिया जो सूफी पॉप फ्यूजन है, इट्स एक्चुअली अ मास्टरपीस। मतलब इसको सुनकर ना एक अलग वाइब आती है, एक अलग फील आता है, एक अलग मैसेज मिलता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जिसे आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए तेरे वास्ते के बाद बुलिया, ये दोनों ही शानदार गाने आपकी राहों में आ रहे हैं। इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर और हमसे जुड़ जाइए 666-22-107 पर। और कहाँ जाना है, कहीं नहीं, हमारे साथ बने रहना है ईद की धुन सुनते हुए अपनी अमिता के साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

हाल चाल है जनाब, ईद की धुन सुन रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? आर यू गाइस एंजॉयिंग? वेल, ईद की धुन की यही खास बात है कि जब हमें ये गाने चुनने थे आपके लिए तो बहुत हमें सोच समझ के इन गानों को चुनना पड़ा। हमें लगा कि भाई वो गाने हम लेकर आए जो आप जब भी बजाएं तो आपकी प्लेलिस्ट से ना हट ना पाए, है कि नहीं? लेकिन अभी और भी म्यूजिकल ट्रैक्स की तरफ बढ़ेंगे, बट पहले हम 666-22-107 666-22-107 पर कहेंगे कि इस पर मैसेज करके आप अपने सेलिब्रेशंस का हमें हिस्सा बनाइए, शेयर कीजिए कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हमें मैसेज आया है बिलाल का इंडस्ट्रियल एरिया से, क्या कह रहे हैं भाई, ईद मुबारक आप सभी को, आपको भी बिलाल ईद मुबारक। और कहते हैं कि एक स्पेशल शाउट आउट मैं कहना चाहता हूँ सारे बैचलर्स को जो अपनी फैमिली से दूर कतर में काम कर रहे हैं, एंड घर की याद तो डेफिनेटली आती होगी, पर हिम्मत मत हारना दोस्तों, हम सब एक दूसरे की फैमिली है। ओ दैट इज सो सो स्वीट। सच में बिलाल, ये जो आपने बात कही है ना, ये आपने कहकर हर किसी का दिल जीत लिया है और कहा है कि भाई देखो अभी आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। दैट्स गुड वन बिलाल, एंड आई एम वेरी सर्टेन कि कतर में कोई भी सेलिब्रेशन है ना, आप अकेला तो कभी भी फील नहीं करने वाले हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो येस वी ऑल आर लकी दैट वी आर इन कतर। अच्छा, अभी मुझे सारा का मैसेज आया वकरा से, ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। हमने ब्रेकफास्ट में कतरी स्टाइल बलालीत और करक लिया था और आज का जो दिन है हमारा बड़ा कमाल का रहा, चौथा दिन आखिरी दिन है, घर पे हर कोई साफ सफाई में मेरी मदद कर रहा है। ओ वाओ सारा, आई शुड से यू वेरी लकी कि इतनी अडोरेबल, इतनी लवेबल फैमिली आपको मिली कि हर कोई हेल्प कर रहा है, वरना तो ऐसा हो जाता ना कभी कभी, कह रहे भाई सब थके हुए कहाँ पी कर लो घर की सफाई। गुड वन सारा, वी रियली लव इट। एंड यसीन का मैसेज आया है, यसीन अलखोर से हम

ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और मेरे मॉम डैड अभी इंडिया गए हुए हैं, सो थोड़ा सा मिस कर रही हूँ. बट यस, उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्द उनसे मुलाकात करूंगी. यस यस, एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर दैट कि आप जल्द अपने मॉम डैड से मिलें और ईद की हर एक खुशी को साथ मनाएं. आई नो आज चौथा दिन है सो वो ईद खत्म हो जाएगी, लेकिन ईद आपकी तब फिर से शुरू हो जाएगी जब आपके मम्मी पापा आपसे मिलेंगे, है कि नहीं यासीन? अच्छा, आनम क्या कहती हैं? कहती हैं कि अमिता आपको ईद मुबारक. आपको भी ईद मुबारक. और कहती हैं कि मेरी ईद बड़ी खूबसूरत गई क्योंकि मैंने चारों दिन के लिए काफ़ी खूबसूरत कपड़े सिलवाए थे, काफ़ी हैवी ड्रेसिंग थी. हम सारी बहनों ने खूब इंजॉय किया, खूब सारी सेल्फीज ली और इस पूरी ईद हमने डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. हमने जम के खूब खाया, बिरयानी खाई और मीठा खाया. अनम, फेस्टिवल्स इसीलिए होते हैं कि आप ना ये डाइट वगैरह पे ध्यान ना दो. इनफैक्ट मैं भी खाने पीने पे बहुत ध्यान देती हूँ, लेकिन जब फेस्टिविटीज आती है ना तो सब भूल जाती हूँ. आई ऑल्सो इन्जॉय लाइक यू, क्योंकि ना ये मोमेंट्स अगर हमने इन्जॉय नहीं किए तो फिर क्या किया, है कि नहीं? चलिए इसी बात पे अब बारी है ईद की धुन की. वैसे हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस ने हमारे शो की जो रौनक है ना और बढ़ा दी, लेकिन अब बारी है उस धुन की जो आपके माइंड को उफ और भी ज्यादा अच्छा फील कराएगी. बदली सी हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है. अब कुछ फ्रेश सुनते हैं. यस, फ्रॉम द इंडी सीन, बदली सी हवा बाय द बैड्स ऑफ बॉलीवुड. ये ग्रुप मशहूर है फॉर टेकिंग द 90s इंडी पॉप सोल, उसको मिक्स करके फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्शन बनाते हैं और जब गाना हम सुनते हैं ना तो हमको लगता है ओहो क्या हमारे कानों में सुनाई दे गया. वेल, इट्स अ वेरी ब्रीजी सॉन्ग जो कि सनसेट अगर कॉर्निश में हो रहा हो तो वो

और भी कमाल की लगेगी. सो बैड्स ऑफ बॉलीवुड, सो बदली सी हवा, ये गाना हम इंजॉय करने वाले हैं. देन ग्लोबल हिट परेड की तरफ हम रुख करेंगे, देखेंगे और कौन कौन से हिट गाने हैं हमारी हिट लिस्ट में.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। वेलकम वेलकम वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिताभ के साथ ईद की धुन, हमारा कमाल का शो जिसका चौथा दिन इट्स अ ग्रैंड फिनाले एंड हम बड़े ही शानदार से ट्रैक्स आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आपकी शाम को और हसीन बना रहे हैं। एंड अगर आप हमें सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं देन 666-22-107 इज आर नंबर, डू कनेक्ट विद अस। हाँ वेल, अभी मुझे किसी ने पूछा है, नाम नहीं लिखा बट लिखा है कि अमिता ये बता दो आपकी आज की प्लानिंग क्या है। वेल इट्स वेरी सिंपल, आप लोगों से बात करके जब मैं स्टूडियो से जाऊंगी सो आई हैव अ मूवी प्लान। अभी फैमिली के साथ बैठकर फुल ऑन वो जो कहते हैं ना पॉपकॉर्न्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के, वो मैं रोस्ट करूंगी और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छी सी मूवी लगाकर बैठ जाने वाली हूँ। तो आज का तो यही प्लान है, घर पर ऑलरेडी बिरयानी बनी हुई है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, ईज आउट वे में जाने वाली हूँ और अपनी ईद के आखिरी दिन को एंजॉय करने वाली हूँ। सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज। ओके वेल, अभी हमें जावेद का मैसेज आया गुराफे से, ईद उल अदा की मुबारकबाद दे रहे हैं, आपको भी बहुत सारी मुबारकबाद। कहते हैं कि ये जो दिन है

उनको रिमाइंड कराता है ऑफ सैक्रिफाइस एंड शेयरिंग, और बोलते हैं कि हमने कोशिश की इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक हम पहुँचें, और जो भी हमसे हो सके हम उनकी मदद करें. That's really so sweet. मतलब अगर आप किसी भी तरह से एक छोटी सी भी हेल्प करते हो ना ज़रूरतमंद की, चाहे वो कैसे भी हो, उसकी दुआएं जो हमें मिलती हैं ना वो 3-4 गुना ज़्यादा पावरफुल होती हैं. सो यस जावेद, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आप कर रहे हैं. मे गॉड ब्लेस यू, और आप इसी तरह से सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन औरों का भी दिल जीतते जाएं अपनी गुड डीड से. वेल, अभी हमारे साथ मतार कदीम से रुखसार जुड़ी है. ईद मुबारक कह रही हैं, आपको भी खैर मुबारक. मैंने आज बहुत मेहनत की है, यकनी पुलाव बनाया है. ओए होए रुखसार, क्या बात है. वैसे रुखसार, मैं आपसे ना एक कन्फेशन करना चाहती हूँ. मैंने आज तक यकनी पुलाव खाया नहीं है, एंड समहाउ मैं क्योंकि वेजिटेरियन एगिटेरियन हूँ तो मौका मुझे मिला नहीं है. बट येस, आई कैन फील इट कि जब आपने लिखा कि मैंने बहुत मेहनत की है, सो काफ़ी मेहनत पक्का की है आपने, तो हैट्स ऑफ टू यू. थोड़ा रेस्ट वगैरह भी कर लेना. और कहती है कि अगर कोई लिसनर्स मदार कदीम में है और हमारे घर के पास है, और अगर अकेले हैं तो वो ईद मनाने हमारे घर आ जाए. रुखसार, देखो ये बात ठीक नहीं है. हाँ, बोला और एड्रेस तो बताए नहीं, कोई कैसे आएगा. रुखसार बेसिकली कहना चाहती है कि जो भी रुखसार को जानते हैं, एंड इफ दे आर अलोन, एंड अगर वो फैमिली से दूर है, तो शी इज सेइंग कि भाई इस मैसेज के जरिए अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर हमारे घर आए और फुल ऑन ईद हमारी फैमिली के साथ इंजॉय करें. सो रुखसार, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए जो आपके पास है, और आपने इतनी मोहब्बत से जो इनविटेशन, ओपन एयर इनविटेशन दिया है. मजा आ गया. वेल, हमजा जुड़े हमारे साथ मैं सईद से, और कहते हैं ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक. दोस्तों के साथ मैं सईद की तरफ ड्राइव पे निकले हैं, और लॉन्ग ड्राइव, गुड म्यूजिक ऑन योर रेडियो, ईद वाइब, मतलब सब कुछ सॉर्टेड है बॉस, और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है और हम सब करक इंजॉय कर रहे हैं. चले इंजॉय करें और आपकी इंजॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ाते हैं. अब आगे कौन सा गाना है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं? वेल, इट्स द सॉन्ग जिसने धूम मचा रखी है. यस, गुरु ने इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट के साथ काम किया है ताकि इस गाने को एक ग्लोबल पॉप लुक दिया जा सके. एंड द सॉन्ग इज Yes, गुरु रंधावा का ये परफेक्ट गाना आपके लिए आ रहा है, तो एंजॉय करने के लिए हो जाइए तैयार. एंड आफ्टर दैट कौन सा गाना सुनेंगे आप? I should say, ये एक स्पेशल ट्रीट है फॉर आर नॉर्थ अफ्रीकन एंड मिडल ईस्टर्न लिसनर्स, क्योंकि डिस्टिंक्ट विद टिक टिक, उफ, बड़ा शानदार लगता है. मतलब एक तो ये मोरक्कन बेल्जियन सेंसेशन है, और उसके बाद टिक टिक ये गाना जब सुनते हैं, ऑलरेडी गाना काफी वायरल है, और उसके बाद इसमें अरबिक लिरिक्स एंड देन एफ्रोबीट रिदम ब्यूटिफुली इस गाने में ना जान डाल देता है. बहुत ही शानदार सा गाना खास तौर से आपकी राहों में आ रहा है. सो गेट रेडी एंड एंजॉय इट वॉल्यूम बढ़ाकर. और हाँ, हमसे जुड़े 666-22-107 पर, 666-22-107, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमसे शेयर करते हैं कि आज ईद के चौथे दिन आप क्या कर रहे हैं, है कि नहीं. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360।
1: कतर बिजनेस 360
2: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

रही है। भाई साहब ये बताएं कैसा लगा आपको अब तक ईद की धुन के हमारे ये शानदार से गाने। I'm sure you guys are enjoying, हाँ? और enjoy कर रहे हो तो बताओ बताओ हमें बताओ 666-22-107 पर। अभी हमारे पास मैसेज आया रिजवान का, कहते हैं कि अमिता सबसे पहले तो ईद मुबारक, धूम धड़ाके से आपने जो ईद की धुन वाला शो हमारे लिए प्रेजेंट किया बड़ा मजा आया, वी जस्ट लव द सॉन्ग्स। थैंक यू रिजवान, सो काइंड ऑफ यू, इतने प्यार से आपने कहा। और कहते हैं अमिता अभी जो ये ईद का चौथा दिन है हमारी पूरी फैमिली में से कोई कहीं नहीं जा रहा है, सबने क्लीनिंग का काम किया हुआ है। हर एक चीज साफ होगी, हर एक चीज को सही जगह पर रखा जाएगा एंड बस डिसिप्लिन के साथ सारे काम हो जाने हैं। क्या बात है रिजवान जी, मतलब मानना पड़ेगा आपने अपनी फैमिली को और अपने घर के सारे लोगों को इतना डिसिप्लिन रखा है कि हर चीज एकदम परफेक्ट है। हाँ बट इट्स गुड यार, मतलब ईद के तीन दिन तक हमने जम के एंजॉय किया एंड देन चौथे दिन हम बिल्कुल रिलैक्स हुए और कहा कि चलो अब हम पूरी साफ सफाई करेंगे, रिलैक्स होंगे और अपने घर को एकदम शानदार बनाएंगे और फिर मूवी नाइट करेंगे या फिर करक एंजॉय करेंगे, डिनर एंजॉय करेंगे। तो दिस इज रियली रियली नाइस एंड थॉटफुल, सो हैट्स ऑफ टू यू रिजवान। वेल महक का मैसेज आया है मदीनात खलीफा से, ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। कहती है कि मैं ईद की धुन सुन रही हूँ वाइल अप्लाइंग मेहंदी ऑन माय हैंड्स। क्या बात है महक, मतलब ईद के पहले दिन से अब तक मेहंदी नहीं लगाई थी। आपका भी हाल मेरे जैसा है कि चलो ईद खत्म होने से पहले मेहंदी तो लग जानी चाहिए है। और कहती है कि आपकी प्लेलिस्ट सीरियसली बड़ी मजेदार है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच महक, यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। सो कीप एंजॉयिंग एंड कीप शेयरिंग कि आपको कैसा लगता है हमारे साथ जुड़ना। तारिक का मैसेज आया है एजुकेशन सिटी से और कह रहे हैं कि आप सभी को ईद मुबारक, आपको भी तारिक ईद मुबारक। और कहते हैं कि अमिता मेरी ईद बड़ी खूबसूरत गई क्योंकि मेरी फैमिली फर्स्ट टाइम कतर आई और ये तीनों दिन हमने बहुत खूबसूरती के साथ बिताए। नमाज का वक्त था, फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, फिर कतर के अलग अलग जगह पे घूमना फिरना, वी सो लव्ड इट। तो मैं इस पूरी ईद बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और आज हम बच्चों के साथ शाम को कटारा जाएंगे, सो दिस इज द प्लान। आई थिंक तारिक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट यू आर टेकिंग। आप अगर शाम को जाते हैं क्योंकि ठंडक हो जाती है 5 के बाद तो डेफिनेटली ठंडा माहौल हो ही जाता है, तो यू कैन गो एंड एंजॉय विथ योर फैमिली और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। सो यस तारिक जरूर जाए, जरूर इंजॉय करें ईद को। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस तरह से जुड़ने के लिए और हमें मैसेजेस करने के लिए। वेल हमारे सारे लिसनर्स, आप सभी को जो हमें सुन रहे हैं और जो हमसे जुड़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद के मौके पर जब फेस्टिविटीज होती हैं तब यूं वक्त निकाल के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सो रियली रियली आई एम थैंकफुल। चले आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन सी वो धुनें हैं जो आपके मूड को फ्रेश करने वाली हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट ट्रेंड एंड द सॉन्ग इज का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग। एमी वे ने शाहरुख के आइकॉनिक गाने को एक मॉडर्न ड्रिल मेकओवर दिया। यस इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और जो एमी वे बंटाए हैं ही इज अ रॉ इंडिपेंडेंट स्टाइल आर्टिस्ट और वो कहते हैं इनके हर एक गाने बिल्कुल स्ट्रीट हिट होते हैं और बोल्ड होते हैं और मुंबई का वो टच होता है, सो बड़ा मजा आता है। एंजॉय द सॉन्ग काली काली आंखें जो कि कुछ ही देर में आएगा और उसके बाद वेल ये साजिद अली के क्लासिक का री इमेजिन वर्जन है लोफी जैज एलिमेंट्स के साथ। इसे यूज करके जेन जी के लिए मॉडर्न बनाया गया है वाइल कीपिंग द नॉस्टैल्जिया अलाइव 90s किड्स का। पुरानी यादें नए अंदाज में बोलो बोलो, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप। पहले काली काली आंखें देन बोलो बोलो फुल वॉल्यूम पे आपकी राहों में आ रहे हैं, तो एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

आप सुन रहे हैं FM 107 पर ईद की धुन. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. तो कैसे लग रही है हमारी ईद की धुन? चौथा दिन है भाई, आज लास्ट डे है हमारे इस स्पेशल शो का. तो जुड़ना बनता है 666-22-107, 666-22-107 पर जुड़े. बताएं भाई कि अमिता फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं हम आपके ईद की धुन के गाने और ईद कैसे मनाई जा रही है. आइए जानते हैं. जीनत हमारे साथ जुड़ी है मैसेज के जरिए. ईद मुबारक कह रही है जीनत, आपको भी खैर मुबारक. और कह रही है कि हमने प्लान किया है डेजर्ट सफारी का विद आर होल ग्रुप. थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा सैंड ड्यूनिंग एंड देन डिनर अंडर द स्टार्स. भाई साहब, आप सफारी करने जा रही हैं जीनत? लाइक रियली हैट्स ऑफ टू यू यार. वैसे मैं आज तक, जब से मैं कतर में आई हूँ, मैंने अभी कतर की डेजर्ट सफारी अभी तक नहीं करी है. सो आई जस्ट होप कि मुझे कभी टाइम मिले. इट्स जस्ट दैट कि मुझे मौका नहीं मिला. सो जीनत रियली इंजॉय कीजिए. एंड व्हेन यू मेक अ लॉट ऑफ स्टोरीज और पिक्चर्स वगैरह ले, वीडियोस बनाए, तो सोशल मीडिया पे अगर आप पोस्ट कर रही हैं जस्ट इन केस, तो एफ एम 107 को टैग करना ना भूलें और अपनी आर जे अमिता को भी टैग करें, ठीक है? फिर सैफ का मैसेज आया है और सैफ कह रहे हैं

अपने मुल्कों की हर एक चीज, हर एक खासियत हर कोई मिस करता है, लेकिन अभी हम जब कतर में हैं, विच इज आवर सेकंड होम, तो यहाँ की चीजों को एंजॉय करने, यहाँ पर खूबसूरत पार्क्स, मॉल्स, डेकोरेशंस, हर जगह आपके दिल को खुशी मिलेगी, तो सैफ बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है? फिर यहाँ पर लुबना का मैसेज है, वेरी यूनिक नेम, कहती है ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक, और कहती है कि हमने तो आज रिलैक्सेशन डे रखा है, कुछ ओल्ड फिल्में निकालेंगे और कबाब्स खाएंगे, और फिलहाल तो अभी आपका रेडियो शो सुन रहे हैं, करक और बिस्किट्स खा रहे हैं. क्या बात है लुबना, मतलब बिल्कुल देसी स्टाइल में, हाँ, करक और बिस्किट. तो ये आप वैसी वाली है क्या जो करक में बिस्किट डुबो के खाती हैं या फिर साथ में खाती हैं, मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब करक मुझे मिलती है ना, तो मैं बिस्किट उसमें डुबो के खाती हूँ. क्या करें, हमारे साइड में वैसा ही चलता है. सो यस, थैंक यू सो मच हमसे शेयर करने के लिए. इरफान का मैसेज आया है, एंड ही सेइंग ईद मुबारक एवरीबॉडी. इरफान, ईद मुबारक टू यू टू. कहते हैं कि शाउट आउट टू ऑल माई क्लीग्स, क्योंकि आज सारे ड्यूटी पर है, और जाहिर सी बात है कि ईद का चौथा दिन है, तो हमें लगा कि छुट्टी होगी, लेकिन नहीं, हम सब काम कर रहे हैं. सो इस त्यौहार में भी काम करके फिर घर जाना और फिर सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करना, इट्स अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो जस्ट वॉन्ट टू

निश्चिंत हो पाते हैं और अपनी हमारी टेक केयर बड़ी अच्छी हो पाती है. सो यस, ये कुछ कमाल के मैसेजेस जो हमें आपने भेजे, हमसे अपने दिल की बातें शेयर की, बड़ा अच्छा लगा. अब आगे बढ़ते ईद की धुन में कौन से गाने हैं जो आपके मूड को बनाने वाले हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन सीक्वल, वॉर 2 का गाना, जो कि अपने पूरे शबाब के साथ, अपने पूरे बूम के साथ आपकी राहों में आ रहा है.

इन फोक टेक्नो ट्रैक है जिसमें ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर को फीचर किया गया है. इस गाने को कंपोज किया है प्रीतम ने एंड इस गाने में 100% लाइव कोरस का इस्तेमाल हुआ है. उफ, कैन यू इमेजिन, मतलब वॉर का स्केल कहाँ तक पहुंच गया. हाँ, ये तो बिल्कुल गाना नहीं है, एक तूफान है. सो यस, आवन जावन, एंजॉय दिस सॉन्ग. और उसके बाद कौन आ रहा है अगेन, गुरु का ऑरा. कैसे मिस कर सकते हैं, और इनका गाना करिश्मा. तो ये सॉन्ग है, इट डिफाइन करता है गुरु का ऑरा एंड फंक पॉप इन्फ्लुएंस और उनका वो सिग्नेचर स्टाइल. इज द परफेक्ट गुड बाय सॉन्ग. लेकिन वो कहते हैं ना कि चेहरे पर स्माइल छोड़ जाता है. सो ईद की धुन पर अभी हम सुनेंगे करिश्मा. करिश्मा के पहले आएगा आवन जावन. तो आप कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का. बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं ईद की धुन. आप सुन रहे हैं FM 107. मैं हूं आपकी फरमीता. तो हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ईद की धुन का ये एक स्पेशल प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आए इस एंटायर ईद के चारों दिन. बस ऐसी शानदार धुने आपको सुनाई जिसपे मुझे लगता है कि हर कोई कनेक्ट कर पाया, जिससे हर कोई अच्छा महसूस कर पाया, जिससे हर कोई इंजॉय कर पाया. वेल, ईद की धुन का आज ये ग्रैंड फिनाले है, चौथा दिन है, लेकिन रेडियो पर हमारे धुनें बजती रहने वाली है और मैं भी आपसे ब्रांड न्यू शो पर मुलाकात करने वाली हूँ दोपहर 1:30 बजे से. यस, सीधा 1 तारीख से अब हम मिलेंगे दोपहर 1:30 बजे से एक फन शो जिसका नाम है एस्केप रूम. ठीक है, कुछ बोनस ट्रैक्स हैं जो कि आपकी राहों में आने वाले हैं, सो गेट रेडी फॉर इट. हमारे सारे लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े ईद के चारों दिन. और फिलहाल अपनी ए फॉर अमिता को दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त है मेरे जाने का और फिर हम आपको एक ब्रांड न्यू शो पर मिलेंगे नए जज्बे, नई कहानियां और नए एंटरटेनमेंट के साथ. तो जाते जाते मैं कहूंगी हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, अपनी आरजे अमिता को वहीं ढूंढ लीजिए और कनेक्ट हो जाइए. और अभी हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 टाइम चेक।
4: चेक 5:01। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। गुड इवनिंग, ईद का चौथा दिन। आई नो अब तो क्या मतलब, अभी भी लोगों की दावतें बाकी हैं, कहाँ से लाते हैं यहाँ पे एनर्जी मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों की आज दावतें हैं, हमारे तो सर्वर भाई भी हैं, वो भी दावतें बैक टू बैक कर रहा है। उन्होंने कहाँ से इतना जोश आ जाता है, क्योंकि भाई मैं तो दाल चावल पे आ चुका हूँ। आपका पता नहीं कैसे जा रही है, ये बताइएगा। अभी तक चौथा दिन हो चुका है। हाउ आर थिंग्स, क्या चल रहा है घर में माहौल में, सब बताइएगा 6666221107 पर। हाउसफुल है ईद का, तो हाउसफुल है तो इनाम भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जाना नहीं आपने, सबसे पहले शाम की शुरुआत शाम के अधिकार से, इंशाल्लाह फिर आपसे होगी मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा।
5: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: मेरे दिमाग में वो ही चल रहा है।
1: देखा ट्रिक क्वेश्चन, बड़े ट्रिक क्वेश्चन, इसलिए कहता हूँ ध्यान से ध्यान से।
0: मैंने सुना नहीं था क्योंकि वो हम लोग बाहर जा रहे थे ना, तो वहाँ बहुत शोर हो रहा था।
1: अब बहाने तो कुछ भी हो सकते हैं, शोर हो रहा था, बाहर जा रहे थे, फलाना हो रहा था, ढिमकाना हो रहा था, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने नहीं सुना भाई, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो आज ध्यान से सुनना, अभी कुछ देर में सवाल पूछता हूँ, ठीक है?
0: ओके
1: चलो ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद एक और मैसेज आया, सवाल रिपीट कर दे, मैंने तो पूछा ही नहीं समझ नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं अभी तक, तो सवाल कौन सा रिपीट करूं। एक मैसेज, आई एम ट्राइंग टू विन समथिंग फ्रॉम FM 107 सिंस 2012 बट अंटिल आई डिडंट गेट। भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, आप कोशिश करते रहिए, ये सारा किस्मत का खेल है मेरी जान। आप मुझे ये बोलेंगे मैं 2010 से 2012 से नहीं जीत रहा, मकसूद भाई मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हाथ में 1% नहीं है किसी को जिताना। एक मैसेज है, क्या क्या इन्होंने क्या फुर्सत नहीं लम्हों की नहीं से क्या निसार भाई क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कहते हैं छुट्टी है, दावतें खाएंगे, खाओ बिल्कुल खाओ। एक मैसेज है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहम्मद। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कहते हैं आपकी ईद कैसी गुजर रही है, कहाँ कहाँ गए? मैं भाई ऑफिस में ही आया हूँ, कहाँ गया हूँ मैं? बाकी दावतें कर ली पहले दिन ही, सारी दावत ख़त्म, सबको बुला के सबको खिला के मैं सलाम है। उसके बाद आपका भाई एकदम एस में, छुट्टी तो नहीं है पार्शली है, बट देन उसके बाद फिर कहीं नहीं गया मैं, सो आई एम ऑल रिलैक्स ऑल चिल। सवाल क्या है, अभी तो नहीं पूछा मैंने सवाल, जब पूछूंगा तब। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मतार कदीम से एक मैसेज आया है, देन एक मैसेज है, मुबारक। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। ओके तो मैं एक दो सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसके बाद जो है आपको मौका मिलेगा जीतने का। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन, जब आप जवाब देंगे तो आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद स्पेस दे के जवाब लिखना है, एंड कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से कोई एक लकी विनर इस घंटे जीतेगा 500 कतरी रियाल का इनाम वहां से। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है, यूसुफ भाई कह रहे हैं, वही पूछ रहा हूँ, दावत कहाँ हुई, कोई बीच पर गए थे क्या? नहीं भाई, बीच बीच पर नहीं गया मैं, घर पर ही दावत थी, घर पर बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे, सबको बुला के सबका पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया से निपट गया। यूसुफ भाई पहले दिन एकदम सेट कर दिया आपके भाई ने, तो इसलिए फिर नहीं हुआ। एक मैसेज है, गिन्नी हियर, ईद मुबारक, मैंने बहुत टाइम बाद ये नाम सुना है, इनके से ढूंढो, मेरे ग्रुप में भी एक मैं जानता हूँ कौन का नाम गिन्नी, बहुत टाइम बाद मैंने ये नाम सुना है, सो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए, स्कूल की यादों में चला गया मैं। ओके सवाल गौर से सुनिएगा, कतर में ना वैसे तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मॉस्क्स हैं, जगह जगह मस्जिद इतनी खूबसूरत बनी है, एक मस्जिद है जो कि कहलाती है, ने जो कि कहलाते नहीं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसकी जो एक मीनार है, एक पिलर है, वो लीनिंग है, थोड़ा सा लीन करता हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो मस्जिद कहाँ पर है? उसका टावर जो है ना, उसका जो एक पिलर है वो थोड़ा सा लीनिंग है, वो किस लोकेशन पर है मस्जिद, ये आपको बताना है। जवाब देने के लिए 666-22-107 666-22-107 और स्पेस देके अपना नाम लिख दीजिएगा। मैसेज यूसुफ भाई कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह घर पे ही, दैट्स गुड, अबू अम्मी को हमारा सलाम और ईद मुबारक बोलिए। बिल्कुल ईद मुबारक उनकी तरफ से, वालेकुम सलाम और दुआओं की गुजारिश, जजाकल्ला मेरे भाई। और फातिमा को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा यूसुफ भाई, एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर हर। ठीक है, ईदी कितनी हुई फातिमा की, कितनी ईदी दी आपने? अब्बा जी बताइए उनको कितनी ईदी मिली है। मकसूद भाई कह रहे हैं दुकान रोड आई, अच्छा ओके। तो एक और मैसेज है, उसामा हेयर, ओके। फिर एक और मैसेज है, मोहम्मद खलील, ओके। मैं नाम नहीं ले सकता, लोग मस्जिद का नाम लिखने लगे अब तो अच्छा एक कॉल आ रही है, कॉल जरा उठा ली जाए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है आपका?
2: हानिया।
1: अच्छा हानिया, बताओ सही जवाब बताओ जल्दी से।
2: सहानिया में।
1: अच्छा ठीक है, पक्का ना? शोर, किसने बताया तुम्हें ये जवाब
2: सही?
1: किसने मदद करी है बताओ? मम्मी ने मदद करी है?
2: सानिया के बगल में ही है।
1: अच्छा ठीक है ठीक है हानिया, थैंक यू सो मच बच्चे, एंड ऑल द बेस्ट। ओके
2: हम लोग रहते भी यहीं पे
1: हैं। अम्मी को फोन दोगी क्या? अम्मी से भी बात करा ही दो, जब लगे हाथों फोन कर ही लिया है आपने तो।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जो आपने मदद करी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए आपके क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
1: इनको इनको ईदी हाँ। इनकी डिमांड हुई, इनकी ईदी हुई है, पूरी ईदी मिली है कुछ हानिया को?
2: हाँ जी मिली है।
1: क्या कितने ईदी मिली है इनको बताइए जरा?
2: हानिया आप बताओ कितने ईदी मिली है आपको?
1: कितनी ईदी मिली हानिया को?
2: अम्मी ने मेरे को 5 रियाल दिया
1: है। अरे अरे ये तो स्कैम चल रहा है। बच्चे मन के सच्चे।

0: ये देखिए हानिया मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, नहीं देखो ये गलत है ये अम्मी खेल गई ठीक है वाह वाह वाह
1: जिस दिन ईद में बांट रहे थे बच्चों के बहुत सारे उनमें भी शामिल थी
0: आए?
1: में करी मुझे सबको साथ में बराबर चाहिए था, हमने 5-5 रियाल सच में दिया था उस दिन
0: ठीक है मैं अच्छा हुआ मैं आई एम सो प्राउड कि मैंने सवाल पूछा
2: नोट मिला के
0: क्या
1: बहुत सारे नोट मिला के
0: अच्छा बहुत सारे नोट मिला के तो हानिया क्या किया उन 5 रियाल का
1: क्या क्या आपने पैसे
0: क्या किया हानिया का हानिया क्या
1: पूरा इकट्ठा कितना किया आपने
0: अरे ये भी फुसफुसाहट हो रही है इस बात पे
1: बताओ
0: मम्मी ने रख लिया क्या मम्मी ने वापस रख लिया क्या
2: 400 जमा किया था मैंने
0: ओह माशाल्लाह क्या किया फिर इतने सारे पैसों का
1: आपने क्या किया सारा
0: क्या किया इतने 400 रियाल का क्या किया
2: अब मैं जमा करके पर्स में रखूंगी जब जरूरत लगेगी तब खर्च करूंगी
0: मम्मी ने सिखा दिया मम्मी ले लेंगी 400 रियाल बेटा संभाल के रखना अच्छा ठीक है पर मैम बहुत बहुत शुक्रिया इन मुबारक आपको फिर से एंड ऑल द बेस्ट ओके जी अल्लाह हाफिज
2: अंकल बकरीद मुबारक
0: अरे आपको भी हानिया स्वीट हार्ट बकरीद मुबारक हानिया को अलग से हाँ बिल्कुल बेशक
1: उससे जो बातें करेंगे वो शाम हो जाएगी
0: हाँ मुझे पता है पर हानिया हानिया 400 रियाल संभाल के रखना ठीक है मैं पूछूंगा अगली बार
1: कभी पास में रख के उसको पूरे दिन गिनती अम्मी कितना हुआ इतने 100 थे मेरे इतने 100 हो गए और ये पूरे नोट के कलर भी गिनती रहती है
0: वेरी गुड हानिया बहुत बढ़िया ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का फ्यूचर करियर दिख रहा है मुझे अभी
1: उसमें से मैं अगर निकाल लेती हूँ अम्मी आपने मेरा खुला क्यों निकाल दिया इसने
0: बिल्कुल गलत है ये हानिया का खजाना है वो ठीक है अच्छा अच्छा मेरा प्यार दीजिएगा हानिया को लेकिन जज़ाकअल्लाह बहन बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए
1: बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़ और ये मस्जिद यही हमारे बगल के रास्ते में लोकेशन यही हानिया के रोड पे है
0: ठीक है लॉक कर दिया मैंने आपका जवाब थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़ और एक मैसेज यूसुफ भाई का लिखते हैं कबीर फातिमा को ईदी नहीं दिया बहुत गुस्सा है वो देखिए बाद में नहीं चलेगा यूसुफ भाई फातिमा से मेरी बात कराइए मैं जरा उसको और एडवाइस देता हूँ ये तो स्कैम हो रहा है भाई बच्चों के साथ ईदी दीजिए उसको एक और मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम ऑलमोस्ट सबके जवाब ठीक ठाक हैं एक दो जवाब गलत आए हैं बट चलेगा मैं एक कॉल उठा लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम
3: हेलो
0: कौन है लाइन पे
3: आपको पता ही होगा 5 मिनट चले थे मेमोरी भी भूल गई
0: क्या क्या क्या क्या
3: मेमोरी भी भूल गई क्या 5 मिनट पहले ही से बात हुई
0: बेटा मैं लगातार कॉल उठाता हूँ मुझे याद भी नहीं कौन कब कॉल कर रहा मैं अंधाधुन कॉल उठा रहा हूँ अंधाधुन बताओ सही जवाब
3: ओके अल शहानिया में है
0: अच्छा गए हो
3: नहीं कभी नहीं गया बट इंशाल्लाह वन डे आई विल गो मॉल ऑफ कतर आ गए एनीवन इज सो क्यूरियस की कहाँ है अल शहानिया तो हमें पता नहीं है आई टेल यू मॉल ऑफ कतर से आ गई है
0: अच्छा ये इंटरनेट पे सर्च किया या किसी ने मदद करी ईमानदारी से बताओ चलो ईमानदारी के तुम्हें नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे
3: अभी तो मैंने इंटरनेट से सर्च की पर आई हैड लर्नड अबाउट
0: दिस आई लर्नड अबाउट दिस माय गॉड
3: हां
0: हां हम ही मिले तो मैं सुबह से हैं
3: माशाल्लाह जो आज सुबह भी उठी माशाल्लाह कोई कॉल नहीं उठा रहा यानी
0: इग्नोर कर रहे हो तुम्हें
3: इतने लोग आते
0: कितने इतने कितनी ईदी हुई सब छोड़ो कितनी ईदी हुई तुम्हारी
3: इस बार तो 500 हुई थी शायद 4,000 हो गए मेरे पूरे
0: कितने हो गए 4,000
3: यस मैंने सेव किए हैं
0: ये सेव करके क्या ताजमहल बनाओगे क्या क्या क्या इरादा क्या है
3: है? अभी तो मेरे तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं क्या करूं मैंने कहा चलो बचा ही लेता हूं
0: 4,000 रख के तुम कह रहे हो इंटरेस्ट नहीं है 4,000 रख के इंटरेस्ट नहीं है यार
3: मेरे दिमाग में आता नहीं है कि कबीर मैं क्या लूं उससे।
0: ओ दिमाग में इतना कुछ आ जाता है, दिमाग में 4000 रियाल लेके क्यों कुछ नहीं आ रहा है यार, हमें दे दो तुम, लाओ
3: यार
0: लाओ लाओ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है।
3: अच्छा मैं कह रही चलो जो खाना पीना है खा लो, मैंने कहा इतना ज्यादा खाना पीना मैं लेके आऊंगा अपने लिए,
0: काम करो
3: मैंने कहा
0: तुम 4000 इधर दो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कर सकते हैं 4000 रियाल से, ठीक है।
3: अच्छा तो फिर 500
0: का
3: रियाल का वाउचर दे दो फिर फटाफट।
0: नहीं नहीं फटाफट कुछ नहीं होता, 4000 क्या क्या आ रहा है। मैं तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करके बताऊंगा, ये मेरा फर्ज है बच्चों को सिखाना।
3: नहीं नहीं तो क्या ये कह रहे हो कि आज वो तुम्हारे ट्रैवलर के वाउचर आ जाएंगे, 8 दफा हम वहाँ खा लेंगे जो खाना खाना है वहाँ से, ये कहना चाह रहे हो?
0: मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मुझे 4000 चाहिए भाई। साफ सीधी बात,
3: सैलरी से कम है ज्यादा
0: ना ना, मैं कुछ सुन ही नहीं रहा भैया, मैं तो 4000 के बाद बात करूंगा, साफ सीधी बात। क्लियर कट, मेरे दिमाग में बहुत कुछ
3: आ रहा है। आपके लिए बड़ी खुशी लेके आया हूँ।
0: मेरे लिए खुशी लेके आया?
3: कौन खुशी,
0: क्या खुशी?
3: आज की मैं बाद से आज से कलेजी बन गया।
0: खाओ भाई खाओ, मैं कलेजी वाला बंदा हूँ नहीं, मैं दिल खाता हूँ, दिल, हाँ मैं दिल खाता हूँ, देखा मुझे एग्जैक्टली पता है क्या करना है, इसलिए बता रहा हूँ मेरे दिल में बहुत कुछ है, 4000 रियाल से क्या क्या नहीं कर सकते तुम मोहम्मद, ऐसा मत सोचो बेटे।
3: हाँ तो लूंगा, लेकिन अब दिमाग में तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना जो मेरे में इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट या मुझे पसंद हो।
0: क्या क्या पसंद है तुम्हें, कुछ तो पसंद होगा
3: यार, पहले तो होता नहीं था, पता नहीं अब जब से मैं कर रहा हूँ, रेडियो का शौक है, कभी कंप्यूटर का शौक है, कभी कपड़ों का मेरा शौक है।
0: यार मोहम्मद यार छोड़ो यार, I'm disappointed यार बेटे, I'm very very disappointed, this is not done। 4000 रियाल, अगर तुम्हारी एज क्या है तुम्हारी?
3: 12
0: साल की उम्र में तुम्हारे पास 4000 रियाल रखे, तुम कह रहे हो मैं करूँ क्या? I'm so disappointed right now।
3: इन्वेस्टमेंट
0: अरे
3: इन्वेस्टमेंट हो
0: रही है मोहम्मद, तुम फोन रखो यार,
3: इन्वेस्टमेंट हो रही है बचपन में, मैं देखो इसलिए मैं सीख रहा हूँ बचपन में क्या क्या करना।
0: ठीक है मोहम्मद, ऑल द बेस्ट, फिलहाल तो और भी कॉल्स नहीं है मुझे, बट डिसअपॉइंटेड,
3: फिर अगले घंटे फिर
0: डिसअपॉइंटेड, ओके ऑल द बेस्ट।
3: डिसअपॉइंटेड नहीं कोई बात नहीं, मेरी मर्जी मेरी
0: पैसे। अरे ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो अपना, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मतलब मैं अगर हिसाब किताब लाऊं तो इसके पास 4000 रियाल हैं 12 साल की उम्र में, मैं आज के हिसाब से भी रखूं तो इंडिया के भाई साहब कितने हो गए, लाख, मैं लाख रुपए में, मतलब समझ रहे हैं आप, मैं बता नहीं सकता हूँ, 12 साल की उम्र में अगर मुझे कोई लाख रुपए दे देता भाई, मैं अखबारों में होता हूँ, बता रहा हूँ। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकात।
0: जी मेरे भाई, आपका नाम? ईद मुबारक मेरे भाई को।
4: और क्या हालचाल?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार, आप बताएं क्या हाल है
4: भाई? अफवान भाई को बोलो कि वो लोकेशन मुझे भेज दे, मैं बताता हूँ 4000 का क्या करना है।
0: अरे मैं पहले लाइन में लगा हूँ भाई, पहले मैं बताऊंगा ना क्या करना है 4000 का। वाह वाह वाह वाह, आप तो मेरे साथ ही स्कैम करने लगे
4: भाई, उनके पास है वो बेचारा कंफ्यूज में क्या करे, हम लोग के पास नहीं, हम लोग के पास हो तो बताएं।
0: हाँ तो मोहम्मद अगर सुन रहे हो तो 4000 रियाल हमें दे दो, 2000 मुझे दो, 2000 भाई को दे दो, हम बताएंगे तुम्हें उसको क्या करना है।
4: तुम भी एंजॉय करना साथ में।
0: हाँ तुम भी एंजॉय कर लेना, देख के हमें सीख लोगे कि बड़े क्या करते हैं 4000 रियाल से। कैसे चल रहा है मेरे भाई, क्या क्या प्लान है चौथे दिन का ईद का?
4: चौथे दिन का तो आज कोई प्लान नहीं, बस
0: कोई प्लान नहीं
4: करके आज रेस्ट ही करना है, क्योंकि कोई कबीर भाई एक बार दावत देके तो देखे,
0: है, एक बार बुला के तो देखो, एक बार फिर देखो क्या करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो सही जवाब क्या है आज का सवाल, सुना आपने क्या है?
4: जी जवाब है अलसानिया मॉस्क।
0: ठीक है, तो उस तरफ गए कभी आप वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए? क्योंकि मैं नहीं,
4: मैं तो लगभग मतलब काम ही ऐसा है, पूरे उत्तर में घूमता हूँ, मैं गया हूँ, मैं देख चुका हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला है कि नमाज पढ़ू इंशाल्लाह।
0: हाँ मैंने भी देखा लेकिन मैं गए नहीं, मेरा ये सवाल पूछने के बाद मुझे भी लगता है कि वहाँ एक बार तो जाना चाहिए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस टाइम प्लान करना पड़ेगा,
4: मौका मिलेगा तो जाएंगे
0: इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई, आप दावत का वेट कीजिए, बाकी मैं 2000 रियाल लेता हूँ जरा मोहम्मद से, फिर आपको दिलवाता हूँ, हम बताते हैं क्या करना है 4000। ओके भाई ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, मैं एक बार दोहरा देता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि आपको चार हजार मिलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं. सवाल ये है कि कतर में एक मस्जिद है, बड़ी खास है. उसकी खासियत ये कि उसकी एक मीनार जो है वो थोड़ी लीन कर रही है, थोड़ी सी टेढ़ी बनाई गई है. वो आर्टिस्टिकली टेढ़ी है,

0: और बहुत खूबसूरत लगती है। दो तीन मरतबा में भी वहां से गुजरा तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्यों नहीं पड़ी मैंने एक बार भी, तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गो देयर। मगर वो मॉस्क कहाँ पर है, वो मस्जिद कहाँ पर है, ये आपको बताना है 6622107 पर। बाकी मैसेज आ रहा है, कुछ लोग गलत भी हो रहे हैं। देखिए अगर आप सर्च भी करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। आप एआई की ज़िंदगी में इतना धनिया बोते हैं तो थोड़ा सा उससे ये भी पूछ लीजिए, शायद बता दे। तो आपको सिंपल ये बताना है कि वो जो मस्जिद है कतर में, जिसका जिसका एक टार जो है वो थोड़ा लीन कर रहा है, थोड़ा झुका हुआ है, वो मस्जिद कहाँ पे है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप बता सकते हैं 6622107 पे। एंड ये क्या मैसेज, क्या अस्सलाम वालेकुम भाई, कल मुझे क्या, कल मुझे डिलीट ही कर दिया, कल मुझे क्या, ये क्या बात हुई यार, पूरा लिख देते। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा नाम मोहम्मद शिराज, मैं लॉन्ग टाइम लिसनर हूँ, क्या कल आप कहानी सुनाएंगे इसी वक्त? इसी वक्त तो नहीं भाई, कल, इनफैक्ट बड़ा अजीब सा है, कल मुझे मॉर्निंग में आना है, समझ रहे हो? तो एक मॉर्निंग शो बचा है, बस एक मॉर्निंग शो, विच इज़ टुमारो इन द मॉर्निंग। सो एक मॉर्निंग शो, ऑफकोर्स स्टोरी होगी सुबह को, फिर उसके बाद सीधा शाम शुरू हो जाएगी, फिर सारे के सारे शोज जो है वो शाम में हुआ करेंगे। सो मिक्सड ऑफ बोथ बेसिकली। और आप जितने भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आपके जब मैसेजेस आते रहेंगे तो आपके चांसेस भी बढ़ते रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे, बट एटलीस्ट आपका नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा तो हमारे पास रहेगा। एक रेफरल ड्रॉ का सिस्टम क्या होता है, आप पर्ची ही नहीं भरेंगे तो फिर नाम कैसे आएगा, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जी बहन, आपका नाम?
1: समीना।
0: समीना जी बताइए,
1: क्या बताऊं आपको?
0: कुछ भी बता दीजिए, आप घर का माहौल बता दीजिए, अपने हाल बता दीजिए, दावत
1: का
0: ही नहीं बता
1: दीजिए। माहौल तो बहुत ही बुरा है, घर का माहौल तो बहुत तूफान और वो है, शोर मचा हुआ,
0: शोर मचा हुआ।
1: ढूंढ रही थी आपसे बात करने के लिए।
0: अरे इतना क्या शोर मचा हुआ, चौथे दिन भी दावत चल रही है क्या?
1: बस दावत तो इतनी चल रही है, मैं तो अब कह रही हूँ ना ही हो दावत, तो थक गए दावत खा खा के।
0: अब मेहमानों को देख बना के पकड़ा दीजिए, उनसे कहिए ले जाओ,
1: मेहमान जा ही नहीं रहे ना, रिश्तेदार और मेहमान खत्म ही नहीं हो रहे।
0: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, काफी बरकत
1: है जिंदगी में, इतने रिश्ते, जितने मेरे रिश्तेदार हैं इतने पैसे होते हैं ना, मैं पता नहीं कहीं घूम रही होती।
0: अरे भाई साहब आज निकला है गुस्सा, क्या बात है बहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आज आज मेन्यू में क्या है गई, कल जो बना था भैया कुछ अलग बनाने की फरमाइश आई, कुछ क्या है?
1: आज नमकीन गोश्त है।
0: आज हम की तो कल की बात है ना, तो नमकीन गोश्त की, आज भी नमकीन गोश्त बन रहा है?
1: नहीं नहीं, कल तो पुलाव बना था, मटन का पुलाव और अचार चिकन बना था।
0: तो फिर अभी और दावत है रात में भी?
1: हाँ जी ऐसे ही है, दावत अच्छा है। मुझे तो लगता है मैं तो शांता भाई बन गई हूँ, काम कर करके बर्तन।
0: टिफन पैक करना शुरू कर दीजिए आप, टिफन वाला जो है मुंबई में बहुत हिट बिजनेस है।
1: झाड़ू पोछा कट कर सब करेगी।
0: तू मेरे का नाम देगी ना रे बाबा, मैं तेरे को साफ करके देगी।
1: तो रामू काका रामपुर ईद के दिन रामू काका बने रहे।
0: कल से आराम होगा थोड़ा, नहीं कल से तो थोड़ा हल्का हाल देखा।
1: शुक्र है, मैं तो बोल रही थी आज ही खोल देते सब ऑफिस वगैरह।
0: इन सब को भेजो ऑफिस में, बहुत हो गया।
1: हाँ, ये सब ऑफिस में ही ठीक है।
0: कितने, मैं लास्ट सवाल है मेरा इस दावत से जुड़ा हुआ, कितने लोग हैं वैसे दावत में, लाइक 5-6-7 हाउ मेनी?
1: 5-6-7 की नहीं, तो ये तो छोटी सी वो है, पूरा गांव आता है, पूरा मोहल्ला आता है। 22-23 लोग होते हैं।
0: जिला आ रहा है पूरा, जिला
1: है। हाँ, ये पूरा जिला है, ये पूरा जिला आता है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस बहन, ऑल द बेस्ट उस चीज के लिए। वेरी गुड, आप जरा सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आपने सुना सवाल या नहीं सुन पाए?
1: हाँ जी, वो है शाहानिया में लोकेटेड है।
0: शाहानिया में लोकेटेड है, इन सबको वहीं भेज दीजिएगा दावत के बाद।
1: हाँ, ये भी जबरदस्त है।
0: इनसे कहिए आप मेरे लिए वहाँ पहुँच के दुआ करें।
1: पूरी बस भर के भेज दूंगी।
0: ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। और इससे पहले जो है मैं साइन ऑफ करूँ, ये आपका, आपने
1: दूसरे व्हाट्सएप पे भी भेजा मैंने,
0: आप व्हाट्सएप पे भेजा, ठीक है? तो ठीक है, डन, ओके, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बहन,
1: जज़ाकअल्लाह।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: ओके, तो दावतें बहुत चल रही हैं, ये रिश्तेदारों को बहन कह रही इनको भेजो भाई काम वाम पे। एक मैसेज है, भाई हमें कोई पूछता नहीं, इनके पास कभी नहीं मेहमानों के। भाई कह रहे हमें कोई पूछ नहीं रहा है, ये जा कहाँ रहे हैं लोग, वेयर इज एवरीबडी गोइंग। भाई मैं आपको बताऊं आसिफ भाई, मेरा सीन ऑलमोस्ट आपके जैसा है, मुझे लगता है डर। मैं उनमें से हूँ जिनसे बात नहीं हो पाती,

0: है ना, मैं बहुत डरता हूँ। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, फिर आसिफ भाई आपको भी कॉल लगा लेते हैं। एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम सलाम सर, कबीर भाई।
0: जी भाई, आपका नाम? हेलो,
1: हाफिज जान खान फ्रॉम शाहानिया।
0: अरे आप तो वहीं पर ही हैं। कैसे मेरा भाई?
1: शाहानिया जी बोलो, टेढ़ी वाली मस्जिद के आसपास।
0: टेढ़ी वाली ये नॉर्थ वाले नहीं सुधरेंगे भाई,
1: मस्जिद तो सीधी गुंबद टेढ़ा है।
0: ये नॉर्थ वाले नहीं सुधरेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है आपके, ये बताइए। ईद मुबारक।
1: जी मुबारक सर, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और बताइए मेरे भाई, वैसे तो
1: अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कबीर भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है मेन्यू में आज मौलाना साहब, आज क्या मेन्यू में, क्या खाने में, आज क्या है?
1: जी क्या पूछ रहे हैं?
0: आज खाने में क्या है मौलाना साहब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बस वही जो ईद उल अज़हा के गोश्त चल रहे हैं माशाल्लाह।
0: गोश्त अभी तक कुछ आइटम तो होगा, कुछ बिरयानी शिरयानी कौरमा वरमा। आप तो माशाल्लाह नॉर्थ के हैं यार।
1: सर मैं वहाँ का हूँ, बटला हाउस का।
0: हाँ तो आप तो मेरे ही इलाके के, मेरे ही मोहल्ले के। इनफैक्ट बटला हाउस वालों को तो पता होता है क्या खाना है, क्या खा रहे हैं
1: आप। आपने माशाल्लाह से कल जो रेडियो पे माशाल्लाह से आप डिशों की तारीफें कर रहे थे, माशाल्लाह दिल्ली की डिशों की।
0: आप जरा पब्लिक को, मौलाना साहब आप बता दीजिए पब्लिक को, दिल के टिक्के मिलते नहीं मिलते बटला हाउस में?
1: बेशक माशाल्लाह
0: बेहतरीन होते नहीं होते
1: सर? आजकल तो बटला हाउस उठ के वहाँ चला गया, शाहीन बाग में जावेद होटल और ये
0: चला गया ना, पर है तो ना बढ़िया वहाँ पे। मतलब ये लोग मुझे जज करते हैं, अरे दिल कौन खाता है? अरे भाई खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है।
1: कबीर भाई बाड़े हिंदूराव और बल्ली मरान की नहारी भी वहीं आ गई शाहीन बाग।
0: मत करो मत करो, अभी छुट्टी मेरी एनुअल लीव में टाइम है भाई, क्या कर रहे हो?
1: पूरा पूरा कसापुरा उठ के आ गया वहाँ पे शाहीन बाग में।
0: वो तो है माशाल्लाह, वो तो है, वो तो है। लेकिन आपको फिर से ईद मुबारक, आपने जॉब तो दे दिया है माशाल्लाह। और इस बार आप गए नहीं, इंडिया नहीं गए?
1: बता रहा हूँ सर कबीर भाई माजरत के साथ, ये जब मैं 92-93 में पढ़ता था वहाँ पे बचपन में सदर बाजार में तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, रमजानों के महीने में जो शबे कदर होती थी ना, आखिर की 10 रातें, तो वहाँ सराय खलील से, कसापुरे से और इंद्र लोक से, बड़े इंदुराव से, ये फराश खाने बल्ली मारान, यहाँ से लड़के यंग जो होते थे 20-25 वाले माशाल्लाह से। मैं तो उस टाइम 10 साल का था, 92 में 93 में 11 साल का था, तो उस टाइम माशाल्लाह से लोग सर पे टोपी और कुर्ता पजामा और बाइक बुलेट और यमहा गाड़ी चलती थी, बैठ के और एक मोटरसाइकिल में 3 बच्चे और जाओ मस्जिद चलो भाई, जाओ मस्जिद चल रहे हैं मुर्गा मुसल्लम खाने।
0: मैं लोगों को बता दूं, हम लोग कभी वहां पे दिल्ली में नहीं गए थे कि जामा मस्जिद, हम गए जामा मस्जिद चलो, जामा मस्जिद
1: जी सही कह रहे, जाओ मस्जिद चल रहे भाई, जाओ मस्जिद। इन लोग से कहा लोग तो इत्तेफाक से, वो पुरानी याद मुझे आ जाती है खाने की बात जब आप करते हैं तब।
0: जज़ाकअल्लाह।
1: तो एक बार मुझे भी ले गए थे कि भाई हाफिज़ जी को पीछे बिठा लो, छोटे से पैरों वाले, छोटा सा।
0: इंशाल्लाह कभी एनुअल लीव पे हमारा और आपकी छुट्टी टकराई तो जरूर मुलाकात होगी दिल्ली में भी।
1: तो सर इधर शाहानिया की भी तशरीफ लाइए भाई।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: गरीब खाने पर तशरीफ लाइए मस्जिद में
0: इंशाल्लाह।
1: हमारे यहाँ भी एक दो बोटी खा के जाइए।
0: बिल्कुल, एक दो बोटी थोड़ी खाऊंगा, फिर आऊंगा तो फिर दबा के खाऊंगा। एक दो बोटी में क्या होगा। इंशाल्लाह बात हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह।
1: तो शाहानिया लोकेशन है सर कबीर भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई के साथ पूरा बटला हाउस घूम लिया मैं, और बहुत सारे मैसेज मेरे पास चुके हैं। फिक्र मत करिए, आपके मैसेज पे अगर ब्लू टिक नहीं आया है दैट डज नॉट मीन कि आपका मैसेज रीड नहीं किया गया, तो एकदम चिल हो जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो कभी कभार लगता है ऐसा कि लोग धोखा तो नहीं दे रहे, डोंट वरी, सरकारी रेडियो स्टेशन है, भरोसा पूरा करके रखिएगा हम पे। बाकी मैं एक कॉल लगाने जा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं अभी तो। और वैसे कॉल करनी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो सहूलत है, आप मैसेजेस पे भी रिस्पांस कर सकते हैं अपना नाम उस पर देकर जवाब। सवाल ये है कि जो लीनिंग मस्जिद है, जो टावर वाली मस्जिद है, वो कतर में कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरा भाई।
0: हाँ भाई, मुंबई वालों क्या हाल है
2: भाई? एक नंबर। अच्छा एक बात बताओ भाई।
0: बोलो भाई।
2: तो अगर ये भाई से तुम अगर सवाल पूछते के चलो बताओ भाई ये मस्जिद किधर है, तो पब्लिक तो मतलब मेरे को मालूम है भाई, पब्लिक बहुत डेंजर है भाई, AI पे जाके जिमनी
0: भाई आजकल अंग्रेजी में कोई बात नहीं करता, ये ऐसे भी हिंदी बात करते हैं। हमारे तो एक शख्स हैं, वो कहते हैं एआई मुझे 5 बजे उठा देना। ऐसा भी है भाई।
2: मैं भी ना कंफ्यूज हूँ। तो भाई जाके बोलता है अरे भाई ये तो मेरे सर के ऊपर ही मस्जिद है, देखो टेढ़ी। जीत गया बंदा जीत गया।
0: हाँ तो ऐसा ही है भाई। तो लोग इसलिए जवाब दे रहे हैं। मैं तो आप ये बताओ, आप आसिफ भाई 4000 रियाल का आपके दिमाग में कुछ नहीं आया, क्या करना चाहिए?
2: अरे मैं तुम्हारे को मैं लिख के भेजना भाई का लोकेशन मांगो, मैं जाके ईद मुबारक करता हूँ। पहली फुर्सत में
0: भाई
2: ईद मुबारक भाई। तो भाई कम से कम 4 में से अगर एक भी देगा ना मेरे को, मैं तो दिल को 1 महीने तक का उसको रोज ईद मुबारक करूंगा।
0: 4 दिनों में से 1000 भी देना, दिन हर दिन राजा,
2: हर दिन राजा, हर दिन भाई उसको मैं ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक किधर।
0: अरे
2: भाई कसम से ये शो पे ना भाई ऐसे ऐसे बंद, अल्लाह माफ करे भाई। मेरा भाई मैं सच्ची में मेरी गाड़ी में मैं खिलखिला के हंसते रहता हूँ, बोलता है क्या है यार, क्या क्या सुनना
0: पड़ता। वो है ना वो मीम था ना, अच्छा हुआ मैं बहरा हूँ।
2: कबीर भाई लव यू यार भाई, भाई, भाई। और क्या बोलते हैं भाई, तबीयत पानी कैसी?
0: एकदम बढ़िया भाई, शानदार। कल सुबह फिर शो है इंशाल्लाह। ये है तबीयत पानी।
2: हाँ, पब्लिक को मतलब एक दिन के लिए बुला के वापस से चकमा दे रहे
0: मत... जग्गा जासूस। कल सुबह आगे
2: फिर पब्लिक बोलेगी यार कबीर भाई तुम एक सुबह के लिए आए, बाद में फिर शाम में आ गए।
0: यही होगा भाई कल से, तो यही होगा। पर इंशाल्लाह देखते हैं आपसे मुलाकात होगी फिर शाम में, तो फिर
2: जरूर इंशाल्लाह भाई कबीर भाई। बाकी ईद मुबारक भाई,
0: ईद मुबारक मेरे भाई को।
2: ईद खत्म हुई ना भाई, तीसरी ईद ना
0: भाई, चौथा दिन है भाई।
2: हाँ इंडिया में भाई तीसरी
0: ईद, इंडिया में तीसरा आज यहाँ पे चौथा दिन है।
2: ओके कबीर भाई, सुन रहा भाई मैं, और भी आएंगे भाई, और भी आएंगे।
0: ठीक है भाई, ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। गाजी मसीह, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है? ये गोश्त किधर मिलता है यार, 3 दिन हो गए हम तो टैक्सी चला रहे हैं, गोश्त नहीं, लोग बोलते हैं हमको जगह बताओ कि हम भी लेकर सवा। अब्दुल्ला भाई गोश्त क्यों नहीं मिल रहा आपको, मतलब मैं समझा नहीं ये सवाल। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम
0: जी मेरे भाई, आपका नाम?
3: मेरा नाम अबुल बशीर।
0: अबुल बशीर साहब बताइए, बशीर साहब सवाल आपने सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक सबसे पहले भाई जान आपको।
3: जी जी ईद मुबारक। एक्चुअली आस्ते आस्ते दिन ब दिन जा रहे ना, तो आस्ते आस्ते हम लोग का भी जो खुशी है ये भी कमती हो रहा है।
0: अरे कोई
3: लेकिन बस ये दुआ है सबको, हम लोग का भी इस हालत में जितना दुनिया में आदमी है सबका अल्लाह सुभान व तआला अगले साल फिर दोबारा हम लोग के ये इतना खुशी मनाने का।
0: आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बशीर साहब क्या हो गया, आप आज बड़े सीरियस हो रहे हैं आप। बशीर साहब सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
3: नहीं नहीं सीरियस नहीं है, बस ये है।
0: अच्छा दुआ दे।
3: एक्चुअली क्या है दुनिया में तो एक के बाद एक आदमी तो कोई फौत हो रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, तो बस
0: ठीक है। वो तो निजाम है ना दुनिया का, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए आपकी ईद कैसी जा रही है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है,
0: बढ़िया जा रही है। ओके
3: बाकी ये तो आज का छुट्टी खत्म हो रहा है, कल से तो इंशाल्लाह दोबारा ऑफिस वगैरह चालू हो जाएंगे।
0: कल से चालू। तो बताइए बशीर साहब सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप जो अभी सवाल पूछा गया
3: है। जी जी ये है एक्चुअली ये मस्जिद जो है शाहानिया में, और ये एक्चुअली शेख फैसल जो मजरा फार्म के अंदर है।
0: अच्छा ठीक है बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए, थैंक यू सो मच बशीर साहब, ऑल द बेस्ट। ओके अल्लाह हाफिज। और बशीर भाई की बात जो है मैं मैसेजेस पर नजर दे रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए, आई नो बहुत सारे लोग जज कर रहे होंगे, ये तो पढ़ ही नहीं रहे, आपके मैसेज पढ़े जा रहे हैं, डोंट वरी। ब्लू टिक नहीं आया लेकिन आपका नंबर ऊपर दिख जाता है तो हमें लिखना पड़ता है। एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम कबीर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक।
0: मैं जी बढ़िया मेरे भाई, आपका नाम?
4: मेरा नाम मुदस्सिर।
0: मुदस्सिर भाई कैसे? मुदस्सिर भाई को ईद मुबारक।
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर ठीक है, आपको भी ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक है सर।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर भाई कैसे?
4: अच्छा हो गया आपका नाम, सुन के मैंने कहा कबीर भाई हम कब बात करेंगे।
0: अरे मुदस्सिर भाई एक ऑर्डर दे देते यार, हुकुम तो करते हैं कबीर कॉल करो, मैंने व्हाट्सएप के नंबर पे दे रखा है, उस पर आप एक बार बोल देते।
4: मैं ट्राई कर रहा था लेकिन नंबर नहीं लग रहा था।
0: कोई गल नहीं, आप मैसेज कर दिया करो, मैं कॉल लगा।
4: अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम्हारे साथ बात हो गई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बड़ी खुशनसीबी मेरी कि आप फाइनली एक तो आपकी आपसे कॉल लग गई और बात हो गई।
4: आ जाओ ना आज हमारे पास 3 की तरह के बारबेक्यू है, 3 किस्म का।
0: अरे 3 किस्म का बारबेक्यू, क्या क्या बना रहे हो भाई?
4: गाय गाय बकरी का है और शेफ का है।
0: ओफो, इतनी वैरायटी, क्या बात है माशाल्लाह। तो कुर्बानी इधर ही हुई है इसका मतलब?
4: ये हमारी कजन है, कोई बकरी का खाता है, कोई उसका खाता है, कोई उसका खाता है, तो बस तीनों का तीनों करेंगे।
0: क्या बात है, सबके लिए वैरायटी मेरा भाई, बहुत बढ़िया। तो बशीर साहब, अपने सवाल का जवाब देना चाहेंगे, सवाल जो मैंने पूछा था?
4: तो सवाल तो बस शिखानिया में वो जो शेख फैसल का बगीचा है उसके अंदर है।
0: अच्छा ठीक है, आपके लिए एक मैसेज आया सैयद फैसल भाई का, वो कह रहे हैं लोकेशन भेजो, मैं अभी निकलता हूँ।
4: जो वॉइस था बहुत स्वीट था, बहुत क्यूट वॉइस था उसका।
0: है ना, बहुत क्यूट वॉइस है, पर 4000 का क्या करना है, सिखाना पड़ेगा।
4: दोबारा
0: फोन करो मोहम्मद भाई, किधर है वो? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब खैर है, सब खैर
4: है। भाई ये महवेश मैडम किस टाइम आती है?
0: महवेश सुबह आ रही है ना 7 बजे से।
4: अच्छा 7 बजे से आ रही है। मेरा दो भाई है जो सरवर भाई।
0: हाँ सरवर भाई 11 बजे है।
4: 11 बजे है, अच्छा चलो ठीक है कबीर भाई। हाँ
0: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद जो लोग सवाल पूछे, सवाल दोहरा देता हूँ। एक मस्जिद है कतर में जिसका एक टार जो है, एक मीनार जो है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, वो लीनिंग है उसके नाम में भी, तो वो मस्जिद कहाँ पर, ये बता दीजिए। ब्रर आवाज़ आ रही ना बैकग्राउंड में, आपको वाइब्रेशन फोन पे इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करना है 666-22-107 पर, और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी कॉल ना लगे, आप मैसेजेस में रिप्लाई दे सकते हैं सर आंखों पे आपके मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम।
0: जी भाई जान, आपका नाम?
5: मैं वही जो कल आपसे बात कर रहा था, गुलाम मुस्तफा।
0: मैं वही जो कल आपसे बात कर, ये सही था गुलाम भाई, मुझे लगा वो बोलेंगे पहचानो पहचानो, वो वाला खेल ज्यादा खराब लगता है, ये अच्छा है। मैं कल वाला जो बात कर रहा था जी। गुलाम भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे जा रहे चौथा दिन?
5: यही है कि आज ईद का चौथा दिन, और वो इमाम साहब बता रहे थे मगरब तक जिसने कुर्बानी करनी है कर ले, मगरब के बाद टाइम खत्म हो रहा है। मैंने कहा चलो आज आखिरी दिन है, फिर आपसे भी बात कर ली जाए।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
5: बस ये है कि इस बस दुआ है सब दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, जो आपके अच्छे अच्छे सामीन है, आपके साथ बात करते हैं बड़ा मजा आता है, बात कर बड़ी हंसी भी आती है, बड़े सीधे साधे भी लोग होते हैं, बहुत मजा आता है।
0: सीधे बेचारे सीधे साधे मतलब आपने इनडायरेक्टली कह दिया, तू तो वहां तुम बदमाश हो, बाकी सब सीधे।
5: बहुत अच्छा, आप लोगों ने वैसे ईद के दिन में काफी हंसा है लोगों को, बहुत अच्छा
0: रहा,
5: बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे
0: हैं,
5: अल्लाह ताला आप सबको खुश और करम रखे। तो मेरा जवाब है, ये मेरे ख्याल से शहानिया मस्जिद है, वैसे मैंने देखी नहीं है, उस तरफ मैं गया नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह कभी देखता हूँ, मौका मिला तो मैं देख लूंगा इंशाल्लाह।
0: ओके भाई, जजाकल्ला, और बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के, गुलाम भाई अपना ख्याल रखिए, और
5: आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया हमें इज्जत अफजाई और तौकीर देने।
0: ऑफ कोर्स मेरे भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये भाई कह रहे हैं भाई तो धोती खोल, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने तो डायरेक्टली कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ वैसे आते हैं, कुछ बड़े सीधे आते हैं, इनडायरेक्टली ये मुझे बोल के चले गए तुम हो बदमाश मीन। ये वायरस बैठा हुआ है। एक कॉल और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम कबीर, मतलब की हाल चाल हो?
0: वाह जी वधिया, वीर जी दसो कि मैं
6: अरे इतना भी नहीं आता, बस कभी कभी आता है तो।
0: अरे यार मुझे लगा मुझे ना ये लैंग्वेज शिफ्ट करने बड़ा मजा आता है, गियर बदलेगा कभी पंजाबी कभी हरियाणवी, कैसे मेरे भाई?
6: कभी कभी पीछे का गियर लगाना पड़ता है।

0: इब्राहिम।
1: इब्राहिम भाई बताइए, इब्राहिम भाई क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो ही मुबारक इब्राहिम भाई को।
0: पहले दो तीन बार मुबारक सर जी, वो ये पहले दिन से मुबारक, मेरे ऐसे 14 दिन हो गया ना लास्ट देने, इसलिए भी लास्ट बार भी मुबारक
1: है। मतलब क्या मैं समझा नहीं, लास्ट की बात नहीं सुन। अच्छा 14 दिन है इसलिए
0: अगले अगले साल पे 14 दिन है ना।
1: अच्छा ओहो सर भाई मैं तो चुप होता नहीं। ओके क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। तो क्या आज की कोई दावत दावत है?
0: दावत तो बस नमकीन है, वो काबली पुलाव है, बस वही ये दोनों
1: बस नहीं है। बहुत अच्छी चीज है तो माशाल्लाह। तो मेरे भाई जल्दी से इब्राहिम भाई जवाब बता दीजिए, सही जवाब क्या है?
0: जवाब तो वही दो तीन दिन पहले भी गया था इस मस्जिद में, मगरिब का नमाज भी पढ़ा था वही शहानिया में।
1: मुझे यहाँ जाना चाहिए, मैं ये मस्जिद में तक गया नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे जरूर जाया जाएगा। पर
0: ज्यादातर लोगों को कोई नहीं छोड़ता, लेकिन डिलीवरी वाले को छोड़ देते हैं ना अंदर
1: हैं कि मतलब कि मैं
0: नहीं छोड़ देते, ऐसे मजाक लगा रहा हूँ।
1: अच्छा ओके इब्राहिम भाई आज अलग मूड में भाई, ठीक है थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऑफ कोर्स इब्राहिम भाई, कैसी बातें करते हो यार,
0: ऐश करो। मिलेंगे इंशाल्लाह वो इवनिंग के शो में आ रहा है ना 1 तारीख।
1: इंशाल्लाह जी भाई 1 तारीख से।
0: हां आई एम वेटिंग यार, बहुत
1: डन है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। ओके जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब भाई को लग रही है हवा बहुत तेज आ रही है माइक पे हवा। एक और मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं? अरे ये एक बंदा मुझे या बंदी लगातार कॉल करे 607 के नंबर में, व्हाट्सएप पे कॉल मत करो, कैसे उठाऊं व्हाट्सएप पे कॉल में। एक सेकंड एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात, ईद मुबारक हो जी।
1: अरे अरे वाह वाह वाह वाह वाह, क्या हाल है, क्या हाल है मेरे भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है,
1: दुआ है। चलिए फिर आज का प्लान बताइए, इसका क्या सीन? 14 दिन आ गया, आज भी है दावत बाकी है?
2: दावत वो तो हमारी कहाँ छुट्टी होती उस्ताद, 6 बजे से सुबह 6 से शाम तक 6 बजे ड्यूटी
1: उस्ताद, ड्यूटी चलती रहे ब्यूटी बनी रहेगी और तो क्या चाहिए जिंदगी में।
2: बस इसी में कहीं दावत मिल जाए तो हो जाती।
1: अरे मिल जाएगी, दावत में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है, क्या खुद को खिला लेना नारी, ये बताओ सही जवाब क्या है? ये
2: दो तीन दिन तो बिरयानी चल रही है।
1: दो तीन दिन से बिरयानी ही चल रही, मेन्यू थोड़ा बदलो यार, इतनी क्या पसंद आ गई बिरयानी भाई क्या हो? मुझे लग रहा है मूड नहीं है आपका आज, जो है गलती से कॉल लग गई मुझे।
2: नहीं,
1: अरे मेरा भाई एकदम मैं भी सोफे पे बैठ जाता आराम से। बताइए सही जवाब क्या है, मैं भी बता रहा घर जाऊँ।
2: तो शानिया में,
1: अच्छा शानिया में
2: क्या दुकान की तरफ जाते हैं तब के लिए
1: तो चलो फिर वहीं चलते हैं, बिरयानी वगैरह खा लेंगे, क्या कहते हो?
2: चलो चलो
1: ठीक है, चलो एक नींद खींच के आता हूँ मैं। ठीक है भाई, मेरा ख्याल रखिए अपना, ईद मुबारक आपको, ठीक है?
2: शुक्रिया।
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे भाई एकदम सेट हुए थे, एकदम बढ़िया करके पीछे लीन ऑन करके कह रही है मस्जिद हाँ वहीं पर है, शानिया की तरफ है, देखी तो है उसी तरफ ओए होए होए। ये बताइए ये क्या भाई, हंसी मेरे मैसेज पे आई तुमको ये भाई? अरे भाई दोनों जगहों पे आसिफ भाई, दोनों जगहों पे। एक मैसेज और आया है मैं सवाल दोहरा देता हूँ, सवाल बड़ा सिंपल है, कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कतर रियाल का वाउचर। बेसिकली आपको बताना है कि कतर में एक मस्जिद है जिसका जो जो एक मीनार है वो थोड़ी सी लीनिंग है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो वो जो अलग किस्म की मस्जिद बनाई गई है एक आर्टिस्टिक वे में, वो किधर लोकेटेड है, वेयर इट इज, वेयर इट इज। एक भाई ने लिखा है कतारा, आपको कोई धोखा दे के ले गया है कतारा, मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा अमूमन में गलत जवाब को मैं बताता नहीं हूँ ऑनर के गलत जवाब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये गलत जवाब है और बहुत माइल्स बहुत किलोमीटर के हिसाब से गलत जवाब है। लीनिंग टावर इनको दिखाइए कतारा में, बोले ये तो किसी ने बताया था मुझे कुछ और जगह है, कि नहीं नहीं अरे यही कतारा है। बोला नहीं मैंने ईद पर तो देखा था यहाँ पर चकाचौंध थी, हाँ तो वो बल्ब बिल फिट करते ना यहाँ पे, फिर ये कतारा बन जाता है, कतारा है। इतना गलत जवाब मत दो, ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई। एक कॉल और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह।
1: जी भाई कैसे मेरे भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इखलास।
1: जी भाई बताइए, सबसे पहले तो ईद मुबारक भाई जान आपको।

FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448

0: 8888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: FM 107 टाइम चेक.
2: मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बोलना के साथ दो पर और कहाँ से बोलूँ, छः बज रहे हैं, छः दो के साथ कुछ अच्छा राइम भी नहीं होता है. वेल, छः बज के दो मिनट में दुहा वाला कबीर एफ एम 107 पे सवाल मैंने पूछ लिया था, है ना, कि कतर में वो लीनिंग मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है, बस इतना. एंड दिस इज द लास्ट चांस, और उसके बाद सीधा भी विनर का नाम आने वाला है एक गाने के बाद. गाना भी ऐसा कि आप वॉल्यूम सीधा बढ़ा लेंगे, गारंटीड, लिख के दे रहा हूँ, लिख के चला दूंगा ना. ऑल सेट, वॉल्यूम पे आपका हाथ है कि नहीं है, बढ़ा दो. रेडी?
3: ओ या
2: हाँ जी.

0: नहीं नाचे हैं, जिसको नाचना नहीं भी आता वो भी थिरका है इस गाने पे। और एक मैसेज आ भी गया फुल वॉल्यूम, भाई भाई आया ना फील आया मतलब बढ़िया, ये बात ही कुछ और है इसकी यार, बात ही कुछ और है। नौमी भाई थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। अब ज़रा वक्त आ गया है, देखो मैं बहुत क्लियर कट एक बार प्रेस प्रोटोकॉल बता दूं, आई नो लोगों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है, हम कब से ट्राई कर रहे हैं हमारा नाम क्यों, देखिए बहुत ही सिंपल रीज़न है, जिस तरह से आप रेफिल ड्रॉ में भरते हैं है ना, ज़रूरी नहीं है कि नाम निकले, पर आप ट्राई करते हैं, मे बी समडे नाम आ जाए इस उम्मीद में। बिल्कुल वैसे सिस्टम में, वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोटोकॉल, आप मैसेज करते हैं उसके बाद हम नंबर्स को एक जगह रखते हैं, उसमें नाम तक नहीं होते सो दैट वी डोंट सी, सो उसके बाद फिर जगल करके एक नंबर हमें मिलता है जिसमें हमें कॉल घुमानी होती है और वो हमारा विनर होता है या होती है। तो अब वक्त आ गया है हमारे या हमारी एक विनर को कॉल करने का। तो मेरे पास हैगा जी एक नंबर, मैं करना एड डायल, देखते हैं कि ये कौन है जिन्हें मिलने वाला है। कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कतरी रियाल का वाउचर। चर चर चर ओके कॉल लग गई है, देखते हैं, बाकी कॉल नहीं उठाए तो दिक्कत हो जाएगी, फोन तो चको। अरे अभी तक कॉल नहीं उठाई गई है और नहीं उठाई भाई कॉल। अब बहुत सारे लोग दुआ करेंगे कॉल ना उठे कॉल ना उठे कॉल ना उठे, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ जाएगा, प्लीज़ उठा लो जो भी हो आप प्लीज़। अरे भैया जी नहीं उठाई है कॉल, नहीं उठाई गई है कॉल, नहीं उठाई गई है कॉल, नहीं उठाई गई, अभी तक रिंग जारी है तो मैंने चांस दे रहा हूँ कि कॉल उठा ली जाए, बट आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। आए आए भाई साहब उठाइए कॉल, और आए भाई साहब ले जी, अगर इन्होंने नहीं उठाई तो फिर मुझे किसी और को कॉल करना पड़ जाएगा बिकॉज हम दोबारा शफल कर रहे हैं। मीनवाइल आई एम स्टिल वेटिंग, अगर इन्होंने नहीं उठाई लो जी नहीं उठी जी कॉल। अब हम एक और बार अपनी व्हील को घुमा रहे हैं, लेट्स सी कि क्या किसी और को मौका मिलेगा, वैसे तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, पर किसके हक में जाने वाला है आज का ये वाउचर, और ये फिर से बाउंस होके जा रहा है। मैं पहले बता दूं कल भी ऐसा हुआ था, एक शख्स ने कॉल नहीं उठाई थी, उसके बाद एक हमारी बहन इसरा ने कॉल उठाई थी लेकिन वो जीत चुकी थी, तो दो तीन मरतबा डॉज करके रिफत हुसैन साहब जीते थे अगर आपको याद हो, तो कल ऐसा भी हो चुका है और मुझे लग रहा है कि आज फिर से ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने भी मैसेजेस किए थे उन सबके नंबर और नाम ऐसा होता है कि लोग उठाते नहीं हैं मैसेज करने के बाद क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होती है। मुझे लगता है इन भाई को कोई उम्मीद नहीं थी, या इनका नाम क्या है, हाँ इनका नाम गुलरेज है, कोई उम्मीद नहीं थी, नहीं कॉल आई थी, इन्होंने नहीं उठाई। अब एक और नंबर मुझे मिल चुका है, आई होप ये भाई या बहन ये उठा लें कॉल, इट ऑल डिपेंड्स, अगर इन्होंने भी नहीं उठाई तो फिर मैं जो हूँ बाल नोच लूँगा अपने और नकली बाल लगवाने के बाद फ़ोटो ज़रूर भेजूँगा आपको और तो क्या करूँ मैं, उठा लिया करो प्लीज। कॉल जा रही है, कॉल जा, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, आपका नाम?
1: यास्मीन खान।
0: यास्मीन खान, यास्मीन जी आपने मैसेज किया था FM 107 पे?
1: जी सर।
0: क्यों किया था
1: क्यों किया था आपने क्वेश्चन पूछा था?
0: नहीं मैंने तो पूछा, आपने जवाब देने की हिम्मत क्यों करी ये बताइए, आपको नहीं लगा क्या? अच्छा ओके, तो मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ आपको पता है या मतलब?
1: जी सर, आई थिंक मे बी आई एम अ विनर।
0: अच्छा मे बी और अ विनर, इफ इफ देखिए अगर मुझे सरप्राइज वाला वो रिएक्शन नहीं मिला तो मैं फिर नाम वापस छीन लूंगा प्लीज, मुझे खुशी खुशी सुनाई देनी चाहिए।
1: पहली बार मेरा नाम।
0: अच्छा पहली बार कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके कुमार एंड ट्रेवल रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का थ्रिल का वाउचर। कॉन्ग्रेचुलेशन, और इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। वैसे उम्मीद थी आपको या फिर बिल्कुल नहीं मैसेज करके छोड़ दिया?
1: नहीं उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि मैं करती हूँ मैक्सिमम टाइम, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं पहली बार ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह
0: दिल में आ रहा होगा ना ये तो हमें जीत, ये अपनों को ही जिताते होंगे। हाँ ये सच तो कोई नहीं बोलेगा मुंह पे, पर ठीक है कांग्रेचुलेशन वंस अगेन वैसे आपको और ईद मुबारक।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: तो जी हमारी जो है पहली विनर बन चुकी है, अब इनकी किस्मत देखिए आप, इनका डायरेक्ट नंबर नहीं आया, इनका नंबर घूम के आया है और यही खास बात है इस कॉन्टेस्ट की, नंबर कई मरतबा सीधे सीधे चल के नहीं आता है, इनाम घूम फिर के भी आता है, इधर उधर टहल के भी आता है, तो मैं इसलिए कहता हूँ जरा ध्यान रखें आपका, अगर आपने मैसेज किया है तो उम्मीद बांध के रखें, ऐसा नहीं कि मैसेज करके छोड़ दिया एकदम। एक मैसेज है, हमारा नंबर डालते हो अभी उठाता नाम ये भाई मुझे कल से ताने मार रहा है, कौन सी क्लिनिक क्या हो गया

अच्छा तो दूसरा सवाल कुछ देर में आएगा, उसके बाद फिर मौका मिलेगा किसी और को एक बार फिर से जीतने का। बट मीनवाइल एक सेकंड में कहां था, कुछ तो मैं चलाने वाला था, रुको जी रुको रुको रुको रुको रुको रुको, किधर है किधर है किधर है, अच्छा ये वाला ही चला देता हूँ, मेरे सामने ही आ चुका है तो मैं क्यों ना यही गाना चला दूँ, अगर मिल गया तो चला पाऊँगा। बाकी आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ईद के चौथे दिन क्या प्लान है भाई, कुछ प्लान है भी कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो हार मान के बैठे हैं, कुछ लोग सोफे पे लेटे हैं मुझे कॉल कर रहे हैं कुछ भी हो रहा है आज के दिन। सो 666-22-107 इज द नंबर, आपके चौथे दिन का ईद का प्लान भी हमें ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू नो। बाकी था ये गाना, क्या लिखा है उन्होंने, कब ले जाएंगे, क्या क्या क्या क्या कब ले जाएंगे,

छह बज गए जी, 15 मिनट हो लिए। मैं तो हवाला कबीर एफ एम 107 पे, यू हियर मी। अच्छा, अभी एक मैसेज आया है, भाई लिखा है जून 1st से आने का था, इतनी जल्दी आ गए। भाई ईद के चारों दिन भी इवनिंग का इशू है, और फिर 1 तारीख से जो नॉर्मल वाला शो था, इसमें कहानी वानी होती है, वो आएगा डीबी भाई। तो अभी सिर्फ ईद वाला शो है, तो इसमें कहानियाँ वानियाँ नहीं है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा प्राव और मेरा वीर, क्या किदा मैं जी वधिया, तुसी दसो। एक और मैसेज आया है, मुझे भी कर लो भाई, इंशाल्लाह देखिए कोशिश ज़रूर करते रहें। जो दूसरा सवाल है, आई वॉन्ट टू आस्क इज़ वेरी वेरी सिंपल, बट अभी पूछूँ क्योंकि भाई अजान का भी वक्त होने वाला है, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे होंगे नहीं। देखिए मैं जो भी सवाल पूछूँ, आप जब जवाब देना तो जवाब देखे, बिल्कुल फ़ोन को साइलेंट नहीं मत छोड़ देना। आई अंडरस्टैंड

अभी नमाज के लोग जाएंगे तो रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट देन आप नमाज के बाद जो है फ़ोन याद से एक बार जनरल मोड पे ले आना वापस, है ना। ऐसा ना हो कि आपने मैसेज किया जवाब नहीं दिया है, तो ये काम करते हैं इसके बाद ही हम जो है सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मसरूफ़ होने वाले हैं कुछ देर में। फ़िलहाल मौसम का बताता हूँ दूसरे सवाल से पहले पहले, अभी गर्मी आपकी खिवाड़ पे खड़ी है 34 डिग्री के साथ, 34 डिग्री सेल्सियस फॉर नाउ, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस, और अभी हवाएं बहुत तेज चलेंगी इस आने वाले थर्सडे, अभी नहीं अभी नहीं अभी तो क्या है पता ही नहीं लग रहा, नेक्स्ट वीकेंड जो आ रहा है हवाएं तेज रफ्तार से आपकी तरफ चलने वाली हैं, ह्यूमिडिटी के लेवल को बढ़ाती हुई थोड़ा सा, अभी 37% है तो अभी ठीक ठाक लग रहा है, आप भी ठीक ठाक हैं, हाँ अभी जाएगा अभी मामला ऊपर, तो इसलिए अपनी गाड़ियों को जरा ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो लोग ऐसे ही छोड़ जाते हैं गाड़ियों को रखी हुई है भाई, थोड़ी सी छांव ढूंढ के पार्क कर लेना, अगर मजबूरी है तो बात दूसरी नहीं कर सकते तो प्लीज़ अंदर उसके कुछ मत रखना, परफ्यूम लाइटर ये सब गाड़ी में मत रखिएगा प्लीज़, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को मजाक समझ रहा था, दो इंसिडेंट के बाद मैं भी सुधर गया हूँ। मैंने एक वो ब्रिक वाला जो परफ्यूम होता है ना, ब्रिक होती है उससे खुशबू आती है उसमें से, वो ब्रिक मैंने लगा रखी थी गाड़ी के अंदर और धूप के बिल्कुल धूप के नीचे खड़ी हुई थी गाड़ी, वो जो पिघल के गियर बॉक्स के ऊपर गया है, मेरा दिल ऐसा टूटा है कि उसके टूटने की आवाज़ दिल्ली तक गई होगी, तो इसलिए मेरी एडवाइस है परफ्यूम ब्रेक्स ये सब बिल्कुल ना रखें, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, और लाइटर तो बिल्कुल मत रखिए, वरना गाड़ी की हालत अब देख ही नहीं जाएगी आपसे, आंसू भी नहीं आएंगे,

0: साढ़े छह हो गए भाई साहब घड़ी में बल्ले। भाई साहब एक कॉल आ रही है आते के साथ ही। ओके अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है?
1: आयशा
0: कैसी हो बेटा, क्या हाल है आपके?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: मैं एकदम अच्छा हूँ स्वीट हार्ट, एंड ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तुम्हें।
1: आपको भी ईद मुबारक।
0: तो आयशा ईदी कितनी मिली पहले तो ये बताओ।
1: जी
0: ईदी मिली? ईदी है? हेलो हेलो हेलो आयशा, आयशा किधर गई?
1: जी
0: हाँ तुमको ईदी मिली आयशा? ईदी दी किसी ने?
1: जी मिली थी।
0: मिली थी, क्या किया ईदी का फिर? क्या
1: चीजें
0: ली? अच्छा ठीक है आयशा, बता दो क्या क्या सही जवाब है? मैंने सवाल ही नहीं पूछा, सही जवाब पूछ रहा हूँ। अभी सवाल पूछूंगा आयशा, फिर अच्छे से जवाब देना ठीक है?
1: ओके
0: डन। एंड ईद मुबारक हाँ मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। थैंक यू सो मच बच्चे। और मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल नहीं भी लगे तो मैसेज कर देना याद से अपने नाम के साथ ठीक है? ओके चलो।
1: लेकिन आपको मैसेज करा था।
0: अच्छा किया था आपने? अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया था। अभी एक और सवाल पूछूंगा एंड हो सकता है उसमें आप जीत जाएं, सो ऑल द बेस्ट टू यू ठीक है? ओके चलो अल्लाह हाफिज। तो अब दूसरे सवाल का वक्त आ गया है। इजी होगा सवाल, डोंट वरी, ये थोड़ा आसान सवाल पूछूंगा मैं आपसे। आपको ये बताना है कि कतर में कितने कॉर्निश हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कतर में कितने कॉर्निश हैं? 666-22107 पर बताना है, 666-22107 पर आपका नाम स्पेस देके जवाब। और ये अगर आपने बता दिया हो सकता है आप लकी विनर बने, तो कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कतरी रियाल का इनाम सीधा सीधा आपका। तो मेक योर चांसेस हायर बाय टेक्सटिंग आपका जवाब और स्पेस देखिए आपका नाम लिख के भेजना है, कतर में कुल कितने कॉर्निश हैं। 666-22107 ये है नंबर, और मुझे जरूर जरूर बता दें, बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग। बताना बड़ा जरूरी है भाई साहब, नहीं बताएंगे दिक्कत हो जाएगी। अपने चांसेस जो हैं वो बढ़ाते रहें, जब आप ज़्यादा जवाब देते हैं ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। और अभी ये गाना भाई बहुत बहुत फील आती है, ये गाना बहुत टाइम से सुना भी नहीं मैंने, गाड़ी में वैसे चलाते रहता हूं, मगर अभी नहीं सुना है। सो जो अभी तक रैप म्यूजिक से वंचित हैं, शायरी सुनिए इस गाने के भाई साहब, ऐसे दिल बजा के लागेगी भाई साहब, और हरियाणवी की ट्यूशन भी हो जाएगी आपकी, डांडा न्योड़ी वाला और

अरे क्या गाना है भाई, ये क्या गाना बना दिया ये, ओहो टांडा भाई का गाना साथ में एक्सपीर ग्रेवाल ना खरी जी। गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है मामला। मैं जी दो हवाड़ा कबीर एफ एम 107 पे धुआं उठा देंगे, जरा म्यूजिक चला दें रुको। तो जी मैं दो हवाला कबीर एफ एम 107 पे अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आज, ये दूसरा सवाल है और ये सवाल जो है बड़ा जरूरी है क्योंकि आज का लास्ट कॉन्टेस्ट, मतलब इस शो का लास्ट कॉन्टेस्ट एंड हाउसफुल ईद का ये कॉन्टेस्ट अब आखिरी पड़ाव पर है। तो आपके पास चांस है कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल का वाउचर जीतने का। सवाल ये है, आपने बताना है कि कतर में कितने कॉर्निश हैं, कतर में कितने कॉर्निश हैं। वेरी सिंपल, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। किसी ने मुझे लिखा है एक, भाई साहब आपको थोड़ी घूमने की जरूरत है, आपने बनना है क्रिस्टोफर कोलंबस। एक ना है मेरा भाई, एक से तो ज्यादा ही है, पर थोड़ा और कोशिश करो, आएगा जवाब, आएगा इंशाल्लाह जरूर आएगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar एंड शोज चेंज होने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन आपको देना बड़ी ज़रूरी है। आपने अगर प्रोमोज नहीं देखे हैं तो सारे प्रोमोज हमने अपलोड कर दिए हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आरजेज कुछ जो है वो चेंज हुए हैं अपनी जगह से और कुछ लोग अभी भी वहीं पर ही हैं। सरवर भाई का शो अभी भी 11 बजे आपको मिलेगा सुबह, जो है आपको सुबह जो मैं शो कर रहा था उसमें 1 तारीख से आपको महविश और नाजिया बहन, ये दोनों बहनें मिलेंगी, और उसके बाद जो है शो थोड़ा सा चेंज होगा। फजील साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, 4 से 5 शायद अमिता है, मैं वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन दोनों के दोनों मिलेंगे। और उसके बाद सीधा 5 बजे मैं आपसे मिलूंगा। तो सरवर भाई अपनी जगह पर ही, सरवर भाई को हमने नहीं हिलाया, कोई हिला भी नहीं सकता, तो तो वो 11 बजे ही है, बाकी इधर के उधर हो चुके हैं। अगेन एक कॉल लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।

0: हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, कॉल आगे कट गई भाई, नहीं उठा पाए। एक दोबारा से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: कॉल क्या क्या कट गई? यानी आपने काट लिया क्या?
0: मेरे पास यही काम धरिया रह गया है, मैं कॉल ही काटता रहूंगा। वाह जी वाह, वाह बेटे वाह।
1: मुझे
0: ऐसा
1: पता नहीं था, मैंने पता नहीं
0: क्यों
1: किसने
0: गेस
1: काटा।
0: किया ये
1: फाइव
0: गेसिंग गेम नहीं खेलने का? बताओ।
1: फाइव
0: अच्छा, कहाँ पे तुमने रिसर्च किया? किसने बताया तुम्हें?
1: दोहा कुर्निश मीना पोर्ट में एक है, साल में
0: बताया तुम्हें ये जवाब किसने बताया? ये
1: दमाग
0: बताओ, जवाब किसने बताया वो बताओ।
1: ने बताया।
0: ओ जी हाँ, दिमाग में देखो तो सही, दिमाग में। अच्छा, और मैं मान लूँ है कि तुम्हारे दिमाग में आ गए? चलो ठीक है, मान लेता हूँ।
1: दिमाग ठीक ठाक है।
0: 4,000 की बात है इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल
1: है 4,000 तो चलो इंशाल्लाह। मैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ
0: नहीं,
1: लेने
0: मेरी
1: का,
0: मेरी
1: पक्का
0: नजर, मैं
1: आपने
0: तो लालची आदमी हूँ, मेरी नजर 4,000 रियाल पर है।
1: नहीं बात बताओ, सैलरी कम है इसलिए मेरे 4,000 पे आ गए
0: मैं
1: क्योंकि
0: बेइंतहा गरीब हूँ, शुद्ध गरीब, शुद्ध गरीब हूँ
1: क्योंकि ईद की सैलरी नहीं आई, क्योंकि ईद पे
0: मैं।
1: सैलरी तो इस साल आनी
0: मैं
1: चाहिए
0: बेटे
1: ना।
0: बैलगाड़ी में आता हूँ ऑफिस, तुम्हें क्या पता? अभी मेरी 2 भैंसे बाहर बंधी हुई हैं। मिलना चाहोगे उनसे? क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ गए मोहम्मद, किधर गए?
1: मैं
0: जैसे मैंने कहा कि मेरी 2 भैंसे बार बंदी, भाई ने बोलना ही बंद कर दिया कि यार ये तो सच में मजबूर आदमी है।
1: यार मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ अब।
0: है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। तुम जवाब, सवाल का जवाब तुमने दे दिया, उसके
1: बस
0: लिए
1: इस साल बस ये दुआ है कि इस घंटा भी कोई ना कोई ना उठाए, बस
0: क्या क्या क्या
1: ऑल एंड में कोई बंदा कौन ना उठाए, बस ये मेरा दुआ है, बस मैं ही उठा लूँ।
0: ऐसा क्यों, इससे क्या होगा?
1: क्योंकि पिछले घंटे पता क्या हो गया,
0: हाँ क्या हो गया?
1: पिछले घंटे किसको आपने कॉल की थी?
0: मैंने किसको कॉल करी थी? अच्छा ओके, हाँ, मैंने कॉल करी थी, एक जनाब थे वो जीतते जीतते रह गए। हाँ मगर उससे इसका क्या, इससे क्या ताल्लुक ये बताओ।
1: नहीं, पहले आपने 2 दफा कॉल किए ना, तो मैं भी दिल चाहूँ कि कोई 2 दफा कॉल करे।
0: 2 दफा कॉल करे?
1: एक पहले में कोई बंदा ना उठाए, दूसरे में मैं हूँ, बस
0: अच्छा ऐसा चाह
1: ये
0: रहे,
1: दुआ है मेरी।
0: वाह ठीक है,
1: हाँ
0: दुआ करो दुआ करो, उसके लिए दुआ लगती है। ठीक है,
1: ओके बस
0: ओके,
1: दुआ कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए बस।
0: इंशाल्लाह।
1: थैंक यू।
0: जजाकअल्लाह मेरे भाई कॉल करने के लिए। ओके तो मोहम्मद की बात जो है मानने को तैयार नहीं हो तो कह रहे हैं। एक मैसेज आया है, कबीर मुझे सिर्फ 2 मालूम थे। अच्छा देखो, ये ईमानदार लोग ऐसे होते हैं ना, मुझे 2 ही मालूम थे, लेकिन उसके बाद जो है मैंने एक्चुअली में वो किया है, इंटरनेट पे घूम के आया हूँ। एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है थारे?
0: मैं
2: बढ़िया
0: जी
2: भाई
0: बढ़िया मेरा भाई, एकदम बड़ा चंगा, वही हड्डी वही खा लेगा गाबा जी, क्या हाल है?
2: जी भाई, गाबा बोल रहा हूँ।
0: हाँ मैं समझ गया वीर जी, क्या 10 होने की जवाब की है?
2: जवाब ऑफिशियली 5 है कबीर भाई।
0: ऑफिशियली 5 है। आप ऑफिशियली कहाँ कहाँ हो के आए हैं?
2: मैं तकरीबन अलखोर वाले को शमाल वाले को छोड़ के बाकी सभी पे होके आया हूँ
0: क्यों नहीं गए शमाल वाले से? आपकी कुछ यादें जुड़ी हैं? क्यों नहीं गए
2: सर,
0: शमाल?
2: मेरे रडार से दूर है थोड़ा
0: रडार में लेके आओगा अब्बा जी, ऐसे कैसे चलेगा? और बताओ अब्बा जी कैसे जा रहा
2: भाई।
0: है आज? 3rd चौथा दिन हो गया, क्या चल रहा है, माहौल क्या है?
2: माहौल ऐसे है, मैं अभी आया हूँ किसी शॉपिंग मॉल में,
0: अच्छा
2: तो स्पेशली बच्चे की कोई चीज लेने आया हूँ। आप इजीली गैस कर सकते हो क्या चीज हो सकती है वो?
0: अरे मैं इजिली, मैं तो भाई इसमें बहुत पीछे हूँ, मैं इजिली गैस कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता क्या लेने आए हैं आप।
2: भाई कैच करेगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा ना आगे जाके।
0: वाह वाह वाह, ये गैसिंग की मत खेलो मेरे साथ, मुझे ही बता दिया, बताओ बताओ इनाम मिलेगा। नहीं कहा बजी, बता दो क्या लेने आए हो?
2: बस छोटा मोटा सामान था बच्चे का, वो लेने के लिए आया जी,
0: ये
2: स्पेशली
0: तो
2: डाइपर।
0: अच्छा ओके, अच्छा ओके ठीक है, मैं कहूँ छोटा मोटा सामान था। ये कैसे जवाब? अच्छा ओके, तो गाबा जी बिल्कुल आप इंजॉय करें मेरे भाई, एंड आपका जवाब मेरे पास आ चुका है, जीतेंगे तो आपको प्रोसेस बताइए। ठीक है मेरे भाई,
2: थैंक यू कबीर भाई,
0: थैंक यू
2: थैंक
0: मेरे
2: यू
0: भाई,
2: सो मच।
0: ओके जी, ख्याल रखो। और एक नसीम साहब ने मैसेज किया, डायपर लेना। अरे बड़ा जल्दी गैस कर लिया, क्या बात है। वैसे कबीर भाई बहुत बेचैनी हो रही है आपको शाम में सुनकर भाई, बेचैनी मुझे भी हो रही है, नया नया ऐसा लग रहा है। दो तीन बार तो मुंह से गुड मॉर्निंग निकलते निकलते रह गया फरद भाई, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। और कल फिर से गुड मॉर्निंग बोलना है, आप समझ रहे हैं प्रेशर, और उसके अगले दिन से गुड इवनिंग बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और इट्स एक गाना आपके और जीत के बीच में, मैं सवाल बता के गाना चला रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद जो है सीधा हम बढ़ने वाले हैं विनर की तरफ, तो तैयार हो जाइए। एक गाने के बाद सीधा जाएगी विनर को कॉल। सवाल ये है कि कितने कॉर्निश हैं कतर में, कतर में कितने कॉर्निश हैं, बस। और अगर कॉल पे आपने कतार बोला तो प्राइस कैंसिल। कतारिच, मैं तो जी कतारिच रहिंदा सी, कतारिच। ए वेखो मेरे पिंड दा पेड़।
3: इश्क है,
0: अस्सलाम इश्कुम पॉपिदा, और साथ में नेहा बसीन। 6:44 कितने कॉर्नर्स हैं भाई साहब,
3: है?
0: 666-2106

0: Assalamu alaikum. 847. Sorry, 647. वो आदत है मोरने की, जाती नहीं भाई. छः सैंतालीस, अड़तालीस हो गई. अस्सलाम वालेकुम. 22 में प्रियंका चोपड़ा भी हैं. ओहो, बाय द वे एक फन फैक्ट बताऊं, एक फन फैक्ट बताता हूँ. इस गाने को जिन्होंने गाया है वो है नेहा भसीन. नेहा भसीन एक वक्त एक शो किया करती थी रेडियो पर इंडिया में. लिटरली वो एक आरजे थी और लेट नाइट शो किया करती थी. खतरनाक शो था भाई, बेहतरीन शो था वो. और उसी वक्त में उसी स्टेशन का हिस्सा था जहाँ पे नेहा भसीन थी. सो आई गॉट टू मीट हर, शी इज़ अमेजिंग. मुझे पता है अभी कुछ लोग बोलेंगे देखो वो कहाँ पहुँच गई. ये रिश्तेदार वाली पैप टॉक मेरे को नहीं चाहिए. मैं अभी सीधा विनर को कॉल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है. सो 666-22-107 ये नंबर था. इसमें मैंने सवाल पूछा था दोहा में कितने कॉर्निश हैं, और ये बताकर अब एक विनर हमें मिलने वाली हैं या मिलने वाला है. एंड उन्हें मिलेगा कुमार एंड रेस्टोरों की तरफ से, कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरों की तरफ से 500 कतरी रियाल का इनाम. तो मैं नंबर घुमा रहा हूँ, देखते हैं भाई साहब ये कहाँ जाके लगेगा. एंड एज आई मेंशन रूल बड़ा सिंपल है भाई, मेरे साथ एटलीस्ट कॉल नहीं उठाई तो फिर कैंसिल. एक बच्चा दुआ भी कर रहा है कि कोई कॉल ना उठाए. तो देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला. कबीर भाई फाइनली कॉल आ गया आपका.
0: अरे क्या बात है, आपका नाम मेरे भाई?
1: अरे सैयद फैजल बोल रहा हूँ भाई.
0: अरे फैजल भैया गर्दा उड़ा दिए, क्या बात है.
1: अरे फाइनली लग गया भाई. अब मैं आपको एक राज बताता हूँ, आज मैं करूंगा नाजिया आप ही को कॉल. मैं नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ 1000 के कूपन थे और वो डॉक्टर वाला था, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना.
0: यार ये क्या होती
1: है भाई, खाने वाले आदमी.
0: तो आपको उम्मीद तो नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है. जिस आप सबने मैसेज किए मुझे सास की तरह ताने मारे हैं पिछले 4 दिनों में. मुझे एक
1: बात भाई, मेरे भी दिमाग में नहीं था कि मैं व्हाट्सएप इंडियन नंबर से चला रहा.
0: हुआ ये कि जब हमने शफल किया और आपका नंबर सामने, मैंने कहा है कि इंडियन नंबर कहाँ से आ गया सामने. फिर हमने देखा, मैंने कहा अरे ये आदमी क्यों चला रहा है इंडिया का नंबर व्हाट्सएप पे. फिर मैंने आपसे पूछा तो दैट्स हाउ इट ऑल बिगेन. तो भाई देखो अब कॉल नहीं उठाते तो क्या हो जाता फिर. वो तो दुआ कर रहा था मोहम्मद की कॉल ना उठा गई.
1: लेके बैठा था, भलाई मैं नहीं जीतता लेकिन फोन मेरे हाथ में था कि लोग कॉल नहीं उठा रहे, दोबारा कॉल आनी नहीं है.
0: अच्छा ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, मुबारक हो बहुत बहुत. कुमार और ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का थ्रियल का इनाम.
1: फाइनली आज लास्ट डे, आज मैं नाजिया आप ही को भी कॉल करूंगा क्योंकि अब मैं जीत चुका हूं. तो
0: आप तो आराम से आ, तो चौड़े में कॉल करना कोई टेंशन नहीं है. पर एक ही नाम मिलता है, एक ही नाम मिलता है डॉक्टर के पास.
1: मुझे नहीं, मुझे वो वाला चाहिए भी नहीं क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है.
0: डॉक्टर ने मना किया कि मेरे पास मत आना. वाह वाह वाह वाह, ऐसा क्या क्या गुल खिलाया है आपने फैजल भाई. सबका बदला लेकर फैजल
1: खाया करो.
0: अच्छा ये कि फैजल तुम जाओ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, दवाई नहीं, तुम्हारा इलाज चिकन में छुपा है, मटन में छुपा है, ये सब खाओ.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: फैजल भाई कैसे जा रही है ईद अभी तक, चौथा दिन कैसा रहा अभी तक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी जा रही है और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा है. बस अब मैं ड्यूटी से फारिग होने वाला हूँ. तो
0: अच्छा अभी ड्यूटी पर थे आप
1: जी?
0: अरे ड्यूटी पर रेडियो सुन रहे हैं आप? बॉस का नंबर दीजिए, बात करनी पड़ेगी, आदमी काम नहीं कर रहा है. क्या चल रहा है
1: भाई? अब फिर मैं बोलूंगा कि आप तो धोती खोलने पे लगे हो.
0: चलो किसी को बताना नहीं है कहाँ पे जीता है. हाँ चुपकी से घर निकल जाओ. ठीक है, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको. जजाक
1: अल्लाह.
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.

फैजल साहब, तो सबका बदला ले लिया फैजलवा ने, फैजलवा जीत के जा चुके हैं। फैजल भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। ये इनका जब नंबर मेरे सामने आया, मैंने कहा आ रही ये आदमी जो है इंडिया का नंबर चला रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने इनसे पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं जवाब दे पाते तो इनके हाथ से भी इनाम चला जाता। बट फॉर नाउ इट्स माई टाइम टू गो। अभी मैं सुबह मिलूंगा आपसे, सवेरे सवेरे 6 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल एक और मॉर्निंग शो बाकी है मेरे हिस्से का, तो वो सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और उसके बाद तो फिर शाम में ही होगी मुलाकात। तो ये टाइमिंग इस तरीके का है। कल सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह, सुबह 6 बजे ऑफिस शुरू होने वाले हैं। बट फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो कतर में इस वक्त शाम के 7 बजे हैं. आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर एफएम 107. फरकान शाही से समाप्त कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें. इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां. साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया क्रोशिया के योम रियासत के मौके पर क्रोशिया के सदर जोरान मिलानोविच को तहनीती पैगाम इरसाल किया. वजीर आजम वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी ने जमहूरिया क्रोशिया के वजीर आजम आंद्रे प्लेनकोविच को उनके मुल्क के योम रियासत के मौके पर तहनीती तार रवाना किया है. जापान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए दिफा ने आज दिफाई जंगी आलात के शोबे में बाहमी तआवुन के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक किया. रूसी फौज ने आज यूक्रेन में फौजी हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचों और ईंधन तवानाई के मराकज पर हमले किए. और सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सन 1447 हिजरी का हज हर किस्म की वबाई बीमारियों और दीगर अमराज के खतरात से मुकम्मल तौर पर महफूज रहा. ये थी अब तक के अहम खबरों की सुर्खियां. अब समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया.

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ईद के इस खुशी के मौके पर आप सभी लोगों का दोबारा इस्तकबाल करता हूं मैं, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ईद जो है वो सही से गुजर रहा होगा। ये फिट एंड फेस्टिव प्रोग्राम है FM 107 की जानिब से, और ईद के लिए एक खास प्रोग्राम आप सभी सामाइन के लिए, क्योंकि ईद में हम करते क्या हैं कि थोड़ा सा हम अनहेल्दी होने का एक एक अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, अनहेल्दी होने का मोटिवेट। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए FM 107 ये समझता है कि FM 107 के जरिए आप सभी लिसनर्स तक हम पहुँचते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोग थोड़ा हेल्दी रहें, थोड़ा फिट रहें और थोड़ा स्पोर्टी रहें। देखिए, मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है होस्ट करता हूँ, और स्पोर्ट्स मेरा एक पैशन है, और स्पोर्ट्स के ज़रिए मुझे कई चीज़ों के बारे में इल्म हासिल हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि कई ऐसे मारूफ खिलाड़ियों को मैंने देखा है, उनके ट्रेनिंग स्केड्यूल को फॉलो किया है। कई ऐसे बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर्स जिन्होंने बड़े बड़े मारूफ स्टार प्लेयर्स के पीछे जितना वक्त दिया है कि कैसे वो खिलाड़ी फिट रहे, और साथ ही साथ उनके खान पान यानी न्यूट्रिशन के ऊपर भी मेरा बड़ा ही फोकस रहता था। हाल ही में नोवाक जोकोविच, जो कि मारूफ टेनिस प्लेयर है सर्बिया का, तो नोवाक जोकोविच ने कई ऐसे पॉइंट्स टिप्स दिए हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसे करें तो आपके बच्चे जो हैं हमेशा फिट रहेगा। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने शेयर किया था, अभी मैंने परसों, दो तीन दिन पहले की बात है, मैंने पढ़ रहा था एंड उनका एक पॉडकास्ट भी देखा मैंने, एंड उसमें उन्होंने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, वो कहते हैं कि मैच के दौरान वो ब्रीद करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मैच पॉइंट्स। तो देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे सेहत को, हमारे दिलो दिमाग को तरोताज़ा रख सकता है। तो दोस्तों, ये फिट एंड फेस्टिव प्रोग्राम एक ऐसा खास प्रोग्राम है जो ईद की खुशियों को सेहतमंद और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ जोड़ता है। दैट इज़ आवर एम, दैट इज़ आवर टारगेट। और मैंने एपिसोड वन में कई चीज़ें, कई पॉइंट्स आप लोगों से शेयर किया था मैंने, एंड उसमें ये था हमारा मकसद, जैसे मैंने शुरू में बताया कि टू कीप यू हेल्दी, टू कीप यू फिट एंड टू कीप ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, एक होता ना कि ईद के दौरान आप

ईद को एनर्जी और खुशी के साथ एंजॉय कर सके. दैट्स आवर सोल मोटिव एंड पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे. ज़बरदस्ती नहीं है. आप लोग इसको थोड़ा सुन सकते हैं, थोड़ा आपके व्यू पॉइंट भी बता सकते हैं. देखिए आज के डेट में लाइफ स्टाइल हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. यानी लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है. एक तरफ अगर हम हेल्दी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ अनहेल्दी प्रैक्टिस जो है, जो हमारे पूरी ज़िंदगी में हमने कभी तस्वूर भी नहीं किया होगा. हम लोग बड़े उल्टे सीधे टाइम पर चलते हैं. वी डोंट कीप अ टैब ऑन आवर कि जिसको बोलते हैं कि आपके जो वर्क है, आपका जो काम काज है, उस पर हम टैब नहीं रखते हैं. पहले के ज़माने में होता था कि लोग घड़ी देखकर 9 बजे काम स्टार्ट एंड स्टॉप्स एट 5 o'clock. ये जो टाइम पीरियड था उस दौरान लोग बड़े पैशनेटली काम करते थे. लेकिन अगर बात देखूँ को आज के मॉडर्न टाइम की बात करूँ, पिछले 25 सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस हमें नज़र आए हैं. एंड ईद के दौरान भी लोग अक्सर मैंने देखा है कि भाई वो प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. अब वो देख लेने का मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो 5 मिनट वाली देख लेने वाली बात नहीं है. 5 मिनट नहीं, 10 मिनट भी नहीं, बल्कि आप बैठ जाते हैं. दैट इज़ वॉट एक जिसको कहते हैं एक बोरिंग लाइफ को अगर आपने और थोड़ा सा बोर करनी है तो आप ईद के दौरान इस तरह का काम आप कर सकते हैं. दैट इज़ द अदर वे ऑफ सेइंग कि एक तंज है. तो ये तंज इसलिए मैं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि आप ईद की खुशियों को इन्जॉय करें. एक फैमिली के साथ आप जब इन्जॉय करते हैं तो एक मेंटल वेलनेस की बात होती है. वहाँ पर अगर काम लेके बैठ जाते हैं तो देन दैट डजंट रियली पे यू मच. आप तो काम तो पूरे महीने में करती हैं. एंड दीज आर द 4 days ऑफ ईद हॉलीडेज जहाँ पे आपको इन्जॉय करना, आपको थोड़ा सा इसको यूटिलाइज करना, हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट. तो दिस इज ऑल अबाउट ये हमारी ज़िंदगी का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए जहाँ पर वी ऑलवेज कैन एटलीस्ट स्ट्राइव टू मेक इट मोर हेल्दी. मोर हेल्दी का मतलब ये है कि हम तो पूरी तरह से हेल्दी हैं ही नहीं एक तरह देखा जाए, और ईद के दिनों में तो बिल्कुल ही हम अनहेल्दी हो जाते हैं. उल्टा सीधा खाना पीना, इधर उधर जाना, एंड दोस्तों अहबाब लोगों के उनके साथ बैठना, फिर अब कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब सोचते भी नहीं है कि आप पी के रहे हैं, खा के रहे हैं. इनमें से एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईद की खुशियों में मीठे का इस्तेमाल करना. स्वीट्स तो हर एक के पास जो है वो क्या कहते हैं, स्वीट टूथ, वो तो हर एक के पास है. तो वो हमें देसी लोगों के लिए तो मीठा खाना इस लाइक खाने के बाद मीठा नहीं करना, अरे सुन्नत है. दिस इज ऑल व्हाट वी से आफ्टर द फूड. तो ईद के दिन मीठे और हेवी खानों के दरमियान अगर सेहत का भी ख्याल रखा जाए तो मज़ा और फिटनेस दोनों बरकरार रह सकते हैं. और ये रही एक स्मूथ और एंगेजिंग नरेशन स्क्रिप्ट. ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक नरेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये जो नैरेटिव है कि मीठा खाना सुन्नत कहलाता है, डेफिनेटली दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन दोस्तों थोड़ा सा लिमिट के साथ. लिमिट इज द की टू योर गोल, की टू योर सक्सेस फॉर एवरीथिंग. जहां आपकी लिमिटलेस बातें हो जाती हैं, जहां आपकी लिमिटलेस खाना पीना हो जाता है, देन दैट इज द प्रॉब्लम. जहां पे आपको टिक टिक टिक टिक आपको अलार्म या अलर्ट होना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर एंड ऑफ द डे जब आप जब आप आराम करने जाते हैं आपको लगेगा कि कुछ खराबी है, कुछ विथ योर सिस्टम, विथ योर टमी, आपके पेट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है. देखिए हम लोग ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खाने पीने के साथ, न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ स्ट्रेच आउट, कुछ वॉकिंग, कुछ थोड़ा बहुत फ्री हैंड एक्सरसाइजेस आर इम्पॉर्टेंट. लेकिन हम फ्री हैंड एक्सरसाइज तो छोड़ देते हैं, खाना खाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं. और ईद के दौरान दिस इज़ वॉट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन समबडीज हेल्थ, समबडीज हर कोई है नहीं, हर कोई फिट हो ही जाता है क्योंकि यंगस्टर्स में तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. लेकिन जो थोड़ा सा आउट से 30+ या 40+ उनके साथ ये मसाइल हैं कि कई के टमी अपसेट है, और स्पेशली गल्फ की कंट्री

इसमें तो हम एसी में हमेशा बैठे रहते हैं, वी डोंट हैव द चांस टू गो आउट एंड डू सम जॉगिंग टू सम वॉकिंग। आजकल कतर में बहुत सारे पार्क्स हैं, तो हमें बहुत सारे पार्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। दैट्स द रीज़न, बिकॉज आपके हाथों में वो जो है ना एक गैजेट, वो तो चिपका हुआ है। आई मीन यू आर ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये तो एक प्रॉब्लम है। पता नहीं कैसे इसको आप ख़त्म कर सकते हैं या हम ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ईद का मौसम हो और टेस्टी खाने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दीज आर यू नो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन इस ईद ज़रा सेहत का भी रखें ख्याल, और क्योंकि हेल्दी चॉइस ही स्मार्ट चॉइस है, ये आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर मोर यू नो एजुकेटेड, यू आर मोर यू नो लर्नड, आप लोगों को पता है कि खाना आप लोग जो है वो थोड़ा सा नाप तोल के अगर खाते हैं तो आपके पेट के लिए सही है, आपके हेल्थ के लिए सही है। ऑयल और फ्राइड स्नैक्स की जगह ट्राई कर लीजिए कि ग्रिल्ड आइटम्स आपके पास हो, ठीक है ना। ये रमज़ान के टाइम में भी मैंने एक अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि ग्रिल्ड आइटम इज़ ऑलवेज द बेस्ट। और अगर फ्राइड आइटम्स खाते हैं, जैसे कि आलू को फ्राई करना, प्याज पकौड़े खाना, और यू नो इवन गोश्त को भी, कोफ्ता जो है उसको भी फ्राई कर लेते हैं, और मज़ा आता है, लजीज है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन ओवर एंड ओवर करना हर चीज़ सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा परे करें, यानी पीछे करें, और उसकी जगह फ्रेश जो फ्रूट चाट है ना, और लाइट डेजर्ट जो है उसको आप अपने थाली पे रख लें या अपने प्लेट पे सजा लें, आई गेस दैट इज़ द मोस्ट हेल्दी वे ऑफ ईटिंग ड्यूरिंग द ईद टाइम, मैं समझ रहा हूँ। एंड आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अरे ईद तो साल में दो मरतबा ही, एंड एक तो ईद उल अज़हा है, एक ईद उल फितर है, तो ठीक है ईद उल फितर के दौरान आपने कर लिया, तो लोग ये भी कहते हैं कि अरे दो महीने 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा आता है, चलो गोश्त खा लेते हैं, गोश्त को कुछ भी तरह से कर लें आप, आइटम बना लें। लेकिन नहीं, कुछ तरीका तो है भाई, कुछ तरीका तो है कि आप उसको यू नो थोड़ा सा हेल्दी वे पे आप लगे। देखिए, प्रोटीन इनटेक इज़ गुड, लेकिन प्रोटीन इनटेक अगर उस तरह आप लेंगे कि फ्राइड तले हुए चीज़ों को खाएंगे, या तो आपका गला ख़राब होगा या पेट ख़राब होगा, अन्ना जाने आप क्या क्या, आई मीन बॉडी पैरामीटर्स, मेडिकल हिस्ट्री, मुझे तो नहीं पता आप किसी का क्या है, लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ कि थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, ओवर कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस हो जाइए, नो व्हाट यू आर ईटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय फ्रेश जूसेस और पानी ज़्यादा पिए। कोल्ड ड्रिंक्स इज़ हार्मफुल। आजकल आपको सोशल मीडिया में दिखता ही होगा कि कोल्ड ड्रिंक से वो टॉयलेट भी साफ़ करवा के दिखाते हैं, या यू नो वॉश बेसिन जो है वो भी साफ करवा के दिखाते हैं कि देखिए कितना मतलब गाढ़ा है ये कोल्ड ड्रिंक्स की, एक तरह का एसिड है जिसको आप डालते हैं, और तेज़ाब, आपको पता है कि तेज़ाब किस तरह उसमें यू नो शार्पनेस है कि मैल को, जो बहुत कड़ी मैल जो होती है ना, जो मैल मतलब जो हटना नहीं चाहता, वो मैल को भी काट के निकालता है दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये भी एक एक्सपेरिमेंट बहुत से लोग करके दिखाते भी ऑन द सोशल मीडिया। ना कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यू नो इट डजंट रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, इसलिए उसको थोड़ा सा बाहर ही कर दें, और उसके बजाय आप जूस पीजिए फ्रेश वाले, नॉट दैट कैंड जूसेस जो कि बाहर से कहीं से आ रहा हो, और उसको ना करें, आप फ्रूट्स लीजिए घर पे बना लीजिए, या सिर्फ फ्रूट्स ही खा लीजिए, और पानी ज़्यादा पिए। पानी पीना लाजमी है, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ओवरऑल बॉडी के, जो यू नो जिसको मैं कहूँगा कि जो बैलेंस, जिसको बैलेंस बनाए रखता है, आई मीन दैट इज़ हाइड्रेशन। विदाउट पानी थिंग्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि यू नो आपकी मेटाबॉलिज्म, आपके पेट के मसाइल, हर चीज़ जो है बिना पानी पीने से आ जाता है। आई मीन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लीटर पर लीटर हर तरफ अपना हर तरफ जग वगैरह रख लें और जब भी चलते फिरते आप पानी पी रहे, नहीं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड थ्रू आउट द डे, 4 से 5 लीटर पूरे दिन भर आप यू कैन यूज़ इट सिप बाय सिप, और नॉट इन वन गो, एक बार में गल्प मत कर लीजिए पूरा पी जाइए, ऐसे नहीं, सिप बाय सिप, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और हाइड्रेशन, जैसे आप बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला ये है कि पूरी तरह एक पूरे बॉटल को ख़त्म मत कर दीजिए, बिकॉज वो किडनी पर जो है असर पड़ता है। सो यू हैव टू गो सिप बाय सिप, एंड दैट कीप्स योर बॉडी कूल ड्यूरिंग दिस समर टाइम। और समर टाइम में कतर गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और मिनिस्ट्री की यू नो इनकी जानिब जितने

स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि इस गर्मी में मई जून जुलाई अगस्त, इसमें गर्मी के साथ साथ इनो अगस्त जुलाई बिकम्स क्वाइट ह्यूमिड। और क्योंकि ये मई का महीना है और ईद का त्यौहार है, यानी इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि ईद सिर्फ ज़्यादा खाने का नाम नहीं बल्कि खुशी और बैलेंस का भी एक पैगाम है। तो इस ईद एंजॉय करें हर बाइट, मगर हेल्दी बाइट्स के साथ। तो दोस्तों, ये हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी ईद, दिस इज़ आवर मैसेज टू ऑल आवर लिसनर्स। और मिठास भी, टेस्ट भी, और सेहत का परफेक्ट बैलेंस भी। ऑयल कम, न्यूट्रिशन ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, ऑयल कम यानी तेल कम करिए। अब हमें कौन सा हम तेल इस्तेमाल करते हैं ये हमें बिल्कुल पता तो होता ही है। कोई सनफ्लावर ऑयल यूज़ करता है, कोई सीसम ऑयल यूज़ करता है, कोई यू नो आई डोंट नो कौन क्या, कोई कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करता है, कोई यू नो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि तेल जितना आप कम यूज़ करें उतना बेटर है। बट गो फॉर गुड ऑयल्स, नॉट दोज सैचुरेटेड फैट्स। गो फॉर दोज नेचुरल, जिससे हेल्दी है, वो ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तले हुए चीज़ को थोड़ा सा परहेज करें, तले हुए चीज़ों से आप परहेज अपने आप को करें, वो ओवरऑल हेल्थ का एक जो यू नो टारगेट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा देता है और सेहत का परफेक्ट बैलेंस भी। दैट्स अ रीज़न आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट कि ऑयली स्टफ़ को दूर रखें आप। और इसके साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हेल्दी रेसिपीज़ का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें या फॉलो करें, स्मार्ट कुकिंग टिप्स और गिल्ट फ्री ईद ट्रीट्स के साथ। आजकल सोशल मीडिया में, आजकल प्लेटफॉर्म्स में हर कोई बताता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कुक फूड, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गोट्स बनाना, दिस इज़ द बेस्ट वे, ये सही तरीका है कि आप इस तरह खाना बनाइए जहाँ पे आपके बॉडी में न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन और साथ साथ हेल्दी जो यू नो पॉजिटिव साइड्स हैं वो भी आपको मिलेगा। तो उसको भी आप थोड़ा सा फॉलो करें आप। अब मैं क्यूजिन के बारे में तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग अपने अपने पसंद करते हैं, अपने अपने क्यूजिन्स यू नो प्रेफर करते हैं। लेकिन व्हेन यू कुक, जस्ट इंश्योर दैट यू नो योर इनटेक ऑफ ऑयल व्हेन यू आर कुकिंग दैट इज़ थोड़ा सा लिमिट। आजकल तो वो भी आ गया है कि एयर फ्रायर्स, आजकल ये भी है कि हाफ बॉयल्ड स्टफ़ खाना है, पोटैटो को हाफ बॉयल करके। So these are also good healthy tips, way of cooking. और इसमें ये होगा कि भाई आपका ईद, आप जो ईद जो सेलिब्रेशन है, ईद सेलिब्रेशन में आप लोग अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। यही हमारी कोशिश है कि वी ऑल प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा बताया जाए, थोड़ा सा डराया जाए कि ईद के दौरान भी डोंट क्रॉस दैट लिमिट जहाँ पे आप बीमार पड़ जाए और हमें अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए नहीं क्यों, क्योंकि आप अपने ईद को यू नो खुशियों और सेहत से भरपूर सेलिब्रेट करें। दैट एवरीबॉडी वांट्स, फैमिली मेंबर्स में कोई बीमार पड़ जाए हमें अच्छा नहीं लगेगा और वी विल नॉट फील गुड अबाउट इट। सो हेल्दी ईट बाइट, सेहतमंद सोच, लजीज जायका, दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ मोटिवेटिंग यू पीपल। एंड आप लोग सुनते हैं FM 107। और लेकिन नॉट ओनली FM 107, बट कि FM 107 के अलावा भी आप लोगों के पास मैसेजेस आते हैं, आप लोगों के पास मेल्स पहुंचते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी हेल्थ, MOPH। और वहां से भी आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह हम आपको हेल्दी रखेंगे, किस तरह से यू नो मेंटल वेलबींग के बारे में बात करते हैं। एंड ये सब आप लोगों को बताया जाता है इसलिए कि सोसाइटी शुड बी हेल्दी, योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली छोटे बच्चे जो घर पर हैं या जो आपके बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पार्क्स में जाना, वॉक करना। देखिए कतर गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिट्स लेवल बेस्ट आप लोगों के हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए और सबके लिए, नॉट ओनली जस्ट कि यहाँ के जो सिटीजन हैं वहाँ के लिए, बल्कि जो यहाँ के मुकीम हैं, यहाँ पे जो मुकीम हैं दोहा में, उनके लिए भी ये तरबियत दी जाती है, ये बताया जाता है कि आप कैसे करेंगे, किस तरह के फॉलो करेंगे। इवन ईद के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दीज आर द हेल्दी टिप्स दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें बताने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो थोड़ा सा मज़ीद इस बारे में वी विल डिस्कस ऑन दिस फर्दर।
सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं फिट एंड फेस्टिव शो विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: वेलकम बैक टू एफएम 107 और फिट एंड फेस्टिव प्रोग्राम का ये खास प्रोग्राम है जहां पे मैं मोहम्मद अमीन होस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को नॉट बता रहा हूँ बल्कि एक सजेशन दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन स्टे फिट एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज ऑफ ईद सेलिब्रेशंस। और ये इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारे रेडियो स्टेशंस नहीं बता रहा है, बल्कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कतर गवर्नमेंट की जानिब से भी बार बार ये बताया जाता है कि लेट्स मेक इट अ स्वीट एंड हेल्दी ईद। बिकॉज देखिए, मई का महीना है और मैंने पहले शुरू में सेगमेंट में मैंने बताया था कि दिस मंथ इज़ वेरी हॉट और मौसम जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे ड्राई की तरफ जा रहा है। एंड इस टाइम में होता है कि आपकी बॉडी जो है इनटेक ऑफ फूड के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। यू नो, योर बॉडी बिकम्स ड्राई, आपकी जो इनर सेल्स हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाती हैं एंड उसमें हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम करते क्या हैं, चलते फिरते कहीं पे दुकान दिखा और बकाला में पहुंच गए, भाई एक वो ठंडा दे दो, ये चीज़ें बहुत बहुत नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह इसलिए है कि ये एक तो इट वर्क्स रिवर्स। अब लोगों को लगता है कि हम जब अगर थर्स्टी हैं यानी प्यासे हैं तो उसमें हम ठंडा पी लेंगे तो हम जो है हमारी बॉडी जो है कूल ठंडा ठंडा कूल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इट वर्क्स रिवर्स, गला ख़राब हो जाता है एंड इसके साथ साथ बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। बच्चों के लिए आइसक्रीम या इस तरह का आइस लॉलीज, वो लगता है वो जो है ना एक अट्रैक्शन है, एक वो उस अट्रैक्शन को अगर आप लोग किल कर दें कि लेट्स नॉट गो फॉर दी सॉफ्ट ड्रिंक्स आइसक्रीम, बल्कि लेट्स गो फॉर समथिंग लाइक विच कैन कूल आवर बॉडी। लवन ले लीजिए, आयरन ले लीजिए एंड डोंट टेक आई वुड से कि ठंडा मत लीजिए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में अगर आप लेंगे तो दैट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी। तो दोस्तों, ईद के दौरान मूवमेंट की बात अगर हम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाना भी ना खा के हम सोफे में बैठ जाते हैं और अपना चैनल्स देखते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, भाई ये देख लें वो देख लें, स्पोर्ट्स चैनल्स देख लें, मूवी चैनल्स देख लें, न्यूज़ चैनल्स देख लें, लेकिन दिस इज़ रियली नॉट हेल्दी, रियली नॉट हेल्दी। और ईद की छुट्टियों में सिर्फ रिलैक्स नहीं, थोड़ा सा फिटनेस भी ज़रूरी है, ये सबको सबके लिए है, इवन छोटे बच्चों के लिए भी वही है कि गिव देम सम गेम्स, थोड़ा फिजिकल गेम्स, थोड़ा जो आउटडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के आंगन में ही अगर आपके पास जगह है या ड्राइंग रूम है या थोड़ा बहुत लॉबी है, वहाँ पर आप बच्चों को दे सकते हैं क्रिकेट बॉल या क्रिकेट बैट दे दीजिए या बैडमिंटन रैकेट, एक शटल दे दीजिए, दे कैन प्ले एंड उसमें क्या फिटनेस की बात आ जाती है, अनजाने में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाउ फिट यू हैव बिकम। और थोड़ा फिटनेस ज़रूरी है दोस्तों, ये आप लोग थोड़ा सा अपने वो जो कहते हैं ना हाथ में लिख लीजिए कि फिटनेस ज़रूरी है। छोटी छोटी फिट मूव्स हैं उसको याद रखिएगा और अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए और एंजॉय करें हेल्दी और एक्टिव ईद हॉलीडेज। ईद हॉलीडेज इज़ बेसिकली रिलैक्सेशन। आप कहेंगे कि यार रिलैक्सेशन की बात होनी चाहिए ना कि एक्सरसाइज, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी बात है कि जिम में चले जाएं जी और वेट उठा लीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए, नो नीड टू गो टू द जिम, नो नीड टू गो इवन टू योर जो आप लोगों के अपार्टमेंट में अगर स्विमिंग पूल है वहाँ पर भी अगर आपके पास टाइम है तो चले जाइए। अदरवाइज मैं इतना कह रहा हूँ कि जो फिटनेस मूवमेंट्स हैं वो करिए, आप आपके लिविंग रूम में ही आप चहलकदमी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर आर्म्स, यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स, यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी, यही चीज़ें हैं। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है बॉडी फिटनेस के लिए कहीं और जाइए और इनरोल करिए, नो, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाना पीना तो खा रहे हैं ना, तो खाते खाते आप लोग थक नहीं जाते हैं क्या? अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने की अभी एक तरकीब होनी चाहिए, वो तरकीब जो है वो आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। जस्ट जाके चुपचाप मत बैठ जाइए ऑन द काउच पोटैटो की तरह, ऑन द सोफा कॉर्नर पे जाके जस्ट वॉक अ बिट। और दिमाग में ये रखिएगा, यू हैव टू स्टे फिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली के लिए आपका जो जो सेहत है ना वो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। और अल्लाह से ये हमेशा दुआ करनी चाहिए कि वी शुड हैव अ गुड हेल्थ, वी ऑल, हम सभी को चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से नवाजे। लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लोग हमेशा भूल जाते हैं कि ये इम्पोर्टेंट

0: लोग करिएगा, स्पेशली ड्यूरिंग द ईद के नमाज में गाड़ी वाड़ी मत लेके जाइएगा। जुमे के नमाज पे जा रहे हैं तो गाड़ी छोड़ दीजिए। ईद सिर्फ खाने पीने की नहीं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिएगा कि बल्कि एक मेंटल वेलनेस का भी एक पैगाम देती है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, दिस इज ऑल डॉक्टर्स कहते हैं जो मेंटल वेलनेस पे काम करते हैं ना, वो बार बार इसी चीज़ को कहते हैं कि फैमिली इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस से दूर रहने और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का सबसे मुफीद तरीका ये है कि आप फैमिली के साथ वक्त गुजारें। ज़रूरतमंद लोगों को याद रखना और दूसरों की मदद करना भी दिल को सुकून देता है। इस ईद पर सबके लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, FM 107 के हर हमारे जो कलीग्स हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। ये दुआ कीजिए कि हम सब हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। पैसा वैसा तो आते रहेगा, जब तक आप हेल्दी नहीं है तो आप क्या पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों, हेल्दी बॉडी, पॉजिटिव माइंड और फैमिली की खुशियों के साथ इंजॉय करें एक सेफ, एक्टिव और मेमोरेबल ईद इन कतर। तो दोस्तों, स्टे एक्टिव, स्टे फेस्टिव एंड ईद की तहे दिल से सबको मुबारकबाद। इस ईद खुशियों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, स्टे एक्टिव। चाहे आप हल्की वॉक हो, फैमिली गेम्स हो या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हर मोमेंट आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखती है। फेस्टिव मूड को एंजॉय करें लेकिन बैलेंस के साथ, ताकि आप ईद के हर लम्हे को पूरी तरह महसूस कर सके। दोबारा आप लोगों को ईद का इस ईद के मौके पर मुबारकबाद देता हूं और इसी के साथ इस शो, इस प्रोग्राम का यहां पर ख़त्म करता हूं। अगली बार एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अदा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये खास शो जश्न ईद नाजिया और फजील के साथ। लेकिन मसला हो गया भाई, नाजिया की तबीयत थोड़ी सी आज खराब है, इसलिए आज ये जश्न ईद का शो फजील के साथ होने वाला है। वेल, आपको बता दें कि ये खास शो इसलिए है क्योंकि आपको 1000 कतरी रियाल का वाउचर जीतने का मौका है मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से। तो तैयारी कर लीजिए क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्ट 8:02 हो रहे हैं और ये शो जश्न ईद आपके लिए लेकर आ गया है ये खास।
3: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील।
2: तो भाई आज का सवाल क्या होने वाला है, आज किस बारे में हम बात करेंगे, आप हमें कहां कॉल कर सकते हैं, इनका जवाब सबसे पहले मैं आपको दे दूं। और देखिए, कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। शो के आखिर में दो विनर बनाए जाते हैं जो जीतते हैं मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से 1000 कतरी रियाल का ये वाउचर, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी मेडिकल चीज़ों के लिए। उसके अलावा ये जो एक और चीज़ है उसके बारे में तो बात करने, वो है कि क्या मैं मैसेज कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं अपने जवाब के साथ जब मैं सवाल करूँगा। तो उसके लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। और अब तीसरा सवाल, कि सवाल क्या है, सवाल हम आपको बताएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल नीरज और सुनिधि के साथ जहरा और तनिष बागची की आवाज में एक खूबसूरत सा ट्रैक, ये सुने और फिर वापस आएंगे तो हम मजीद बातचीत करेंगे। वेल, अपना मोबाइल उठा लीजिए और 4434377 का नंबर कॉन्टेक्ट पे रख लीजिए और फिर कॉल करिएगा जब हम सवाल करेंगे। सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: दिल से देसी। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। हमारे स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 8:07 और आज के सवाल पे हल्के हाथ से आ जाते हैं। आज का सवाल थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि सवाल में बात भी अलग तरीके की होने वाली है। क्योंकि क्या है, देखिए, हम सब ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने तरह की ईद होती है। और आम तौर पे जो आप लोगों को पता है वो ये कि यार देखो, सबके घर में कुर्बानी होती है, फिर उसके तीन हिस्से होते हैं, हम वो घरों में बांट देते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो बेसिक है, आपको पता है कि हर मुसलमान के घर में हो ही रही है अगर हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को। लेकिन कुछ घरों का निज़ाम थोड़ा अलग होता है। ये मुझे कल पता चला। तो एक फैमिली मुझे मिली थी और उनका ये ऐसी बातों में पता चली कि उनके घर का निज़ाम ऐसा है, खासकर कतर में, और सिर्फ आई गेस कतर में ही, क्योंकि वो रहने वाले हैं इंडिया के और इंडिया में जिस जगह रहते हैं वहाँ आसपास बीच नहीं है। लेकिन जब से वो यहाँ पर हैं तो उनका ये कहना है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईद उन्होंने कहीं और सेलिब्रेट करी हो, है ना। तो इसलिए वो बीच जरूर जाते हैं। तो 4 दिन छुट्टी है अगर, तो 4 दिन में 1 दिन वो फ्री निकालते हैं और बीच जरूर जाते हैं। तो उन फैमिली का निज़ाम ऐसे ही है। उनका सेलिब्रेट करने का ईद उल अदहा को तरीका यही है कि उनके वाले जो हिस्से होते हैं वो बारबेक्यू के लिए निकाल लेते हैं यानी कि वो जिसको हिस्सा दे रहे हैं वो बारबेक्यू शायद नहीं कर पाएंगे आई डोंट नो, लेकिन वो ये करते हैं।

0: कि अगर ये 3 या 4 दिन ईद सेलिब्रेट करनी है, वो बारबेक्यू का प्लान करते हैं, अपनी फैमिली होती है और उनके करीबी जो होते हैं उनके साथ वो बीच पर जाते हैं, और ये एक तरह का रिचुअल कह लीजिए या एक तरह की जिद कह लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से कह लीजिए कि भैया इनका तो अलग ही है ना। कुछ लोगों के वैसे मैं भैया इनका तो अलग ही है, तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं। उनका यही है कि अपन तो जाएंगे ही जाएंगे बीच पर, और वो बीच पर जाकर एंजॉय करते हैं, एक पूरी शाम रुकते हैं, और ये तकरीबन वो करीब 4 साल से 5 साल से कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई ये गर्मी में आप कैसे जा पाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो जून जुलाई में भी पड़ती थी। कहते थे भाई बन गया है तो बन गया है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, वैसे तो बीच का माहौल उन्होंने कहा कि मोस्टली अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि गर्मी अगर आपको शहर में लग रही तो बीच पर भी गर्मी लगे। बीच पर आप किसी भी मौसम में जाएँ, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो अलग बात है आप मत जाएँ, लेकिन अगर हल्की हवा चल रही है, ऑपोजिट हवा है जो कि, ये तो मैं भी बताता हूँ, तो उनका भी कहना है कि बहुत ज़्यादा बीच पर गर्मी नहीं होती है शाम रात के वक्त, और ख़ास तौर पे 10 बजे के बाद, तो वो ये करने निकलते हैं। तो आज का सवाल भी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपके घर में क्या कुछ अनोखा होता है। आई डोंट नो यार, कई लोगों के घर में कुछ अनोखा होता होगा, और क्या आप रिकमेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि यार ये लोगों को करना चाहिए कि अपने फैमिली के साथ, क्योंकि दावतें तो हो रही हैं, दावत में हम 4 लोग बुलाते हैं, हम वहाँ पर भी जा रहे हैं, हम अपने घर में भी बुला रहे हैं, कोई हमें बुला रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं पूरे ग्रुप की कम्युनिटीज़ की दावतें हो रही हैं, डिनर पार्टी चल रही है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है, और ये तो आम दिनों में भी होता फजील भाई। मैं कहा हाँ यार ये तो बात सही है कि आम दिनों में भी तो हो रहा है, ये आप किसी भी दिन को उठा लें, उन दिनों तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ बीच पर या कहीं घूमने फिरने जाया करें, जब ईद उल अधा या कोई फेस्टिवल आए तो वो फेस्टिवल में जाते हैं। तो आज आपसे सवाल भी यही है कि आप कुछ अनोखी चीज़ करते हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाना, या कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट करना, कुछ नया करना ईद उल अधा में या फेस्टिवल में, तो वो बताएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6662217, और कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहा है?
1: अहमद।
0: ओ हाँ हाँ हाँ, पहचान गया अहमद। कैसे हैं अहमद आप? सो आज का सवाल है कि आपके घर में कुछ अनोखा, कुछ यूनिक होता है ईद के दरमियान, ईद के दौरान, इन 4 दिनों में, 5 दिनों में, जो बाकी लोग शायद नहीं करते हों?
1: मेरी मम्मा माशाल्लाह एक प्यारी, यानी वेरी सपोर्टिव, इंडिपेंडेंट, हर कोई अपने इंतजाम करती है। तो क्या है कि जब भी ये जाते हैं ना, तो वो वही एक डिश बनाती है जो कस्टर्ड होता है, वो कभी वो चीज नहीं बदलती। वो बहुत सालों से ऐसा कर रही है, आई हैव सीन सिंस 1-2 ईयर्स वो ऐसे कर रही है, ऐसे साथ में ग्रीन जलेबी डालती है। बिकॉज मैंने इनको भी देखा था ऐसे बनाए हुए, तो कुछ ईद पहले मैंने कुछ यानी पिछले साल भी देखा था कि इन्होंने ऐसे किया था, और मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि उनको शायद ये पसंद होता है कि ये पीता खाने का, क्योंकि जहर सी बात है कि ये जो होते हैं मिठाइयों का भी एक चीज होता है, नॉट बकरों का भी, साथ में मिठाइयों का भी, यानी लोगों को मिठाइयों का तो शौक है, लेकिन यानी मैं तो खाता नहीं हूँ, तो लेकिन मिठाई यानी ईद यानी खुशियों का होता है ना, तो इसलिए उनको मिठाइयों से बड़ी यानी एक्साइटेड होते लोग, खुशियाँ आती
0: है
1: उनको।
0: तो आप कुछ अनोखा खाते हैं, आप कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं जो बाकी फैमिलीज को भी आपको लगता है कि करना चाहिए सेलिब्रेट उस तरह से जिस तरह से आप करते हैं यूनिक वे में?
1: There is nothing unique way, but एक और भी चीज बताता हूँ कि whenever हम भी, जैसे आप लोग कह रहे थे ना कि एक फैमिली जो आप उनके बारे में बात करते ना कि वो लोग पीता रहे, तो हमारा ऐसा पता नहीं एक साल से ऐसा ही हो रहा है कि बट ईद उल अज़हा जैसा साल हम नहीं कहते, बट हम एक साल से हम अल जुनूब यानी एक पार्क है, तो उसका नाम नहीं लेना जा रहा है क्योंकि never known, yeah right. So हम वही जा रहे हैं, एंड फॉर द लास्ट 1 ईयर हमने पिछले साल तो स्किप किया था ईद उल अज़हा, लेकिन हम इस साल 2 दफा के ईद उल फितर में भी और इस ईद में भी
0: और पार्क में जाते हैं।
1: ये हमने हाँ यानी हम सभी चले गए थे फैमिलीज भी।
0: अच्छा।
1: तो कोई या फॉर ऑल यानी गैदरिंग्स में अगर हम कह लें या फिर कुछ भी, इवन हम जब भी ईद उल फितर में जाते तो हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ हम इस ईद उल फितर भी गए थे और पिछले ईद उल फितर भी गए थे।

0: ओके,
1: यानी लास्ट ईयर की ईद उल फितर।
0: ओके, तो यानी कि बाहर भी सेलिब्रेट करते हैं, ये यूनिकनेस है। हाँ, नहीं कई लोग तो घर पे ही सेलिब्रेट कर देते हैं। हम भी उन्हीं वालों में से हैं जो घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन कल उन फैमिली मेंबर के मिलने के साथ मुझे लगता है कुछ नया तो करना चाहिए।
1: ओके, और एक और भी पार्क है, तो हमने भी ईद उल फितर पिछली ईद उल फितर में करूंगी, हम सेम सेम जगह ही जा रहे हैं।
0: अच्छा, हमने कभी तो चेंज करवा लिया घर से, क्या के फैमिली मेंबर से, क्या के अपने मम्मी पापा से, क्या के कि भाई इस बार चेंज करो,
1: गैदरिंग है ये, गैदरिंग ये फैमिली में।
0: अच्छा, गैदरिंग
1: है इस बार तो। हाँ, तो इस बार तो वो हमने कुछ अलग करना था, हमने कल कहीं जाना था पार्क जो हम पिछले गए थे, लेकिन वो डिसाइडेड नहीं हुआ, तो हम इस बार मॉल गए। पहले दिन में यानी खाना खाया, फिर बाद में फिर दूसरे दिन फिर हम कतारा गए थे, फिर तीसरे दिन फिर हम एस्पायर गए थे।
0: ओके, कूल, ये तो फिर सही है कि आप चारों दिन जो है कहीं ना कहीं घूमते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अहमद कनेक्ट करने के लिए। सुनते रहे एफएम 107, हो सकता है आज वाउचर आप जीत जाए, है ना। तो दोस्तों, आप भी ये बताएं कुछ अलग कुछ यूनिक। मैंने एक और फैमिली के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले एक और कॉल ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं एंड लेट्स सी कि इनका क्या कहना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन बात कर रहा है? आमना
2: जी। आमना
0: सर जी, आमना जी कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आमना जी, आज एक सवाल किया है आपने, सुना
2: जी,
0: तो क्या आपका मानना है, या आप सेलिब्रेट करती हैं, या आपने कहीं देखा हो कोई फैमिली अलग तरह से कुछ यूनिक तरह से सेलिब्रेट करती है, और हम लोगों को भी उस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए ईद उल अधा में या ईद उल फितर में?
2: जी जी, सही बात है, अलग थोड़ा करना चाहिए। बहुत लोग बहुत तरह के करते हैं ना, जिसको जो सहूलत लगता है वो सब करते हैं, लेकिन हम लोग इस साल मैं अलग करी हूँ।
0: जैसे
2: इस साल मैं कुर्बानी के दिन का नाम है सेवई, मैं तो बनाई थी, लेकिन इस साल दही बड़ा और बहुत सारा जितना मीठी ईद में बनाती हूँ, हाँ, उतने सारे कुर्बानी में भी बनाई हूँ।
0: अच्छा
2: जी, उसके बाद फिर बाद में वो तो कबाब उबाब वो तो कुर्बानी में हुआ, फिर ईद के दिन फिर घूमने निकलना, ये नहीं तो हर साल नहीं निकलती हूँ कि ईद के दिन ही निकल जाऊँ।
0: तो कल भी तो आप घूमने निकली थी, फिर कहाँ गई थी आप?
2: कल कतारा गई थी, उसके बाद कॉर्नेस के साइड नहीं जा गई थी, बाजी बता रही थी उधर बहुत ट्रैफिक है, तो हम वहाँ से स्पाइसी चले वहाँ चले गए थे।
0: ओके, और फिर खाना कहाँ जो घर पे बनाया था वो कहाँ पर खाया था आपने?
2: हम कतारा में ही
0: खाया था। तो ये भी देखिए कितना अच्छा डिनर, मुझे लगता है यही यूनिकनेस है। आई थिंक मैं अभी तक अगर एक या दो ही लोग मैं मिला हूं जिनसे जो एक्चुअली में घर से खाना बनाकर लेकर जा रहे हैं। एक आप हैं, एक और मेरे फ्रेंड है, वो भी अब उनसे बहुत कम मिलना होता है, लेकिन जब मिलना होता है तो ऑब्वियसली ये बात होती है।
2: आप मगरिब बाद ही आप खाना खाए बना के लेके जाए ना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, ये यूनिक लगा मुझे,
0: ये ऑब्वियसली हाँ ये यूनिक ही है,
2: अपना घर जी घर से बना के लेके जाके मगरिब बाद वहाँ खाए, और बच्चों के लिए पानी पूरी बना के लेके गई थी, वो लोगों ने बहुत इंजॉय किया बच्चे सब, फिर वहाँ मगरिब बाद अपना खाना खाए तो बहुत मजा है।
0: हाँ, ये देखो ये यूनिकनेस है, पीछे बच्चा भी कुछ बता,
3: जैसे घास है ना, मैं सिर्फ खुद बोलने लगा, अपने आप दौड़वा रहा था मेरे को,
0: शिकायत कर रहा है।
2: नहीं, वो कह रही मम्मा मुझे वहाँ पे घास अपने आप मुझे दौड़ा रहा था।
0: ओके, मुझे लगता है लेकिन आमना जी ये सही में यूनिकनेस है, और मुझे लगता है बाकी लोगों को भी ये करना चाहिए कि घर से आप प्रिपेयर करके जाएं। ऑब्वियसली घर में आप बना रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन घर से प्रिपेयर करके जाने में और फिर वहां पर बैठकर खाने में एक अलग मजा है, वो पिकनिक जैसा फील आता है ना, जैसे हमारी अम्माएं करती थी, तो मेरी अम्मी भी ये एक दो बार कर चुकी है, तो मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि उस वक्त खाने पीने बाहर रेस्टोरेंट और ये सब का हिसाब किताब नहीं हुआ करता था, ये रेस्टोरेंट वगैरह तो आजकल आ गया।
2: हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा
0: इस साल, तो मुझे लगता है कि बाकी जो उनको ये कहा जा सकता है कि भाई ये कर लो यार तुम।
2: हाँ, घर से बना के ले जाओ।
0: लेकिन बहुत से लोगों से मुझे सुनना भी पड़ेगा, अगर फजील भाई मेरे हस्बैंड को ये क्या बता रहे हैं आप, ये आइडिया मत दो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
0: एग्जैक्टली,
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे नजदीक तो अच्छा लगा।
0: एग्जैक्ट, सबके लिए अलग अलग है ना, मुझे पता है कि कई लोगों का भी मैसेज आएगा, अरे ये क्या कह रहे हैं, रोज तो हम खाना बनाते हैं, उसके अलावा अभी नाजिया होती है वो यही कह रही होती
2: जी, आजमाना चाहिए ना।
0: हाँ,
2: आजमा के देखें, हमें तो बहुत अच्छा लगा है मगरिब बाद खाना लेके बैठना वहाँ पे, तो ये अपने घर का खाना और होटल का खाने में जमीन आसमान का फर्क
0: होता है, बिल्कुल
3: फर्क है, होटल खाना और घर का खाना सबसे घर,
2: मेरी बेटी
0: बेटी भी बता रही है फर्क होता है। चलिए, आप उस

नहीं है, वो बाकायदा ये लफ्ज बोलते हैं, वो फैमिली जो परेशान है, वो फैमिली जो हमसे दूर है, हम उन सब के बारे में फिक्र तो कर लेते हैं, हम ज़कात दे देते हैं, हम सदका दे देते हैं, लेकिन आप शहर में आए, क्या वो सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखना हमारा काम है या उनका भी जो हमसे, हम उनको डायरेक्ट नहीं जानते हैं? तो उनका कहना है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो यू नो कहीं दूर रह रहे लेबर हों, या आपके घर में लेबर हों, या आपके यू नो मेड वगैरह हैं, उनके लिए आपने उनके लिए कब किया है? तो मेड वाला तो चलो मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, हमारे वो घर आती है, काम करती है, तो हम उनसे यू नो कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर पाते, हमको कर देते हैं उनके लिए। बट उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए करना जो दूर हैं, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ मिलेगा, जो अपने फैमिली से दूर हैं कतर में, तो वो कहते हैं कि हम हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं और वो कार में भर कर लेके जाते हैं, वो खैर है भी, वो होते हैं वो जो पैसे वाले होते हैं वही अच्छा काम कर पाते हैं, वो आदमी है भी थोड़ा वो कहते हैं कि जब भी हम यू नो कुर्बानी कराते हैं, और वो कुर्बानी बकरों की नहीं, वो माशाल्लाह बड़े जानवर की कराते हैं, और सारा सामान रखते हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं, ईद में वो टेंट लगवाते हैं। अच्छा, अब टेंट में भी यू नो जैसे कि हमने कई बार बात भी करी है कि शेयरिंग बेसिस पे आप टेंट में जो भी किसी को इफ्तार करवाना चाहते हैं वो करा सकते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम ये काम करवाते हैं कि जितना हो सकता है मुझसे, जितनी, क्योंकि वो भी सैलरीड है, अच्छे वाले सैलरी वाले भी है ना लोग तो सैलरीड है वो, अच्छे खासे जो रमदान में पैकेट्स भिजवा सकते हैं, इफ्तार करवा सकते हैं, तो वो कराते हैं। मुझे लगता है ये बहुत यूनिक है, इस तरह की सोच बना पाना, क्रिएट कर पाना, ये सबके बस की बात नहीं है, और ये गहरी सोच से ही आता है, और कभी ना कभी आपने खुद एहसास किया हो तब ऐसी सोच बन के आती है कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, क्योंकि इस मुल्क में कतर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने फैमिली मेंबर से दूर हैं, जो अकेले रहते हैं, जिनके साथ घूमना फिरना, जिनके लिए घूमना फिरना आसान नहीं है, वो हर वक्त घर से बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए करना भी बेहद हमारे लिए ज़रूरी है, उनके लिए सोचना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और बहुत अच्छी बातों में से एक ये बात कि आपको जब भी मौका मिले तो आप मुल्क में ऐसी जगह पे निकल जाएं, अगर आप कतर में रहते तो कतर में, या फिर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जहाँ रहते हैं, ऐसी जगह निकल जाएं जहाँ पर लोग दूर से आएँ, अपना शहर छोड़कर आएँ, अपना मुल्क छोड़कर आएँ, अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं, अकेले कमरे में हैं, अकेले दस्तरखान में खाना खाते, उनके साथ बैठ कर खाना खाएं, और या अगर नहीं बैठ सकते तो उनको वो हिस्सा ले जा कर दें जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कोई ला कर देगा। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये सवाल पर हम बाकी लोगों के कॉल्स लेंगे, और 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दिस इज क्वाइट अ शायरी। आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया और आरजे फजील। नहीं 8:30 हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्ट टाइम हो रहा है और अब समय है कुछ व्हाट्सएप के मैसेज भी ले लिए जाएं। क्या मैसेज कर रहे हैं? वेल, आपकी कॉल भी उठाई जाएगी, लगातार लोगों की कॉल आ रही है, अगर मिस हो जाए तो हम रियली सॉरी। आज का सवाल यह है कि कुछ तो यूनिक आप भी करते होंगे, क्योंकि हमें लोगों को पता नहीं है, हमें लगता है कि हम सब वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, वैसे चार लोग और कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिक कर रहा है। तो उस बारे में यार हमें पता तो होना चाहिए कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, आप ईद उल अधा सेलिब्रेट कुछ यूनिक वे में कर रहे हैं। चले कुछ लोगों के मैसेज पर आते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर। निसार अहमद ने कहा है कि विजिटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। अरे वाह, क्या बात है। मैं ऐसा मान लूं कि बूढ़े दोस्तों पर विजिट कर रहे हैं ऐसा ये भी है ना, ये तो पूछा ही नहीं। आप विजिटिंग ओल्ड फ्रेंड्स मतलब कौन से वाले, कि मतलब पुराने वाले दोस्त या बूढ़े वाले दोस्त? ओके निसार भाई, ये भी एक यूनिक चीज़ है वैसे कि आप अपने उन दोस्तों को भी याद करें जो अब दोस्त थोड़े से कम हो गए, आप उनसे रेगुलर नहीं मिल पाते, उनसे यारी दोस्ती नहीं हो पाती, उनसे बात नहीं हो पाती। मेरे भी ऐसे कई दोस्त हैं। होता है ना कि आपके समय के साथ नए दोस्त बनते हैं, क्योंकि आपके थॉट बदलते हैं तो थॉट के साथ आपके दोस्त भी बदलते हैं। जो आपका बचपन का दोस्त था जिससे यारी करते थे, वो वाले भी बदल चुके हैं। आप देखें जो सबसे पहला या दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त अगर आपको याद हो, तो वो भी धीरे धीरे बदल चुका। नहीं, ओके। अस्सलाम वालेकुम, अल शाहानिया से यासीन खान, और सवाल क्या है ये इन्होंने पूछा, अब तक तो सुन लिया होगा भाई आपने। वी डू बारबेक्यू थर्ड डे ऑफ ईद। अरे ये वही है क्या जो मेरे दोस्त थे कल? नहीं, ये अहमद है। माई वाइफ लव बिहारी बोटी एंड हर रेसिपी इज क्वाइट फेमस इन आर फैमिलीज। अहमद तारिक, क्या बात है। चलो एक और ऐसा ग्रुप मिला या कहें फैमिली मिली जो बारबेक्यू करते हैं तीसरे दिन, इनका तय है। देखो ये कितनी यूनिक बात है कि सिर्फ फैमिली के साथ होगी, कोई रिश्तेदार ही नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने मेंबर्स, अपना खून जो साथ में बैठेंगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग बनाना भी तो कितनी ज़रूरी है। और अगर ये बॉन्डिंग नहीं बनाई फिर बाद में नुकसान होता है, देखो है ना, वरना फिर बच्चे जो हैं ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं। तो जमाने जमाने या आखिर की उम्र को ओल्ड एज होम में नहीं गुजारनी है, तो एक दिन तो गुजार लो दोस्त, समझ रहे हो मेरी बात? वरना पता चला वहीं पर पड़े हुए, अरे हमारा लड़का जो है बड़ा ही बेकार है, भैया ओल्ड एज होम में छोड़कर चला गया। पर उधर से भी कोई कहेगा इनने तो कभी हमें घुमाया भी नहीं। बच्चों की भी बहुत शिकायतें होती है, वो बोलते नहीं है, उनको पता है ना पिट जाएंगे, इसलिए वो अगर नहीं बोल रहे तो ये रिस्क वाला काम है बाबा। आगे बढ़ते, ये एक और मैसेज है, नाम तो नहीं लिखा, लिखा है ईद पे हम हमारे जितने भी दूर और करीब के रिश्तेदार हैं उनको एक साथ डिनर पर बुलाते हैं और तकरीबन 65-70 लोग हो जाते हैं। निधा ने कहा है, और मैं किसी से मिला ही नहीं हूं भाई जिन्होंने 60-65 लोगों को बुलाया हो। मेरा 15 के बाद ऐसा कोई दोस्त बना नहीं है जिसने बुलाया हो इतने सारे लोगों को। 60-65 बुलाना तो यूनिक है भाई। अच्छा, ये यूनिक के साथ साथ हिम्मत वाली बात भी है कि अगर कोई फैमिली मेंबर में फीमेल ये सोच ले कि मैं बनाऊंगी खाना 50-60-65 लोगों का, उसमें कुछ ऑर्डर भी हो जाएगा, रोटी ऑर्डर कर दो बाकी मैं बना लूंगी। ये वाला तो है। देखो मैं तो पता है मैं बहुत शाणा हो गया भाई, मेरे को पता है कि रोटियां बनाने में झंझट होता है, रोटियां बाहर से आ जाएंगी, 1 रुपए की, 1 रियाल की एक रोटी आती है 65 रुपए, ठीक है। और उसके बाद गोश्त वगैरह बन जाएगा, 2 बकरे खड़ी जाएंगे, काम हो जाएगा। 65 लोग माशाल्लाह अच्छे खासे हैं निदा, मैं रिकमेंड भी करूंगा लोगों को भाई, अगर ये काम हो पाए कि सारे लोगों को बुला लो, उससे क्या है ना, एक तो चलो फैमिली वाली बॉन्डिंग अलग हो गई, जो बाकी दोस्त एक दूसरे को नहीं जानते हैं, आपके 4-6 ऐसे दोस्त होंगे, 4-6 फैमिलीज ऐसी होंगी जो एक दूसरे को नहीं जानती ना, आप उनको जानते, वो एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसे सब साथ होंगे, हंसी मजाक होगा, और ज्यादा लोगों में

0: मजा है वो और कहीं नहीं। चार छह लोगों का ग्रुप बढ़िया, लेकिन 50-60 लोगों का ग्रुप हो तो ज्यादा बढ़िया है ना, तो मजा आता है। जैसे क्या होता है ना कि खाना ज्यादा बन गया तो दो दिन चल जाता है दो रोटी बनी तो दो ही दिन चला। अच्छा खाना तभी बनता है जब ज्यादा में बनाओ, लेकिन फैमिली मेंबर्स कम हो तो ऐसे में लोगों को बुलाते रहना। और 60-65 लोग 70 लोग हो जाते हैं निदा, मैं तो कहूंगा कुव्वत है भाई, ये तो कुव्वत है, सब नहीं कर पाते। उसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4434377। एक दो कॉल छूट गई मैसेज पढ़ने में तो अभी कुछ देर में कॉल उठा लेंगे। एक और ये मैसेज है, मैं ईद के दिन लाजमी फायरवर्क्स देखने के लिए जाता हूँ फैमिली, और वहाँ से डायरेक्ट बीच फॉर बारबेक्यू एवरी ईद फर्स्ट डे। यूसुफ, ये कौन है, पूरा नाम इनका है यूसुफ, ये दूसरे वाले यूसुफ हैं, ये रेगुलर वाले यूसुफ नहीं है दोस्तों। अच्छा इनके बारे में भी मैं बता देता हूँ, फायरवर्क्स जो देखने जाते हैं ये यूनिक नहीं है क्योंकि ये तो सब जा रहे हैं। ये बात यूनिक यहाँ पर हो जाती है कि यहाँ से लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, आप बीच चले जाते हैं, यहाँ पर यूसुफ भाई यूनिक है मामला। डिनर विद 35 मेंबर फैमिली अस्मा अशफाक, ओए होए निदा से दूसरे लेवल पे एक और हमें मिल गई है। अस्मा अशफाक 35 लोग, ये भी कुव्वत है भाई, हिम्मत है। अगर किसी मर्द के घर में ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किसी मर्द के घर में अगर कोई खवातीन ये कह दें कि हाँ आप बुला लिए अपने दोस्तों को अपने यारों को, मैं देख लूंगी कर लूंगी, तो यकीन मानो वो मर्द बहुत ही खुश और बहुत ही किस्मत वाला है कि उसको ऐसी खवातीन मिली है। सेम टोन अगर ऐसी आ जाए कि हाँ हाँ तुम बुला लो अपने सारे लोगों को बुला लो, नहीं जितने का दिल करे हो तुम बुला लो, नहीं 33-35 क्यों, तुम 60-65 लोगों को 100 लोगों को बुला लो ना। देखो ऐसे सुनने में तो ये भी लगता है, स्क्रिप्ट लिख दो तो ये लगेगा हाँ ये वाली लाइन जो है अच्छी बात, मेरी बेगम अच्छी है, लेकिन ये टोन अलग है। अगर ऐसी वाली खवातीन है तो मैं किस्मत अच्छी नहीं मानूंगा, ठीक है, लेकिन सबको मुबारक हो मेरा भाई। फिलहाल एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाकी मैसेज की तरफ हम बढ़ेंगे। सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे?
1: वालेकुम सलाम, रहा नहीं जा रहा।
0: क्या हाल है मेरा भाई?
1: बढ़िया बढ़िया भैया, तुम बताओ?
0: बस आपकी दुआ है आसिफ भाई, क्या चल रहा है, कुछ यूनिकनेस के बारे में आज हमने सवाल किया, आपने सुना?
1: भाई मैंने व्हाट्सएप किया तुम चेक तो करो एक बार, तब से अलग ही किया हटके थोड़ा। अच्छा। अपने लाइफ में कुछ यूनिक नहीं है इसलिए।
0: हाँ तब ठीक है, जिस तरह से तुम हंस रहे हो तो मुझे लगा भाई कि तुम्हारा व्हाट्सएप पे कहना ही बनता है, कई बार मुझे डर लगता है अब कहीं इधर उधर की बात निकल गई।
1: बड़े चालाक हो।
0: अरे बहुत ज्यादा।
1: ओके वजीर भाई, आज क्या आज आपने जो टॉपिक निकाला है, हाँ। ये टॉपिक तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है जिनके इधर घर बार है,
0: अच्छा
1: अच्छे खासे मुद्दे उद्दे जमा करके रखे, हम ड्राइवर लोग के लिए क्या यूनिक होगा?
0: नहीं यार हो सकता है, मतलब अभी देखो मुझे लग रहा है जितने लोगों का मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं एक दो लोग तो ऐसे हैं जो अकेले ही होंगे। भाई अगली बार से जो भी मैसेज कर रहा है अभी अभी जिसने सुना है इनकी बात, अब से मैसेज करने के बाद आप अपने यूनिक चीजों को करने के बाद एक डैश लगा के सिंगल है या नहीं ये भी लिख दो, बैचलर है या नहीं ये लिख देना, है ना। चलो अब आप बताओ।
1: हो गया ना भाई यूनिक, हो गया ना भाई यूनिक, अपने आते ही
0: आ हो गया यूनिक,
1: मानते कि नहीं मानते?
0: अरे मैं, अरे मैं साइन कर दूं क्या भाई, कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा तभी मानोगे।
1: मैं बताता हूँ भाई यूनिक क्या हुआ मेरे साथ।
0: हाँ
1: हम लोग जब नमाज पढ़ने के लिए गए, मैंने ये पहले दिन ही बात किया था, मैंने बहुत कॉमेडी किया था भाई के साथ में। मैं नमाज पढ़ रहा था भाई ईद की, मेरे आगे एक मुतवा नमाज पढ़ रहा था, अरबी मुतवा था मतलब, और मेरे साथ में दो आदमी थे, एक तरफ भाई हमारे बंधु भाई थे, बंधु भाई दो तरफ बंधु भाई थे, तो मैं भाई को देख के नमाज पढ़ रहा, किसको, मुतवा जी को, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ईद की नमाज में। मैं नमाज उनको देख के पढ़ रहा हूँ सामने वाले को, और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मेरे आजू बाजू वाले मेरे को देख के पढ़ रहे।
0: अच्छा
1: अब बताओ भाई इसमें यूनिक क्या हुआ मालूम?
0: हाँ।
1: वो मेरे सामने वाला बंदा गलत कर दिया।
0: हाँ, और तुमने भी गलत,
1: मैंने भी गलत कर दिया,
0: और तुमको देखी,
1: और मेरे साथ वालों ने गलत कर दिया,
0: इतना यूनिक।
1: तो पीछे से एक आदमी मेरे को बोलता है भाई वो सरदा नहीं जाने गया तुमको, तुम सरदा क्यों चले गया?
0: अरे अरे अरे।
1: तो मेरे दोस्त ने क्या बात वाले, एक दोस्त क्या बोलते, तू तो खुद तो गलत था, हमें भी गलत बना दिया।
0: अगर दोस्तों मैं सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, और खास तौर पे वो जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना ईद वगैरह में, तो अगर ये बात लिखी जाए, एक लिस्ट बनाई जाए कि सबसे बड़ी शर्मिंदगी की चीज क्या है, तो पहले नंबर पे वो यही आएगी कि आपको बाकायदा बैठकर

0: बताया गया है कि पहले रुकू में क्या करना है, पहले तकबीर में क्या करना है, और आप पहली ही बार में गलत कर जाए, इससे बड़ी शर्मिंदगी भाई कोई नहीं हो सकती।
1: मुझे मैं शर्मिंदा हो गया इस टाइम पे। मैं पहले जब अल्लाह अकबर बोले, दो बार अल्लाह अकबर बोले, तो तीसरी बार में क्या समझा, मैं रुकू में चले गया।
0: हाँ, चौथी बार में जाना होता है भाई से इस लिस्ट, अगर, तो अगर अगर अगर शर्मिंदगी की लिस्ट बने तो सबसे पहले नंबर पे यही चीज होगी कि आपको पता नहीं था। हाँ, और फिर सब आपको देख रहे होते, जैसे ही सलाम फेरने के बाद ना सब बगल में बैठे होते, वो देख रहे होते ये है
1: भाई। फिर एक एक एक बात और आ जाएगी, मुसलमान इतना बड़ा हो गया,
0: पता नहीं है। हाँ, ये होता है, लेकिन मुझे लगता है ये मासूमियत में होता है, ये कोई जानबूझ के तो नहीं होता। हम कभी कंफ्यूजन में,
1: हमारी लाइफ में ये यूनिक हुआ भाई।
0: हाँ, ये तो ज्यादा ही यूनिक हो जाता है, इतनी तो जरूरत भी नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई कॉल करने के लिए। बाकी हम आपका मैसेज जब ही पढ़ते हैं कि कुछ अलग अलग लिखा हो आपने तो, अगर थैंक यू मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। 8:40 जल्दी से मैसेज पढ़ लेते हैं वरना फिर बाकी लोग कहेंगे अरे मेरा मैसेज रह गया। फिर यह है, हम ईद के दिन अपने बहन भाइयों और पेरेंट्स के साथ वन डिश पार्टी करते हैं। सुमैया, मैं देखिए अभी निदा की बात कर चुका हूँ ना, और अस्मा की बात हो चुकी है, तो 60-65 की बात 35 यहाँ पर लगा कि ये बड़े नंबर है। फिर भाई बहन और पेरेंट्स के बारे में बात होती है तो ऐसा हो जाता है कि अरे हाँ ये तो नॉर्मल है ये वाला तो हम सबके साथ कर रहे हैं, ये यूनिकनेस में आई थिंक नहीं आएगा। बाकी एक और ये है मैसेज दिलबर अली का, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ईद में मैंने ये किया है, नमाज़ पढ़ के घर से खाना लेकर निकल गया और रास्ते में 3-4 डिलीवरी वालों को लेकर खाना खिलाया, बहुत मज़ा आया। ये मैं मानता हूँ कि ये कुछ अलग है और ये आमतौर पर आपको कोई भी करते हुए नहीं दिखेगा, बहुत कम लोग होंगे ऐसे इक्का दुक्का, और बहुत ही ये खुशी की बात भी है। बच्चों के लिए घर में फन गेम्स अरेंज करना ईद पर साइमा रसूल, एंड दैट इज़ गुड एज वेल। उसके अलावा ये है मैसेज, अच्छा बच्चों के लिए मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए या फिर बाकी और भी फैमिली मेम्बर्स के बच्चों के लिए भी। फिर ये मैसेज, मैं ईद के दिन खाना बना के बैचलर्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ फैमिली के साथ और रुखसाना, कितनी खूबसूरत बात है, है ना। आप कहाँ से इन बातों को यूनिक नहीं मानेंगे। तो ये वो बातें हैं दोस्तों जो हमें माशरे में और बढ़ानी चाहिए, ये यूनिकनेस, ये प्यारी बातें, ये अच्छी बातें, इसलिए आज के शो में ज़रूरी थी कि इन बातों से हम सीखें और बाकी लोगों में इस चीज़ को इंडल्ज करें, बाकी लोगों को इस चीज़ को अडेप्ट करनी चाहिए ताकि ये चीज़ ये खुश नसीबी लोगों की और बेहतर करें, ये प्यारी बातें हमारे माशरे में और तेज़ी से फैलें, इन्फ्लुएंस करें लोगों को। उसके अलावा इन लोगों के लिए इस ईद कपड़े भिजवाए थे और बच्चों की ज़रूरी चीज़ें भी, समीना आलम, ओके, गाज़ा के लोगों के लिए इस ईद कपड़े भिजवाए थे और बच्चों की ज़रूरी चीज़ें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बातें। देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभार इस तरह के सवाल जो हैं हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एडिशन ज़रूर ला देते हैं, और हर शख्स से बुरी बात तो यार हर इंसान सीख जाता है, अगर अच्छी बात एक भी हम सीख गए तो हम शायद अपनी ज़िंदगी को सही मायने में जी रहे हैं, हम उसे सही प्रूव कर रहे हैं। तो बस एक आज के इस शो से सिर्फ एक वो बात जो आप अडेप्ट कर सकते हैं और आगे कन्वे कर सकते हैं, आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का शो मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये है मैसेज, ईद पर हमारे एक भाई हैं वो जो लेडीज़ के लिए स्पेशल गिफ्ट अरेंज करते हैं, कभी कभी कभी डिनर वाउचर, दैट इज़ रियली रियली स्पेशल टू अस साइमा, ओके। फिर उसके बाद ये मैसेज है, हम अपनी फैमिलीज़ में और नीडी पीपल में ईद के गोश्त बांटते हैं अनाबिया, बहुत ही प्यारी बात माशाल्लाह। दोस्त के साथ बीच और बारबेक्यू करते हैं, कामरान आलम, दोस्तों के साथ बीच और बारबेक्यू, हाँ दोस्तों के साथ, मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली है यहाँ पे और फिर आप अपने दोस्तों के साथ बीच पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिक। अगर आपकी फैमिली या फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सो यूनिक। लेकिन अगर आपकी फैमिली और आप 65 लोगों के साथ कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन यूनिक, ये वाला तो मानना पड़ेगा। ओके, ये कामरान भाई ने लिखा है, कामरान भाई ये वाला सही है, इसको अपन भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल पहले मेरी भी शादी हो गई ना, तो फिर कि फैमिली के साथ अगर मैंने सेलिब्रेट किया नॉर्मल, लेकिन अगर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लिया तो ये तो कुछ अलग किया भाई। दोस्त खुद सवाल पूछेंगे, क्या हुआ भाई, भाभी नाराज है क्या? ओके, उसामा भाई ने क्या लिखा, उसामा हेयर, हम ईद वाले दिन बारबेक्यू पार्टी करते हैं,

पाकिस्तान में, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। बारबेक्यू पार्टी मुझे छतों में भी करते हुए लोग दिखे हैं, मैंने खुद करी है कानपुर में जब रहता था। उस्मान लिखा है गोइंग टू फैंसी रेस्टोरेंट, ये यूनिक कहीं से भी नहीं है, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। उस्मान भाई कह रहे हैं मैं तो रेस्टोरेंट जाता हूँ, ऐसे कैसे, अच्छी बात है। सलाम फजील भाई, टेक लव, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। डिनर विद फैमिली मेंबर्स एंड शेयरिंग गिफ्ट्स, मरियम करामतुल्ला, ओके, ये भी बड़ी प्यारी बात कि आप फैमिली मेंबर्स के लिए डिनर और शेयर करते हैं गिफ्ट्स को। डिनर तक तो ठीक था, गिफ्ट शेयर करना ये यूनिक है, कभी किसी ने गिफ्ट शेयर नहीं किया, मुझे तो नहीं याद है, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं मिली। आप देखिए, मैं जब आप इस प्रोफेशन में रहते हैं ना तो आपको लोग मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसे वाले नहीं मिले कि उन्होंने गिफ्ट शेयर कर दिया। हाँ, खाना जरूर खिलाया है, दावतें करी हैं। एक ऐसी मेरी दोस्त थी, मैं नाम ही ले लेता हूँ, अमिता। अमिता ने एक बार पार्टी दी थी तो पार्टी में उसने गिफ्ट भी दिए। मैं कहा यार ये तो बड़ा सही है, पहली बार, तो ये भी यूनिक है कि अगर आप पार्टी करें उसमें फिर गिफ्ट भी हो जाए। रिजवान खान ने कहा है वी हैव पार्टी ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ओके, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल वी डोंट लाइक। अरे इतना यूनिक तो पूछा भी नहीं था। हीरा, इनका नाम है हीरा या हीरा, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल वी डोंट लाइक, यहां तक तो ठीक था, लेकिन वी डोंट लाइक तक ये गाढ़ा हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आई विन द क्विज इन रमजान बट डिडंट गेट माय प्राइज, ये कुछ ज्यादा ही यूनिक। आई एम सॉरी, देखे इसके लिए हमारी अकाउंट टीम जो है वो जिम्मेदार है, वही आपको आगे रब्ता करेंगे, और कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है, मैं मानता हूँ, और थोड़ा हमारा सिस्टम भी अभी क्या है कि ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं है। हमारी जो एक बिल्डिंग है ना HR बिल्डिंग, वो अभी शिफ्ट हो रही है तो उसमें अभी बनावटों के चक्कर में ये लेट हो रहा है। ईद में किसी से बात नहीं करता, खर्चा बहुत होता है, यही तो मुझे सुनना था। अब देखो, अभी तक क्या था कि आप वो बात बताएं जो आप यूनिक करते हैं, जो अनोखी बात करते हैं, जिससे बाकी फैमिलीज भी सीख सकें। इकलौती ऐसी चीज जो हमें नहीं सीखनी है वो यही है, ईद में किसी से बात नहीं करते हैं, जो इन्होंने लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा कौन है आप जान जाएंगे फिर ना बस यही नहीं सीखना है, ठीक है। आगे मैसेज है, डिनर विद फैमिली एंड शेयरिंग मटन, रईस इनका नाम है, रईद इनका नाम है, दैट इज नॉट सो यूनिक, बट यूनिक इन अ वे कि हम ये काम सिर्फ बकरीद में करते हैं, और सब करता है ये तो सभी कर रहे हैं। डिनर विद क्लोज्ड वंस एंड ईद नमाज विद डैड एंड ब्रदर, सुम्मी इनका नाम है, हम भी अब्बा के साथ पढ़ तो रहे नमाज, मुझे लगता है अगर मैं जिस दिन गले लग जाऊंगा तो यूनिक हो जाएगा, क्योंकि अब्बा के साथ गले लगना थोड़ा कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाता ना। ओके, तो दोस्तों बाकी लोगों के मैसेज हम कुछ देर में लेंगे, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि क्या कुछ अलग, क्या कुछ यूनिक आप करते हैं जो बाकी फैमिलीज को भी करनी चाहिए आपके हिसाब से, ईद उल अधा में या फेस्टिवल्स में। आप अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं तो किन बातों के लिए को लेकर, अपनी किन बातों को लेकर इन्फ्लुएंस करते कि मुसलमान जो माशरा है वो आपकी खूबसूरत बात, आपकी यूनिक बात को लेकर आगे बढ़ाए माशरे में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल अभी तो रहने दीजिएगा, कॉल हमें करिएगा कुछ देर बाद। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377, ब्रेक के बाद, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 6662107, व्हाट्सएप मैसेज। फिलहाल जोन निगम, असीस गौर की आवाज में बिजुरी, या ये गाना दिल से।

0: Maximum News, Maximum Fun on FM 107. Dil Se Desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवाइस करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हवा के झोंके आए मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी,
4: बस बहुत हो गया रूटीन। नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ एफएम 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
6: Eid ki khushboo, qurbani ka jazba aur khushiyon ka jahan. ये ईद हमें सेक्रीफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

0: झुमका कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों. देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद अल अदा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में

टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद अल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 Time Check।
2: फिलहाल 9:01 और आप सुन रहे हैं शो,
3: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: बहुत झूठ बोल रहे सर्वर भाई, नाजिया है ही नहीं, तबीयत खराब है यार उनकी, ये बात पूरी बात नहीं बताते यार। तो दोस्तों 9:01 हमारे स्टूडियो की घड़ी में जल्दी से और लोगों के मैसेज ले लेते हैं क्योंकि दो दिन नहीं लिए थे तो सुनने को मिला था। अपनी बचा लेता हूं मैं भाई, देखो जबरदस्ती कुटना नहीं है मुझे। ये मैसेज है, अच्छा जो अभी नए लोग हैं उनके लिए सवाल तो बता दे वरना वो समझ भी नहीं आएगा कि किस बारे में हम बात करें। तो बात ये है कि आज हमने सवाल किया, आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स में जिनको आप जानते हैं, कहीं पर भी कुछ यूनिक होता हो फेस्टिवल में, कुछ अलग होता हो फेस्टिवल में। जैसे मैंने अभी तक तो कई जगह देखा है कि हाँ डिनर पार्टी वगैरह होती, लेकिन 70 लोगों की पार्टी निदा कर रही है, असमा ने कहता है 35 लोगों की पार्टी कर ले रही है ना। तो ये तो देखो हिम्मत की बात है, कुव्वत होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एक फैमिली मेंबर है या दोस्त कह लेते हैं, दोस्त भी फैमिली बन जाती है जब आप दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं और जितने ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो बैचलर हैं, जो अपने फैमिली से दूर हैं, जो अकेले रहते हैं, तो वहाँ पर वो देते हैं जितने भी गोश्त वगैरह के पाउच उन्होंने बनाए होते हैं, जो उन्होंने बड़ा जानवर कुर्बान किया होता है, तो उनके हिस्से जो है उनको सुपुर्द कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ईद हम एक ऐसा सवाल पूछें जिससे कि बाकी लोग इन्फ्लुएंस हों और ये अच्छे काम करें, लोगों को दावत देना, उनको पूछना, उनके बारे में बताना, उनके बारे में बात करना, जो जिनके बारे में हम सोचते नहीं है एक्चुअली। जैसे सिर्फ यही वाली बात की इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे कल एक बंदा था जिसने कहा था, आई गेस शहजादा सलीम है, जिन्होंने कहा था कि आई डोंट नो, मुझे हो सकता है नाम भी बोल रहा हूँ, कोई और हो सकता है, यू नेवर नो। सो शहजादा भाई ने कहा था कि वो डेजर्ट में जाते हैं उन जानवरों को भी खाना वगैरह देने, जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट में खाना नहीं मिलता भाई, दुनिया भर का पछड़म लगाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसी लोगों ऐसे ऐसे बातों से हम शायद इन्फ्लुएंस हो पाएं और हम भी अपनी ईद में कुछ अलग कर पाएं, कुछ यूनिक कर पाएं, कुछ खूबसूरत कर पाएं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम,
2: जी कौन बात कर रहा है?
4: जी सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ।
2: कौन, एक बार फिर से बताइएगा भाई।
4: अहमद, अहमद,
2: अहमद। ओके अहमद साहब, कैसे हैं आप? तो अहमद भाई, आज के सवाल का जवाब बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हो?
4: माफी चाहता हूँ साहब, मैं सवाल ही नहीं सुना, मैं डायरेक्ट कॉल ही कर दिया।
2: अच्छा कोई बात नहीं। तो सवाल आज ये था कि यू नो कई फैमिलीज सेलिब्रेट अलग तरह से करती है, कुछ यूनिक वे में सेलिब्रेट करती है, तो क्या आप कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं ताकि आप लोगों को मैसेज दे पाएं कि ईद को अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, किसी और का भी फायदा हो, है ना?

0: कुछ यूनिक तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो कि बाकी लोग सुने और इंस्पायर हो जाए कि हाँ यार ये अहमद जो करते हैं ना हम लोग को भी करना चाहिए।
1: ये पार्टी कहाँ पर, यहाँ पर या अपने मुल्क में?
0: कुछ भी, मतलब अपने मुल्क में हो चाहे यहाँ पर हो, कुछ अलग अगर करते हैं तो, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ अलग कुछ यूनिक करते हो ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो।
1: जैसे ये यहाँ पर कर रहे हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ में, चाहे वो कोई भी हो, समझे, कैसा भी रहो बंदा, कोई भी हो, कोई भी स्टेट का हो या कोई कंट्री का हो, साथ में रखे पार्टी करने का वो मजा ही अलग है।
0: सही,
1: तो आप कोई से भी कहीं का भी रहें दो, अपने ये नहीं के ऐसा वो या ऐसा नहीं, वो साथ में रह के पूरे मिलके रह रहे पार्टी करने की बात ही अलग है सर। वो
0: तो आप कैसे वाले से, मतलब एक तो होता है कि 10-12 लोगों में कर ले, एक होता है कि नहीं यार 20-30 लोग चाहिए, 40 लोग भी हो तो चलेगा, भले स्प्लिट करना पड़े, जरूरी थोड़ी है कि 40 लोगों का खर्चा उठाए, स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन सब साथ में हो एक जगह पे, या बारबेक्यू हो रहा है तो पूरा ग्रुप जाए। क्योंकि मुझे याद आ रहा है दुकान में शायद एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि इस बार दुकान में तो इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि अपन इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग थे कोई बीच में, जब कभी कभार आप मुंबई वगैरह में जाएँ तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो वैसे दुकान के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी वो बता रहे थे। तो आप कई लोगों के साथ जाते हैं या कुछ दोस्त?
1: नहीं अब देखिए सब उतने तो एक साथ आदमी आते, यहाँ तो रहते तो नहीं एकदम 40 आदमी 30 आदमी तो इम्पॉसिबल है। हाँ मैक्सिमम बहुत हुआ 10-12 आदमी 15 आदमी
0: 10-12-15 आदमी
1: कोई मुश्किल नहीं, मजा आएगा सब पूरे। हाय हाय
0: बिल्कुल वाई बात है बिल्कुल। तो इस ईद आप कहीं घूमने गए?
1: अपने दुख वगैरह एक शेयर कर लेते, अपने कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा ये ऐसा।
0: सही है सही है। तो आप कहीं घूमने वगैरह गए?
1: सर मैं लोगों तो हाउस डबर हूँ, घूमना क्या, मेरा सुबह से शाम तक मेरा घूमना ही है। अभी भी देखिए मैं कपिल के लड़के को लेने के लिए आया, इनोरबिट मॉल में हूँ।
0: अच्छा
1: ऑनलाइन पे है पर उसका फोन रिसीव नहीं करके आपका वो बात कर
0: रहा। अरे नहीं नहीं जहाँ से पेट भर रहा है वहां पर तो हिसाब देखना चाहिए भाई। अल्लाह हाफिज। नहीं मैं समझता हूँ भाई, कॉल आती रहती है तो हम रिसीव नहीं कर पाते कभी कभी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप उनका कॉल ले लें वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है थैंक यू मेरा भाई। ओके ओके भाई। तो भाई आप भी हमें बता सकते हैं ऐसे ही कि कुछ यूनिक कुछ अलग करते हो ताकि यू नो माशरे में ये बात और अच्छी जो अगर है वो और फैले। ईदी के पैकेट तैयार करना, ओए होए समी का कहना है कि ईदी के पैकेट तैयार करते हैं, सिर्फ तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद बांटना भी होता है भाई, ये वाला ऑप्शन भी करना होता है। पता चला कि यार तैयार कर लिया था फिर बांटना भूल गए थे, फिर खुद ने खा लिया। जमील खान कहते हैं मैं ईद पे अपने पुराने दोस्तों से लाजमी मिलने जाता हूँ रात में फ्री होके। अगर आप ये कहते थे ना लाजमी मिलने जाता हूँ, यहाँ तक फुल स्टॉप हो जाता ठीक था, रात में फ्री होके इसका मतलब ये है कि घर से इजाजत लेना। पड़ता है भाई, आप बैचलर हैं, जो बैचलर हैं उनको नहीं पता है, या जो अकेले यहाँ रह रहे हैं उनको नहीं पता है, लेना पड़ता भाई इजाजत कि हम जा रहे हैं ठीक है, तो अगर उनका आया ठीक है तब तो ठीक है, अगर उनका आया कहाँ, अरे कुछ नहीं वो दूध लेने जा रहे फिर हम आ रहे हैं, तो ये होता है। टोन भाई, टोन में आपको समझ आनी चाहिए, टोन अगर आपको समझ में आ गई आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। साथ कहते हैं डिनर अरेंज करते हैं नेबर्स के लिए, ओके नॉट सो यूनिक यूनिक गेट टुगेदर विद होम टाउन फ्रेंड्स अब्दुल हक, ओके यूनिक फैमिली यही है भाई, ओके ये तो फिर इससे अच्छा क्या है यार, अगर आपकी फैमिली यहीं पर है तो। निसार फ्रेंड्स एंड फैमिली गेट टुगेदर कॉलिंग पाकिस्तान अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ओके फैमिलीज के साथ मिलना जुलना उठना बैठना इनवाइट करती हैं रिलेटिव्स को। कुलसुम का कहना है अस्मा खातून ने कहा है कि आई टॉक विद माई फैमिली बिकॉज दे आर इन इंडिया, ओके हाँ यार ये वाला तो मुझे लगता है हम सब भूल जाते हैं यार, मैं तो इसमें अपने आप को भी कहूँगा कि एक्चुअली में जब भी ईद पड़े, देखो अपने फैमिली मेंबर्स ने उधर से हमें कॉल नहीं किया तो नहीं किया कोई मसला नहीं है, कभी फुप्पी कभी चचा कभी ताऊ अलाने फलाने बड़े अब्बा ये वो कॉल नहीं करते कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे हैं नहीं, बट आपको कॉल करके रिश्ते बनाते रहना चाहिए। आप अपने फुप्पी को कॉल करें, अपने मम्मी पापा को तो इंसान हर दो चार दिन में कॉल करता है, लेकिन उनको जिनको हम कम कॉल करते हैं, अपने फुप्पी को फुप्पी के बच्चों को आप कॉल करें बात करें, ये भी कितना यूनिक है। और मैं मुझे लगता है कि अगर आज मेरे लिए कोई सीख है तो वो यही है, मेरे लिए शो में जो परफेक्ट हो सकता है जो बेस्ट हो सकता है वो यही है कि अगली बार से इंशाल्लाह, अगली बार क्या आज ही इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को कॉल करूंगा, आज

तो वैसे वहां पर 11:30 हो रही होगी इस वक्त, फिर रात में 12:30 बज जाएगी। छोड़ो, आज छोड़ देते हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये जरूर है, जरूरी भी है कि हम अपने उन फैमिली मेंबर्स को कॉल करें जिनसे बहुत ज़्यादा कम बात होती है। हम फैमिली के जो हमारे अपने पेरेंट्स हैं उनको बात कर ले रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर ले रहे हैं, बाकी लोगों से बात कर ले रहे हैं, पुप्पी से पुप्पी के बच्चों से बात नहीं हो रही, चाचा चाचा के लोगों से बात नहीं हो रही, है ना। तो उनको भी लाइन पर लेना बड़ा ज़रूरी है, वरना फिर वहाँ जब जाएंगे तो फिर किसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वहां पर भी तो अपना बनाना है, एक दिन वापस तो जाना है। राहुल अमीन कहते हैं साहब, वेंट टू नमाज विद माय सन, केम बैक एंड कॉल्ड माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके कूल। फिर ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम शकीला फिरदौसी, हैड अ वंडरफुल पार्टी विद फैमिली एंड वेंट टू कतारा एंड वॉच्ड फायरवर्क्स एट लास्ट, हैड डिनर एंड द अदर डे डिड कबाब पार्टी, ब्रॉट सम स्नैक्स विद माय ईदी फॉर माय लिटिल ब्रदर एंड इवन गेव हिम ईदी। आया, ये तो लंबा सीन है, इतना सब कुछ करना, पार्टी पहले दिन, फिर कटारा, फिर फायरवर्क्स, फिर डिनर, कबाब पार्टी, ओहो इतना सब कुछ, बहुत ही उम्दा, यूनिक। फिर ये मैसेज है, मैंने ईद पे मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों के लिए ईद गिफ्ट्स लूँ और अपने से छोटे अडल्ट को कैश ईदी दूँ, नूरैन का नाम है। बट इन सब के बीच एक बात मुझे कहनी है कि यार बकरीद में तो ईदी नहीं होती ना, होती होती है भाई, मेरे को आज तक नहीं मिली है, तो वो होता है ना कि मेरे को आज तक नहीं मिली तो मैं क्यों दूँ। आज मैंने कहा था ना कि एक ऐसी बात जो हमें सीखनी चाहिए, अब वो वाली एक और बात, जैसे कुछ देर पहले एक मैसेज आया था उसमें कुछ अलग लिखा था जो मैंने कहा था कि नहीं सीखनी चाहिए, ये वाली बात भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना सीखूं कि बकरीद में कैसी ईदी यार, मेरे को नहीं मिली तो मैं भी नहीं चाहता यार। हालांकि 2 महीने पहले मैं ही था जिसने कहा था कि इस ट्रेडिशन को हमें चालू रखे रहना चाहिए कि ईद ही देना है, बट बकरीद में मेरे को नहीं आइडिया कि कभी किसी ने मुझे दी या फिर मेरे किसी भी रिलेटिव ने दी हो, बट ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं है ना। बाकी ईद में ईदी हमने जरूर सुनी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बाकी कॉल कई आई हम नहीं उठा पाए, आई एम रियली सॉरी, बट आपके मैसेज हम जरूर ले रहे हैं, तो हम कॉल भी ले लेंगे, अगले वाले में हम कॉल लेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम आपकी कॉलिंग वगैरह लेना शुरू करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: subscription. Never buy investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
1: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से।

0: ज़हरा खान देवनेगी की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से
0: दिल से। 9:25 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आज का सवाल कि कुछ अलग कुछ यूनिक करते हो आपके फैमिली मेंबर्स या आप।

0: ईदुल अदहा में या ईद में या फेस्टिवल्स में, जो मुझे लगता है कि माशरे के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, तो वो जरूर बताएं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे, या कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। दो बंदे ऐसे लगे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, या दो ऐसे लोग जो सेलेक्ट होंगे इस बेसिस पे कि उनकी यूनिक रहे और उनकी बातें अनोखी रही, और फिर लिस्ट में से जो दो बंदे होंगे वो जीतेंगे 1000 कतरी रियाल का वाउचर मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन बात कर रहा है?
1: इलियास।
0: इलियास
1: जी,
0: कैसे हैं इलियास साहब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
0: तो इलियास भाई, आपसे आपने सवाल सुना आज का, आप कॉल कर रहे थे तो हम आपकी कॉल उठा नहीं पाए पहले, माजरत मेरा भाई, लेकिन अब कॉल उठ गई है। तो आपने सवाल सुना, सवाल ये है कि आपका घर या आपके फैमिली या आप कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं जो माशरे के लिए शायद एग्जाम्पल बने, इसलिए क्योंकि आपका घर कुछ अलग करता है जब भी सेलिब्रेशन का वक्त आता है या फेस्टिवल का वक्त आता है तो?
1: हालांकि तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यानी सब लोग जैसा करते हैं तकरीबन यही करते।
0: कुछ ऐसा यूनिक नहीं करते, नॉर्मल वही जो चलता है घर में, जो बाकी घर में चलता है, पार्टी और डिनर पार्टी ये सब।
1: जी जी,
0: ओके, कोई बात नहीं। वैसे हमारे घर में, कई घरों में ये यूनिक होता है, उनको लगता है कि हमारे घर में तो यूनिक हो रहा है कि जैसी नमाज पढ़ के आते हैं वो कलेजी खाते हैं। तो आपके घर में कलेजी चलती है क्या?
1: क्या
0: कलेजी, कलेजी चलती है जब नमाज पढ़ के आते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कलेजी खाने के लिए? नहीं, कलेजी शायद ना समझ में आ रही है आपको।
1: नहीं नहीं, समझ
0: लेवर, लेवर समझ में आ रहा है?
1: हाँ लेवर, लेवर,
0: हाँ हाँ, ये चलता है।
1: जी जी जी,
0: ओके मेरा भाई, चले कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको याद आए कुछ यूनिक बातें जो आपके फैमिली मेंबर्स करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो कुछ अनोखा, कुछ अलग करते हैं बाकियों से, तो हमें बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: ओके भाई, थैंक
1: यू। अंदर हो गए?
0: हाँ हाँ, आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा।
1: ओके
0: भाई, फिलहाल 9:27 और बाकी मैसेज भी हमें धीरे धीरे देखना है। ये मैसेज खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। माशाल्लाह इतने मैसेज हैं, कहाँ से शुरू करूँ? ओके, तो ये मैसेज है, हम भाई हमारे यहाँ बकरीद पर भी ईदी मिलती है। अच्छा, ये बताया इन्होंने कि बकरीद में भी ईदी होती है, और क्या कुछ होता है भाई ये भी बता दो। लेकिन मेरे साथ तो यार ऐसा नहीं होता भाई, सब फैमिली वालों से हमेशा बात करता हूँ, आज भी सब पप्पों से बात की है मैंने। क्या बात है, मोहम्मद मुशीर आलम। ये देखो, ये भी एक मुझे वो कर जाएगा, इन्फ्लुएंस कर जाएगा, फैमिली गैदरिंग हैंग आउट विद फ्रेंड्स, नबील अहमद का कहना है। ओके, नौशीन फातिमा ने कहना है ट्राई टू फॉलो माय मदर्स ट्रेडिशन एंड रेसिपी, वो क्या है ये जरूर बताएं। फिलहाल एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: तेरी आवाज आएगी रेडियो
0: में, आएगी रेडियो में। बता दिया लोगों को, कह रहे कॉल कॉल लगा दिया, कॉल लगा दिया, अम्मी अम्मी सुन लो उर्दू रेडियो डॉट क्यू है। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है?
2: मोहम्मद अख्तर बात कर रहा है, मुझे फरनगर वाला इंडिया।
0: अच्छा, तो घर में बता दिया सबको कि हाँ कॉल लग गई है उर्दू रेडियो डॉट क्यू है, लॉग इन कर। है,
2: मैं सबको बता चुका हूँ फोन करने से पहले भी, और मैं आपकी कॉल सुन रहा था।
0: अच्छा,
2: उसमें भी मैं आपके उसे बता दिया, गाड़ी में सफर कर रहा
0: हूँ। सारा मतलब माहौल सेट कर लिया है आपने,
2: बिल्कुल चेंज कर दिया जनाब। आप इसकी बातें सुन सुन कर ना, मुझे वो ये जो भाई थे आप जो बात कर रहे थे, ये तेजी वाले, तो वो तो नहीं जवाब दे पाए, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, मैं जवाब दूंगा। जैसे इसकी नमाज पढ़कर आते हैं तो आने के बाद जनाब कलेजी खाते हैं,
0: गुर्दा
2: और फिर बात को दोपहर में तहरी बिरयानी, माशाल्लाह।
0: आप चापे कहना तो भूल ही गए मेरा भाई
2: जी,
0: चाप को तो चाप चाप के खाते हैं। आपको भी ईद मुबारक मेरा भाई। लेकिन आपकी फैमिली मेंबर्स या आप कुछ अलग सा करते हैं, कुछ बाकी फैमिली मेंबर्स से या कहें बाकी लोगों में जो आप देखते हैं कि यार ये सब कलेजी खा रहे हैं, है ना, सब अपनी ईद मना रहे हैं, तीन हिस्से करते हैं फिर वो बांट देते हैं जहां जरूरत होती है, ये चीजें हैं ऑब्वियसली यूनिक, बट उसके अलावा कुछ और अलग सा अनोखा करते हो आप?
2: बिल्कुल अनोखा करते हैं मेरे यहाँ, मैं बताता हूँ आप।
0: हाँ,
2: ये सामी कबाब होते हैं।

0: जैसे शायद आपने कभी आलू की टिक्की खाई हो, इस तरह का होता है शामी कबाब।
1: शामी कबाब हाँ हाँ खाए भाई।
0: और जनाब कोफ्ते,
1: कोफ्ते आए आए,
0: और कबाब
1: भाई
0: साला बस मेरी तो राल टपक रही है। और मेरी फैमिली वहां है, वो बना के खा रही है उन्होंने।
1: ये मैं कह नहीं पाया, आपने कह दिया जो आपने कहा ना कि राल टपक रही है, मैं कह नहीं पाया बस। लेकिन जबान में ये बात आ रही थी मेरे कि बस भाई और क्या अभी लगाओगे क्या?
0: आप मेरी साइन का है ना, आपकी बात मैं हर समझता हूँ। ये कलेजी गुड़गा वाला कोई नहीं समझेगा जो मैं समझूंगा।
1: नहीं
0: आपका प्रोग्राम मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी हर बात समझता हूँ। मुझे वक्त नहीं मिलता बात करने का, लेकिन आज मिल गया।
1: नहीं माशाल्लाह, बस यही यही खुशनसीबी है कि आपको वक्त मिला, आपने कॉल कर लिया, और हमें भी पता चला कि आप सुनते हैं और बातें अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। देख रहे हो कलेजी कौन भूल सकता है मेरा भाई। फिलहाल एक और कॉलर है, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
1: जी कौन बात कर रहा है? रिपीट हो रही आवाज, आवाज रिपीट हो रही।
2: हाँ जी सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अभी फिर थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना।
1: अच्छा याद आ गया फिर आपको अनोखी बात।
2: जी विंडो मन में बोला ना, खजूर के बेटा छोड़ दिया, खजूर के बेटे खजूर के पास,
1: खजूर यार बहुत खतरनाक लोग है भाई, अलग ही लेवल के आदमी है ये लोग। चले आप बताएं कि आप कुछ यूनिक करते। तो
2: यूनिक तो बताया था इससे पहले। और सर ये जो भाई साहब अभी जो बात करे जी उसकी, ये सब ये कुर्बानी के बाद पहला नाश्ते के, नाश्ते में तो कलेजी गुर्दे
1: ये फर्ज है, जैसे नमाज में फर्ज होता है ना, ये कुर्बानी के बाद ये फर्ज है, आपको करना ही पड़ेगा भाई।
2: और उसके बाद में दोपहर में है सो बिरयानी कम तहरी ज्यादा।
1: तहरी ज्यादा क्या बात है।
2: अच्छा रात के टाइम में है तो बिरयानी,
1: बिरयानी। अच्छा वो चाप पे तलने वाला दिन कौन सा है आपकी तरफ?
2: चाप का तलने का ऐसा कुछ मुखर्रर नहीं है भाई, जैसे जिसको मुंह को मजा आ गया भाई ये होना खलास बोल दिए।
1: अच्छा मेरे मुझे याद है कि हमारी अम्मी भी ये बड़ा करती थी कि अरे भैया चापे निकाल दो, चापे ये बहुत ज्यादा गौर से, और हड्डी अलग मत करना, नहीं उसमें गोश्त रहने दो, चापे अच्छी निकालो, तुम कैसे एकदम चर्बी हटाए दे रहे हो, चर्बी रहने दो उसमें। अम्मी डांट डांट के करवाती थी अब्बा को, क्योंकि वो होता ना कुछ लोगों को गोश्त लेने का शऊर नहीं है, तो गोश्त कटवाने का भी शऊर नहीं था, तो अब्बू को इतना नहीं पता था। अब्बू को पता था कि खाना मिल जाए, अब्बू को ये पता था कि चाप होती क्या है, चाप कटती कैसे, ये अम्मी को पता था। तो अम्मी जो है वो जो कसाई आते थे उनसे काम करवाती थी, भैया चाप काटो, कीमा बहुत मोटा हो रहा है, पतला पतला काटो, तुमको कहे बाहर कहा है।
2: और बात अपने को कम और तुम ज्यादा मालूम रहेंगे ना भाई।
1: हाँ मेरा भाई ये बात
2: तो अब हमारे अम्मी को तो इतना नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम, हमारे दादी मारे खुद में साथ में बैठते हैं, जैसा भी आप बताए ना ये ऐसा करो वैसा करो, हमारे दादी मारे ऐसा करते थे।
1: सही क्या बात है।
2: कोफ्ते और शामी जो है ना ये हाथों से कूटते थे सब, और आज भी बोले तो मुंह में पानी आ जा रहा था, भूख लग रही
1: थी। मेरा भाई सबका यही हो रहा है। चलो भाई तो फिर रुख कर लो, जहाँ पर कोफ्ते मिल रहे हो कबाब मिल रहे हो उसी की तरफ रुख कर लो।
2: मेरा था आप ही एड्रेस दे देना था, उधर ही चल जाता हूँ।
1: मतार कदी में बहुत दुकानें हैं चपली कबाब टाइप्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला तो मुझे आइडिया नहीं है ये किस जगह मिलेगा। स्पेसिफिक उन्ही लोगों को पता होगा जो इसके शौकीन है, जाते रहते हैं जो
2: बैगन का ही औखत गया मैं वहां पर मिला ही ना बैगन की।
1: चलो मैं अनाउंस कर देता हूँ, जो हो सकता है कोई अगर बताएगा तो मैं आपको जरूर बताता हूँ।
2: ठीक है, मालूम आ रहे तो मैं को डीएम कर दो वो लोग।
1: हाँ तो दोस्तों ये जो सुन रहे हैं FM 107, जिनको पता है कोफ्ते की लोकेशन, जिनको पता है ये जो कबाब है या कोफ्ते हैं इन सब की लोकेशन अगर आपको पता है, तो अब अच्छे भाई की तरह आपका फर्ज है हमें व्हाट्सअप पर बताएं, ताकि इन भाइयों को बताएं, अच्छी बात थोड़ी है रिलेटिव की। ठीक है अनाउंस कर दिया है, हो गया भाई, अगर अगर मुझे मिल जाता है ऐसा तो आपको आज खाने की जो है खाना बनाना नहीं पड़ेगा घर में एटलीस्ट।
2: इंशाल्लाह नहीं, आज मेरा प्रोग्राम ही था बाहर खाने का।
1: अरे वाह, तो फिर दो मिनट रुको, अगर कोई
2: याद आता छोटा खजूर फोन कर दिया ना मेरे को।
1: अरे चलो मेरा भाई ठीक है, तो बहुत रिस्की मामला हो जाता है कभी कभी। बहुत शुक्रिया,
2: छोड़ जाना दो घंटे तो फुर्सत है, अब सीधा मैं निकले, अभी कहाँ खतरा पे हूँ मैं, अब मान लेते जाके सीधा गाड़ी वहाँ पर फेंक के मेरी दूसरी गाड़ी ले लेके सीधा चल जाता हूँ।
1: उसको भी कोफ्ता खिला देना, फिर वो साथ साथ जाएगा कोफ्ता खाने।
2: अब तो फिर नाक पाप के जरा पीछे पकड़ लेंगे, वल्लाही हबीबी वल्लाही हमद वल्लाही ज़ैन खाना भी हाजी बल गया दर्द वल्लाह ओ हार हार हार फिल फिल फिल फिल हार हार।
1: अरे बस बस बस, कभी कभार समझ नहीं आता कैसे कॉल काटूं। थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया।
2: ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़ भाई, जज़ाकअल्लाह खैर।
1: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अरे यार नहीं, रिस्की हो जाता भाई, इतना नहीं, हल्का हाथ रखो मामलों पे। अरे पता है मजाक मजाक में ठीक है, हल्का हाथ रखो ठीक है, कभी कभी तो मैं फंस जाता हूँ कि अरे क्या करूँ, भाई तो रुक ही नहीं रहा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कॉल लेंगे हम, मैसेज लेंगे और फिर बाकी जो दो नंबर हैं वो सेलेक्ट करेंगे टोटल करके। उन टोटल में से दो नंबर सेलेक्ट होंगे और पता चलेगा कि आज का विनर कौन है 1000 कतरी रियाल के मेडिकल वाउचर का, जो कि मिलेगा मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: उदित नारायण अलका और चेतस के साथ अनु मलिक की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: FM 107 दिल से देसी और हम अपने शो के अख्ताम को पहुंच चुके हैं दोस्तों। 9:48 स्टूडियो की घड़ी में जल्दी से आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 4434377, जहां पर आप हमें बता सकते हैं कि आप एक्चुअली में कुछ यूनिक अगर करते हैं सेलिब्रेशन करते हुए, फेस्टिवल को मनाते हुए, ईद उल अदहा को मनाते हुए या ईद को सेलिब्रेट करते हुए कुछ अनोखा कुछ यूनिक करते हैं तो जरूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 666-22107 और कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। वेल, ये बात आपको बता दें कि अगर आपने बताया और फिर हम पूछेंगे दो नंबर रैंडम कोई भी हो सकता है और इन दो रैंडम नंबर को सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि किसका नाम है जो आज विनर बना है। तो व्हाट्सएप के भी मैसेजेस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, कॉलिंग मैसेज भी इंक्लूड किए जाते हैं या जो कॉल करते हैं उनके मैसेज उनके नाम जो है उनका नंबर नोट किया जाता है। तो टोटल में से कोई भी दो रैंडम नंबर आप चुन सकते हैं और ये शफल्ड नाम होते हैं, जहां पर पहला जो बंदा होता है जो कॉल करता है उसको हो सकता है 10वें नंबर भी डाल दिया, हो सकता है 12वें नंबर भी डाल दिया हो, तो आखिरी जो कॉलर होता है या फिर हम व्हाट्सएप से लेते हैं तो उसमें जो भी नंबर वो सेलेक्ट करेगा जिसका नाम आएगा वो विनर हो जाएगा। 1000 कदरी रियाल का वाउचर मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से आप जीत सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज की तरफ अगर हम देखें तो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने और मैसेज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल कहते हैं कि हम दोस्त और लोग मिलकर एक लिस्ट तैयार करते हैं, किसी के घर पर कुरानी नहीं, इसको घर पर गोश्त कुर्बानी नहीं होती, उसको घर पर गोश्त देते हैं। इकबाल नेपाली, ये तो बहुत ही उम्दा बात है यार। जिस घर अगर कुर्बानी नहीं हो रही और आप अगर वहां पर जा पाएं और कुछ कर पाएं उनके लिए तो बेस्ट है ये।

0: फिर उसके बाद है ये मैसेज, फजल भाई कॉल बिजी है, कैन यू कॉल मी, सलीम साहब का मैसेज है। ओके, मैं अभी इंशाल्लाह आपको करता हूँ, बाकी लोगों के मैसेज पढ़ लेते हैं। भाई को बोलो शामी कबाब, बारवा विलेज में है एक शामी कबाब, तो वहां पर चले जाएं। ओके, हाँ तो हमें मिल गया है दोस्तों, अभी एक ऐलान किया था और वो कोफ्ते के लिए ऐलान था। अगर भाई सुन रहे हैं तो शामी कबाब एक वहां पर मिलता है, शामी कबाब जहां पर आपको टेस्टी कोफ्ता कबाब है ना, बाकी जो खाने होते हैं पाकिस्तान या इंडियन टेस्ट के वो मिल जाएंगे। बारवा विलेज जाना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है। नाम नहीं लिया मैंने, देखो आगे बढ़ते हैं। इन बिदर सिटी हम लोग गोश्त को मसाला लगाकर छत पे रस्सी पे लटका के ड्राई करते हैं और कतर आते वक्त साथ मिलाते हैं। साथ ये भी होता है क्या? गोश्त को कैसे ड्राई कर सकते हैं यार, क्या बात है। फजल इस्लाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। हम लोग ईद पर यूनिक काम ये है हम लोगों का कि चार पांच फैमिलीज मिलकर एक डिश अपने घर से लेकर एक साथ मिल बांट कर खाते हैं और सब रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। गुलरेज, वाह क्या बात है। ये अलग है, हो गया ना कि आप बैठे हैं साथ में अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, और दोस्तों यारों के साथ बैठते बैठते आपने कॉल कर ली, फिर हंसी मजाक चल रहा है। यार मेरे को तो बड़ा मजा आता है, दोस्त यारों को कॉल कर दो, अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल कर दो, फैमिली मेंबर्स में बैठे हुए हैं, किसी पुरानी बात को लेकर किसी दूसरे को छेड़ दो, फिर वो ऐसा गुस्सा हो जाए, वो किसी और बात को छेड़ देता है, क्या दिल खुश होता है, मजा आता है भाई। चलो तो अब दोस्तों वक्त आ गया है कि हम अनाउंस कर दें कि आज का विनर कौन है, लेकिन इसके लिए एक दो तरीके हैं। पहले तो कॉल कर सकते हैं आप हमें, कॉलिंग करने के लिए नंबर है 4434377। दूसरा तरीका मैं सोच रहा हूँ आज व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं यार, कि व्हाट्सएप पे सबसे पहला बंदा जो रैंडम दो नंबर बताएगा हम उसको ही विनर बनाएंगे, जो नाम होगा उसको ही हम विनर बनाएंगे, क्या बोलते हैं? क्या तीन दिन तो यार ये कॉल वाला कर लिया, तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कॉल उठा लूँ, चलो उठा ही लेता हूँ यार, मतलब ऐसा कभी कभार दिल करता है कि उठाऊँ नहीं उठाऊँ। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम फजल भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौन बात कर रहा है?
1: रिफत
0: साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक हूँ।
0: तो रिफत भाई आपने मैसेज नहीं किया आई गेस, वैसे तो मैसेज एक दो नहीं, कई मैसेज नहीं खोल पाया मैं, काफी नीचे रह गए, तो अगर आप बताना चाहे कुछ यूनिक आप करते हैं, कुछ अनोखा अगर आप करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए।
1: नहीं, मैं एक दफा किया था।
0: क्या?
1: अगर इजाजत हो तो बताऊंगा।
0: मतलब क्या, मैं समझा नहीं।
1: नहीं, अगर आप परमिशन देगा।
0: हाँ हाँ भाई, परमिशन, आपकी कॉल उठा ली, परमिशन ही है।
1: जी जी, तो एक दफा क्या हो गया था, आज से तकरीबन 25 ऐसा होगा, 25 साल पहले होगा, तो मेरा वो एक अंकल था, वो शादी किया थोड़ा दूर, तो उस समय तो मोबाइल का इतना नहीं था, ईद का टाइम में ही था, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था बचपन से ही, अगर मैं 3-4 क्लास में जब था ना, तब भी तब से मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। मैं क्या किया, एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी किसके लिए लिखा? मेरे वो जो आंटी था ना, अंकल का वाइफ,
0: अच्छा,
1: उसके लिए लिखा।
0: मतलब अंकल की तरफ से ना?
1: जी जी जी, मैं अपने लिखा, मैंने चिट्ठी लिखा, लेकिन एड्रेस क्या दिया, वो दूर 2-3 डिस्ट्रिक्ट बाद उनके घर के तरफ से दिया। बाद में वो तो पढ़ के ऐसा ऐसा ऐसा बोला, उधर से चिट्ठी आया। बाद में किया तो
0: अच्छा, ईद में आपने चिट्ठी लिखा, लेकिन आपने अपने आंटी को लिखा अंकल की तरफ से?
1: जी जी जी, नहीं अंकल की तरफ से, उनकी उनकी क्या बोलते, उनकी मम्मी पापा की तरफ से लिखा।
0: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब आपने आपकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, लेकिन कुछ और बन के, कोई और शख्स बनकर आपने वो?
1: नहीं, मैंने उनकी मम्मी पापा बन के एड्रेस उनका दिया था।
0: क्या बात है,
1: लेकिन उधर उस टाइम में तो इतना मोबाइल का नहीं था, तो चिट्ठी लिखते थे।
0: अच्छा क्या बात है यार,
1: बाद में तो पूरा सब हक्का वक्का रह गया।
0: तो पता चल गया था बाद में कि आपने लिखा था इनकी मम्मी पापा की तरफ से?
1: बाद में तो मैंने बोल दिया ना, बाद में।
0: नहीं तो पता चला अंकल कह रहे थे बेटा आप कौन है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये तो कुछ ज्यादा यूनिक हो गया कि सेलिब्रेट करने के लिए आपने चिट्ठी लिख दी। लेकिन अब हम क्योंकि अपने शो के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, तो आज का एक सवाल है, ठीक है, और सवाल ये है, आपको बताना है एक से लेकर 79 के बीच कोई दो नंबर आप क्या सेलेक्ट करेंगे?

0: 21 or 37.
1: ओके 21, एक मिनट में लिख लूं नहीं तो पता चला 21 और 37. तो ये दो नंबर है. अब इन दो नंबरों पे किसका नाम है दोस्तों, ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको, और फिर वही होगा आज का हमारा विनर. बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई कॉल करने के लिए. थैंक यू रिफत भाई.
0: थैंक यू सो मच.
1: तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, और ये बहुत छोटा सा ब्रेक है, सेकंड्स का ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम आज अनाउंस करेंगे नाम. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
2: साइंस कैन बी फन? नाह, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में. सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है. एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं. एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, हर संडे रात 8 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
4: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद RJ नाजिया एंड RJ फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
1: हाँ जी, दिल से देसी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 9:57, और वक्त आ गया है कि हम अनाउंस कर दें कौन है वो शख्स पहला जो 21वें नंबर पे है. 21वें नंबर पे है जमील, जो जीत चुके हैं 1000 कतरी रियाल का ये मेडिकल का वाउचर. वल्ला हबीबी मबरूक मबरूक, 1000 कदरी रियाल का वाउचर. और दूसरे नंबर पे कौन था, 21 नंबर की बात हो गई, 37 नंबर पे है वो जो 60 से 65 लोगों को दावत देती हैं. वेल, अगर आपने शुरुआत में सुना है तो आपको पता चल गया होगा ये कौन है, एंड हर नेम इज निदा. क्या बात है, 60-65 लोगों को दावत देने के बाद 1000 का कदरी रियाल का वाउचर, तो यार देखो बनता है. अगर ये नहीं बना तो फिर तो नुकसान ही हो जाएगा. तो ये नुकसान एटलीस्ट इतना नुकसान नहीं हुआ कि दिल टूट जाए. हैं, दिल तो वैसा खुश रहता है जब 60-65 लोग आए, लेकिन इसमें नुकसान एक बहुत बड़ा होता है जब इतने सारे लोग आपके घर डिनर पार्टी में आए. वो नुकसान होता है कि जो ये खाना प्रिपेयर करता है ना, वो खाना लगाने में, खिलाने में, इन सब में रह जाता है, और वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है. ये एक नुकसान मुझे लगता है. खैर, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. इन 4 दिनों में बात करते हुए आपसे कॉलिंग पर, मैसेज पर, बहुत अच्छा लगा. जिस तरह के एक्सपीरियंस, जिस तरह की बातें आप लोगों ने शेयर करी नाजिया के साथ, फजील के साथ इस खास शो में, उसमें हमें बड़ा मज़ा आया. बात करते हुए दिल बड़ा खुश हुआ. उम्मीद है कि आने वाला वक्त, आने वाला साल आपके लिए आसान होगा. आपकी ज़िंदगी, आपके फैमिली मेम्बर्स, आप सब हेल्दी और खुश रहेंगे. फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे अगेन ड्राइव थ्रू के शो में. तब तक सुनते रहें FM 107, और मुझे यानी कि फजील को दे इजाजत. दिल से देसी.
5: अस्सलाम वालेकुम साथियों. देखिए, मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का, और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का. लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है. तो भाई, मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले. FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, ईद उल अज़हा के चौथे रोज़ एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ कुर्बानी और रहमत के इस दूसरे हलके में। जैसे कि हमने पहले हलके में भी कहा था कि कुर्बानी को जालिब रहमत कहते हैं, कुर्बानी बतौर जालिब रहमत इलाही फजलो करम को मुतवज्जह करने का जरिया है। कुर्बानी और नुज़ूल रहमत का गहरा ताल्लुक है, एक गहरा और बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है जो इस्लामी तालीमात में इसे वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। ये इस तरह है जैसे माली सदका अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है, यह अमल अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का एक अहम जरिया है और अल्लाह की रज़ा बराह रास्त रहमत के नुज़ूल का सबब बनती है, इसमें तो कोई शक नहीं, ला रैबा फीह। जब बंदा खालिस नियत से अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है तो वो दर हकीकत अल्लाह से उसकी रहमत का तलबगार होता है और अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसके आमाल, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। समय कराम, कुर्बानी की फजीलत व अहमियत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। वैसे कुर्बानी दीन इस्लाम की बहुत ही अहम तरीन इबादत है। ज़िलहज्जा के महीने में लाखों मुसलमान इस फरीज़ा को अंजाम देते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर अल्लाह की रज़ा के खातिर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी की इबादत बंदे की अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क व मोहब्बत का मजहर है। तो जिस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माली वसअत अता फरमाई है वो शख्स कुर्बानी करना एक अहम दीनी फरीज़ा समझता है। वैसे कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो बावजूद माली वसअत के इस अजीम इबादत से महरूम रह जाते हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बंदा ख़ुद अपने नफ्स को अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान का, अपने नफ्स का नजराना पेश कर दे। मगर इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस किस्से के थ्रू अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये रहमत का मामला किया है कि हम पर ये जानवर वगैरह कुर्बानी करने का हुक्म आया है। वैसे बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरतुल माईदा में आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का किस्सा जिक्र फरमाया है कि दोनों ने अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़रई पैदावार यानी गल्ला पेश किया। उस वक्त कुर्बानी

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, मैं हूँ तलहा अशरफुज़्ज़मान और आप सुन रहे हैं ईद उल अज़हा का खुसूसी प्रोग्राम पैगामे ईद। सामिने किराम, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर मुसलमानों के वो मजहबी त्यौहार हैं जिनकी एक मुसल्लमा अहमियत है। ईद उल फितर माह रमज़ान के अख्तिताम पर रोज़ादार के लिए अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है और ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की याद में मनाई जाती है। मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का यादा करते हुए और ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी व इताअत के साथ साथ अपने आप को रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान करने का दर्स याद करते हैं। ईद और कुर्बानी के हवाले से कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है, तुम उसी के ताबे फरमान हो जाओ। आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये सूरतुल हज की आयत रकम 34 है। इस तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने फायदे हासिल करने को आ जाए और इन मुकर्रा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें उन चौपायों पर जो पालतू हैं, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फकीरों को भी खिलाओ। सूरतुल हज की आयत रकम 28। सामने किराम, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी का अहतमाम करते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर कुर्बानी का असल मकसद क्या है, इस इबादत की फजीलत क्या है और अल्लाह ताला के नज़दीक इसका मकाम क्यों इतना बुलंद है। सामने किराम, कुर्बानी दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत की यादगार है। उसी कुर्बानी की याद को ताज़ा रखने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया है। इस्लाम चाहता है कि ईद की खुशियाँ सिर्फ मालदारों तक महदूद न रहें बल्कि गरीब, मोहताज और कमज़ोर लोग भी इस खुशी में शरीक हों। इसलिए कुर्बानी एक इबादत भी है और एक अजीम माशरती पैगाम भी। सामिन इकराम, कुर्बानी की फजीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ उम्मत को खुशखबरी सुनाई है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन में अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान का कोई अमल खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब नहीं, और ये कुर्बानी क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों समेत आएगी, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के हाँ कबूलियत का मकाम पा लेता है, लिहाजा खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। सामने किराम, ये कितनी अजीम बशारत है कि कुर्बानी अल्लाह ताला के नज़दीक इतनी महबूब इबादत है। कुर्बानी का हर लम्हा अजर है, उसका हर कतरा रहमत है और उसका हर अमल बंदे को अल्लाह के करीब करता है। एक और रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपनी कुर्बानी के पास जाओ, क्योंकि उसके खून के पहले कतरे के साथ तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। या फातिमा तू कूमी फशहदी उधियतक فانه يغفر لك عند اول قطره من دمها كل ذنب عملته। सोचिए सामने किराम, अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितनी रहमत फरमाता है। एक इबादत के जरिए बंदे के गुनाहों की माफी, दिल की पाकिजगी और रूह की इस्लाह का सामान कर दिया गया है। इसलिए कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इखलास, तक्वा और अल्लाह की रजा की नीयत होनी चाहिए। इसीलिए तो कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तक्वा पहुँचता है। इस्लाम ने कुर्बानी के वक्त और तरीके को भी सुन्नत के मुताबिक मुकर्रर फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी की उसने सिर्फ अपने लिए ज़बह किया, और जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। सामने किराम, आज हमें चाहिए कि हम कुर्बानी को सिर्फ एक माशरती रिवायत न समझें बल्कि उसकी असल रूह को समझने की कोशिश करें। ये इबादत हमें इताअत सिखाती है, इखलास सिखाती है, अल्लाह ताला के करीब होने का रास्ता दिखाती है। اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اہل فلسطین اور اہل غزہ کو عزت، قوت، نصرت اور غلبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ان کے دشمنوں کے دل میں ان کا رعب پیدا فرما اور انہیں اپنی خاص مدد سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انہی پیغامات کے ساتھ ہے سامعین کرام، پروگرام پیغام عید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو عید الاضحیٰ کے اس خصوصی سیگمنٹ سے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے دوستوں یاروں کو اور ہمارے بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ خدا کرے یہ خاص دن آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں، سکون اور ترقی لے کر آئے۔ May Allah accept your prayers, bless your home with love and peace۔ یہ دن دوستوں اور پریوار کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ ہنسنے مسکرانے اور میٹھی سویاں کھانے کا ہے۔ سبھی پرانی باتوں کو، غموں کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اس خوبصورت موقع کو دل سے سیلیبریٹ کریں۔ Stay blessed, stay happy and keep smiling always۔ Wish you a very joyful and safe عید الاضحیٰ۔ اور سنتے رہیں FM 107 دل سے۔

एक खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। श्रीलंका और दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अरविंदा डी सिल्वा। या दोस्तों, मशहूर और लेजेंडरी बैट्समैन रहे हैं अरविंदा डी सिल्वा, जिन्होंने अपनी क्लास और मैच विनिंग परफॉर्मेंस से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। अरविंदा डी सिल्वा को श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे डिपेंडेबल और स्टाइलिश बैट्समैन माना जाता है, जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालने की सलाहियत रखते थे। अरविंदा डी सिल्वा वॉज अ क्लासी बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दैट। अगर एग्रेशन की बात करें, हम विवियन रिचर्ड्स की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत विवियन रिचर्ड्स के ही अगर रोल मॉडल अगर देखें, विवियन रिचर्ड्स का अगर रोल मॉडल उन्होंने बनाया था, तो उसी तरह हार्ड हिटिंग स्ट्रोक्स वॉज हिज कैपेबिलिटी टू हिट द बॉलर्स ऑल अराउंड द क्रिकेट फील्ड। दोस्तों, अरविंदा डी सिल्वा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करियर 1984 में शुरू किया और जल्द ही मिडिल ऑर्डर का एक अहम हिस्सा बन गए। उनकी बैटिंग टेक्निक, टाइमिंग और कंपोजर उन्हें दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में शुमार करता है। टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दी और कई यादगार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतेह दिलाई। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप अरविंदा डी सिल्वा के करियर का गोल्डन चैप्टर था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी ने श्रीलंका को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जितवाने में बुनियादी किरदार अदा किया और इस परफॉर्मेंस ने उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर सुपरस्टार बना दिया। बैटिंग के अलावा अरविंदा डी सिल्वा एक यूजफुल ऑफ स्पिनर बॉलर और सेफ फील्डर भी थे। फाइनली जब वो रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कोच और सेलेक्टर के तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट की खिदमत जारी रखी। दोस्तों, अरविंदा डी सिल्वा हमेशा श्रीलंकन क्रिकेट के एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे महावश FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे।

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों। देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आज ईद उल अज़हा का चौथा दिन है, इस्लाह, अमन और खैर का दिन। आइए अल्लाह सुबहानहू व तआला की बारगाह में एक साथ हाथ उठाकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت رحمة لي من كل شر يا الله मेरा दीन दुरुस्त कर दे जो मेरे मुआमलात की हिफाजत है, मेरी दुनिया दुरुस्त कर दे जिसमें मेरा गुजारा है, मेरी आखिरत दुरुस्त कर दे जहां मुझे लौट कर जाना है, मेरी जिंदगी को हर भलाई में इजाफा बना दे और मौत को हर बुराई से राहत बना दे। समीन, ईद उल अज़हा का चौथा दिन हमें बैलेंस सिखाता है, दीन भी, दुनिया भी और आखिरत भी। काफी दफा हम सिर्फ पहलू पकड़ लेते हैं, या सिर्फ दुनिया, या सिर्फ जज्बात, या सिर्फ शिकायत। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि मोमिन की जिंदगी

0: خوش رايك صح.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक आप सभी को। मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज। दोस्तों कुर्बानी हो गई, गोश्त आपने अपने रिलेटिव्स को भी बांट दिया, अपने लिए भी रख लिया, गरीबों को भी बांट दिया, और अब आ जाता है वो काम जो सबसे टीडियस है, मेरा मतलब है कुकिंग का। अक्सर ये समझा जाता है कि कुकिंग की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी फीमेल्स की है, लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर की जो फीमेल्स हैं वो लगातार बांटने यानी कुर्बानी के एक तो पैकेट्स बनाने फिर बांटने में भी साथ होती हैं, और बहुत सारे काम ऐसे भी कर रही होती हैं जो पैरेलली हमें नजर नहीं आते। ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईद उल अदा के इस खास मौके पर हम सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बकायदा रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन और क्लियर कर दें। देखिए ईद उल अदा एक ऐसा मुबारक मौका है जो सिर्फ इबादत का मौका नहीं है बल्कि फैमिली बॉन्डिंग और टीम वर्क का भी मौका है। ये वो वक्त होता है जब घर के सब मेंबर्स मिलकर साथ में काम करें, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं कि किसी एक पर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। इस तरह ईद सिर्फ एक एक शख्स की जो है वो ईद ना रहे, सबकी ईद हो।

ईद एक दिन की सेलिब्रेशन भी नहीं है, कुर्बानी एक दो तीन चार दिनों तक चलती है। ऐसे में ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि कौन सा घर का ऐसा मेंबर है जिसपे सबसे ज्यादा काम का लोड है, क्या हम उसके इस लोड को कम कर सकते हैं, क्या आपके अंदर वो एहसास है। देखिए ईद की तैयारियां आम तौर पर कुछ घरों में तो पहले से शुरू हो जाती हैं, जो कि होनी भी चाहिए, कुछ प्लानिंग करना, कुछ ग्रॉसरी कर ली इस तरह से। कुछ लोग जो है अपने घर पे इनवाइट करना पसंद करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो बड़ी बड़ी दावतों के अहतमाम किए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ये है कि कुछ लोग तो बाहर से कुक को बुला लेते हैं कि चलिए आप बना दीजिए, सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलके खा लेंगे। लेकिन कुछ जगह या कुछ घरों में ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, उन्हीं को बनाना है। अब उन पर जो है, क्या उन पर हम सेलिब्रेशंस जो है अपनी खुशियां जो है वो इस तरह से डाल रहे हैं कि उनकी अपनी खुशी तबाह हो रही है। देखिए मुझे लगता है कि घर का हर शख्स ये हक रखता है कि वो भी आपकी तरह ईद की सेलिब्रेशंस या ईद को उसी तरह से एंजॉय करे जैसे आप करना चाहते हैं। घूमना फिरना, इंटरेक्ट करना, तैयार होना, खाना एंजॉय करना, क्या आप इस मामले में सबका ख्याल रखते हैं? क्या हर घर के हर एक शख्स को एक प्रॉपर रोल दिया जाता है? घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा होता है? अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी ना किसी को लेनी होगी, बच्चा हो बड़ा हो, हर एक के पास कोई ना कोई छोटा मोटा काम होना ही चाहिए। देखिए मर्दों का रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का इंतजाम करना, प्रॉपर जगह का इंतखाब करना, सफाई, सेफ्टी, इन सारी चीजों का ख्याल ये ज्यादातर मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं। साथ ही वो घर के दूसरे कामों में भी हेल्प करते हैं, जैसे सामान लाना है, कई बार है कि गेस्ट के लिए अरेंजमेंट्स करना है या बच्चों का ख्याल करना है। लेकिन औरतों का रोल भी ईद पर देखा जाए तो ट्रेडिशनली कुकिंग और प्रिपरेशन से ही जुड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अकेले सब कुछ करना चाहिए। आज के दौर में फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो टीम वर्क पर होना चाहिए, जहाँ घर के सब मेंबर्स किचन में भी हेल्प कराएं, कोई चॉपिंग करे, कोई टेबल सेट करे, कोई सर्विंग करे। इस तरह से ना सिर्फ काम आसान हो जाता है बल्कि फैमिली टाइम भी एंजॉय किया जाता है, फैमिली बॉन्ड भी मजबूत होता है। ईद का दिन हम सब के लिए खुशी मनाने का दिन है। किसी का काम हो सकता है कि वो गेस्ट को वेलकम कर ले, किसी का काम है कि भाई वो चाय की जिम्मेदारी ले ले, किसी का काम ये भी हो सकता है कि चलो आप बड़े हैं घर के बुजुर्ग हैं तो चलो बच्चों को आप हैंडल कर लो या उन्हें एंगेज कर लो। जब हर शख्स अपना रोल प्ले करता है ना, तब एक पॉजिटिव और एक खुशनुमा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। दोस्तों ईद उल अदा एक इम्पॉर्टेंट पहलू हमें जो सिखाता है वो है शेयरिंग और केयरिंग का। फैमिली मिलकर प्लान करे कि किन लोगों को कुर्बानी का हिस्सा देना है, किन लोगों को कुर्बानी के वक्त मौजूद रहना है, किन लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली कुकिंग के लिए तैयार रहना है, कैसे नेबर्स या जरूरतमंद लोगों तक ये खुशियां पहुंचानी है। जब सब घर के एक एक मेंबर का जो रोल है वो डिफाइन हो जाएगा, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक, तो किसी भी तरह का कोई भी इम्बैलेंस घर में क्रिएट नहीं होगा, ना ही घर में क्योटिक सिचुएशन आएगी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ईद फैमिली को एक दूसरे के करीब लाती है। बिजी रूटीन में भी हम अक्सर एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ईद हमें याद दिलाती है कि फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर घर का हर मेंबर मिलकर काम करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे, हेल्प करे, तो ईद सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं रहेगी बल्कि ये खूबसूरत मेमोरी बन जाएगी जो दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि ईद उल अदा हमें सिखाती है कि फैमिली सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एहसास का नाम है, शेयरिंग और केयरिंग का नाम है, टीम वर्क और सपोर्ट का नाम है। जब घर का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करता है, साथ में सब काम करते हैं, तो ना सिर्फ ये काम जो है वो हल्का होता है बल्कि किसी का बोझ हम हल्का कर देते हैं और किसी की खुशियां हम डबल कर देते हैं। ईद पर अगर औरत अकेली किचन में बिजी रहे और बाकी लोग सिर्फ एंजॉय करें तो ये ईद का असल मकसद, असल पैगाम नहीं है। असल ईद तब होती है जब सब साथ हो, सब काम शेयर करें और सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों ईद उल अदा का पैगाम ये है कि मिलजुल कर काम करो, जियो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ।

0: और अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करो। और इस तरह से ही जब सब खुश होते हैं तो असल ईद की असल सेलिब्रेशन जो है वो हो पाती है, क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि ईद कुर्बानी का नाम नहीं है। अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, उनकी मदद करना और एक स्ट्रॉन्ग और लविंग रिश्ता बनाना भी है, क्योंकि असली ईद वही होती है जहां फैमिली एक साथ दिल से होती है। दोस्तों अब वक्त हो गया है कि मैं आपसे कहूँ दिल से देसी, मेरा मतलब है इजाजत लूँ आपसे और आपकी हमारी मुलाकात होगी किसी और सेगमेंट में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ईद के चौथे दिन भी अपनी सेलिब्रेशन को जारी रखिए और हमें सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: ईद उल अधा, इसार, कुर्बानी और अल्लाह की रजा के लिए अपने जज्बों को निछावर करने का पैगाम है। मेरे यानी इस्माइल खान और उर्दू रेडियो कतर की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इबादात, कुर्बानियां और दुआएं कबूल फरमाए और हमारे घरों को अमन, खुशियों और बरकतों से भर दे।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं।

नई रूहानी मुलाकात एक नया जज्बा एक नई सोच के साथ। सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी ऐसा होता है ना, आप थके हुए फील कर रहे हो, थोड़ा सा इरिटेटेड हो, फोकस नहीं बन रहा और आप सोच रहे हो शायद नींद कम हुई है। पर कभी ये थॉट आता है कि पानी कितना पिया है आज? दिन भर में क्या एक ग्लास के ऊपर हमने पानी पिया है भी कि नहीं? Well, आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंड योर बॉडी की। पानी एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं पर सीरियसली कम ही लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम भूख को तुरंत पहचान लेते हैं पर प्यास को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बॉडी क्वाइटली एडजस्ट कर लेती है। पर डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता, कभी कभी डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है लो एनर्जी, हेडेक, ड्राई लिप्स, पुअर कॉन्सेंट्रेशन और बिना वजह का थकान। हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए पानी सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं, बॉडी का फ्यूल होता है। पानी डाइजेशन को स्मूथ रखता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन मूड से भी होता है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं चाय पी ली, कॉफी पी ली, काफी है, पर सच ये है कि चाय और कॉफी हाइड्रेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होता, कभी कभी वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। वेल, हाइड्रेशन का बेस्ट तरीका ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए, सिर्फ तब नहीं जब प्यास लगे बल्कि इसे रेगुलर हैबिट बना ले। प्यास लगना ऑलरेडी एक लेट सिग्नल होता है कि बॉडी थोड़ा पीछे रह गई है। और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर वक्त बॉटल लेके साथ घूमें, बस अवेयरनेस चाहिए कि हाँ, हर आधे घंटे में मुझे कम से कम 4 सिप पानी के पीने ही पीने हैं। सो अपना स्केड्यूल सेट कर लीजिए, सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, मील्स के बीच थोड़ा सा सिप, वर्कआउट या गर्मी के दिनों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और रात में सोने से पहले भी एक ग्लास फुल पानी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाइड्रेशन को, पानी पीने को एक पनिशमेंट ना बनाइए, उसे रूटीन बनाइए। नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, ये सब काउंट करते हैं। जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना तो एनर्जी नेचुरली बेटर होती है, स्किन फ्रेश लगती है और फोकस भी इम्प्रूव होता है। तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम जब आप लो फील करें पहले अपने आप से पूछिए मैंने आज कितना पानी पिया है। हो सकता है सॉल्यूशन आपके सामने ही हो, क्योंकि जब आप पानी का ख्याल रखते हो आप अपनी बॉडी से ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हारी जरूरत को समझता हूँ। और जब बॉडी को समझ लिया जाए ना तो सेहत और सुकून दोनों साथ आ जाता है। इसलिए याद रखिए, हाइड्रेशन सिर्फ हैबिट नहीं, सेल्फ केयर का साइलेंट फॉर्म है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: Are you ready?
4: Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं RJ कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
5: Top 10 Countdown।
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान नाजबुल हुसैन शांतो। यहाँ दोस्तों नाजबुल हुसैन शांतो को पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में खेला गया फर्स्ट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। इसका रीजन ये रहा कि इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर किया और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भी 50 प्लस स्कोर रन करके बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन और आगे जाकर मैच जितवाने में मदद की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नाजमुल अपनी काम पर्सनालिटी और क्लासी बैटिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। शांतो ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के लिए कई इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं और टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने की वजह से वो क्रीज पर बहुत एलिगेंट नजर आते हैं और स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं। मीरपुर में इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स के प्रेशर के बावजूद उन्होंने पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की। उनकी सेंचुरी ने बांग्लादेश को ना सिर्फ मैच ही जितवाया बल्कि टेस्ट स्टेटस में अगर देखा जाए बांग्लादेश हैज रियली कम अप। और इसी में नाजमुल हुसैन शांतो या नाहिद राणा जैसे खिलाड़ी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को काफी मजबूत पोजिशन हासिल करने में मदद की। एक्सपर्ट्स ने उनकी शॉट सिलेक्शन और टेम्परमेंट की खूब तारीफ की और कहा कि ये इनिंग्स उनके करियर की यादगार इनिंग्स में से एक है। नाजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर लीडर भी माना जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी, लीडरशिप और डेडिकेशन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन है और फैंस को उम्मीद है कि वो आने वाले सालों में और भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेगा। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: Fraud Awareness.
3: Congratulations, भाई साहब, आप जीत चुके हैं 100,000 कतारी रियाल लकी ड्रॉ में। जी हाँ, ये हम आप तक पहुंचा सकते हैं, आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ेगी और यहीं से स्कैम शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस, मेरा नाम है वेद। फेक लॉटरी कॉल्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस। स्कैमर्स बोलते हैं कि आपने कोई कॉन्टेस्ट जीता है, ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें आप कभी गए भी नहीं है। लेकिन आजकल स्कैमर्स समझदार हो गए हैं, वो ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं जहां पर आप गए हैं, उनके पास पता नहीं कहां से डेटा पहुंच जाता है। तो कभी कभी ऐसे कॉन्टेस्ट से कॉल आते हैं जहां आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, और कभी कभी ऐसे कॉन्टेस्ट से कॉल आते हैं जहां पे आपने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया है। ऐसे में आपको लगता है कि वाकई ये तो सच हो गया है। तो पहले प्रोसेसिंग फी मांगते हैं, फिर टैक्स, फिर ट्रांसफर चार्जेस, और ये सब देने के बाद प्राइस कभी नहीं आता। तो ऐसे गिफ्ट वाले फ्रॉड से बच के रहें। अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, प्राइस कैसे मिलेगा? जेन्युइन कंपनीज कभी पैसे मांग के प्राइस नहीं देती, स्पेशली कतर में। अगर आप कोई लकी ड्रॉ जीतते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रांसफर मनी आपसे नहीं मांगी जाती, क्योंकि MOCI यहाँ हर एक लकी ड्रॉ पे नजर रखती है, और किसी अननोन नंबर से अगर कॉल आपको आता है वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो भाई, जो बिना मेहनत का इनाम दे वो अक्सर स्कैम ही होता है।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: क्रिकेट हो
5: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
4: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
7: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
8: हाँ, उसके लिए तो
7: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
8: वैसे वो तो देखो,
7: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ हाँ, में नहीं आ रहा है।
8: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
9: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. दोस्तों आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे. शायद ये लाइन आपने पहले सुन रखी हो कि डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन मोटिवेशन. कैसे? चलिए इसी कैसे को जो है वो आज एक्सप्लोर करते हैं. आजकल हम अक्सर ये सुनते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीचेस, कोटेशंस, हम थोड़ी देर के लिए तो ये सब सुन के एनर्जेटिक बन जाते हैं, मगर असल जिंदगी में मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है. इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन. जी हाँ, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब मैं बताती हूँ क्यों. देखिए, डिसिप्लिन वो आदत है जो इंसान को बिना किसी जज्बाती फीलिंग के भी किसी भी तरह का काम करने पर मजबूर करती है. मोटिवेशन अक्सर इमोशंस पर डिपेंड करती है. जब हम खुश या इंस्पायर्ड फील करते हैं तो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब हम थके हो, मूड ख़राब हो या मसाइल का सामना हो, तब मोटिवेशन गायब हो जाता है. ऐसे वक्त में अगर सिर्फ मोटिवेशन पर ही डिपेंड किया जाए तो शायद हम अपना काम छोड़ देते हैं या शायद उसे अच्छे से कर नहीं पाए. डिसिप्लिन यहाँ काम आता है. डिसिप्लिन सिखाता है कि चाहे दिल करे या ना करे, काम तब भी करना है. डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जिंदगी बोरिंग लगे या ना लगे, काम तब भी करना है. जी हाँ, जब आप रोज एक वक्त पर उठते हैं, अपना काम टाइम पे करते हैं, अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, तो धीरे धीरे वो काम आदत बन जाती है. जब काम आदत बन जाए तो मोटिवेशन की ज़रूरत कम हो जाती है. मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को देखिए, एग्ज़ाम के करीब अगर मोटिवेशन आता है तो वो पूरे दिन पढ़ने का प्लान बना लेता है, लेकिन रोज़ रोज़ पढ़ना मुश्किल लगता है. अगर वही स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉलो करे और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बना ले तो एग्ज़ाम के वक्त टेंशन कम होगी और परफॉर्मेंस 100% बेहतर होगी. यही फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में. इसी तरह

फिटनेस के मामले में भी हम देख सकते हैं। जिम ज्वाइन करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, नए कपड़े चाहिए, कुछ और सामान चाहिए, लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ रोज वर्कआउट करते रहते हैं वो

पूरा करता है। मोटिवेशन आता है और जाता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर एक बार डेवलप हो जाए तो जिंदगी भर साथ निभाता है। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो हर रोज वो काम डिसिप्लिन वे में कर रहे होते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। आखिर में कहना गलत नहीं होगा कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको आगे लेकर जाता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि असल कामयाबी डिसिप्लिन से ही मिलती है। जब आ जाए डिसिप्लिन तो मोटिवेट होने में कोई हर्ज नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मैं नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों आपसे इजाजत लेंगे इस वादे के साथ कि देखते और सुनते रहना है आपको FM 107। कहते हुए दिल से डीसी।

0: Hey बच्चो, are you ready? Games, मस्ती, stories और super fun के लिए
1: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं.
2: ये शो कौन सा है?
0: The Super Kid Show.
3: Super Kid Show on FM 107.
1: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक. Only on FM 107, दिल से देसी.
2: I love the Super Kid Show.
1: Super fun.

आग ही उनका ठिकाना होगी। और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका उन्हें न दिया जाएगा। हमने उन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए थे जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। आखिरकार उन पर भी वही फैसला आजाब चिस्पां होकर रहा जो उनसे पहले गुजरे हुए जिनों और इंसानों के ग्रोहों पर चिस्पां हो चुका था। यकीनन वो खसारे में रह जाने वाले थे।

नेक अमल करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा, जो बदी करेगा उसका वबाल उसी पर होगा, और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। उस साथ का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजिअ होता है, वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामिला हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ हैं मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। उस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं सकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जूं ही कि सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहक हूँ और मैं नहीं समझता कि कयामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि कुफ्र करने वालों को लाजिमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और उन्हें हम बड़े गंदे आजाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब उसे कोई आफत छू जाती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हो और तुम उसका इनकार करते रहे तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालिफत में दूर तक निकल गया हो। अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहां तक के इन पर ये बात खुल जाएगी कि ये फरमान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है? आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं। सुन रखो, वो हर चीज पर मुहीत है।